आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो आजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर खाही करना भी चाहूं तो मेरी खैर खाही तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनके करतूतों पर गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू कर दो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। नूह कश्ती बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं, अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो आजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा, और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी।

इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम, पस सब्र करो, अंजाम-ए-कार मुत्तकियों ही के हक में है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, ऐ बिरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ घड़ रखे हैं। ऐ बिरादराने कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। मुजरिम बनकर बंदगी से मुंह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तू हमारे पास कोई सरीह शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूं और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर न उठा रखो और मुझे जरा मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में न हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था, वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे नजात दे दी और एक सख्त अजाब से उन्हें बचा लिया।

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعلم.

आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो है सुकून। हर शख्स थका हुआ है, हर कोई जहनी दबाव में है, कोई माली परेशानी में है, कोई रिश्तों के मसाइल में घिरा हुआ है, कोई अपने मुस्तकबिल के खौफ में। और ऐसे माहौल में जब लहजे मजीद सख्त हो जाएं, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आप देखें आजकल सोशल मीडिया पर कितनी जल्दी लोग एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, अख्तलाफ राय को दुश्मनी बना दिया जाता है भाई। व्हाट्सएप के एक मैसेज पर रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक छोटा सा जुमला, एक तंजिया जवाब, एक सख्त आवाज और फिर पूरा दिन खराब। घर के माहौल में भी यही हो रहा है, माँ बाप थके हुए हैं, बच्चे स्ट्रेस में, मियाँ बीवी मसरूफ हैं, हर किसी के पास वक्त कम है, बर्दाश्त कम है और गुस्सा वो तो नाक पे धरा है। ऐसे में नरम गुफ्तगू सिर्फ एक अखलाकी खूबी नहीं रही है बल्कि एक जरूरत बन गई है। और खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि बोलने का अंदाज तक सिखाता है। हमारे दीन में नरम लहजे को भी सदका कहा गया है, अच्छे अल्फाज को इबादत कहा गया है। यहां तक के कुरान पाक में बार बार कौले हुसन यानी अच्छी बात करने की तालीम दी गई है। सोचिए अगर एक घर में लोग सिर्फ अपनी आवाज नरम कर लें, एक दूसरे से इज्जत से बात करें, गुस्से में भी हद ना पार करें, तो कितना सुकून आ सकता है। हम अक्सर समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो कोई बहस जीत जाता है, लेकिन हकीकत में स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो गुस्से में भी अपनी जबान को काबू में रखे, जो इख्तलाफ में भी इज्जत बरकरार रखे, जो सच बोले मगर नरमी के साथ बोले। आज के शो में हम यही सीखेंगे कि नरम गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज नहीं, एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपनाया जा सकता है। हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में नरम गुफ्तगू की अहमियत पर, क्योंकि सख्त लहजा रिश्तों को नुकसान देता है। आज की मसरूफ और डिजिटल जिंदगी में नरम गुफ्तगू क्यों मुश्किल हो गई है, और सबसे अहम, हम इस आदत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी के सख्त लहजे से दुखी हुए हैं, अगर आपको कभी ये महसूस हुआ कि लोग आपकी बात नहीं सिर्फ आपका अंदाज याद रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल नरम हो, पुरसुकून हो, गुफ्तगू में सुकून आए, दिल एक दूसरे के करीब हो, तो आज का ये शो खास तौर पर आप ही के लिए है। और शायद आज की गुफ्तगू सुन के हम में से कोई एक शख्स अपने लहजे को बदल ले और इस एक तब्दीली से किसी का पूरा दिन और हो सकता है शायद पूरी जिंदगी बेहतर हो जाए। आप अपने जो मैसेजेस हैं वो भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का शो। आज की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। ये हदीस बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इंसान वाकई इस पर गौर करे तो महसूस होता है कि सिर्फ गुफ्तगू का उसूल नहीं बल्कि पूरे माशरे को बेहतर बनाने का तरीका है। हम में से अक्सर लोग बोलते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सही हूं या नहीं, लेकिन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि मेरा अंदाज कैसा है, मेरी बात दूसरी

के दिल पर कैसा असर डालेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की बात दुरुस्त होती है मगर लहजा गलत होता है। जब लहजा सख्त हो जाए तो सही बात भी अगले बंदे के दिल में नहीं उतरती। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो भी बात हो ना बिल्कुल मुंह पे बेधड़क कह देता हूँ, मुझे नहीं आती ये लगी लपटी रखना, मैं नहीं लोगों के साथ फेक हो सकता। किसी ने नहीं कहा आपसे फेक होने को, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप सही बात कर रहे हैं लेकिन गलत अंदाज में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें बार बार ऐसी नर्म गुफ्तगू की मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि लोगों के जज्बात का ख्याल भी रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है, कोई गम में है, कोई खौफ में, कोई कमजोरी में, कोई गुस्से में। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा ऐसा होता था जिससे लोगों को सुकून मिले, शर्मिंदगी नहीं। जरा सोचिए, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सख्ती से भी बात कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार भी था, सच्चे थे, बाइज्जत थे, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नरमी को इख्तियार किया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल और सख्त मिजाज होते तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा ना होते। यह आयत हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाती है, लोग हमेशा कामिल इंसानों के करीब नहीं रहते हैं, लोग नरम इंसानों के करीब रहते हैं। आज हम देखते हैं कि घरों में फासले क्यों बढ़ रहे हैं। अक्सर इसकी वजह नजरियात का अख्तलाफ या फर्क नहीं होता, अंदाज का फर्क होता है। कभी वालिदैन बच्चों से सिर्फ हुक्म के अंदाज में बात करते हैं, कभी बच्चे गुस्से में इरिटेट होकर जवाब देते हैं, कभी मियां बीवी एक दूसरे की बात सुनने के बजाय फौरन से डिफेंसिव अंदाज अख्तियार कर लेते हैं। और फिर होता क्या है, होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता दिलों में नाराजगियां जमा होने लगती हैं। बाज़ घर ऐसे होते हैं जहां हर चीज मौजूद होती है, अच्छी जिंदगी, बेहतरीन फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन भी दे रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन सुकून सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां अल्फाजों में नरमी नहीं होती। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सख्त गुफ्तगू हमेशा चीखने से नहीं होती है, कभी कभी कोई इंसान बहुत खामोश सा तंज करता है और अगले बंदे का दिल जख्मी कर देता है। कभी मजाक के नाम पर कही गई बात जो है ना वो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती है। कभी सिर्फ आंखों का अंदाज या बेरुखी भी दूसरे को ये एहसास दिला देती है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई अहम वहम नहीं है। इस्लाम हमें सिर्फ बुरा ना बोलो नहीं सिखाता, इस्लाम हमें अच्छा बोलो सिखाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने कोई गाली तो नहीं दी, फिर क्या मसला है, मैंने तो एक नॉर्मल सी बात ही तो की थी, पता नहीं उनको इतनी बुरी क्यों लग गई। लेकिन नरम गुफ्तगू सिर्फ गाली ना देने का नाम नहीं है, नरम गुफ्तगू में एहतराम होता है, बर्दाश्त होती है, दूसरों के इमोशंस का ख्याल होता है। कभी कभी इंसान थका हुआ होता है, पूरा दिन काम किया होता है, स्ट्रेस में होता है, और फिर घर आके वो अपनी थकन गुस्से की सूरत में दूसरों पे निकाल देता है। ये बड़ा आसान तरीका है अपने आप को जस्टिफाई करने का कि हम तो थके हुए थे, हम क्या करते, अगले को समझना चाहिए था भाई, मतलब पूरे दिन मेहनत करके आए। लेकिन ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। लोग बुरे नहीं होते, बस थके हुए होते हैं। और जब इंसान मुसलसल जहनी दबाव में हो तो उसका लहजा सही है, नेचुरली थोड़ा बहुत बदलने लगता है। लेकिन आप सोचें, पूरा दिन आपने मेहनत की, बाहर जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस

फौरन उसकी कभी बेइज्जती नहीं करते थे, लोगों को शर्मिंदा नहीं करते थे, बल्कि ऐसा अंदाज अख्तियार करते कि इंसान अपनी गलती भी समझ जाए और उसकी इज्जत भी महफूज रहे। यही असल तरबियत है। आज हमारी गुफ्तगू में मसला यह है कि हम अक्सर बात पर तवज्जो देते हैं, दिल पर नहीं। हम सही होना चाहते हैं मगर रहमत वाला अंदाज भूल जाते हैं। खास तौर पर डिजिटल दुनिया ने इंसान के लहजे को बहुत मुतासर किया है। सोशल मीडिया में जली जली कमेंट्स, जली जली रिप्लाईज, इन सब ने इंसान को बेसब्रा बना दिया। लोग सोचे समझे बगैर जवाब दे देते हैं। गुस्सा फौरन से हमारे अल्फाज में झलकने लगता है और चूंकि सामने वाला नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए इंसान भूल जाता है कि स्क्रीन के पीछे भी एक दिल है। कभी कभी एक मैसेज पूरा रिश्ता खराब कर देता है, सिर्फ इसलिए कि लहजा महसूस नहीं हो सका, सिर्फ इसलिए कि इंसान ने जल्दी में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। इस्लाम इंसान को रद्द अमल यानी रिएक्शन के बजाय शऊर सिखाता है, बोलने से पहले सोचना सिखाता है, गुस्से में खामोश होना सिखाता है और सबसे बढ़कर इंसान के दिल की हिफाजत करना सिखाता है। क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इबादतें नहीं बंदों के दिल भी अहम है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत खूबसूरत बात करते हैं फिर उनके अल्फाज में तकब्बुर होता है, और कुछ लोग आम सी बात करते हैं मगर दिल को सुकून मिलता है। फर्क अल्फाज का नहीं है, नीयत और लहजे का होता है। एक नरम इंसान दूसरों के लिए राहत बन जाता है, उससे उसके बच्चे बात करते हुए खौफ महसूस नहीं करते, उसके दोस्त उसके करीब सुकून महसूस करते हैं, उससे मशवरा करने आते हैं, उसके घर में आवाज़ें कम और एहतराम ज़्यादा होता है। और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है। इंसान अपने लहजे पे काम करता है, गुस्से को रोकता है, अल्फाज सोच समझ के बोलने लगता है और फिर एक वक्त आता है जब नरमी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है, नरम गुफ्तगू का मतलब हर वक्त खामोश रहना नहीं, ना ही इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी राय ना दे। आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और नरम मिजाज भी, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और बाइखलाक भी रह सकते हैं, आप नहीं भी कह सकते हैं मगर इज्जत के साथ। यही वो तवाज़ुन है जो इस्लाम सिखाता है, क्योंकि असल खूबसूरती सिर्फ खूबसूरत चेहरे में नहीं होती बल्कि खूबसूरत अल्फाज में भी होते। और शायद इसलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा हमें याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दिल पर अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से सुकून छोड़ा होता है। तब सवाल यह है, अगर इंसान वाकई लहजे को बदलना चाहे, नरम गुफ्तगू को अपनी आदत बनाना चाहे, तो अमली तौर पे क्या करें? तो अमली तौर पे जो करना है आपने वो ये, सबसे पहले इस बात को समझें कि अक्सर लोग समझते हैं कि रिश्ते बड़ी गलतियों से टूटते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता लहजों की सख्ती से कमज़ोर हो जाते हैं। रोज़ाना के छोटे छोटे जुमले, बेसब्री, जल्दी में दिया गया सख्त जवाब और फिर दिलों में खामोश फासले पैदा होने लगते हैं। तो रुक के सोचिए, क्या वाकई ये जो हम कर रहे हैं, हमारी जल्दबाजी, दूसरों को फौरन से जवाब दे देना, ये सब कुछ क्या ठीक है? नरम गुफ्तगू कैसे अपनाई जाए? तो नरम गुफ्तगू ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों के लिए आसान होती है जो फितरतन बहुत पुरसकून होते हैं। हकीकत यह है कि नरम लहजा कुदरती टैलेंट नहीं होता, इसको आदत बनाया जा सकता है और हर आदत की तरह इसे भी आहिस्ता आहिस्ता सीखा जा सकता है। कोई इंसान एक दिन में अपना मिजाज नहीं बदलता, खास तौर पे अगर वो बरसों से जल्द गुस्सा करने, ऊंची आवाज में

किया और खाने पीने से नहीं बल्कि बहुत से आदात माशरती तरीकों और दुनियावी अफाल से भी है। मसलन लोग किसी खुशी या गम के मौके पर एक दूसरे से मिलते हैं, किसी मजलिस की तरतीब बनाते हैं, किसी दुनियावी काम का नया तरीका अपनाते हैं। अगर इसमें कोई शरी ममानत मौजूद ना हो और उसे इबादत का दर्जा न दिया जाए तो असल उसूल क्या है? इबाहत ही रहता है। तो यहाँ एक फ़र्क समझना ज़रूरी है, बुनियादी फ़र्क है आदात और इबादत के दरमियान। इबादत में असल तौकीफ है, यानी इबादत वही होगी जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के तौर पर मशरू किया है। हम अपनी तरफ से नमाज में एक नई रकात शामिल नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई नई मखसूस इबादत नहीं गढ़ सकते, किसी अमल को खास सवाब, खास वक्त, खास मजहबी हैसियत नहीं दे सकते जब तक शरीयत ने उसे उस तरह मुकर्रर न किया हो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने हमारे दीन में ऐसी चीज दाखिल की जो उसमें से नहीं वो मर्दूद है। और एक दूसरी हदीस भी है, कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर नई घड़ी हुई दीनी चीज ये बिदअत है, यानी मन घड़त बात जो दीन के नाम पर कोई चलाने की कोशिश करे वो बिदअत है। यानी इबादत इंसान ईजाद नहीं करता, इबादत शरीयत से ली जाती है, लेकिन दुनियावी मामलात का मिजाज मुख्तलिफ। लोग तिजारत करते थे, निकाह करते थे, इजारा करते थे, सफ़र करते थे, खरीदो फरोख्त के तरीके अपनाते थे। शरीयत आई तो हर चीज़ को, यानी ऐसा नहीं कि सिफर से ईजाद किया, बल्कि बहुत से मामलात को इकरार किया गया, कुछ की इसलाह की, कुछ में हदूद मुकर्रर की, कुछ ख़राब सूरतों को ख़त्म किया। इसीलिए इंसान के अकवाल व अफ़ाल ये दो बड़े दायरों में आते हैं, एक तो इबादत जिसका हमने कहा जिनके जरिए दीन की इस्लाह होती है, और आदात व मामलात एक और एक किस्म है, दूसरा दायरा है जिनके जरिए दुनियावी जिंदगी चलती है। तो इबादत में असल ये है कि दलील के बगैर कुछ मशरू नहीं, और आदात व मामलात में असल ये है कि जब तक ममानत ना हो उस वक्त बाकी रहती है। कुरान इसी पहलू पर सवाल उठाता है, अम लहुम शुरका व शरऊ लहुम मिन الدین ما لم يأذن به الله, क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन में वो चीजें मुकर्रर कर दी हैं जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मजीद फरमाया, قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, कह दीजिए तुमने देखा जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा, अब उसमें से तुमने अब खुद ही कुछ को हराम और कुछ को हलाल बना लिया। यानी दीन अल्लाह की तरफ से आता है, इंसान अपनी तरफ से दीन नहीं बनाता, हलाल और हराम करार देने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है, यह हक किसी इंसान के पास नहीं, खा वो कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही मकबूल रहनुमा हो, या कितनी ही बुलंद शख्सियत क्यों ना हो। हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी तरफ से हलाल और हराम मुकर्रर नहीं करते, वो वही पहुंचाते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनकी तरफ वही किया जाता है। कुरान हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये उसूल सिखाता है, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। यानी दीन में असल चीज़ इत्तबा है, इख्तिरा नहीं। बुजुर्गाने दीन के यहाँ एक खूबसूरत ताबीर मिलती है, इत्तबिउ वला तब्तदिउ वत्तदिउ वला तर्तफिउ, पैरवी करो अपनी तरफ से दीन न घड़ो, आजिज़ी इख्तियार करो, अपने आप को हुक्म देने वाला न समझो। यही मिजाज हमारे असलाफ का था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अजीम सहाबी खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खिलाफत संभालते हुए अपने आप को शरीयत का खालिक नहीं समझते थे। तो यहाँ एक फ़र्क समझ लीजिए, सामने किराम जो आलिम हैं ये हुक्म ईजाद नहीं करते, ये हुक्म को समझते और बयान करते हैं। नबी हुक्म घड़ते नहीं, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। तो मुशर्रा हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला है। इसको मज़ीद एक मिसाल से समझिए कि कुरान ने अहले किताब के एक इन्हराफ को इसी जाविये से बयान किया, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। यह आयत सुनते हुए अदी इब्न हातिम रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे समझाया कि जब वो तुम्हारे लिए हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देते और तुम उनकी पैरवी करते तो यही उनको रब बनाने की एक सूरत थी। तो सामने किराम, यानी इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं, इसको सही से समझ लीजिए। कभी इंसान जबान से किसी को तो खुदा नहीं कहता, लेकिन अगर वो अल्लाह के वाज़ेह हुक्म के खिलाफ किसी इंसान की इताअत को दीन का दर्जा दे दे तो अमली तौर पर उस इंसान को ऐसी इताअत दे रहा होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मसलन अगर कोई शख्स हमें सिला रहमी का हुक्म छोड़कर कतर रहमी का हुक्म दे और हम जानते बूझते सिर्फ उसकी शख्सियत की वजह से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसकी इताअत करें तो मसला यहाँ मरजईयत का मसला बन जाता है। असल सवाल यह है कि मैं आखिरी तौर पर किसके हुक्म के सामने झुकता हूँ,

इसीलिए बात हमेशा याद रखिए, अल हलाल मा हलल्लाह वल हराम मा हरमल्लाह। हलाल वो है जिसे अल्लाह ने हलाल किया और हराम वो है जिसे अल्लाह ने हराम किया है। और यही वजह है कि हमारे सलफ़ उलमाए किराम हलाल और हराम के अल्फाज इस्तेमाल करने में भी बहुत मोहतात थे। काजी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह, जो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के जलीलुल क़दर शागिर्द थे, उनसे मनकूल है कि उन्होंने अपने अहले इल्म मशायख को देखा कि वो बिला दलील किसी चीज़ के बारे में फ़ौरन ये कहने को पसंद नहीं करते थे कि यह हलाल है या ये हराम है। क्यों? क्योंकि ये मामूली अल्फाज नहीं है। जब आप कहते हैं ये हराम है तो दरअसल आप ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने उसे मना किया है, और जब आप कहते हैं ये हलाल है तो आप अल्लाह की शरीयत की तरफ एक नस्बत कर रहे होते हैं। लिहाजा जहां नस बिल्कुल वाज़े हो वहां बात भी वाज़े होनी चाहिए। मसलन अल्लाह ताला ने मुर्दार के बारे में सरी फरमाया हुर्रिमत अलैकुल मैता, तो यहाँ किसी झिझक की जरूरत नहीं। हम कहते हैं मुर्दार हराम है क्योंकि अल्लाह ताला ने सराहत के साथ हराम फरमाया है। लेकिन जहाँ मसला इज्तिहादी हो, अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ हो या दलील कती ना हो, वहाँ एक साहिब वरा आलिम जबान को संभालता है। वो फौरन अल्लाह की तरफ कती हुक्म मंसूब नहीं करता। रबी इब्ने खुज़ैम रहमतुल्लाह से मनकूल है कि वो इस बात से डराते थे कि इंसान यूँ कह दे कि अल्लाह ने उसे हलाल किया है और फिर हकीकत में अल्लाह ने ऐसा न किया हो, या कह दे अल्लाह ने उसे हराम किया है जबकि अल्लाह ने उसे हराम न किया हो। ये खौफ किस चीज़ का था? कि अल्लाह पर बग़ैर इल्म के बात कहने का। यही वो बात है जिसकी कुरान ने सख्ती से मजम्मत की है। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह जैसे बड़े ताबी फकीह के बारे में भी मनकूल है कि जब बाज़ मुश्तबा या इज्तिहादी मसाइल पर गुफ्तगू होती तो वो निस्बतन मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते कि ये मुझे पसंद नहीं, ये मकरूह है, इसमें कोई हरज मालूम नहीं होता। लेकिन फौरन हलाल और हराम के बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे इल्ला ये कि दलील वाज़े हो। तो सामने कराम हमारे सलफ़ सालहीन के बारे में जैसे कि बताया मैंने कि वो लफ्ज़ हराम वहाँ इस्तेमाल करते जहाँ हरमत यकीनी तौर पर मालूम हो। हाँ, अगर किसी मसले में शुबा हो तो इंसान ये कह सकता है कि ये मुझे ये मुनासिब नहीं लगता, मैं उससे इज्तनाब को बेहतर समझता हूँ, इसमें मुझे इत्मीनान नहीं, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ। लेकिन बिला दलील फौरन ये कहना कि ये अल्लाह की तरफ से हराम है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जैसे अजीम इमाम के पास लोग दूर दूर से सवाल लेकर आते थे। रिवायतों में आता है कि एक शख्स एक तवील सफर तय करके बहुत से सवाल लेकर आया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने जिन सवालात का इल्म था उनके जवाब दिए और कई सवालात के जवाब में साफ कह दिया ला आलम, मैं नहीं जानता। लोगों को ताज्जुब हुआ कि इमाम अहमद और मैं नहीं जानता, अरे ये कैसी बात हुई। उन्होंने फरमाया कि जाकर कह देना इमाम अहमद नहीं जानते तो कितनी बड़ी बात है ना। आज कभी इंसान दो सफहात पढ़कर हर मौजू पर फैसला सुनाने लगता है, और वह अइम्मा जिनके सामने इल्म के समंदर थे वो कहते थे मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ फतवा में जो खौफ है उनकी, ये कमजोरी नहीं, ये अजमत है। किसी आलिम के बारे में अगर कहा जाए कि वो फतवा देने में बहुत मुहतात है तो ये ऐब नहीं, ये उसकी तारीफ है। क्योंकि फतवा एक सिर्फ एक इंसानी राय नहीं बल्कि अगर दीन के नाम पर दिया जा रहा हो तो गोया इंसान ये बता रहा है कि अल्लाह की शरीयत उस मसले में क्या कहती है। इसलिए इस बात का बुनियादी कायदा दिल में बिठा लीजिए कि कोई शख्स कितना ही मोहतरम क्यों ना हो, उसका कौल कुरान और सुन्नत से बाला नहीं हो सकता। हर एक की इज्जत अपनी जगह पर है, लेकिन हलाल और हराम का आखिरी इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। और एक मोमिन का तर्ज फिक्र यह होना चाहिए कि मैं अदब के साथ उलमा से सीखूंगा, उनके रहनुमाई लूंगा। मजीद मैं इस बात को सही से जानता हूँ कि उलमा जो है ना शरीयत को बयान करते हैं, वो खुद शरीयत बनाते नहीं। हाँ, अगर कोई इस तरह शरीयत बनाने वाले हों, माअदल्लाह, अगर इंसान अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम बनाने लगे या अल्लाह की हराम करदा चीज़ को हलाल समझने और समझाने लगे तो ये मामला बड़ा संगीन है। यानी अल्लाह के तशरीह इख्तियार में दखल देना मामूली बात हो सकती है। इसी ज़मन में हदीस है, हलकल मुतनत्तियून, हद से बढ़ने वाले हलाक हो गए। यानी एहतियात अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ पर फौरन हराम हराम की मोहर लगा देना भी तक्वा नहीं। दीनी मामलात में बेजा तशद्दुद और तकल्लुफ से बचने की तंबीह के तौर पर यह बात आई है, हलकल मुतनत्तियून। जहां हमें इल्म ना हो वहां अपने गुमान से शरीयत न बनाएं, पूछिए। कुरान का उसूल है, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो। और यही जिंदगी का एक बड़ा उसूल है, दुनिया के मसाइल में मुतअल्लिक़ माहिर से रुजू किया जाए और दीन के मसाइल में ऐसे मुतबर अहले इल्म से जो किताब व सुन्नत और फ़िक्ह की बसीरत रखते हों। और आप सब जानते हैं कि सवाल करना एक कम

0: FM 107. Time check.
1: अटेंशन, क्या जवान घड़ी में 6:01 हो चुके हैं?
2: Yes sir.
1: क्या हम सुबह सुबह आँख खोल चुके हैं?
2: Yes sir.
1: क्या हम WhatsApp पे मैसेजेस कर रहे हैं? कर रहे हैं? हेलो जवान, मैसेजेस कर रहे हैं नहीं कर रहे?

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
2: वेरी गुड यही चाहिए था मुझे बस सुबह सुबह मैसेज आते थे लगता है हाँ चलो पब्लिक जाग गई है भाई साहब आ जाओ व्हाट्सएप आ जाओ 666-22-107 एंड आज वेंसडे हो गया भाई मैं गाड़ी में बताऊं मैं अपने साथ एक गेम खेल रहा था आते हुए मैंने कहा आज मैं दिन डिसाइड मतलब गैस करूंगा क्या है आज दिन तो मैं बार वगैरह नहीं नहीं ट्यूसडे है ना ना ना ट्यूसडे है वेंसडे हो लिया भाई बहुत जल्दी नहीं है ये वाला मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया है बट एनी वे 666-22-107 नंबर है कुछ मैसेजेस है मेरे पास आते के साथ ही उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई वालेकुम अस्सलाम और मैसेज किया मोहसिन भाई ने गुड मॉर्निंग भाई कैसे बढ़िया भाई कह रहा वीकेंड आ लिया भाई अभी कहाँ आ लिया अभी तो एक और है भाई एक और है अभी वन मोर डे टू गो शफाक साहब वालेकुम अस्सलाम एक मैसेज है सुरजीत भाई का लिखते हैं भाई जबरदस्त रैप थैंक यू सो मच भाई आपने नोटिस किया थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह मुमताज़ अहमद भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं कबीर भाई गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा भाई एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई अब्दुल जब्बार भाई ने मैसेज किया है मिस्टर जब्बार हाउ आर यू डूइंग टुडे आसिफ भाई कहते हैं सलाम ब्रोस ओए होए कमांडर साहब आज ही आज कमांडर साहब हैं बूट शूट पहन के आए भाई बटियाले और सुभाष भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मॉर्निंग आज क्या है कबीर दुग्गल साहब आज दुग्गल साहब कमांडर बने हैं जी कमांडर और एक मैसेज आया था भाई मिस हो गया मेरे से कहाँ गया नहीं कोई मिस नहीं हुआ बढ़िया ठीक है भाई दो तमाम बच्चों एक तो सबसे पहले मेरा बहुत सारा प्यार जो भी स्कूल के लिए निकल रहे होंगे किसी की आंखें पूरी खुली होंगी कोई कोई अभी नींद में होगा दे लोग सो क्यूट माशाल्लाह सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और जो स्पेशल अटेंशन है वो माँ बाप को जो भाई साहब ड्रॉप करने के लिए सुबह उठते हैं इनकी भी अलग कसरत होती है जब तक मेरा नंबर नहीं आता तब तक तो मैं आप पे हंसी सकता हूँ जब इंशाल्लाह मेरा नंबर आ जाएगा फिर बात दूसरी है ठीक है 666-22-107 नंबर है मैं अच्छा एक बात ही करता कि आज की कहानी भाई आज जो स्टोरी है मेरे पास ऐसी मैंने नहीं सुनाई भाई इस टाइप की स्टोरी मैंने सिर्फ एक सुनाई है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को याद भी नहीं होगी तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी कैटेगरी की कहानी मैंने शायद एक ही बार सुनाई है इससे पहले शायद दो बार ज़्यादा नहीं तो आज आपको मजा आ जाएंगे भाई बहुत बहुत बहुत अलग स्टोरी है मैं लिटरली बेच रहा हूँ इसे क्योंकि मुझे पता है कि ये कहानी अच्छी तरह से बेचने लायक वैसे सुभाष भाई का कहते हैं कल की कहानी बहुत अच्छी थी भाई बहुत इन्फॉर्मेटिव और इमोशनल स्टोरी थी क्या करूँ भाई लाइव नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि 7:30 के आसपास साइट पहुँच जाता हूँ नो प्रॉब्लम मेरे भाई काम पहले है सुभाष भाई थैंक यू सो मच भाई अब इतने बढ़िया बढ़िया किस्से और कहानियों के लिए सुभाष भाई आप बस यार इतनी तारीफ कर दी ना आपने भाई को बहुत सारा प्यार सुभाष भाई आप खुश रहे मेरी जान और काम पहले है भाई आपके काम में अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे सुभाष भाई बहुत सारा प्यार भाई को नो प्रॉब्लम वो मैंने चैनल दे रखा ना उस पे आ जाए करो टेंशन को नहीं भाई ठीक है बाकी एक कन्फ्यूजन है कुछ देर में क्लियर कर लेंगे सुबह की शुरुआत तला भाई की आवाज़ से सुबह के अधिकार है इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिल रहे हैं मीनवाइल मैसेज कर दिया कर रहा थोड़ा दिल बहल जाता है समझ रहे हैं मिल रहे हैं 10 मिनट बाद जाना नहीं
3: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं इरशादे खुदावंदी है वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर

0: फुल गारंटी है। एक मैसेज आया समूल बहन का, वो कहती है कि भाई जब आपसे कोई कह दे कि महफिल की शान आ गई है तो समझ जाइए। हमारी बहन सुबुल कह रही है कि आप इसी बात से नंबर समझ जाइए मैं खुद को कितने दे रही हूँ, कि जब मेरी एंट्री होती है तो लोग बोलते हैं वो देखो महफिल की जान आ गई है, कह रही बस घमंड नहीं करा कभी। आए होए होए आग ला दी बहन, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई के। और एक मैसेज है, एक भाई कह रहे हैं कबीर भाई आपके शो में कोई कैसे सीरियस रह सकता है, जो सीरियसनेस होती है वो बाकी जगहों पे नज़र आती है, स्पेशली कोच आपके कॉलर्स हैं जो 15 मिनट से पहले नहीं जाते, मुझे उनसे डर लगता है। कह रहे हैं मुझे उनसे डर लगता है। मैं समझ सकता हूँ, इस बात को मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, आज जितने वो लोग हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूँ आगे आए भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैसेज, सलाम भाई, भाई हम इतने फन लविंग हैं कि अपना नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये है हसन भाई, इसको मैं चाहूँगा आप थोड़ा एलेबोरेट करें। मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपके लिए, उनको क्या लिखा आपने, भाई हम इतने फन लविंग हैं कि अपना नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मैं डी कोड नहीं कर पा रहा भाई, तो विंची कोड दे दिया आपने। सुमुल बहन कह रही है आज ये टॉपिक क्यों चूज किया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत देख रहा हूँ, मैंने कल भी देखे और सुने शोज, कुछ बहुत हमारे बहुत सीरियस पब्लिक है, हमारी बहुत सीरियस पब्लिक है, अगर उन्हें एक नॉर्मल सवाल पूछा जाए ना उसमें वो इतना सीरियस हो जाते हैं, इतना सीरियस कि मतलब जान माल का नुकसान हो जाएगा अगर वो उस पर नहीं बोले तो। तो वो थोड़ा मैटर बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी खुशी बहनी चाहिए आदमी को, इंसान को हर टाइम सीरियस नहीं होना चाहिए। बहुत सीरियस हो गए लोग भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद सुन रहा हूँ कितने लोगों से बात होती है मेरी डेली, तो मुझे लगता है कि सीरियस होना छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हो। तो एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं खुद को 10 में से 9 नंबर दूंगा, एक नंबर इसलिए काट रहा हूँ कि जब मेरी मीटिंग होती है तो मैं सीरियस होना पड़ता है। वेरी गुड, आई गिव यू दैट, नो प्रॉब्लम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बिल्कुल भी मजाकिया नहीं हूँ, हालांकि मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हूँ। देखो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, देखा मिले नहीं मिले सिंपल मैन, मैं इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक। क्या बोला इन्होंने, ये कह रहे हैं मैं लाइफ में बहुत सीरियस हो चुका हूँ काम को लेके। अरे ठीक है, आज हंस लो सुबह सुबह, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लो भाई। सुभाष भाई कह रहे हैं शादी से पहले मैं खुद को 10 में से 10 देता था, अब 10 में से 5 दूंगा। ऐसा क्या हो गया भाई, ये क्या बात हुई। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: क्या हाल है मेहना, क्या हाल है आपके।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं।
0: बढ़िया, एक नंबर, शानदार। तो ये क्या चल रहा है सुमुल बहन, अपने आपने बताया अपने बारे में कि आप महफिल की शान हैं।
1: क्या चल रहा है, अभी आपको कॉल करने वाली थी, मैंने सीरी को बोला कॉल करो, उसे लगा दी कि किसी बीटी सेंटर वाले को
0: वो भी मेरा ही है, वहाँ भी मेरा ही है।
1: मेरे साथ सुबह सुबह सो हो गए, मैंने क्या बोला सॉरी नहीं मैं आपको कॉल नहीं कर रही हूँ।
0: अरे रे रे, जब भी मैं कहता हूँ ना इतना जो है ना टेंशन नहीं दिखाना चाहिए सुबह सुबह। तो बहन आप जब इतने हैं, मुझे पता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो जाओ महफिल में आपके जोक से कोई ऑफेंड होता है कई मरतबा, लाइक दिल पे ले लेते हैं
1: बहुत, मतलब अगर आप सोचो कि अगर मतलब मैं और मेरी सिस्टर अगर हम दोनों किसी पार्टी में गए या मतलब कहीं भी इन केस यहाँ भी अगर बात करूँ तो
0: ठीक है,
1: मतलब बस तो खत्म, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते, कहते तुम दोनों मिलकर जूते पड़वाने वाले। मतलब किसी ना किसी भी चीज में, किसी ना किसी पर्सन में वो हमें एक जोक नजर आ जाता है।
0: वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर डेंजर है ये तो है। मैं भाई साहब के बारे में समझ सकता हूँ कि वो आपके साथ जाने में डरते तो होंगे, ये पता नहीं क्या करवाते भाई, ये क्या बोल देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा किस्सा याद है जहाँ पर आपने जो है मतलब बिल्कुल ही रायता फैला दिया हो।
1: तो इतना कुछ नहीं हुआ है,
0: याद तो आ रहा है, बता दी। हाँ
1: बहुत सारी चीजें,
0: तो ये जो आपका ह्यूमर है ये कितना इन्फेक्शियस है, बच्चों तक पहुंचता है, स्कूल में आप यूज करते हैं इसको, या अभी हथियार आपने बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया है स्कूल के अंदर, क्या रहता है?
1: यार मतलब हम वो गधा मजदूर है ना, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं।
0: वाह,
1: वो वाला हिसाब है।
0: अच्छा, तो यू डोंट यूज़ इट
1: एट ऑल। हम जोक्स भी क्रैक नहीं कर सकते भाई, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं आजकल के, उनको बुरा लग सकता है।
0: ओहो हो हो, तो आप, मैं समझ रहा हूँ आपका बहुत डार्क ह्यूमर है।
1: सीरियस मोड के साथ जाना पड़ता है, नहीं भाई मैं डेंजर हूँ, लेकिन नहीं हूँ, मेरे अंदर का जो बच्चा है ना,
0: हाँ,
1: तो बच्चों में भी हंसने लगता है यार, प्लीज मत कर।
0: प्लीज मुझे बहुत जोर से जोक आ रहा है, मुझे कह लेने दो। I can understand.
1: मेरा वो सीन होता है ना कबीर भाई,
0: हाँ,
1: कि अगर बच्चे भी हंसते ना तो मैं साई में कोने में जाके हंस ले, क्यों प्लीज यार मत हंसो मेरी, अगर हंसी निकल गई तो मुझे समझो।
0: I really hope के ये माँ बाप सुन रहे हो जिनके बच्चे आपकी क्लास में है, उन्हें पता होना चाहिए कि कितनी शानदार टीचर मिली है उनके बच्चे को, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बट ये आपके घर में अभी ह्यूमर का जो ये वायरस है, ये फैला है या आप तक ही महदूद है, या हस्बैंड तक पहुंचा है, बच्चों तक पहुंचा है, यार यू आर दी ओनली वन?
1: मैं और मेरी बहन, और नहीं, हाँ हम तीनों बहने और मेरे जो भाई हैं वो बहुत सीधे, आर वेरी सीरियस।
0: अच्छा, तो बस आप ही को ये लगा, हाँ, ये कीड़ा, मतलब ये समझ में आ रहा है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये ह्यूमर
1: होना चाहिए ना, इंसान को खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जो सीरियस टॉपिक पे बात करते प्लीज,
0: हाँ,
1: एक जिंदगी उसको जियो, अच्छे से जियो।
0: क्या बात है। और जो हमारे जो कॉलर्स आते हैं जो सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
1: यार बेचारों का कोई कसूर नहीं है उसमें, जिम्मेदारियां इंसान को मैच्योर बना देती
0: है। अरे रे रे,
1: लेकिन अंदर का बच्चा जगाए रखना चाहिए।
0: वेरी गुड। वो मुझे मैच्योरिटी की जब आपने कही ना बात, तो मुझे पता था आपको सीरियस नहीं है इस बात को
1: लेकर।
0: वही मैं कह रहा हूँ ना, हो नहीं पा रही सीरियस बात। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू टीचर। और ये स्कूल के प्रोजेक्ट जितने सारे बच्चे भी भेज रहे हैं, क्या स्कूल में भी चल रहा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, आप भी देती हैं प्रोजेक्ट?
1: यार मैं पते, आई डोंट लाइक दिस स्कूल सिस्टम, बेचारे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। मेरे बस में होना, मैं ये चेंज कर दूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है।
0: ओहो, तो आपको भी देने पड़ते हैं प्रोजेक्ट
1: मजबूरन?
0: अरे रे रे रे रे रे,
1: नहीं देना चाहती हूँ मैं, बेचारों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ।
0: काश ये बच्चे सुन लेना, भी एकदम फ्री हो जाएंगे माइंड से। सारी टेंशन खत्म।
1: देखिए आपको पता है, मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन के जहाँ से मुझे लगता है बच्चों का वर्कलोड कम कर देना चाहिए, मैं कट ऑफ कर देती हूँ बिल्कुल।
0: अरे वही नहीं सर, ये अच्छी अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है, टोटली गेट
1: इट। इतने पेरेंट्स परेशान होते हैं ना कि वर्कशीट्स वर्कशीट्स वर्कशीट, नहीं मैं कट ऑफ कर देती हूँ बिल्कुल, जो कर। अच्छा मेरा एक कंसेप्ट है, मैं ना स्कूल में इस बात के ऊपर लड़ जाती हूँ, आपने जो सिखाना है ना वो यहीं पे सिखा दो ना बच्चे को, घर पे जाके उसने कुछ और करना ही नहीं है भाई, एज अ मदर भी मुझे ये बात पता है। नहीं करते घर पे जाके, नहीं वो थक जाते थे, उनके पास भाई उनके को भी तो टाइम चाहिए ना।
0: हाँ यार ये तो है, मतलब ये बात तो है। आपने देखो इमोशनल कर दिया मेरे को, मैं होना नहीं चाह रहा था, अभी अंदर से एकदम बेचारा सा फील कर रहा हूँ मैं। ये जो आपने छेड़ा है टॉपिक, वेरी नाइस। नहीं मैं आई टोटली एग्री, आई थिंक होमवर्क वाला जो कल्चर है वो थोड़ा सा है यार, बच्चों पे बोझ हो जाता है कई मरतबा, आई एग्री।
1: होमवर्क वाला कल्चर जो है ना वो ये हो गया, टीचर्स नहीं स्कूल अपना बर्डन हटाने के लिए बच्चों के ऊपर बर्डन डाल देता है, दैट्स इट।
0: कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्या बात है।
1: हमें मेरा तो कभी कभी ये होता है कि भाई सिचुएशन कुछ होती है और मेरे मुंह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें निकल जाती है।
0: नहीं भैया काबू करो बहन, पता चला। नहीं, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में खुद पे कंट्रोल रखती हैं आप? क्या रहता है आपका, मतलब कैसे रखते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बताइए आप कैसी जाती है आपकी?
1: मेरी बहुत अच्छी जाती है इस सेशन की, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब सैटरडेज वर्किंग होते हैं, नहीं मैंने दो छुट्टियां होती है उसमें से भी सैटरडे ले लेते हैं।
0: यार आज के दिन हमने टीचर से कितना सही बुलवा लिया, कितना सच बुलवाऊं मैं, इस तरह तो बोल ही नहीं सकता कोई। बहन कुडोस टू यू, तालियां तालियां तालियां सुंबल बहन के लिए, वेरी वेल डन। आज आपने जो है बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो। एंड
1: मतलब ये मेरे ऊपर कमेंट था या तंज था?
0: ये तंज भी नहीं, ये तंज नहीं था, ये जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं, ये जेन्युइन बोल रहा हूँ। एक एक टीचर का बिल्कुल इतना सच बोल देना बहुत बड़ी बात है इस टॉपिक पे, तो कुडोस टू यू, बहुत बढ़िया। हजम नहीं हो रहा होगा ना, मैंने बोला हजम नहीं हो रहा कि मैंने बोल दिया तो हजम नहीं हो रहा होगा ना, कह रही ये तारीफ कैसे कर रहा है।
1: नहीं नहीं, I understand, मुझे पता है।
0: हाँ फिर ठीक है ठीक है बहन, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे, मुबारक हो ये दिन आपको। ओके बहना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो देखो जी हमारी बहन ने तो बता दिया, और टीचर होने के नाते भाई इन्होंने इतना सब कुछ बता दिया है जिसकी हद नहीं। मैं तो क्या अगर बच्चे सुन रहे होंगे या माँ बाप सुन रहे होंगे कि ये वही टीचर है, ए राजे ये तुम्हारी वाली टीचर है ना, ये वही सुन बोले ना,

0: ये तो बहुत बढ़िया बातें कर रही हैं, ये क्लास में सीरियस क्यों थी?
1: ये होगा, फरद भाई कह रहे सर नहीं भाई सरकास्टिक में नहीं था भाई, जेन्युइन मैंने तारीफ करी है, मुझ पे कोई यकीन ही नहीं करता। एक मैसेज किया तनवीर भाई ने, अस्सलाम वालेकुम, ऐ कैसे हो आप कबीर अंतल, कैसे हो आप? अच्छा वैसे तुतला के बोल रहे हैं। मैं भी तो एकदम ठीक हूँ, अगर आपने डेली मैसेज नहीं किया ना तो आपको दोलाऊंगा दादा, मालूंगा काम, ठीक है तनवीर। और तब उससे मैंने मैसेज किया है, लिखती हैं कि आई डोंट नो लेकिन शायद 5 out of 10 देंगी अपने ह्यूमर को, और आगे लिखती हैं और मैं तो सीरियस ना होने के लिए आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, वैसे ही 1000 मसले होते हैं, क्या सीरियस होना, सुमुल बहन की बातें सुन के वैसे ही स्माइल आ जाती है, बात तो सही है। आगे लिखती हैं, इतनी अच्छी टीचर, सल्यूट मेरी तरफ से। सुमुल बहन देखा आपने, 2 मिनट के अंदर आपको इंस्पायरिंग पब्लिक फिगर बना दी हमने, 2 मिनट लगे। एक मैसेज है जयस भाई का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर मेरा भाई, भाई फनी का तो पता नहीं, सीरियस बहुत होता हूँ मैं। जयस भाई आपकी दूसरे शो पे कॉल सुनता हूँ ना जब आप सीरियस होते हैं, मेरा मन करता है भाई मैं कॉल पे कॉल करूँ आपको और कॉन्फ्रेंस पे लेके सच बता दूँ आपका। एक मैसेज है कमाल भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई, समूल बहन के लिए तालियाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और एक मैसेज है, क्या हमें क्यों नहीं मिली ऐसी टीचर? वो करम करम की बात है मोहसिन भाई, हमें भी कौन सी मिली भाई। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, कम्प्लीटली एग्री विद द टीचर्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स देते हैं पेरेंट्स का ह्यूमर फिनिश। ये इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने नस पकड़ी आते भाई ने, आधे भाई कह रहे हैं देखो ह्यूमर क्यों खत्म हो रहा है माँ बाप का, क्योंकि स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं, अब बच्चे तो बनाएंगे नहीं, माँ बाप बना रहे स्कूल्स में, कह रहे आर्ट टीचर नहीं और सारे पेरेंट्स आर्टिस्ट बन जाते हैं। इसी बात का मुझे है डर, मैं सच बताऊँ इसी बात का डर है। एक मैसेज, सेंस ऑफ ह्यूमर भाई गोरों का टर्म है जो कॉमेडी शो का टिकट लेकर प्लान करके आयात हैं और इवन थर्सडे जोक्स भी हंसते हैं, लेकिन देसियों के लिए नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, किसी भी सिचुएशन में खुल के हंसते हैं और इवन नहीं, बात तो सही है, ह्यूमर तो खैर ऐसा कोई गोरों का वर्ड नहीं है। वो तो सभी का है भाई, पर आई गेट योर पॉइंट, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। और एक मैसेज है फरद भाई का, हमारे टाइम पे टीचर्स के हाथ में लकड़ी होती थी भाई, हमारे टाइम पे टीचर्स के हाथ में वो जो तार होता ना उसको छील देते थे, वो है थोड़े से उसके वो जो नंगे तार थे वो बाहर लगते थे और फिर होती थी सुताई। समझ रहा। एक मैसेज है, अब जाना नहीं प्लीज़, फैंस मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा जलना नहीं, सुमुल भाई कह रहे हैं जलना नहीं, फैंस सब मेरे बन रहे हैं, मैं होता कौन हूँ। और मास भाई कह रहे हैं कि क्या टॉपिक, टॉपिक भाई ये है कि अपने आपको सेंस ऑफ ह्यूमर में, मतलब आपके आपके अंदर जो फन है उसको कितने नंबर देंगे आप 10 में से, क्योंकि दुनिया हो रही कतई सीरियस। एक कॉल आ रही है जयस भाई की, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जनाब खैरियत से हैं?
1: बढ़िया भाई, एक नंबर, आप सुनाइए क्या हाल है भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया,
1: अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है भाई।
2: पढ़ने के हिसाब से ना टीचर की बात सुन के लग रहा है दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है
1: ना। वाह भाई, वो स्कोप खत्म हो गया भाई। स्कोप खत्म हो गया, चला गया वो स्कोप। तो जैस भाई आप इतने सीरियस क्यों हो यार, सब छोड़ो ये बताओ इतने सीरियस क्यों हो आप, वाई रुला दो मुझे सीरियस बात करके, रुला
2: यार, रोना तो मुझे भी नहीं आएगा।
1: तो क्या आपको क्या लगता है, सीरियस बहुत ज्यादा है या आपके अंदर ह्यूमर अभी जिंदा है?
2: ना सीरियस हो जाना भाई साहब, छोटी छोटी बात पे ना बहुत सीरियस हो जाते हैं, पर रहते ही सीरियस। अरे सुबह सुबह मूड खराब हो गया सीरियस कर दिया, अच्छा खासा अपनी लाइन में आ रहा हूँ, बंदा एकदम से राइट में निकल के भाई सीधा टॉप पर ऊपर।
1: नहीं वो तो ठीक है, वो तो 2 पल की वो होता है, 2 पल का दुख है वो
2: ना, 2 पल की नहीं होती है भाई साहब, जब सुबह सुबह मूड खराब होता है ना तब पूरी जो है ना वो सब कुछ लग जाती है पूरी वाली लाइन
1: भाई। लेकिन मैंने देखा है आपको, मैंने कल भी सुना, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई का कोई दिल लेके चला गया कहीं पे, क्या हो गया जयस भाई? आप कुर्सी लगाओ, कुर्सी तो जयस भाई इधर बैठो, मेरे को बताओ क्या दिक्कत क्या है, आज मैं आपका थेरेपिस्ट बनूंगा। बताओ क्या हुआ जयस भाई, शुरू से बताओ।
2: अरे ना बहुत लंबी कहानी है, आपस में बात करेंगे यार।
1: अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई थोड़ा सीरियसनेस का ये पर्दा उठाओ थोड़ा सा, मतलब
2: नहीं यार बहुत कोशिश करी यार कभी भाई, बहुत कोशिश करी यार, अब से नहीं काफी टाइम से बहुत कोशिश करी कि यार नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नहीं होता भाई।
1: अरे रे रे रे, मुझे अब तो वो जानना है कौन शख्स है जयस भाई को ले गया यार, मतलब अब तो लग रहा है जिस्म बचा है रूह तो कोई ले गया, क्या हो गया जयस भाई, व्हाट इज दिस है जयस भाई?
2: गहरी गहरी बातें नहीं मत मारो यार,
1: आप ही ने मुझे मोटिवेट किया, मेरा
2: सीरियस बना दे रहा हूँ,
1: डर गए ना, करो इतना सीरियस तो मैं भी नहीं हूँ, इससे क्या हो गया।
2: ना इतना हाँ ये है कि ऑफ

0: खुलने वाले सीरियस भी नहीं है, मगर हाँ सीरियस रहते हैं इतना नहीं। मगर तुम्हारे तो भाई साहब लाइनें ऐसे निकल कर आ रही है कि बंदा अगर ना होने वाला भी सीरियस होगा तो वो सीरियसनेस में ऐसे घुस जाएगा कि डिप्रेशन भी फेल हो जाएगा उसको।
1: भाई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे दूंगा अगर आपने बोल दिया सीरियस होने के लिए, मतलब ऐसा कर दूंगा रो के जाओगे आप। क्या अरे भाई शो चला मैंने सुबह का, ठीक है निकल गई मेरी तो
0: हमारे जमाने में ऐसे टीचर होते थे भाई साहब की कुर्सी बनाकर बिठा देते थे, लो सालो कुर्सी बन के बैठो और कुटाई चल रही है।
1: तो मुझे लग रहा है ट्रॉमा वहीं से आ रहा है, ये वहीं का ट्रॉमा है क्या, आदमी आज तक हंस नहीं पाया है। मुझे पता लग रहा है वो एक सीन होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बात बात पे सीरियस होते हैं, जैसे आपको बचपन में जो है टीचर ने बोला कि चेयर बन जाओ, तो आपको अगर कोई बाद में पूछे कि जैस भाई ये लो चेयर पे बैठ जाओ, यार चेयर पे तो वो बिठाया करती थी।
0: तो बना
1: मतलब बनाया तो वो करती थी चेयर।
0: ये चीज जो है ना चेयर की बात जो है ना कभी भी कहीं भी आती है ना तो टीचर की याद आ जाती भाई, नहीं जात से पढ़ने हैं इसलिए छोड़ दी पढ़ाई।
1: कोई बात नहीं जयस भाई, मैं समझ सकता हूँ और बाकी चीजें आप मुझे अलग से समझा देना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, बट थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी।
0: टाइम अगर भाई साहब आपके पास टाइम हो ना फ्री टाइम,
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई कर देना भाई, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू मेरा भाई, लव इज भाई, लव इज। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद हियर, अग्रीड विद मिस सिंबल, मदर वाला पॉइंट तो दिल को छू गया, इतनी मुश्किल से बच्चों को फैमिली टाइम मिलता है उसमें ही बच्चे होमवर्क और प्रोजेक्ट में बिट जाते हैं, रिलेशन स्ट्रांग होने की बजाय स्ट्रेस आउट हो जाता है। कंप्लीटली एग्री, आज तो वैसे भी आजकल वैसे भी बच्चे टाइम दे रहे हैं आपको बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। एक है कल वाली कहानी नहीं भेजी आपने भाई साहब, आपको मैंने भेजी है एक जगह मैंने आपको दे रखी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए शमशाद भाई पढ़ो क्या लिखा है इस पर बड़ा बड़ा। और एक और कॉल आ रही है उसके बाद मैं कॉल करता हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
1: बढ़िया भाई, आपका क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है
1: जी कमाल भाई।
2: भाई ये तो शुक्र मनाइए कि आपके लिसनर वैसे नहीं है, मैं तो समझ लीजिए कि सुबह सुबह सबके साथ जितने भी सुनने वाले सब रोना शुरू कर देते हैं।
1: नहीं भाई रोने नहीं देंगे भाई।
2: वही तो बोल,
1: मुझे पता है ना वो इतने भारी भरकम बातें करने लगते कि मुझे तो ये लगता है कि इंसान को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो मैं करने नहीं दूंगा बात किसी को आज। ये है मकसद। अच्छा,
2: वो सब बात क्या करना है भाई?
1: हाँ वही ना,
2: जिंदगी ये क्या
1: अरे क्या
2: टेंशन लेने का।
1: अरे मैं तो साफ कहता हूँ कमाल भाई, मेरे कहने से कौन सा कोई बदलने वाला है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा।
2: कोई बदलने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम टॉपिक आपकी अच्छी है, लेकिन किसी दिन आप करके देखिए इमोशनल शो। हाँ। देखिए सबके सब रोना शुरू कर
1: मैं किस दिन भाई ये वाला
2: वही कबीर भाई
1: ये वाला भी इंजेक्शन लेके आऊंगा किस दिन, बढ़िया। तो ये वाला भी कभी ना कभी करेंगे। कमाल भाई क्या लगता है आज किस टॉपिक पे स्टोरी होने वाली है, आपको क्या लग रहा है आज? गैस करो।
2: तो कुछ समझ में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले से स्टार्ट किया तो समझ में नहीं आया।
1: अच्छा
2: हो सकता है अभी।
1: गैस करो, एक वाइल्ड गैस दो। हैं
2: सुनाइए, गैस नहीं कर पाऊंगा।
1: अच्छा गैस नहीं कर पाए।
2: अच्छा, अभी अभी चालू किया था।
1: अच्छा
2: तो सुमूल बहन का सुना उसके पास से।
1: अच्छा ओके
2: भाई ने का सुना।
1: नो प्रॉब्लम मेरा भाई।
2: कबीर भाई एक चीज बोलना था, यार जो स्टोरी जो शेयर कर रहे हैं तो ऑडियो में नहीं हो सकती है?
1: नहीं वो
2: डिस्प्ले
1: उस पे क्या। हाँ। मकसद है कि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो उस पे ऑडियो नहीं जाता है, समझ रहे? तो प्रॉब्लम ये है उस पे। हाँ। मुझे जबरदस्ती का वीडियो करके भेजना पड़ा।
2: अच्छा।
1: हाँ ये उसका एक मसला है भाई। हालांकि आप उसको ऑनलाइन जाके ना MP4 टू MP3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप ऑनलाइन जाके, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई,
2: जजाकल्ला।
1: ओके तो एक मुझे कॉल करनी है क्योंकि माज भाई ने बोला है लीना वांट्स टू टॉक, तो मैं सबसे पहले माज भाई को कॉल कर लेता हूँ। माज भाई मेरी कॉल आपकी तरफ आ रही है। और तला भाई कह रहे हैं पुप्पो थेरेपिस्ट, या आई एम अ वेरी प्राउड पुप्पो थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अरे हाउ आर यू लीना स्वीट हार्ट, हाउ आर यू?
3: आई
1: एम फाइन। हाँ About about what?
4: I got five.
1: Hello,
4: assalamualaikum.
1: हाँ,
4: भाई एक ही रेट

0: रही थी।
1: अच्छा,
0: तो रेडियो पे सुनते सुनते स्कूल को उतरते वक्त जाते जाते लाइक बाई कबीर चाचू।
1: अरे यार,
0: अब उसको एक कबीर चाचू को सुनाई दिया कि मैंने बाई बोला रेडियो।
1: ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट,
0: तो मैंने बोला पूछो, मैंने बोला पूछो कबीर चाचू, उनको सुनाई देता है कि
1: अरे लीना तो मतलब दूर से बोले टेलीपैथी यार, शी इज अ स्वीट हार्ट टू मी, बहुत बहुत सारा प्यार कबीर चाचू ने बिल्कुल सुना, बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार लीना को यार। क्या यार माज भाई, अपने इमोशनल कर दिया सुबह सुबह यार, मेरा वही प्लान नहीं था, आप उसी तरफ ले जा रहे हो मेरा हाथ पकड़ के। व्हाट इज दिस,
0: कल से पूछ रही है मेरे को, मैंने बोला पूछेंगे कभी चाचू को, पूछेंगे
1: नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मैंने सुना लीना, लॉट्स ऑफ लव स्वीट हार्ट। अभी अभी स्कूल की तरफ जा रही है लीना? Are you going to school, Lina?
0: You going to school, yes or no?
1: Yes. Yes. Okay, आज लीना के टिफिन में क्या है? What is in the tiffin today? ये बताओ मेरे को। दोनों माँ बाप मुझे इस बात की गवाही दो।
0: Lina, what's in your tiffin?
2: Egg, apple and nuggets.
1: Very nice. और फिर आप दोनों जो है लीना को ड्रॉप करके कुछ अनहेल्दी खाने वाले हो, ये भी मुझे बताओ।
2: I'm not here, I'm Zara, but I'm my...
1: जारा भी है अच्छा गाड़ी में? अच्छा, अरे जारा को भी बहुत सारा प्यार, अच्छा पूरी फैमिली पैक्ड है अभी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या क्या एक तो इतनी प्यारी आवाज है, मेरे हेडफोन तक जा नहीं रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या कोई है? क्लियर है मास भाई, आज कैसे बुलवाया आपने लीना से?
0: आई एम आल्सो हियर, जब आपने बोला कि ये लोग लीना को ड्रॉप करेंगे तो सारा ना,
1: और लीना दोनों को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। ओके एंड
0: थैंक यू,
1: वेरी नाइस, मैं खुद ही करूँ थैंक यू बोलो। बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे भाई। आज आज मैंने पहली मरतबा देखा कि लीना ने आज मतलब बात करी वो भी रेडियो पर, कमाल। ये फर्स्ट टाइम है या दूसरी बार है? प्लीज कह दो फर्स्ट टाइम है।
0: शायद फर्स्ट
1: टाइम। वेरी गुड, अब मैं जीत गया भाई। ज़ारा का भी फर्स्ट टाइम है, ठीक है।
0: सो अब भाई टॉपिक ह्यूमर का टॉपिक क्या चल रहा है?
1: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के अंदर कितना ह्यूमर बचा है, आपके हिसाब से कितने ह्यूमर है आपके अंदर माज भाई? आप मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10?
0: नहीं मतलब रेटिंग वाइज मैं अपने आप को 8 नंबर देना चाह रहा हूँ।
1: 2 नंबर क्यों कटे?
0: 8 नंबर देना चाह रहा हूँ 10 में से, लेकिन मेरी जो ह्यूमर है उससे फिर लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, गाली गलौज बजा जाते हैं, तो उसमें से फिर नंबर कट करके उसको 2 नंबर करना चाह रहा हूँ। ये सही है या गलत है मुझे पता नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं भाई,
0: यही सुनना चाह रहे थे आप यहाँ?
1: नहीं मैं समझ गया, वैसे लोगों के लिए नंबर मत गिराओ यार, ठीक है वो उनकी परेशानी है, आपका 8 है ना, आपका 8 रहने दो भाई। वो लोग ऑफेंड हो रहे हैं, लोगों की परेशानी है माज भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। पर आपने कॉल करी भाई और आज मेरा दिन मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव टू द होल फैमिली, ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी फैमिली, पर बहुत सारा प्यार भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और माज भाई के बाद जो है एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कबीर भाई
1: जी, मेरा भाई कैसे
3: नाम है? मुईन है।
1: क्या है नाम?
3: नाम मुईन है। नाम मुईन है, सुनाई नहीं होगा।
1: अरे नहीं, मुईन भाई एंट्री मारी यार माशाल्लाह। मुईन भाई बताइए कैसे हैं आप भाई?
3: मैं जज़ाकअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई एकदम टनटन, बताइए भाई क्या कहना चाह रहे थे आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अपना कबीर भाई ये सुन रहा था ना कि आपका आज का सवाल क्या है कि ह्यूमर कितना बचा हुआ है।
1: हाँ हाँ
3: भाई, घर के बाहर 10/10, घर के अंदर 0 है भाई।
1: अरे बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा डिप क्यों आ रहा है, ये क्या चक्कर क्या है?
3: नहीं नहीं भाई, फैमिली आ चुकी है वापस तो घर के अंदर 0 है।
1: अच्छा बिल्कुल,
3: ह्यूमर को ह्यूमर के जैसा कोई लिया नहीं जाता है तो हाँ। फिर वो खलास हो जाता है। बाहर तो भाई 10/10,
1: बाहर 10/10 हो, मुझे यकीन है बाहर का
3: बाहर अपन शेयर है।
1: तो ये जो सीरियसनेस है ये धीरे धीरे कम हुई है या फिर एकदम से कुछ हुआ है जिस वजह से कम हुई है?
3: ये कुदरत की मार है भाई, वो धीरे धीरे ही होती है।
1: कुदरत की मार।
3: पहले पहले ना निकल जाता था ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो खून

0: था मुझे
1: सुबह सुबह
0: हाँ मुझे
1: अभी जस्ट घर से बाहर निकला हूँ तो फुल एनर्जेटिक हूँ घर वापस जाने का याद मत दिलाओ
0: बस मोहिन रोना नहीं मेरे भाई बाहर जाओ चाय ठीक है मोहिन भाई अब मैं रो दूंगा भाई अपना ख्याल रखिए मोहिन भाई और
1: नहीं कबीर भाई आपका एनर्जी की सबको जरूरत है आज मॉर्निंग में तो आप मत एंजॉय भाई
0: बहुत प्यार भाई को मोहिन भाई थैंक यू सो मच भाई ख्याल रखिए
1: थैंक यू
0: ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और मैसेज क्या है सेंस ऑफ ह्यूमर 10/10 है सामने वाला बस समझना चाहिए जैसे आपने कहा था कल की लैंग्वेज में अपनी बात तो कर लो समझने वाला होना चाहिए वही है ये हमारी मुना बहन ने मैसेज किया मुना आगे लिखती हैं कि ह्यूमर के नाम पर अगर बीवी को बोलेंगे कुछ काम कर लो हिल लो तो कहाँ से हंसेगी ये जो है मामला भी संगीन होता जा रहा है एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई बेटी को स्कूल भेज रहा हूँ मयासा अच्छा माशाल्लाह मयासा को हमारा बहुत सारा प्यार एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसका वॉइस नोट भेजा मुझे लेकिन मैं अभी मैं अनीस भाई एकदम से सुन नहीं पाऊंगा एक मैसेज और है अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू आई विल गिव 10/10 फॉर मी एज आई एम अ ह्यूमरस पर्सन ओके ये उस्मान जी ने मैसेज किया आगे लिखती है बहन कि आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल वंस नर्स आस्क्ड मी टू Asked me, okay, do you have any control on Q-matic? I said, which control are you talking about? I don't have control on my husband and kid. Second time, she asked me, where is the pain in clinic? I told her, pain in all my body, but clinic is opposite side. मैं क्या बोलूं? कहां फंस गया? और कहते भाई मिलनी चाहिए भाई सलाम कबीर भाई वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वकास भाई मैं समझ सकता हूँ कॉल और आ रही है अस्सलाम वालेकुम भाई एक बात बताओ मैं तो ठीक हूँ ये पुल्स की तरह हमेशा आखिरी में एंट्री क्यों मारते हैं 7 बजे के आसपास क्या चक्कर है ये कुछ प्री प्लान्ड चीज है क्या चक्कर है
1: बस भाई मेरा दिल चाहता है मैं इसी का ही
0: आऊंगा मेरा दिल चाहता है रोक के देख ली नहीं भाई हमारी मजाल तो तला भाई क्या आपने आपको क्या देंगे आप ह्यूमर वैसे तो मैं आपको 10 दे देता लेकिन आप खुद को क्या देंगे
1: ह्यूमर क्या होता है यार ह्यूमर होता क्या है
0: अच्छा आज आप सीरियस मोड में ओ सॉरी सॉरी जरा सीरियस बन के दिखाओ तला भाई यू कैन यू हैव टू बी सीरियस फॉर अ मिनट
1: करेक्टर में
0: आना चाह रहा हूँ ओके क्या होता है तला भाई
1: ये होता क्या यार मुझे भी नहीं पता कबीर साहब ये ह्यूमर होता है कबीर साहब ले मेरी तो नया जी निकल गई टेक थ्री
0: एक्शन या गो अहेड
1: जी कभी अबे चलो जी कबीर पता हाँ. नहीं मुझे पता नहीं होता क्या है ह्यूमर ना ये आप क्या बात कर रहे हैं सुबह सुबह
0: अच्छा नहीं इसमें भारी भारी वर्ड भी लाने आपको इंसान फ्यूचर मुस्तकबिल मुतासिर ये सब बीच में लाना पड़ेगा आपको नहीं तो सीरियस नहीं होगा मामला समझ रहे हैं आप ये सब इन्वॉल्व करने का
1: मतलब तखल्लुस के बाद साथ बात करने
0: हाँ वो थोड़ा सा सीरियस बनाने को क्या है अपने को वर्ड डालने पड़ते इंसान कुदरत मुस्तकबिल मुतासिर ये सब लाने का
1: ये सारे कुदरत के खेल है ये देखें इसमें हाँ. मेरा कोई अमल दखल नहीं
0: हो रहे अमल दखल
1: मेरा कोई भी भाई सीरियस यार सीरियस रहना है
0: सॉरी टेक फॉर एक्शन हां
1: मैं वो जो बाजी ने कॉल करी क्या नाम है बाजी सॉरी वो
0: सुमुल
1: ने कॉल करी थी हां भाई ऑफेंड नहीं हो जाइएगा वो मैं चाह रहा हूं कि मैं उनके टोन में बात करूं
0: अच्छा
1: ये मैं बहुत सीरियस संजीदा आदमी हूं हां और ये ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों को ट्यूशन वो देना चाहिए होमवर्क ठीक है बच्चों को जाहिल रह जाना चाहिए कोई इशू नहीं है सब स्कूल वाले करेंगे आप कुछ भी नहीं करें आपसे पैसे भरे उनके मुंह में पैसे मारे और बस काम तमाम
0: बस पैसे मारे वाली लाइन को छोड़ के बाकी सब बढ़ के जा रहा था
1: लुब्बे लुबाब यही है ना उनका लुब्बे लुबाब भी अरे अल्लाह की बंदी सही आवाज सही है ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही
0: क्या एक्टिंग
1: लावारिस थोड़ी
0: लेकिन यार थला भाई फर्स्ट हाफ में जो आपने एक्टिंग करी है भाई फर्स्ट हाफ में मतलब सिक्के उड़ा देने वाली ये वो थी मतलब सिक्का उड़ाया मैंने आपकी एक्टिंग
1: संजीदा
0: है
1: शेर से
0: शपाटर
1: अब पकड़े हैं, सही पकड़े हैं
0: ना अब।

0: सही यूज किया ना मैंने, थैंक यू थैंक यू। ये तो
1: सबसे पकड़े भाई बाकी बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने सुबह सुबह लोगों को धंधे में लगा दिया अपने मुंह में मिट्टू पे, मैं 10 दूंगा अपनी उम्र को, मैं 15 दूंगा अपनी उम्र को। ये जो चल रहा है मार्केट में और ये तुम हंस रहे हो ना, ये सब समझ रहा हूँ मैं, सरकास्टिक हंसी जो हंस रही है ना,
0: असली असली रंग बाहर आ रहा है तलहा, रुक जाओ मेरे दोस्त, असली रंग बाहर आ रहा है, थाम के रखो इस तूफान को।
1: रोका नहीं जाता, हाजमे कमजोर है अपन ना, डाइजेस्टिव इश्यू चल रहे हैं अपने,
0: डाइजेस्टिव
1: फौरन कर देते हैं अपना।
0: हाँ फिर ठीक है, नहीं पर तला भाई आपका घर पर ये बताओ मुझे तला भाई, उन्हें वेरी मजाकिया मूड, घर पे आपका ह्यूमर कितना चलता है? अभी मोइन भाई शिकायत करेगा, कह रहा है भाई घर पे ह्यूमर नहीं चल रहा, आपका कैसा है घर पे ह्यूमर?
1: अपन लोग चली हुई रहा, धंधा ही हुई है भाई, चली हुई रहा। अपनी तो दुकान ही हुई है भाई, तुम्हें पता तो है, अपनी तो दुकान ही हुई है, बीवी रुकी भी इस वजह से कि थोड़ा सा इंसान हंसा देता, वरना तो चम्बे कराओ उसको, किसी काम का नहीं है।
0: एक आपके लिए मैसेज आया है, आसिफ भाई कह रहे हैं कि तला भाई के लिए एक सवाल है, आज मॉर्निंग में अंडे ज्यादा हो गए क्या? ये कह रहे हैं आपके लिए।
1: यार ये आउट ऑफ द कॉन्टेंट बात क्यों करता है यार, इसका नंबर दो मुझे, एमओआई को दूंगा तो रिपोर्ट कराओ, ये दिल खराब कर दे, सुबह ही सुबह ग्रेविटेशनल फोर्स ले आएगा कभी कभी, ये कहाँ क्या है ये, चतुर्मुश के पास रहता है क्या भाई आप?
0: ये मैं नंबर देता हूँ, निपट लेना आप इनसे, बहुत जरूरी हो गया है, और आपको 100 मार्क्स दिए हैं, आपने शुरुआत में एक्टिंग करी थी, माजिद भाई ने, माजिद भाई कह रहे हैं भाई फुल नंबर है तला भाई को, 100% दिया
1: आप। माजिद भाई पेट का पेट बंदा है, पेट ऑडियंस है,
0: पेट ऑडियंस,
1: ये खरीद चुका हूँ मैं कुछ बंदे,
0: हाँ मेरे
1: माजिद भाई भी है,
0: समझ में आ रहा भाई, माजिद भाई कितने में ईमान बिका तुमने,
1: ये बिक गया यार, भी एक पकोड़े में बिक गया यार।
0: वेरी नाइस यार, लेकिन मजा आया, ये अच्छा हुआ कि आपकी कॉलेज टाइम पे है, बिकॉज़ ये टॉपिक को पूरा क्या कहते हैं एंड देने से इससे बढ़िया कोई इंसान हो नहीं सकता था तला भाई, थैंक यू सो मच भाई।
1: ह्यूमर तो यार देखो ये एक आर्ट है, कला है, ये जेनुइन होता है, ये बर्थ होता है इंसान के अंदर, गुरु जो हर किसी में नहीं होता, गुरु जो तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है,
0: थैंक यू,
1: तुम तो ये सुबह सुबह जो है थेरेपिस्ट जो बनते हो सुबह सुबह पूरे तो, अरे तुम बताओ छोड़ो ऐसी की तैसी दुनिया की, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, वरना नहीं भी होता ना, वो जैज भाई नहीं है,
0: हाँ।
1: वो फक पड़ता अभी थोड़ी देर, फकने वाला था वो बस, वो तो शुगर मानो कि वो हल्की हल्की इधर उधर हो गई, वरना हाँ। वो बंदा यकीन करो वो पॉपकॉर्न का इंतजाम कर चुका था वो,
0: अरे
1: भाई क्या बताओ, छोड़ के चली गई कमबख्त हमारी, वो आ गया था इस पे,
0: मैं भाई उनका वो जो मजनू वाला तार था ना, बस मैंने छेड़ दिया था उस, बस वो वहीं पे रह गया जरा सा, मैं नेक्स्ट टाइम पकड़ लूंगा,
1: वो आ गया था, शॉर्ट सर्किट होते होते रहा है, आ हाँ। गया था वो,
0: हाँ वही ना,
1: बंदा आ चुका था इस पे। यार क्या ये पप्पू थेरेपी ये सुधरेगा नहीं, सुबह सुबह लगा पड़ा, तुम बताओ अच्छा अगला, अब तुम बताओ क्या हुई तुम्हारे साथ, क्या बीती, आप बीती बताओ अपनी।
0: मुझे लग रहा है कि आसिफ भाई का सवाल गलत नहीं है, लग रहा है
1: अच्छा सही है, आओ जरा तुम हवेली भी आओ, तुम्हें भी दिखाएं।
0: नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, और अभी जिंगल का भी टाइम हो रहा है तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: हाँ भाई अभी साथ देंगे तुम्हारा, साथ दोगे चलो,
0: थैंक यू मेरा भाई, ख्याल रखो, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और तला भाई बात को मैसेज, स्पेशल मैसेज फॉर माई वाइफ, आई हैव स्टॉप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, आई हैव एक्सेप्टेड दैट सम मिस्ट्रीज आर नॉट मेंट टू बी सॉल्वड। खान भाई कह रहे हैं कि ये मैसेज मेरी वाइफ के लिए है कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश करना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ रहस्य कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कैसा जंग का ऐलान है, आसिफ भाई कह रहे हैं ये अगर गलती से किसी महफिल में बैठ गए तो समझो सामने वाला उठ के चला जाएगा। और फरद भाई ने मैसेज किया है, हंस रहे हैं वो, और मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, मेरा ह्यूमर का रेशियो सामने वाले के हिसाब से होता है, वेरी नाइस। ये समीरा जी ने मैसेज किया है, और बहन लिखती है कि अननोन पीपल के साथ 0 out of 10 है, इन लॉस के साथ 3 out of 10। तो बहन ये ओवर द ईयर्स बड़ा नहीं है, और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि विद माय हस्बैंड इट इज 6 on 10, विद माय किड्स 7 on 10, विद माय ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, अच्छा इन लॉज वालों के साथ 8 on 10, विद माय सिस्टर 10 on 10, और आसपास वालों की खैर नहीं होती। अरे वेरी नाइस, क्या कॉम्पोजिशन बताया है मैसेज का, लव्ड इट। तो अभी जो है टाइम हो गया है जिंगल का, मई जिंगल चलाएगा, वेयर इज द जिंगल इज द

0: FM 107, Time Check.
1: मेगा जी 7:02 हो रहे घड़ी में और आप भी मेरा साथ दो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके साथ चलेगा तभी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जो लोग सुबह आ रहे ले भाई एकदम मतलब आग फायर फायर फायर.

0: Wake up. Hey, Doha wala mein Kabir.
1: Haan ji.
0: Yehi kahunga. Subah subah. Wake up.
1: Wake up जी, wake up. मेरा सच में आज मन कर रहा है बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ जाऊँ, शो करूँ. इतना बढ़िया रिलैक्स और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं. मैं सारे मैसेज पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं रह गया था पढ़ने से. तला भाई ने मैसेज किया है, दूसरे वाले तला भाई अलखोर वाले, ये कहते हैं जैज़ भाई कुर्सी पे बैठ तो गए फिर याद आया ऑफिस जा रहा हूँ. भाई ह्यूमर तो आई थिंक दोस्तों में होता है, घर पे ह्यूमर नहीं होता. आगे उन्होंने एक और बात लिखी है, कहते हैं घर पे अगर गलती से ह्यूमर निकल जाए तो उसी रात को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है या एक साल बाद आपने ये बोला था ये एक्सप्लेन करते रहो. अरे मेरा भाई ये जो हल्का हल्का फराज भाई ने मैसेज किया, फराज भाई कह रहे हैं ह्यूमर इज 8/10. फराज भाई आपका ह्यूमर मतलब घर और आउटसाइड दोनों जगह 8/10 है, क्या सीन है. इशाम साहब वालेकुम अस्सलाम. फराज भाई कहते हैं नाइस रैप, थैंक यू सो मच भाई. आज इतना फॉर्मल बोला है इन्होंने फराज भाई ने, जैसे होता है ना नाइस पिक दीदी नाइस पिक डियर बिल्कुल वैसा ही लगा मुझे. आर्य अंसारी भाई कह रहे हैं भाई आप रेडियो के फूफा बन गए. हाँ जी, कोई टेंशन को नहीं भाई, हमने खुद ही टाइटल दिया अपने आपको. अरे भाई दिक्कत होनी भाई. फराज भाई कह रहे हैं घर पे 1% ड्रॉप हो जाता है, घर पे 7 में से 10 है, बाकी बाहर 8 नंबर है, मतलब 10 में से 7 है और बाहर 10 में से 8 है. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, बेटी बोल रही है कबीर भाई. अच्छा गाना लगा दो. नहीं भाई ये जो है आपका मन कर रहा है बोलने का, आप बेटी पे मत उमड़ा करें ये बात अनीस भाई, और नहीं हो पाएगा भाई सॉरी. माय टाइप ऑफ ह्यूमर, एक मैसेज है दिल में चुभी है सुई, दिल में चुभी सुई उई उई उई एक तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं इन वाले जोक्स पे मैं हंस देता हूँ, फिर मैं ये प्रूव नहीं कर पाता कि मेरा इंटेलेक्ट बहुत हाई है तो ये हमारी मोना बहन है, इन्होंने लिखा है कि दिल में चुभी सुई, दिल में चुभी सुई उई उई उई. थैंक यू बहन, इसलिए तो मेरा ह्यूमर आके बढ़ नहीं पा रहा. एक मैसेज है, हम सब प्रोटेस्ट पे किधर जा रहे हैं भाई, शमाल रोड पे ट्रैफिक है. तनवीर भाई कह रहे हैं अलवकरा से, तनवीर भाई ने तौफीक भाई ने मैसेज किया है, तबस्सुम में लिखती है मुझे कुछ इंसिडेंट याद आ रहा है जब लोग अपनी बात मनवाने के लिए आपसे ऑन एयर लड़के गए, है ना, याद है बहन आपको, याद है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने ही बहस करी ऑन एयर, मुझे तो ये पूरा यकीन है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है. कादिर अब्दुल हादी भाई वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप. और एक मैसेज भाई आज वाइफ बच्चे रुमाल नहीं मिल रहा था तो टेंशन ले रही थी, मैंने बोला टेंशन मत लो, जो टेंशन देता है अगर ले तो अच्छा नहीं लगता अनीस भाई ये वो डाला.

इतना तेरे को डर नहीं लगता रे? डर नहीं लगता तेरे को? तो इतनी हिम्मत ला कहाँ से रही है पब्लिक? एक मैसेज है, आप और तलाब भाई की कॉल का वेट करते हैं। ये मैसेज क्या है? सैयद अरसलान बुखारी भाई ने, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और थैंक यू सो मच फरहत भाई, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज की जो कहानी है ना भाई, जो 7:30 बजे आएगी, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको मौज आ जाएगी भाई। आज आप रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा टॉपिक है और ऐसा किस्सा है, मतलब नहीं सोच सकते आप। अब मैं गैस करवा लेता हूँ आपसे, आप गैस कर लो किस टॉपिक पर होगी आज की कहानी, कौन सी कैटेगरी होगी, थ्रिलर होगी, मिस्ट्री होगी, क्या, आप गैस कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, आप गलत निकलेंगे, कुछ भी गैस कर लीजिए, आप गलत ही निकलेंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी ले रहा हूँ। 666-22-107 वैसे तो नंबर है भाई, और मैं नू कह रहा था गाना चला देता हूँ बढ़िया वाला, ठीक है। और मैं ये भी सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप अपने ह्यूमर को कहाँ रैंक करते हैं, मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे? आपके अंदर सीरियस बंदे को अगर हटा दिया जाए तो कितना ह्यूमर है? 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। बता दो भाई क्या आपका ह्यूमर कितना मोर बना देता है भाई, ठीक है। शर्व यादव बादशाह फराज भाई कह रहे हैं सस्पेंस स्टोरी ना भाई, आज गैस को नहीं कर पाऊंगा भाई, टू मच ट्रैफिक शमाल रोड पे, बाकी

मैंने सुना भाई शमाल रोड पे ट्रैफिक चल रहा है इतने नियर मदीना खलीफा, भाई जहाँ जहाँ ट्रैफिक है मैं कह रहा था क्या हाल है, आज तो मेरे साथ फंस गए आप तो सुनना पड़ेगा।

0: रूम करे शेकअप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो, वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह,
0: वेक अप।
2: हाँ जी, तो जो लोग अभी जो है अपनी आंखें मलते हुए जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज आया इरफान भाई का, मैं ह्यूमर के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा भाई आपके अंदर कितना ह्यूमर बचा है। आज के जमाने में कुछ लोग बहुत

0: सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए भाई। मैं खुद सुनता हूँ कॉलर्स को, बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमारे ही रेडियो स्टेशन पे कॉल करते हैं 107 पर, इतना भाई इतने सीरियस 15-15 मिनट तक भाई वो ऐसी बातें करते हैं ना, आदमी सुन के बोला ना भाई तो वो हो जाता कई मरतबा ना। तो मैं कह रहा हूँ कहाँ है वो ह्यूमर, इरफान भाई कह रहे हैं घर में ह्यूमर जीरो है, आउटसाइड फुल टॉस। ये बढ़िया था गुरु। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: मैंने ढूंढा तुझे यहाँ वहाँ सारा जहाँ कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ शहजादा, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उबर के बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो मैं निहायती इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, एकदम से सॉफ्ट, एकदम से नरम, एकदम से मुलायम।
0: किसकी बात हो रही है? भाई क्या हो गया शहजादा सलीम, इज एवरीथिंग ओके? एक सेकंड ना शहजादा सलीम भाई, मैं आपके साथ मिलके मैं शार्ट आउट दे दूं, बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे वरना। ये मुझे मैसेज किया है रयान से, हामना और अरहाम ने, माशाल्लाह क्या नाम है, ये हमें मैसेज किया है माजिद भाई ने। तो हामना और अरहाम को बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, दे गोइंग टू स्कूल, बहुत सारा प्यार दोनों को। आप बताओ शहजादा सलीम क्या कह रहे थे?
1: जी जी हाँ, आप बात कर रहे थे ना उम्र के बारे में, तो घर की जो सिचुएशन है वो तो हमेशा की है, क्योंकि वो एक जिंदगी है, ठीक है ना। इसके बाद की जो जिंदगी है वो अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना, मजे वाली और लिफ्ट उठाने वाली।
0: क्या उठाने वाली? क्या उठाने वाली? मुझे लग रहा है शहजादा सलीम बहुत मूड में। क्या क्या क्या बात होगी शहजादा सलीम, एक बात होगी,
1: आपकी आपकी जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पे मतलब इतना मतलब तरह तरह के मतलब है ना कैरेक्टर्स हैं, तो मैं सोचा हूँ कौन से कैरेक्टर में जाके डालू ताकि जो है ना मतलब पूरा अच्छा सा परफॉर्मेंस मिले उमर को, क्या वाकई में नहीं नहीं भाई ये मेरे लिए फिट है। तो बहरहाल बेस्ट है, ऑल इज बेस्ट है, एवरीवेयर है, एवरीवेयर है, एवरीवेयर एनी सिचुएशन।
0: My God, वो भी 7:12 पे थी अंग्रेजी शहजादा सलीम, what happened bro?
1: वरना जहाँ पना फिर आप फिर थोड़ा सा कुछ तकल्लुफ ना करें तो कुछ फरमाए कुछ आखिरी, क्योंकि जहाँ पना मैं कुछ इजाजत लेने की इसमें आपसे इजाजत चाहूंगा।
0: तुम्हें पूरी इजाजत है मेरी तरफ से, बहुत मोहब्बत। अनारकली कहाँ है?
1: तखलिया।
0: एक और देखो मैसेज आया, हमने गलत पढ़ जाता आपके चक्कर में, आपको ब्लेम करूंगा मैं। एक मैसेज आया भाई, मैंने मैसेज किया माजिद ने, अच्छा सॉरी मैं उल्टा मैसेज हुआ था। तो बच्चों का नाम है हमना अरहम और मोहम्मद रयान, बहुत प्यार तीनों को। भाई माजरत चाहता हूँ, कॉल पे हम शहजादा सलीम और हम थोड़े बहस करने लगे थे और सलीम भाग भी गए, अनारकली ले गई उनको दीवार में से कूद के। एक में से आया, जो लोग घर पे ह्यूमर के नाम पे वाइफ्स को सुना रहे हैं कि उनके लिए है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। अरे रे रे रे भाई साहब, अरे रे रे रे भाई। ये हमारी बहन समीरा ने तो बिल्कुल वो देखा, वो एक्शन सीक्वेंस होता है जो पीछे आग लग रही होती है और आगे हीरो जा रहा होता है, बढ़िया एकदम, बिल्कुल वो था ये। क्या शेर मारा है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। अरे आज कहानी पलट दी। एक मैसेज आया अरे बंसारी साहब का, भाई अनारकली सिपाही के साथ चली गई। इनके बाद एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आलम सिद्दीकी साहब का मैसेज है ये। और इनके बाद मैसेज किया है ये पत्थर लेके फोटो भेजा है आसिफ भाई ने। इनके बाद इसी सलीम को अनारकली छोड़ के भाग जाएगी। अनारकली इनके साथ क्या करेगी ना, बोलेगी दीवार तो मैं खुद दीवार में जा रही हूँ, मैं ही दीवार हूँ, चुनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। गाबा जी ने मैसेज किया, गाबा जी कह रहा है भाई मोरनी बागा में माँ बोले न बोले, बागा में बोले न बोले भाई मारा कबीर तो मॉर्निंग माँ जरूर बोलेगा भाई घना। थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्रेम भाई को, घना फूफा भाई ये भाईचारा ऑन टॉप, गाबा भाई थैंक यू। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, ह्यूमर मेरा भी मस्त हुआ करता था 10 में से 12, काफ़ी दिन हो गए ह्यूमरस बन के भी, और आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मे बी आई एम बिकमिंग अंकल। भाई आपके नाम में हकीम है भाई, आप तो हर मर्ज़ का इलाज होना चाहिए, क्या हो गया ये, किस बात पर गुस्सा आ रहा है आपको? टेंशन क्या हकीम साहब, आप बैठिए कुर्सी लगा के बात करिए हमसे। या भाई

0: मैसेज किया है भाई, कह रहे हैं भाई वाइफ से एक मर्तबा पूछ लिया था व्हाट्स योर व्यू ऑन ह्यूमर एज समवन न्यू टू इट, बस उसके बाद बस डार्क ह्यूमर याद है बस बाकी। तो ये डॉक्टर ने कितना टाइम बोला है या भाई ठीक हो जाएगा। सही है, तुम सब ने मैसेज किया है फिर आज कुछ नहीं, क्या फिर आज कुछ नहीं तो कॉमेडी तो नहीं है। देखो कुछ भी हो सकता है हमजा भाई, यू आर वेरी क्लोज। एक मैसेज है कबीर भाई साहब, हमजा शेख साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सस्पेंस स्टोरी फराज भाई नहीं, गेस्ट आज कर ही नहीं पाएंगे। कॉल मी सलाम, फवाद भाई को एक हम जरा कॉल कर लेते हैं। फवाद भाई मैं थानू कॉल करता हूँ, एक सेकेंड ना फवाद भाई, मैं एक दो मैसेज पढ़ दूँ प्लीज़। जैम ऑन शमाल रोड नियर मदीना खलीफा ड्यू टू टू बैक टू बैक एक्सीडेंट्स, अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह करीम रहम फरमाए, आमीन आमीन। एक मैसेज क्या इरफान भाई ने, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, होप यू वेल। लाइफ में ह्यूमर ना हो तो ज़ॉम्बी लगेंगे, आपका अपना भाई इरफान। बिल्कुल सही आसिफ भाई कह रहे भाई शुक्रिया फोन। अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरे भाई की आवाज़ आखिर सुनने को मिल गई, माशाल्लाह रोने के लगेंगे। मेरा भाई उज़ैर भाई को बहुत सारा प्यार। अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इशादा सलीम, अनारकली के लिए जाने वाले नहीं बल्कि अनारकली इनको चुनवा देगी। मालिक वखार साहब कह रहे हैं शहजादा सलीम कहाँ भाग गया यार। इरफान भाई कह रहे हैं कल सुबह नावल पढ़ के आते हैं शहजादा सलीम, ये आदमी हाँ ये राइटर है भाई, मुकम्मल राइटर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक और राइटर को कॉल लगा रहा हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ मैं, अभी देखिए आप। राइटर फवाद को हम कॉल लगा रहे हैं, राइटर फवाद अस्सलाम वालेकुम। राइटर फवाद
1: अस्सलाम वालेकुम, आदाब हर से।
0: जी जी जी जी, कहिए फवाद भाई क्या हाल है।
1: अनारकली बात ही नहीं है, अनारकली किसी और के साथ एसएमएस पे
0: है। ये फवाद भाई बात बताइए आप मुझे, आपके अंदर तो ह्यूमर कितना बचा है भाई, घर में कितना नंबर देंगे आप अपने ह्यूमर को और बाहर आउटसाइड कितने नंबर देंगे आप 10 में से।
1: मेरा इनसाइड आउटसाइड ह्यूमर तो हर वक्त होता है।
0: अच्छा, इसका खामियाजा कितना भुगता
1: है जिंदगी में, वैसे इतना रोने को है कि अगर बाकी चीजों पे भी रोगे तो क्या रह जाएगा जिंदगी।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, मैं आशिक नहीं, आवारा तो नहीं, आशिक तो नहीं, लिरिक्स ही भूल गया।
1: बात यही है सर,
0: बात यही है। वेरी गुड वेरी गुड फवाद भाई,
1: क्योंकि कहते हैं अगर आपने हंसते हंसते चल जा अपने रास्ते, निकल गए अपने रास्ते, तो बस फिर हंसते हंसते गुजरो तो अच्छा है, ना कि रोते हुए जाओगे।
0: हाँ वही तो फवाद भाई, मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ, सीरियस होने का फायदा क्या है भाई, लोग थोड़े सीरियस हो जाते हैं ना कॉल पे, तो मैं उनको आज ये संदेशा देना चाहता हूँ कि ये मत करो यार।
1: लिटरली किसी से अफसोस करा था अगर तो हंसी छुट गई
0: है। ये कब हुआ आपके साथ भाई?
1: बस ये सोचे अपने ही वालिद साहब से किसी का अफसोस करा था, साथ में हंसी छुट गई।
0: फिर क्या हुआ
1: उनकी बात सुनते सुनते?
0: फिर क्या
1: आगे से अब्बा जी कहते हैं अफसोस कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे उनका।
0: फवाद भाई आप उस लेवल पे जा चुके हैं जहाँ पे अगर हम गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। फवाद भाई और बताओ, बढ़िया चल रहा भाई?
1: सही सर, बढ़िया ही चल रहा। मैं तो कल करने लगा था कॉल, मैंने कहा कि खैरियत है सर, मैं डॉक्टर ले जाके।
0: तो आपको कैसे लगे डॉक्टर कबीर, कल दुग्गल साहब डॉक्टर बने थे?
1: डॉक्टर नहीं, हर जगह दो तीन दिन से डॉक्टर पागलों, डॉक्टर कभी साइकोलॉजिस्ट क्या क्या बनी जा रहे हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर क्या आपका ले जाता हूँ ताकि आपका इलाज करा लूं पहले।
0: भाई मैं तो वो प्लास्टिक का हो जाना स्टेथोस्कोप वो भी खरीदने वाला हूँ मैं, और एक बढ़िया सी व्हाइट सी जैकेट ले लूंगा लंबी सी, और फिर मैं घूमूंगा भाई मैं।
1: जो आपने कल वाली बताई थी वो बीमारी हमारी फैमिली में गुजर चुकी है।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ साहब को ठीक है, और वो कहते हैं डायग्नोज ही लेट हुई थी, बोन मैरो से ही गई थी।
0: ओके, ये तो भाई पता नहीं था मुझे, तो ये यहाँ पे हुई थी या पाकिस्तान में, किधर किधर बीमारी हुई थी?
1: नहीं नहीं पाकिस्तान में।
0: अच्छा पाकिस्तान में हुई थी, तो
1: डिटेक्ट हुई अमेरिका से थी।
0: अच्छा मतलब, अच्छा तो डिटेक्ट नहीं हो पाई थी
1: ना, बहुत लेट, वही मसला था, हर कोई दूसरी से टेस्ट किया जा
0: रहा था। हाँ वही सेम जो कहानी में वही हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ।
1: बिल्कुल सेम।
0: अरे यार बहुत बहुत रेयर है यार ये चीज, ये
1: बहुत रेयर
0: है।
1: हाँ आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बोलना शुरू कर देते हैं, फिर आपको कहते हैं जो मर्जी करा ले आप, ऑपरेशन करा ले जो मर्जी करते रहे, लेकिन ऐसा कोई इलाज नहीं, डॉक्टर तो बहुत चीजें कहते रहेंगे।
0: राइट राइट,
1: कुछ भी कहते तो ये रेयर थी, लेकिन मुझे ये परेशानी हो गई है कि आपको कब मिल लूंगा और कब लेके जाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं को मसला लग रहा है।
0: अरे क्या क्या मसला लग रहा है भाई, क्या बात हो गई?
1: इतनी बीमारियों की लोगों को सुबह सवेरे बातें बताते हैं। लोग आपकी वजह से डॉक्टर के जाना छोड़ दिया लोगों ने।
0: सब कह रहे हैं हमें सब पता है डॉक्टर साहब, मुंह पे सारी नॉलेज है।

0: हाँ सब कुछ पता है और अगर पता चला गया तो हम डर जाएंगे।
1: तो है ना बीच, कल मुझे तीन डॉक्टर्स ने मैसेज किया, समझ रहे हैं आप, ये ट्रॉफी से कम नहीं है।
0: हाँ, मैं ये भी हैरान हूँ, डॉक्टरों ने मैसेज शुरू कर दिया भाई।
1: देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, और मेरा ही जलवा। देखा फवाद मियां, क्या हाल है, अब कैसा लग रहा है?
0: बड़ा लग रहा है सर, आपने डॉक्टरेट कर ली है इसका मतलब?
1: बस बस बस बस बस बस।
0: तो बोले फखर नहीं किया कभी?
1: फखर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। लेकिन भाई आपने बताया, मुझे हैरानी, मुझे पता नहीं था कि ये आपके भी फैमिली में किसी को होता, बट अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह ताला इन तमाम।
0: लेकिन वैसे रेयर है ये, क्या कहते हैं उनको, किसी से किसी चीज के कीड़े के काटने से हुई है, फैमिली में नहीं है।
1: अच्छा, दैट आई डोंट नो कि ये कैसे उसको हुई, पर इतना है।
0: लेकिन वो ये बात है कि आप किस तरीके से हुई, लेकिन फैमिली में नहीं होंगे किसी।
1: अच्छा, ओके ओके, देखते हैं आज वाली फवाद भाई, सुनना है आज आपको मजा आ जाएगा भाई, आज कुछ है आपके लिए स्पेशल।
0: सर, आज मैं अलखोर के रास्ते में हूं तो सुन के जाऊंगा।
1: डन डन डन, आज आपको मजा आएगा भाई। ठीक हो गया फवाद,
0: चले सबको सलाम।
1: वालेकुम सलाम भाई, ओके और तबसम, मैंने मैसेज किया था, मुझे कह रही थी मुझे वो इंसिडेंट याद है, पहले तो उन्होंने बताया कि ऑनियर झगड़ने के लिए आते थे, फिर आगे उन्होंने लिखा है कहाँ हैं वो लोग जो 15 मिनट सीरियस वाले लोग मिस कर रहे हैं, क्या लड़ने, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उनको। एक मैसेज है फरद भाई का, तो आज के स्टोरी पर डिटेक्टिव है शायद, नहीं आपके शो का एक खूबसूरत बात यह है कि कॉलर्स कॉल सुन के आपस में बातें करते हैं आपके थ्रू, और ये काम आई थिंक सो दूसरे शोज में नहीं हो सकता, जिससे हमारे मैसेजेस रीड होके कॉल के बाद रीड होते हैं कॉल के बाद। थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार। जमाल शेख साहब कहते हैं कैसे सर आप? वालेकुम सलाम भाई, एकदम बढ़िया जमाल भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, हबीबुल्ला भाई ने मैसेज किया, ट्रैफिक जैम, मैडम बोली मेरे को क्या दिमाग है कम, मैं क्या करूँ, क्या क्या है कम क्या लिखा है भाई? जब आपका मॉर्निंग स्टार्ट हुआ तो कोई स्टोरी नहीं सुनी, क्योंकि 7 पे ऑफिस, स्टोरी स्टार्ट 7:30, सो प्लीज सेंड मी भाई। नो प्रॉब्लम, आपको मिल जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओ। और हम तो लिखते हैं कबीर भाई, सीरियसनेस वो क्या होती है भाई, ऑफिस में ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो घर दोस्तों में इन्जॉय ही नहीं करना चाहिए। और पता नहीं ये कौन लोग हैं जो हर जगह सीरियस हो जाते हैं, यही तो मसला है, हर चीज़ को एकदम संजीदा बना देते हैं भाई। आर्य बंसारी भाई कह रहे हैं भाई कल आपने स्टोरी नहीं भेजी, भाई मैं बताऊं, मैं एक चीज़ भेजता हूं आपको, रुको, लेट मी शो यू समथिंग, उसके बाद फिर बाकी आप लोग गैस कीजिए कि कौन सी आज के क्या टॉपिक हो सकता है कहानी का, बाकी मिलते हैं गाने के बाद, ट्रैफिक के बाद, कुछ ही देर में 7:23 भाई का गाना वांटेड से। हाँ जी,
2: जलवा
1: 666-22107 पर अपना ही जलवा भाई, और बता देना कहानी, गेस करो किस कैटेगरी की है,
2: यहां भी होगा वहां भी होगा।
1: हाँ जी,

हाँ जी, एक मैसेज क्या है भाई ने, भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, एकदम फिट बैठता शोभे। थैंक यू सो मच अमित भाई, मेरा भाई सीधा दिल्ली से।

हाँ जी, तो 7:28 बाय द क्लॉक, और एक भाई ने मुझे मैसेज किया, अब मिर्जा साहब है ना, अब देखो ये मत कहना कि मेरी आवाज़ सरवर भाई से मिलती है ना, तो ये बात वो मानेंगे ना मैं मानूंगा भाई। ये ज्यादा हो गया अब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक मैसेज है फरद भाई का, लिखते हैं, कबीर भाई सबसे पूछिए क्या शर्ट का कॉलर कितने लोगों ने ऊपर किया है। अरे हाँ ये बात तो है, ये मैंने तो किया था भाई। फरद भाई क्या बात है, आप तो रिवर्स उनो खेल गए मेरे साथ। कबीर भाई ये रैप डेथ है भाई, एकदम मौत। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको रैप इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एफ एम वाले कबीर भाई ऑन रेडियो, हाँ जी भाई वही हूँ मैं। इरफान भाई कह रहे हैं भाई एक वीक का शेड्यूल रिकमेंड नहीं, स्ट्रांगली रिकमेंड खुल के चुगली करने, हस्बैंड वाइफ बॉस कलीग्स नेबर्स, ये क्या है। इरफान भाई किस लाइन में आ गए अब। माइज भाई कह रहे हैं क्या जलवा है भाई के, भाई थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस भाई ने मैसेज किया है, प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम। एंड ये मैसेज किया है आसिफ भाई ने, आसिफ भाई कह रहे हैं भाई देखो तेरा जलवा मिलेगा देखने को हमेशा, मगर मेरा हलवा कब बिकेगा मॉर्निंग ब्रो। क्या हो गया आसिफ भाई, एवरीथिंग ओके? नाजिबन वालेकुम अस्सलाम। दैनिक भाई ने गेस कर लिया है कि आज का जो शो है, इरफान भाई है इनका नाम भी, कह रहे हैं कि आज की स्टोरी किस कैटेगरी के ऊपर, बताऊंगा नहीं, मैं सुनाऊंगा क्योंकि कह रहे हैं मैं तो कभी सीरियस हो नहीं सकता। मोहसिन भाई का मैसेज है, फिर ये मुशीर भाई का मैसेज, क्या लेंगे कबीर भाई, मैं बढ़िया भाई एकदम शानदार मुशीर भाई जगास। और मैं से आज पिंक शर्ट वेंसडे, अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई, देखो आप अब क्या ना माजिद भाई, आप पे माशाल्लाह अच्छी लग रही है पिंक, समझ रहे हैं, हमने पहन ली तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जचती को नहीं, माशाल्लाह अच्छी लग रही है माजिद भाई, एकदम छा गए छा गए छा गए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो जी अब जो मैं कहानी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ आज की कहानी, इस कैटेगरी की कहानी मैंने शायद एक दो ही सुनाई है, ज़्यादा नहीं सुनाई होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो बस एक छोटा सा गाना।

ज़्यादा लंबा नहीं करते, एक सेकंड रुको, मैं बहुत ही छोटा जहा गाना उठा लेता हूँ और इसके बाद हम सीधा मिलते हैं। एक सेकंड, ये वाला भी नहीं, और छोटा गाना हो ये, एक सेकंड रुको। मेरा ही जलवा जलवा जलवा, एक सेकंड, ये वाला गाना, हाँ ठीक है भाई, सिर्फ 2 मिनट, 2.5 मिनट का गाना है, इसके बाद होगी स्टोरी शुरू। तो मैंने पहले ही बता दिया, मैंने ओवर सेल भी कर दिया गाने को, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो आप अगर लाइव सुनेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है, सिर्फ 2.5 मिनट की बात है, रेडी हो जाओ आप जो लाइव सुन रहे हैं, मैसेज कर देना 666-22-107 पे, वेंसडे पिंक डे टू सपोर्ट, अच्छा ओके।

हाँ जी, अभी एक ट्रैफिक अपडेट दे दूं पहले मैं। रियन नियर अल रियान एग्जिट ट्रैफिक है, आरिफ अंसारी भाई ने बताया था। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अभी ट्रैफिक का ख्याल है बता दीजिएगा जो भी लोग इस तरफ से निकल रहे हैं। बाकी शेख भाई थैंक यू सो मच, वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, एंग्जाइटी थी, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा रेडियो के पास ले जाओ अपने आप को, दो हवाला कबीर, सुबह सुबह आ गया। थैंक यू सो मच भाई। ओके सर, मैं स्टोरी शुरू कर रहा हूँ, आई होप आप सब तैयार हैं, बी रेडी। ओके, एक अलग ही कहानी है भाई। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूं ना ही कभी देगा। आज का किस्सा एकदम असली है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, शुरू करूं, लेट्स बिगिन। अब आज का किस्सा जो है ना, ये आपको इत्मीनान से सुनना, अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पर हैं तो गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाइएगा, और गाड़ी कहीं पार्क्ड है बहुत बढ़िया। तो आज के किस्से को सुनाने के लिए आपको ले चलता हूं 1932 में, जगह ऑस्ट्रेलिया। एक पीरियड चल रहा था इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, एंटरबेलम पीरियड, जहां पर ना एक जानवर बड़ा मशहूर था और वो ऑस्ट्रेलिया में आए जा रहा था। उसे कहते हैं इमूस। मैं बिल्कुल देसी भाषा में बोलता हूं, ऑस्ट्रेलिया का शतरमुर्ग भाई। शतरमुर्ग तो आई होप सबको पता होगा, तो मैं पूरी कहानी में इसको शतरमुर्ग ही बोलने वाला हूं। तो शतरमुर्ग जो ऑस्ट्रेलियन था भाई, ये यहां पे ऑस्ट्रेलिया में आ गया था और कई सालों से इनका आना जाना लगा रहता था। यूं समझ लीजिए कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा था, वहां पे इन शतरमुर्गों की जो गैंग थी वो आ गई थी। ब्रीडिंग सीजन में ये लोग बढ़ते ही चले जा रहे थे, इनकी आबादी बढ़ती ही चली जा रही थी। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुई ना, तो जितने वेटरन थे, तो वेटरन्स जो उसमें सर्व कर चुके थे सोल्जर्स,

तो उन बिचारों को खुश करने के लिए सरकार ने कहा कि तुम्हें हम जमीन देते हैं, है ना। तो सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया की सबको जमीनें दे दी, ये लो ये इतनी फला फला बीघा तुम्हारी हुई, ये जमीन तुम्हारी हुई। पर ये जो जमीनें थी ये मोस्टली इनफर्टाइल थी, मतलब ज्यादा काम की थी नहीं, बट ठीक है, मेहनत कर करके इस पर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अब यहां पे जो गेहूं की खेती थी उसकी शुरुआत हुई। यहां पे सोल्जर्स ने कहा भाई कुछ तो करते हैं, मगर इन खेतों पे नजर थी किसी की, नजर थी इन बड़े बड़े हाइट वाले लईम शईम शतुरमुर्गों की, 70 किलो के, 2-2 मीटर लंबे भाई, मतलब दे कम एट थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन वालों के बाद ये इन्हीं का नंबर आता है, और फिफ्थ हैवीएस्ट बर्ड, तो सारे के सारे जो चिड़िया जो 1-5 में ऑस्ट्रेलिया की है। सो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है 10,000 साल पहले से इनका थोड़ी नजर रही है शतुरमुर्गों की, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बढ़ी अर्ली 20th सेंचुरी में जब वहां पे रेलवे कनेक्शन बनने लगा। तो रेलवे कनेक्शन बनाया था लोगों के लिए, पर रेलवे कनेक्शन जब बनाया तो जमीनों को और थोड़ा तोड़ा गया और खाली किया गया, तो इस चक्कर में शतुरमुर्गों को मिल गई अपनी जगह और उनकी बड़ी हुई आबादी की नजर इन पे बन गई। कितनी बड़ी आबादी, 1890 में इन शतुरमुर्गों की आबादी थी 40,000, 1930 तक आते आते इनकी आबादी हो गई कितनी, 4 लाख। ठीक है, अब 1929 पे आते हैं, फिर मैं बताऊंगा उन्होंने क्या किया। 1929 में हुआ ग्रेट डिप्रेशन, मार्केट डूब गई, किसानों की हालत खराब हो गई, बेच नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट एकदम खलास हो चुका है, और 1922 में कहा गया कि कोई इन शतुरमुर्गों को मारेगा नहीं, प्रोटेक्ट करना है इनको। मगर फिर 1930 आते आते सरकार ने लिटरली एक कागज पे लिख के भेजा कि ये बे इंतहा बदतमीज किस्म की चिड़िया है, ये प्रोटेक्ट करने वाली चीज नहीं है। अब आपने देखा है साइंस होते हैं कुछ जगहों पे चिड़ियाघरों में, और बहुत सारे जगहों पे साइंस बने होते हैं, वहां पे लिखा होता है कि इन चिड़िया को खिलाना नहीं चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि इनका माइग्रेशन डिस्टर्ब होता है। ये आपने बाहर देखा होगा, चिड़ियाघर नहीं सॉरी, बाहर देखा होगा कुछ जगहों पे जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रुक जाती है खाने के लिए, फिर उनका मन नहीं करता उड़ के जाने का जहां उन्हें जाना है। बस वही हुआ ऑस्ट्रेलिया में शतुरमुर्गों के साथ। इन्होंने देखा कि अभी तो बंजर जमीन थी इन शतुरमुर्गों ने, उस पर उगने लगा गेहूं, तो इनको तो पूरा का पूरा खेत देख के ऐसा लगा भाई ये तो भूफे है, ये तो हमारे लिए बना है। ऊपर से गिरने लगा पानी, बारिश वारिश होने लगी, बाढ़ का पानी अलग आ गया। अब शतुरमुर्गों के लिए ये तो डबल ट्रिपल फायदा, ये तो वाटर पार्क भी है और भूफे भी है। फिर ये शतुरमुर्ग दबे पैर नहीं, बाकायदा दौड़ के इन खेतों पर कब्जा करने पहुंच गए, और जाते ही दिल खोल के इन्होंने खाया, और दिल भी इनका इतना बड़ा कि कुछ नहीं छोड़ते थे। 20,000 एक साथ झुंड में दौड़ के आते और अलग अलग खेतों को पार्टी समझ के पूरा खा जाते, भाग भाग कर फेंस तोड़ रहे हैं, उनके चक्कर में रैबिट्स अंदर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फार्मर्स जो कि पहले वॉर में सर्व कर चुके थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनकी परेशानी सर के ऊपर जा रही थी, उन्होंने कहा करें तो क्या करें। ये लोग गए सरकार के पास, सरकार ने कहा बाउंटी सिस्टम शुरू करो भाई, सुपारी देता हूं मैं आपको। अब सुपारी लेके लोग गए कि गन चलाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, शतुरमुर्ग कहां भाग रहा है। इन्होंने अपनी राइफल से दह शॉट और दह गोलियां चलाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे शतुरमुर्ग इधर से उधर हुए और जुबान चढ़ा के वहां से चले गए। वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स परेशान हो गए, अब इनके पास गोली नहीं बची बेचारों के पास, ये तो मरी नहीं रहे, ये तो बहुत गिनती में, कहां से मारे इन्हें। बोले भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोल्जर्स जो थे हैरान थे कि हमने जर्मन्स को हरा दिया, इतने बड़े बड़ी जंग लड़ ली, ये शतुरमुर्ग नहीं मर रहे। ये गए फेडरल गवर्नमेंट के पास, उन्होंने बोला सर जॉर्ज पियर्स उस टाइम पे थे, उनसे बोला मालिक मदद चाहिए, ये शतुरमुर्गों ने हमारी जिंदगी में धनिया बो दिया है, हम बहुत परेशान हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमें मशीन गन दे दो मालिक, मशीन गन दे दो हमें। तो सर जॉर्ज जो थे उन्होंने कहा ठीक है, ये वेटरन्स भी हैं, प्रैक्टिस भी हो

जाएगी इनकी, क्या पता आगे फ्यूचर में काम आ जाए। उन्होंने सैंक्शन कर दिया, बोले ये लो मशीन गन्स और गोलियां। ठीक है, निकल गए ये लोग। अब सब के सब दबे पैर पहुंचे कि जैसे ही शतुरमुर्ग आएंगे हम इन पर कर देंगे हमला। और ये लोग वेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, कोई नहीं आया। जब इनकी आंख लग गई तो एकदम से बहुत सारे शतुरमुर्ग एक झुंड में भागते हुए इनकी तरफ आए। अब इन्होंने क्या किया, जब गोलियां चलानी शुरू करी दर दर दर दर दर दर दर दर दर, तो सारे के सारे शतुरमुर्ग इधर से उधर भागने लगे। निशाना किधर कहां पे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, कोई एक नहीं गिरा, कोई एक नहीं गिरा, सब अपने अपने रास्ते हो लिए और ये कुछ नहीं कर पाए विद मशीन गन। ऐसा लगा कि ये जो शतुरमुर्ग हैं इन्होंने अपनी जंग पहले से ही प्लान कर रखी थी, हजारों साल पहले इस बात के लिए ट्रेंड थे कि इंसान आएंगे गन ले आए कुछ ले आए हम इनसे निपट लेंगे। क्योंकि शतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं इन्होंने बड़े खतरनाक जानवरों के बीच रहकर जिंदगी गुजारी है तो उन्हें सारा एक्सपीरियंस एक किस्म का हो चुका था। अब आप सोचेंगे यार मशीन गन है यार, मजाक बात थोड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर का महीना था 1932 का, 10,000 गोलियां लेके गए थे लोग, 10,000 लेकर और पहुंचे। ये राउंड टू था इनका कि इस बार तो छड्डूंगा नहीं मैं। तो उन्होंने गन निकाली और शतुरमुर्ग का पूरा झुंड आया, 15,000-20,000 आते दिखे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गन चलानी शुरू करी और गन हो गई चोक, चली नहीं। शतुरमुर्ग जो थे जो पीछे से आ रहे थे उन्हें पता नहीं कहां से अल्लाह ताला ने बुद्धि दी है, उनके समझ में आ गया इनसे हो नहीं रहा। भाई लाते बजा के इनके गुद्दी पे पीछे पीठ पे ये शतुरमुर्ग वहां से चले गए। वेस्ट वेस्ट फिर से खेल गए। अब इसके बाद इन्होंने क्योंकि अब शर्म आ रही है क्या करें, बहुत ही शर्मनाक बात है। 2 नवंबर 1932 में सोल्जर्स फिर से तैयार होकर पहुंचे, इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, इस बार अपने ट्रक व्रक में बैठे हुए तैयार होकर पहुंचे मैदान की तरफ पहुंचे। इतने में हो गई बारिश, तेज बारिश। शतुरमुर्ग इन्हें दूर से देख रहे हैं, ये शतुरमुर्गों को देख रहे हैं, शतुरमुर्ग इन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं। अब बारिश में इन्होंने कहा अब तो हो नहीं पाएगा, ये वापस लौट गए। शतुरमुर्ग तीसरा राउंड भी जीत चुके हैं। इसके बाद सोल्जर्स ने कहा अब भी बहुत हो गया, क्योंकि अब पूरा पूरा शहर इनका मजाक उड़ा रहा है, क्या करें। शतुरमुर्गों के बारे में इन सोल्जर्स को एक चीज नहीं पता थी कि इनकी टांगों में जो जान है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये लोग जब भागने लगते हैं तो ये 50 किलोमीटर की स्पीड से भागते हैं और कोई डायरेक्शन नहीं है शतुरमुर्ग के भागने का, देयर इज नो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर भाग रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 40 सेकेंड में 3 फुटबॉल की फील्ड्स ये क्रॉस कर सकते हैं और इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर से थिक चमड़ी, तो रेंज में आ गए, गोली मारेंगे, मारते रहिए आप। कई राउंड राउंड सोल्जर्स मारते थे, कई राउंड्स, उनमें से कहीं जाके इक्का दुक्का कोई मरता था, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ऊपर से शतुरमुर्ग इनके आते देख के डेली समझ गए थे कि भाई ये डेली आते हैं और हमारा टाइम खराब करते हैं। तो एक तो इनकी हाइट लंबी, गर्दन ऊंची, तो ये लोग देख लेते थे दूर से। और उसके बाद स्ट्रेटेजी बना ली थी शतुरमुर्गों ने अलग अलग। अब झुंड में आना छोड़ चुके थे और ये कंफ्यूजन थी पूरी गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट परेशान थी, ये शतुरमुर्गों को किसने सिखाई है गोरिल्ला टैक्टिक्स। होती ना गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है, कि आप टुकड़ों में आते हैं, एक साथ नहीं आ रहे, अलग अलग जगहों पर आ रहे। तो शतुरमुर्ग जो एक झुंड में 15,000 तक आ रहे थे, अब वो हजार इधर हजार उधर, हजार इस पेड़ की उस तरफ ऐसे आने लगे। सोल्जर्स परेशान कि इनको किसने बताया। बहरहाल उन्हें भी बटना पड़ा, तो सोल्जर्स बट गए, इधर जाओ तुम, उधर जाओ तुम, उधर जाओ। 50 कुल मिला के सोल्जर्स ने ये चौथे अटेम्प्ट में शतुरमुर्ग मारे, उसमें हजारों गोलियां लगाने के बाद, हजारों गोलियां लगाने के बाद एकदम तेज हो चुके थे शतुरमुर्ग। वो समझ चुके थे कि इंसान यहां पर आते हैं टाइम पास में, हम में से 50-100 मारते हैं, इंसान इनकी बस की है नहीं, और भी चले जाते हैं। एन एक किस्म का डर उनका खत्म हो चुका था। फिर 8 नवंबर वापस गए
और इस बार

20 मार के आए, बाकी सबके सब आराम से खेतों को खा पी के निकल गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे शतुरमुर्गों का कोई लीडर है और उनको वो सिखा रहा है कि कैसे क्या करना है। और सोल्जर्स, हालांकि इनकी जाने नहीं जा रही थी, मगर इनको जो लाते पड़ रही थी गोलियां ख़त्म होने के बाद रीलोड के टाइम पे, वो इतनी परफेक्ट टाइमिंग पे पड़ रही थी कि कुछ हद नहीं। इन्होंने एक प्लान बनाया कि अभी हम ऑन फुट नहीं जाएंगे, अभी हम ट्रक पे जाके इन पे गोलियां बरसाएंगे। अब एक तो हिलता डुलता ट्रक ना 1932 में समझ जाइए कैसा होगा, और ऊपर से इनको निशाना भी लगाना है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये ट्रक लेके एक शतुरमुर्ग के पीछे भागे, वो है ट्रक में फंस गया ये वाला शतुरमुर्ग, और बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा ये फंस गया। ट्रक जो था वो जाके पेड़ से टकरा गया इसके फंसने की वजह से, और जो फेंसेस लगाए थे उनको तोड़कर एंट्री दे दी शतुरमुर्गों ने रैबिट्स को, तो खरगोश भी आ गए। फन फैक्ट, बीच कहानी की आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में आज भी 1700 किलोमीटर का लंबा फेंस लगाया है ताकि खरगोश अंदर ना आ सके और बर्बादी ना करें। अब आप बोलेंगे वो तो बड़े क्यूट से होते हैं, वो क्या ही कर लेंगे। भाई साहब 1950 में इनकी वजह से एक बीमारी, एक वायरस देना पड़ा था रैबिट्स को, जिसे माइक्सोमा वायरस कहते हैं, जिसे माइक्सोमोटिस होता है। बेसिकली ये रैबिट्स को वायरस दिया गया था कि ये अपने आप ही मर जाएंगे, पर क्या हुआ, कुछ ही टाइम में इन खरगोशों ने एक वैक्सीन अपने आप ही तैयार कर ली, अपने आप इम्यूनिटी डेवलप कर ली, और फिर इनकी गिनती बढ़ती चली गई। बहरहाल अब राउंड 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2500 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 70 शतुरमुर्ग मारे गए, बाकी सब बच गए। अब जो आर्मी का हेड था वो बड़ा परेशान था, यार हम डेली आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, आर्टिलरी लेके आ रहे हैं, इतनी परमिशन लेके आ रहे हैं, गोलियां लेके आ रहे हैं, टाइम लेके आ रहे हैं, ये क्या जानवर है ये, और ऊपर से इनकी हर जगह थू। इन्होंने प्रेस में आके एक ऐसी बात करी जिसके बाद लोग इन पे हंसने लगे, बोले आप लोग जानते हैं इस जंग में हमारा एक भी सोल्जर नहीं मारा गया। लोगों ने बोला वाह वाह वाह वाह साहब बेहतरीन, एक शतुरमुर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए आप गए और आपका एक भी सोल्जर नहीं मारा गया, और आप अपने आप को बचाने के लिए मशीन गन भी ले गए थे, ये तो बहुत हैरानी वाली बात है, वाह वाह वाह वाह। तो इनके ऊपर प्रेशर जनरल पब्लिक का बहुत बन रहा था, सब इन पे हंस रहे थे। गवर्नमेंट ने फाइनली इन पे लगाया स्टॉप, बोले यार ज्यादा हो रहा है अभी। तब तक ये 1,00,000 के आसपास बुलेट्स अपने खर्च कर चुके थे, जिसमें सिर्फ 1,000 शतुरमुर्ग मार पाए थे। ऑपरेशन बेहद महंगा हो चुका था। पार्लियामेंट वाले जो ऑपोजिट पार्टी थे वो कह रहे थे भाई मेडल सोल्जर्स को नहीं मिलना चाहिए, मेडल तो शतुरमुर्गों को मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए। दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट। फिर आई तारीख 2 दिसंबर की, इस वक्त इतनी परेशानी थी कि वापस सुपारी वाला सिस्टम शुरू किया गया कि इस तरफ से आने वाले शतुरमुर्गों को मैं मारूंगा, इस तरफ से तुम्हें मारना है। कोशिश अभी भी जारी थी। 100 शतुरमुर्ग पर हफ्ते लेकिन इस बार मारे जा रहे थे। 1934 में ये थोड़ा सा और फर्क आया और लोग थोड़े शाणे हो गए, लेकिन शतुरमुर्ग जितने चालाक अभी भी नहीं हुए थे। 1943 में एक बेटर आइडिया आया इनको। किसान इतने परेशान हो चुके थे, और बाय द वे ये किसान सोल्जर्स थे, तो इन्होंने जाके गुहार लगाई, सर हम बहुत परेशान हैं, हम इनको गोली से नहीं मार पा रहे, आप हमें बम दे दो, हम इन्हें बम गिराएंगे। पार्लियामेंट ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। और 1950 में जब फिर से ये आवाज उठी तो सब के सब तंग आ चुके थे। इस बीच ये लोग काफी शतुरमुर्ग मार चुके थे, मगर सवाल ये उठता है कि जीता कौन। कुल मिला के 30,000 से ज्यादा शतुरमुर्ग मारे जा चुके थे, इंसान जीता या शतुरमुर्ग। और ये सवाल लिटरली अखबारों में छपा था, वोटिंग भी हुई इसकी और सबने वोट शतुरमुर्ग को दिए। 2020 में आते आते इस बात पे, क्योंकि ये बहुत मशहूर वॉर है द ग्रेट इमू वॉर, इस पे वीडियो गेम तक बनाए जा चुके हैं। आज की तारीख में इन शतुरमुर्गों को हाथ भी लगाना, मतलब इनका नुकसान करने के लिए हाथ लगाना इलीगल है, फायर करना तो बहुत दूर की बात है। कई सारे शतुरमुर्ग 1940 से लेकर 1950 के बीच में कई सारे फार्मर्स तक पहुंचे और उन्होंने हमले भी किए, मगर वो हमले बताए जाते हैं वो इसलिए किए क्योंकि उन्हें चरने नहीं दिया जा रहा था। किसी किसी फार्मर ने कोशिश करी कि हाथों से पकड़ ले उन्हें, तो उनको उसकी सजा भी मिली।

0: मुर जीते या इंसान जीते, क्योंकि ये जंग इतिहास की वो जंग है जो ऑस्ट्रेलिया ने कल्ले कल्ले लड़ी है, और उसका रिजल्ट वो खुद को बताने से कतराते हैं। नाउ अप टू यू, 666-22-107 ये नंबर। अब आप मुझे बता दीजिए आपका क्या कहना है, और आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं हूं दुहा वाला कबीर। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं पहले, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। तो मुर्गों ने पूरी जिंदगी में धनिया बो दिया है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ जब ये डायलॉग आपका मैं फेमस करूंगा, जिंदगी में धनिया बो दिया
0: जी भाई।
1: यार वो मुर्गे आप सही बात है भाई, इंसान बहुत अपने आप को अकलमंद मतलब समझता है, लेकिन कभी कभी इतना महंगा पड़ जाता है कि ऐसे जैसे आपकी कहानी में था कि भाई वाकई यार ये तो बड़ा मतलब अगर ये हकीकत पे मबनी होगा, ये हकीकत पे ही हकीकत वाली कहानी है
0: भाई। सर्च करो, जिनको लग रहा है ये हकीकत नहीं, जाके सर्च करो द ग्रेट इमू वॉर।
1: जी जी जी जी, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ यार, मशीन गन से लेके बंदूक और ये सब बम तक पहुँच गया ना पता यार इस तरीके से। वो लोग इतने सियाने थे कि आजकल के जो कौवे होते हैं ना, आज के चिड़ियों में कौवे बड़े सियाने होते हैं, उनके ऊपर अगर उंगली उठाओगे पट करके उड़ के चले जाते थे। हम लोग के गाँव में अभी भी है तो ये तो कौवों के भी आप निकले
0: तो वही तो।
1: हाँ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आपने आज सुनाया यार, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब कहानियों में। हाँ कुछ अलग अलग सुनते थे, लेकिन इस तरीके से कहानी कि वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सोल्जर, वहाँ की गवर्नमेंट सारे के सारे उसके पीछे लगे, लेकिन उनको बड़ा एक दहाई तक उनको मतलब उनका नहीं कुछ बिगाड़ पाए, और उन्होंने अपना मतलब एक स्ट्रेटेजी बना के रखा हुआ था कि ऐसे ऐसे ऐसे करके हमला।
0: भाई जलवे देख रहे हैं आप शतुरमुर्गों के, जलवे देख रहे हैं शतुरमुर्गों के भाई। मेरा उनको देखने का नजरिया बदल गया है, समझ रहे हैं आप, उनको देखने का पूरा नजरिया बदल गया है मेरा। क्या चीज है भाई।
1: हाँ यार ये तो बड़ी अजीबो गरीब मुझे लगा, कोई मतलब जल्दी दंग रह जाने वाला। आज आपने कहानी सुनाया कि यार वाकई बंदा इतना होशियार, ये मतलब जो एनिमल में ये होती है लोमड़ी होती है ये बड़ी चलाक होती है, और ये सब लेकिन शतुरमुर्ग के बारे में
0: हल्के में मत लेना, शतुरमुर्गों को बिल्कुल हल्के में मत लेना भाई आज के बाद से।
1: खाली नाम तो सुना था और मतलब ऐसे करके थोड़ा सा, लेकिन इतना हकीकत पे मबनी कहानी, इनकी पूरे एक एक कंट्री को इन्होंने हिला के रख दिया, ये तो बड़ा मतलब सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, और ये वाकई इसमें हकीकत भी है।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छे लगे मुझे अच्छा लगा बस। थैंक यू
1: ओके शुक्रिया भाई, ठीक है चलो और शुरू रखें। ओके सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। और उमर भाई लिखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, आई वाज जस्ट किडिंग, रियली एंजॉय योर शोज, हैव अ गुड डे। अरे मैंने वो उस बात पे बुरा नहीं माना था, मैं इमोजी लगाना भूल गया था। उमर भाई एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, टुडे स्टोरी प्लीज, ऑफकोर्स ऑफकोर्स सबको मिल जाएगी। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, फुल ट्रैफिक एट शमाल रोड विद लव, जिशान भाई ने मैसेज। जिशान भाई का बहुत सारा प्यार, जिशान भाई थैंक यू। एंड प्रिंस भाई ने मैसेज किया, भाई कहानी तो बहुत बढ़िया थी, बहुत मजा आया सुन के, जीता कोई भी एंटरटेनमेंट तो हमारा हो गया। मैं भाई शतुरमुर्गों की साइड हूँ, साफ सीधी बात। और एक फराज भाई ने मैसेज किया, एक मूवी आई थी माउस हंट, पूरी मूवी में लड़ने के बाद एंड में इंसान और माउस की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे दोस्ती नहीं हुई भाई यहाँ पे लोगों की फूक गई थी पूरी, क्रेन शतुरमुर्गों का क्या करूँ। और एक मैसेज और है आसिफ भाई, कहते हैं भाई मैं बताऊं कौन जीता भाई, एक तो उनकी गर्दन इतनी लंबी होती है, गलती से भी इंसान के सर पे मार दिया तो उसका वजूद ख़त्म, यही तो डर नहीं लगता तेरे को। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम वालेकुम
0: जी भाई,
2: और भाई क्या हाल है।
0: मैं तो बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है, आपका नाम
2: अंशु
0: जी भाई, बताए क्या क्या हो गया, जितनी आवाज़ दबी दबी सी क्यों हो रही, क्या हो गया।
2: मेरी आवाज स्लो है।
0: अच्छा आवाज स्लो है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आपकी बातों में दम होना चाहिए। तो कहानी सुनी आपने।
2: जी जी बिल्कुल।
0: क्या कहना है,
2: से जीते जानवर से हार गए।
0: क्या कहना
2: है, घमंड हो गया था ना,
0: घमंड हो गया था
2: घमंड हो गया था सोल्जरों को कि हम सबसे जीत गए।
0: हाँ
2: घमंड तोड़ दिया,
0: बताओ शतुरमुर्गों ने घमंड तोड़ दिया भाई,
2: इंसान से जीत गए और जानवरों से हार गए।
0: हाँ तो
2: ये कहावत कौन बनाया कि शुतुरमुर्ग खतरा देखते हैं तो गड्ढे में अपना सर छुपा लेते हैं?
0: नहीं, ये कहावत नहीं है भाई, कहावत नहीं है, ये है फैक्ट। पर वो तो जगह जगह का डिफरेंस है, समझ रहे हो आप। कई जगह के शुतुरमुर्ग थोड़े अलग होते हैं, जैसे अफ्रीका वाले अलग हैं और ऑस्ट्रेलिया

0: वाले अलग है, तो ये शतम लोगों के साथ सीन है भाई, पर ये थोड़े से वो वाले थे, जलवे वाले, इनका ऑरा था भाई, हाँ ऑरा था इनका भाई,
1: कमांडो टाइप,
0: हाँ ये कमांडो टाइप थे भाई,
1: पूरा स्ट्रेटजी गोरिल्ला वार सब कर दिए,
0: सब कर दिया भाई। मैं तो फैन हो गया भाई शतर मुर्गो का, मैं बता रहा हूँ, ये लोगों ने सर्च
1: तो कैसे हो गए, कैसे संरक्षण में आ गए, ये
0: नहीं हुआ क्या, 30,000 शतर मुर्गे लोग मार चुके थे 1943 तक, उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कहा नहीं यार गलत है ये, और पब्लिक भी खिलाफ हो रही थी कि ये क्या चल रहा है ये, और फिर ये लोग परेशान भी हो रहे थे, तो उन्होंने फेंसिंग थोड़ी ऊंची करी, खेतों को शिफ्ट किया, बहुत सारे जुगाड़बाजी करी भाई, और आज की तारीख में
1: इन पे हाथ उठा अभी भी जिंदा है, लाखों के करीब है अभी,
0: जानवर है भाई ऑफकोर्स, उनको तो
1: यहाँ तो मुर्गे ही जीत गए,
0: हाँ तो शतर मुर्गो ने जीत, बिल्कुल भाई, टेक्निकली कुछ नहीं
1: करना पड़ गया
0: उन्होंने अपना बूफे खा लिया भाई, उन्होंने अपना बूफे खा लिया प्रॉपर, पर
1: वही अपना शिफ्ट करना पड़ गया, जो अपना जगह शिफ्ट कर ले वो तो हार जाता है ना,
0: हाँ।
1: जो अपनी जगह पे डटा रहे वो जीत गया,
0: हाँ और क्या,
1: दीवार शतर मुर्गो जीत गए मेरे ख्याल से,
0: बिल्कुल वही जीते आपके भाई, एकदम सही ख्याल है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी मेरी जान, अगली कॉल की तरफ बढ़ता हूँ मैं, और आपको बहुत सारा प्यार भाई,
1: थैंक यू
0: मेरा भाई,
1: अल्लाह हाफिज
0: भाई, अल्लाह हाफिज। तो
1: जबरदस्त कहानी थी
0: आज, है क्या
1: जबरदस्त कहानी थी, हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा,
0: अच्छा थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच भाई,
1: थैंक यू,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद एक दो मैसेज हैं, ये मैसेज कर रहे हैं कि सरकार ने बांटना शुरू कर दिया, आज पूरे वर्ल्ड में हर जगह है ये भाई, वो तो अलग वाले हैं, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वेंसडे, और हमारे नावी भाई कह रहे हैं भाई ये क्या नो वंडर का नाम चतुर्मुर्ग है, नहीं शतुर्मुर्ग के शुतुरमुर्गों को मेरा सलाम दो, ये मुबारक भाई, क्या एक कॉल आ रही है, रुको भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर मेरे भाई,
0: हाँ जी भाई साहब क्या हाल है आपके,
2: अरे हमारे हाल तो बहुत ही चंगे हैं भाई
0: जी,
2: मगर आज तो मजे ही आ गए, इतना मजा तो कोई स्टोरी में नहीं आया,
0: तो शुतुरमुर्गों की साइड है या फिर मैं तो नहीं की साइड हूँ, क्योंकि भाई
2: अरे भाई हम तो सबके साइड हैं, वैसे तो फिलहाल शतुरमुर्गों का साइड लेना बनता भी है,
0: बनता भी है भाई, बिल्कुल बनता है, है ना,
2: वो उस जानवर के बारे में सुना है कभी आपने, क्या कहते हैं लेनिन वगैरह कुछ,
0: कौन से क्या नाम,
2: लेनिन,
0: हाँ हाँ
2: उन्होंने भी ऐसे आतंक मचाया,
0: हाँ पर ये ये वाले में क्या था ना, ये ऐसी अलग किस्म की मजबूरी थी, वो तो तबाही तो उस टाइम में रैबिट्स ने भी बहुत मचाई थी, खरगोश ने भी, ऑस्ट्रेलिया बेचारों की किस्मत ही ऐसी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब वहां पे रहने वालों को मेरा सलाम है भाई, मैं तो कभी ना जाऊं भाई, कुछ इलाके ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअली बड़े अजीब है, अजीब वो गरीब जानवर है वहां पे,
2: वहां तो कंगारू भी बॉक्सर होते हैं भाई,
0: हाँ वो देखे वो बॉक्सिंग वाले वीडियो बहुत देखे है भाई मैंने
2: मैंने भी बहुत देखे, अरे क्या बढ़िया डरते हैं,
0: हाँ नहीं पर
2: माइक टायसन ने ट्रेन किया हो
0: वो भाई, पूरे फुल ट्रेंड है वो, फुल ट्रेंड, तो क्या क्या करें फिर शतुरमुर्गों से,
2: तो समझ में आ गया है भाई,
0: हाँ।
2: इंसान से बढ़िया स्ट्रेटेजी जानवरों की है
0: ना, ये तो वो तो ये फैक्ट है भाई, जो टेरिटोरियल जानवर होते हैं उनके बारे में पढ़िए, मैं तो एनिमल प्लेनेट पे इनका वो करता था वॉइस ओवर भाई, मुझे याद है ये जो टेरिटोरियल जानवर होते हैं ना, इनसे आप पंगा नहीं कर सकते भाई, इनसे कोई मेल नहीं है इंसान का, अलग स्ट्रेटेजी होती है इनकी, सुभान अल्लाह, तो ये फैक्ट है भाई,
2: भाई सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम जिससे डरते हैं ना ये जानवर, तो उसको खतरनाक समझने लगते हैं,
0: हाँ करेक्ट,
2: चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए,
0: फैक्ट,
2: देखने में आपको खतरनाक लगता है, आपने तो मार देना है,
0: बिल्कुल फैक्ट है भाई, ये तो एकदम क्लियर
2: का जुड़ा पता है ना,
0: हाँ हाँ
2: उसकी तरह का एक और जानवर होता है, कुछ कहते हैं उसको पता नहीं, वो खेतों में अक्सर दिखाई देता है, यहाँ भी कभी कभी नजर आ जाता है,
0: उसे पता नहीं क्या कहते हैं, अभी आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, मुझे याद तो आ रहा, कुछ तो कहते हैं उसको जो कन खजूर जैसा होता है वो ना, अरे यार
2: और वो बहुत ही बढ़िया जानवर है, और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली जानवर है, के सूखे पत्ते वगैरह ये सारी चीजें खाता है, उसको खाद बनाता है, बहुत सारे फायदे है,
0: अच्छा
2: पब्लिक भी करती है,
0: हाँ तो भाई वो तो पब्लिक तो भाई कॉकरोच से डरती है भाई ऐसी बात नहीं है,
2: कॉकरोच की तो तारीफ करनी चाहिए ना यार भाई,
0: हाँ हाँ
2: भाई हमसे नहीं डरती वो चीज कॉकरोच से डर जाती
0: बात तो सही है, मैं इसमें हाई फाइव देना चाहूंगा को प्रिंस भाई, और बस कुल मिलाकर वो कहानी अच्छी लगी ये मैटर करता है, थैंक यू सो मच भाई, क्या वो कहानी अच्छी लगी?
2: कहानी में सबसे अच्छी चीज तो वो थी जो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी बात चलाया था,
0: है ना,
2: लग रहा था कि कॉमिक स्टोरी सुन रहा हूँ और वो भी बड़े मजे ले लेकर।
0: थैंक यू।
2: अरे हाँ, इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा था और एक इंसान उस पर हंस रहा था।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, बहुत प्यार प्रिंस भाई। थैंक यू,
2: थैंक यू भाई,
0: टेक केयर भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये नावी भाई कह रहे हैं आज वॉइस ओवर राजा भाई, वो वॉइस ओवर वो बड़े अलग होते थे नावी भाई वाले, होते थे ना वो। अब मादा शेरनी गाना चलाने की तरफ बढ़ रही है, ये शेर अब पेड़ के पास ही शाम तक सो जाएगा, इसी तरह इनका जीवन इस जंगल में गुजरता है और अब जिंगल का वक्त।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, तो आज 8:03 हो चुके हैं, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे। एंड सबसे पहले तो एंट्री जरा मारी जाए, एक सेकंड ना, मेरा म्यूजिक किधर गया। हाँ जी, ये लो।

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
2: वेक अप और जी 8:04 हो गए मैं दोहा वाला कबीर फोन पे निशान भाई कह रहे हैं कि एक तो क्लियर कर दो इमू था या ऑस्ट्रिच था ऑस्ट्रिच नहीं था देखो मैंने क्या कहानी की ना स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि इमू थोड़ा समझाना मुश्किल है तो मैं यू समझ लीजिए ऑस्ट्रेलियन शतरमुर की बात कर रहा हूँ इस तरीके से मैंने ये भी बोला कि कहानी के पूरे टाइम में मैं इसे शतरमुर बोलूंगा क्योंकि आसान रहेगा समझ पाना बाकी जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा निशान भाई को बहुत सारा प्यार रजा भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई ग्रेट स्टोरी बट हनी वेजर भाई अलग ही है हनी क्या बट हनी वेजर अलग ही क्या लगे एक सेकेंड इनके बाद एक मैसेज और आया है स्टोरी शेयर करें प्लीज कर देंगे शेयर भाई तो बस मैंने मैसेज किया अमेजिंग स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और आज ऐसा लगा जैसे हमारे नाना नानी बच्चों को जानवरों की कहानी सुनाते हैं रेली इमू जीते जीते इस वॉर में और वो इमेजिन करने में मजा आ रहा था कि 15,000-20,000 इमू एक साथ वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच बहना बस मेरा काम हो गया और आसिफ भाई को कॉल करनी है आसिफ भाई मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ आप कॉल उठा लीजिए बस मैं एक वॉइस ओवर सॉरी एक दो मैसेज और पढ़ दूँ हाय ब्रो मेजर एक्सीडेंट एट सल्वर रोड 3 का टोटल क्रैश अल्लाह माफिज ना मेरे भाई और 4 कार इन्फ्लिक्टेड ओके प्लीज यूज ऑल्टरनेट रोड और सलवा सर्विस रोड ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोहम्मद अराफतुल इस्लाम भाई ने बताया थैंक यू सो मच भाई ये मैसेज करने के लिए एक मैसेज है फरद भाई का आज की स्टोरी कबीर भाई इन्फॉर्मेटिव थी और आज की स्टोरी तो मज़ा ही आ गया शतरमुर्ग कितना सता सकता है इसमें तो शतरमुर्ग ने शातिर है मुर्ग होना चाहिए था यूसुफ भाई कहते हैं आज की स्टोरी बहुत ही लगती फनी इन रियलिटी से भी करीब इतना डेंजर होते हैं और इनको इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई फौज लगा दी मेरे हिसाब से तो हाँ इमो ही जीते बहरहाल गुड स्टोरी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया और एक और मैसेज है एक ये क्या लिखा है इन्होंने भाई मज़ा ही आ गया और साथी भाई कह रहे हैं सोल्जर्स को पक्का पैरों पे गोली मारने का हुक्म दिया गया होगा इसलिए लाखों की बुलेट्स बेकार हो गई हो सकता है साथी भाई ये डिटेल में मिला नहीं लेकिन आप मेरे हिसाब से सही बोल रहे हैं सलीम साहब कहते हैं शतरमुर्ग वेरी स्ट्रांग फैमिली एक्सीलेंट फाइटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन आर्मी वाह एक मूवी आई थी ये तो बता दिए भाई तो पढ़ चुके थे जुल्कानिन साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई थैंक यू सो मच और एक दो मैसेज मुझसे मिस ना हो जाए आरिफ भाई ने क्या मैसेज किया भाई दो पेंडिंग स्टोरी हो गई कैसे पेंडिंग स्टोरी हो गई भाई आपको मैंने भेजा नहीं था क्या नहीं नहीं एक ही पेंडिंग हुई ना फयाज भाई कह रहे हैं आप शतरमुर्ग पे का टेस्ट पता है भाई बिल्कुल पता है एक मैसेज है हनी वेडगर वॉच ऑन यूट्यूब अच्छा मैंने देखा नहीं भाई मैंने उसकी कमेंट्री देखी नहीं बट देख लूँगा मैं एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई ग्रेट से अलग ही है ऑफकोर्स और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कैसे हैं मैं बढ़िया भाई एकदम शानदार तो मैं थोड़ी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के सालों साल काम कर रहा था मैंने थोड़ा बहुत काम किया भाई और मुझे बहुत मज़ा आया उतने में ही बाकी एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई कल भी नहीं भेजा मैं आरिफ भाई आपको बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं मिल पा रही है उसकी वजह जानेंगे आप इट्स अ वेरी फनी थिंग टू टेल यू बट लेट मी टेल यू उसकी वजह है कि आप उस जगह पे नहीं आए जहाँ पे कहानियाँ मिल रही हैं पब्लिक को और एक भाई कॉल कर रहे हैं उससे पहले मैं जरा इनको कॉल कर लूँ आसिफ भाई को बहुत देर से पेंडिंग है मामला आसिफ भाई कॉल डालो भाई कॉल डालो अस्सलाम वालेकुम
3: भाई वालेकुम अस्सलाम
2: क्या हाल है भाई के
3: भाई जबरदस्त जिंदाबाद
2: क्या कहना है भाई क्या कहेंगे आसिफ भाई
3: नहीं नहीं मतलब आज की स्टोरी जो थी तुम इतना पहले बोले कि आज गेस्ट करो मैं तो बोला लगता भाई आज कुछ लगता है नया लेके आएंगे
2: हाँ।
3: बाकी थी भाई नहीं थी भाई कुछ तो थी इसके अंदर कहानी में बात तो थी भाई शतरमुर्ग की तो जय जय काल
2: वही जीते भाई मैं तो नहीं साइड था
3: भाई मैं तो बोलता अरे भाई सोचो ना भाई पौधे पत्तियां खाने वाले जानवर ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ गया
2: हाँ तो वही ना तो भाई इसीलिए
3: भाई जो की रफ्तार बाकी इतनी तेज की होती भाई
2: भाई जरा देखो वीडियो जाके पता लग जाएगा रफ्तार कितनी तेज की होती
3: है सच्ची में मैंने इसकी एक मतलब ऐसा मूवी में देखा था भाई कोई रॉक मालूम है हीरो वो किसमें देखा था भाई मैंने
2: किसमें क्या
3: रफ्तार एक मूवी आई थी इसकी कोई क्या नाम है वो मूवी का यार वो जंगल का ऐसा कुछ है
2: अच्छा मूवी अच्छा नहीं
3: वो मूवी में देखा था मैंने इसका
2: बहुत तेज भागते भाई बहुत तेज भागते बहुत ही ज्यादा तेज
3: 70 किलोमीटर घंटे
2: 50-70 भाई डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने तेज है तो उनका ये रहता है भाई
3: कुछ भी बोलो भाई कसम से स्टोरी बहुत जबरदस्त
2: थैंक यू मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया
3: और भाई क्या हाल चाल
2: बढ़िया भाई एकदम टनाटन शानदार
3: भाई ठीक है भाई, अपने भी ऑनलाइन है, देखते हैं और क्या है भाई।
2: डन डन है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार भाई।
3: ओके भाई शुक्रिया,
2: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक वैसे है जुमांजी, वेलकम टू जंगल। हाँ अच्छा, जुमांजी में ही देखा होगा इन्होंने, जुमांजी में ही इन्होंने देखा होगा, बात तो सही कह रहे हैं आप। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई। मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ आपको, मैं पहले एक गाना चलाता हूँ, उसके बाद ज़रा सेटलमेंट कर लेते हैं, और उसी स्टाइल में जैसे वो क्या कहते हैं वो चलता है ना, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बेहद ही दुर्लभ प्राणी को, जिसे आमतौर पर आलसी इंसान कहा जाता है, पिछले 3 घंटों से ये प्राणी एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। इसका मुख्य काम है फोन स्क्रॉल करना, बीच बीच में फ्रिज खोलना। ध्यान से देखिए, अब ये गाने भी सुनेगा, सुनेगा ना। चला देता हूँ 666-22-107 इज द नंबर। 8:10 by the clock. हाँ जी, सचिन जगर के संगीत पे। अब ये प्राणी वॉल्यूम बढ़ा के गाने भी सुनेगा।

सबसे पहले तो भाई न्यूज पढ़ेंगे. एक भाई हमारे वो कह रहे हैं जिस स्टाइल में आपने ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बोला वैसे ही पूरा एक घंटे का शो कर दो एक बारी. भाई जरूर रोजी रोटी के लिए मुझे पता है लोग ये भी करा ही लेंगे. डर है मुझे इसी बात का.

0: Wake up.
1: एक भाई मुझे लगातार WhatsApp पे कॉल कर रहे हैं, मैं उनको सच्चाई से मिलवाना चाहता हूँ। इधर आइए, सच्चाई से मिलिए। सच्चाई ये कि WhatsApp पे कॉल नहीं उठा सकता ना भाई मैं। ये जो नंबर है ना कॉलिंग का, इस पे कॉल करनी है आपको। 4434377 4434377। और आसान कर देता हूँ, सरवर भाई के स्टाइल में बोल देता हूँ मैं, 4434377। और कोई तरीका नहीं जानता भाई बताने के लिए, ये कॉलिंग का नंबर। ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। इन्होंने बोला कि क्या बोला आसिफ भाई ने, आसिफ भाई कह रहे हैं कि अभी भी घर पे हूँ, मुझे कबीर पगलू कहते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आपकी मेहरबानी। मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे ही बता देना कि उठा लो कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
1: क्या आप ही थे जो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे?
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम व्हाट्सएप वाले जब आदमी नहीं है।
1: अरे व्हाट्सएप वाले, कोई बुरी बात थोड़ी भाई हो सकती
2: है, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं, लेकिन कॉलिंग करके, कॉलिंग लेकर, आई एम व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं करता।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, बताइए भाई आपका नाम।
2: जी जी, मेरा नाम उसामा है।
1: जी उसामा भाई, कहिए क्या कहना चाह रहे
2: हैं। बस वही कहना चाहते कि शुतुरमुर्ग की स्टोरी को एक घंटा ने, मेरे हिसाब से तो दो घंटे कर दो।
1: सब के सब जाग चुके हैं।
2: वाकई में मैं जिस रोड पे हूँ, मैं जिस रोड पे हूँ, मैं बड़े गौर से सुन रहा था यहाँ पर क्योंकि मेरा काफी लंबा ड्राइव है। अच्छा। काफी लंबा ड्राइव है, तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था।
1: हाँ, तो कैसे लगी आपको कहानी?
2: मजा आया। बहुत अच्छी लगी स्टोरी, तो मजा। पर ना वो स्टोरी ना ऐसा लगा कि आधी अधूरी, तो मैंने सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, उसके ऊपर सर्च करूंगा, उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, जरूर करूंगा।
1: करो करो, वो कहानी है इतनी सी भाई, उसके ऊपर मैं और कुछ नहीं बोल सकता, वो इतनी ही कहानी है।
2: इंटरेस्ट नहीं, कभी आपने आपका, मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ कि मैं आपका जो बताने का जो तरीका था माशाल्लाह इतना अच्छा था कि अब वो इंटरेस्ट जाग गया मेरे इसमें अंदर।
1: अच्छी बात है,
2: बस नहीं आप तो मुझे उसके बारे में पूरा रिसर्च करना ही पड़ेगी वहाँ।
1: बहुत अच्छी बात है भाई, यही मैं चाहता हूँ भाई, यही मैं चाहता हूँ, खुद पढ़ेंगे खुद हैरान होंगे। अच्छी बात है भाई। और साहब भाई कहाँ, कौन से रोड पर हैं आप, कौन सा रोड है जिसपे आप इतना इतनी देर?
2: फिलहाल तो मैं दुकान से उम्बाब की तरफ जा रहा हूँ।
1: अरे भाई साहब, ये डेली का रूटीन है, आज कुछ खास है?
2: नहीं, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ तो मुझे कभी कभी आना पड़ता है यहाँ।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है उसमें भाई, पॉइंट टू भी ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप जरूर मुझे कल बताइएगा जब आप पढ़ लेंगे इसके बारे में।
2: और भी कल जरा इससे अच्छी एक स्टोरी लेके आना, ताकि कल का भी टाइप, आज रात का तो बंदोबस्त हो गया, कल का भी बंदोबस्त।
1: डन भाई, एक नंबर भाई, डन भाई, खबरों की तरफ बढ़ जाता हूँ। सबसे पहली खबर जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से आ रही है, और ये कतर की बहुत ही मेजर खबर है। सो बेसिकली फूड सिक्योरिटी को लेकर मैंने कल भी एक खबर दी थी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश जारी है, और अभी भी एक स्मार्ट एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी सच एज कंट्रोल एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस, अगर आपने नहीं देखा, कभी मौका लगे ना कतर में ग्रीन हाउसेज देखने का तो जाके देखेगा। मेरी खुशनसीबी थी, मुझे एक बार मौका मिला था, और भाई जो वहाँ पे काम होता है, आपको लगेगा कि आप लिटरली कम से कम नहीं तो 1000-1500 साल आगे चल रहे हैं, 150 साल कह रहा हूँ, 1000 साल आगे चल रहे हैं। वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, एंड वेरी क्लीन एंड अमेजिंगली डन, एक एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, ऑटोमेटेड इरीगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना इस्तेमाल है इस एग्रीकल्चर में कतर आने वाले फ्यूचर में करने वाला है, और जिसमें जो लिमिटेड लैंड है उसमें किस तरीके से कम पानी, कम एनर्जी, कम फर्टिलाइजर और कम पेस्टिसाइड्स यूज कर कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इस बारे में बातचीत चल रही है। सो इंशाल्लाह वी विल कम टू सी बाय 2030 इंशाल्लाह। इसके अलावा कतर म्यूजियम की तरफ से खबर है, तो कतर म्यूजियम ने अनाउंस किया है कि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन ज्वेलरी एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन होगी 27 अक्टूबर से और चलेगी 26 दिसंबर तक। तो एक दो में, दो महीना हो गया, दो महीना, 27 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक। एंड दिस इज होस्टेड बाय M7, कतर का जो हब है फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन फैशन एंड डिजाइन। और ये एग्जीबिशन है, ये शोकेस करने वाली है बेसिकली ज्वेलरी, जो नाम में ही है उसे पता लग गया होगा, जो कलेक्शन है उसमें वो लोग भी हैं जो इसको यहीं से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी इस एग्जीबिशन के थ्रू। 500 पीसेज ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स, उसमें ऑर्नामेंट्स हैं, आर्टवर्क्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, और अलग अलग कल्चर की ज्वेलरी है, ज्योग्राफिकल रीजन्स की, और हिस्टोरिकली जो बहुत फेमस है वो सब कुछ इसमें शोकेस की जाएगी। इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी की खबर है, कतर यूनिवर्सिटी, ये म्यूजिक रोक के बताने वाली बात है, दे हैव वन द फर्स्ट प्लेस इन 2026 डिजिटल ट्विन कॉन्टेस्ट. इसे ऑर्गेनाइज किया था बाय वर्किंग ग्रुप 5.1 ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी IFIP. ये हुआ था जी इटली में, और यूनिवर्सिटी ने अचीव किए अकम्पलिशमेंट अपने एक प्रोजेक्ट के थ्रू. ये रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका टाइटल था डिजिटल ट्विन ड्रिवन इवेंट. और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ इसके बाद फिर सबको धराशाही कर दिया और कतर यूनिवर्सिटी ने अपना नाम रोशन किया और कतर का भी. सो मूविंग ऑन, एक मैसेज है कबीर भाई, एक टेक्निकल फीडबैक है. अच्छा, आपकी आवाज़ वैसे ही भारी है, जब कार में चलती है तो काफ़ी बेस हैवी होता है. इफ़ यू कैन इंक्रीज मिड्स एंड ट्रेबल लेवल इट कैन इन्हांस. भाई देखो क्या है कि इस सिस्टम में इन्हांस हर आरजे के हिसाब से भी करना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल काम होता है. आप समझ रहे हैं, आपकी बात मैं समझ गया और बहुत ही अच्छा फीडबैक है आपका, और इनफैक्ट आप तारीफ भी करें साथ भाई. बट द प्रॉब्लम इज कि हर बैक टू बैक आरजेस आते हैं ना, तो अब हर किसी के लिए वो बार बार बार बार चेंज करना इज नॉट फीजिबल. दैट इज द ओनली थिंग. पर थैंक यू सो मच, ये काफ़ी टेक्निकल बात जो आपने कही है अच्छी कही है. इरफान भाई कह रहे हैं कि गर्मी कब ख़त्म होगी, तो इसी बात में मौसम की कब अपडेट भी दे देता हूँ मैं. देखो मौसम का हाल ऐसा है इरफान भाई, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, अभी तो ख़राब ही रहेगा. मैं क्यों बोलूँ झूठ आपसे, सनी वेदर है पूरे दिन और टेम्परेचर आज ज़्यादा ही लगने वाला है. फिलहाल 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और ये आपको पूरा 40, पूरा का पूरा 40 फील होने वाला है. तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, मुबारक हो. आज गर्मी आज नहीं, इनफैक्ट पूरे हफ्ते ऐसा ही हाल है. और जो टेम्परेचर डिप होता हुआ नज़र भी आ रहा है वो अगले हफ्ते के फ्राइडे से. सो कांट रियली हेल्प इट माई फ्रेंड. यही तो मैं गाना चला देता हूँ शुभ की आवाज़ भाई. Hey, let's go. 821 checks. हाँ जी, बेस गिरने वाला अभी. 3, 2, 1.

0: Wake up. Ey, Doha wala mein kabir.
1: Yehi kahunga subah subah.
0: Wake up.
2: यार कमाल भाई, आप जो ये टॉपिक छेड़ के गए ना, वो ठीक है, कह रहे मेरे से बड़ा कर दो बिल्ली का भाई। एक मैसेज आया और ये मैसेज क्या है भाई, पेट तो क्या कह रहे हैं, बिल्ली के जैसी दिखती है, कौन बिल्ली जैसी थी, क्या कौन क्या क्या की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या बात हुई अभी। और सलामत रहे शहजाद मलिक साहब का मैसेज। ओके मैं बताता हूँ कौन कौन से दिन हैं जो इंटरनेशनली मार्क किए थे। आज है इंटरनेशनल सुडोकू डे। मैंने इससे पहले मतलब ये समझ लीजिए कुछ टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि इसको खेलते कैसे हैं, बट देन एक मैंने वीडियो देखा और मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी सुडोकू वाली, तब मैं समझा इस गेम को। भाई बहुत बढ़िया गेम है ये, अगर आपको अपने मगज़ की कसरत करानी है ना, इससे बढ़िया गेम नहीं है, बहुत बढ़िया है सुडोकू, मैं इसके बिल्कुल साथ में हूँ। इसके अलावा आज है केयर बेयर शेयर योर किड। सही पढ़ो मैं, केयर बेयर शेयर योर किड, जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बताऊंगा कैसे आपको ये बताइए, पर ठीक है। इसके अलावा आज है वंडरफुल वेडोज डे। ये बेसिकली दिन जो है इसलिए मनाया जाता है, जो लोग थोड़े से वियर्ड पर्सनालिटी वाले हैं उनके अंदर जो स्पार्क है, जो पूरी महफिल में एक अलग रंग ले आता है, जब या कोई वियर्ड म्यूजिक सुनता है, जिन्होंने बहुत सारे वियर्ड मूवीज देखी है, ये उन सब के लिए है दिन भाई। सो इफ यू हैव अ वियर्ड पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया भाई, यह आपके लिए दिन है, मैं भी आपके साथ हूँ इसमें, ठीक है। इसके अलावा आज है नो योर नंबर्स वीक, ये इंपॉर्टेंट है। आज ही सुबह मैं घर पे इस बारे में बात कर रहा था, नो योर नंबर्स वीक, आपको पता होना चाहिए आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या हाइट है, क्या वजन जा रहा है, जो बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं ना, BMS रिपोर्ट इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, मैं ये था ना, मैं ऐसे वर्ड बोल नहीं पाता हूँ, मैं छोड़ो आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो वाली रिपोर्ट। तो वो आज नहीं तो कल आपने फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, साल में एक मरतबा बहुत ज़रूरी है। लोग इसलिए नहीं कराते, पता नहीं कुछ अलग निकल आया तो, ये भी एक परेशानी है। एक भाई कह रहे हैं कबीर भाई स्टोरी भेज दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी आपको कैसे मिलेगी। या इन सब अजीब डेज का फ़ायदा क्या है, वही मैं भी नहीं समझा भाई, मैं डेली इसलिए चेक करता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये क्यों डिसाइड किए जा रहे हैं। आपको पता है एक दिन है आर यू ओके डे, ये कल है। कौन डिसाइड कर रहा था कि आर यू ओके डे, कि आप ठीक हैं, इस बात का भी एक दिन है। अब आप सोचिए, एक मैसेज है भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, लोग गल्फ कंट्री में आते हैं, यहाँ के कल्चर को देखकर लोग परेशान क्यों जाते हैं, जैसे कि भाई कमाल भाई देखकर। हाँ तो भाई ऐसा है, बहुत फ़र्क आ जाता है ना, कल्चरल शॉक से कम थोड़ी है, क्या समझ रहे हैं आप आसिफ भाई, ये तो गाना हो गया 833, मजाक है कोई 834। आज तक दिव्य कुमार

0: 18,000 18,000 की आ रही है, बात तो सही है भाई, बात तो सही कही आपने एकदम। अच्छा मैं क्या कहना था भूल गया मैं, हाँ मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला था क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कल कि भाई ऐसी मूवी बताओ कि दिमाग को समझ में ना आए, अच्छा भी लगे, मतलब इसके आसपास कुछ बोल रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ एक अलग चीज देखने की अगर आपको आदत डालनी है ना, कुछ लोग क्या होते हैं जो एनीमे देखते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, एनीमे भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारी कमाल की स्टोरीज एनीमे सीरीज अगर आपने देखी हैं कभी या देखने का शौक रखते हैं तो आपको पता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम कार्टून्स, कार्टून्स आर डिफरेंट, एनीमे सीरीज आर वेरी डिफरेंट। और बीच का जो एक जॉनरा है जो कुछ दिनों पहले क्रिएट हुआ है, दिनों मैंने नहीं कहूँगा सालों पहले, उसमें एक सीरीज है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है एंड मैंने बीच में उसे छोड़ दिया था, मैं अभी वापस उसे देखना शुरू करूंगा। उसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स, ये आपको उस पर मिलेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर है, बहुत कमाल का और बिजार किस्म की सीरीज है ये। इसमें क्या है, कुछ ऐसी इसमें आपको नजर आएंगी एपिसोड्स हैं इसमें जिसमें आवाज़ नहीं है, मतलब बिना डायलॉग्स के मोशंस ही मोशंस है लगातार, पर इतनी कमाल की चीज़ है ना, अगर आपने अभी तक लव डेथ एंड रोबोट्स नहीं देखा है तो अब देखिएगा। एंड मुझे ये जो मूवी भेजी, मैंने वाइवेरियम देखी है भाई, कमाल भाई ने वाइवेरियम भेजी है, वाइवेरियम हर किसी के पास का नहीं है भाई सहना मैं बताऊं, वाइवेरियम मैंने बहुत पहले लोगों को बोली हुई थी कि वाइवेरियम देखिए, वाइवेरियम में एक ऐसी मूवी, दो कपल जाते हैं एक जगह पे घर लेने के लिए, उन्हें टाउनशिप दिखाई जाती है और टाउनशिप के अंदर वो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, तो मूवी एक पूरा का पूरा मेटाफर है। तो वाइवेरियम उनमें से एक है, लेकिन लव डेथ एंड रोबोट्स अगर आपने नहीं देखी है आप देखिएगा, ये कार्टून्स और एनिमे के बीच का कुछ मसला है, बट आई प्रॉमिस यू अगर आपने देखना शुरू किया तो आपको पसंद आएगी। अलग अलग टॉपिक्स हैं, कुछ थोड़े से भारी हो सकते हैं पर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी लग सकती है, चांसेस हैं। एक मैसेज सलूट है उस बंदे के लिए जिसने कहा कि गल्फ में आके शौक क्यों हो जाते हैं, अजीब सोच है उनकी, आज का वेट डे उनके नाम डेडिकेटेड है ये वाली बात है, आज उनके लिए गाना चला दो थैंक यू भाई। अच्छा इनके बाद एक मैसेज है खादर अब्दुल हादी भाई का, कबीर भाई कमाल भाई वाकई कमाल कर दिया, मेरे रूम में बिल्ली की रूम, भाई मैंने अभी बिल्ली का रूम देखा, मुझे कमाल भाई ने भेजा और मैं शौक इतना हो चुका हूँ कि अब उससे ज़्यादा लिमिट नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। खैर कबीर भाई डिडंट लिसन टू द स्टोरी बिकॉज आई वुड नो प्रॉब्लम, यू विल गेट इट इवेंचुअली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लव डेथ एंड रोबोट से भाई के ने लिख के दे देना, मैं लिख के दे दूँगा। उसके बाद वाइवेरियम जैसे भाई ने कहा, तीसरी एक मूवी है पहले रिलीज हुई थी, आई डोंट नो 90s के एंड में आई थी 2000 में आई थी, मूवी का नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आपने नहीं देखी है बटरफ्लाई इफेक्ट, नाम बहुत सुना होगा आपने पर शायद देखी नहीं होगी, दूसरी वाली मत देखना क्योंकि दो हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट एक बाद में बनी है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट पहले बनी है, तो पहले वाली पहले देखना, बाद वाली नहीं, साफ सीधी बात। एंड क्या फोर्थ थी, पंचायत, पंचायत में क्या कन्फ्यूजन है। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे कॉल करना प्लीज़ भाई, आज 213 कैसी है, एक सेकंड मैं पहले तो आपको कॉल कर लूँ, मैं उसके बाद आपसे इसी बारे में बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं गलत तो नहीं मिला रहा हूँ, हाँ ठीक है नंबर उसे मिला है, आसिफ भाई को कॉल लगा दी गई है, आसिफ भाई डेली में हमारे क्लाइमेक्स के कॉलर बन चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी भाई अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ
1: जी
0: भाई क्या हाल है, पार्टी
1: बढ़िया भाई, एक नंबर,
0: क्या
1: हाल चाल भाई, क्या हुआ, दोबारा कॉल लग गया क्या गलती से भाई?
0: नहीं भाई गलती से कहाँ लिया भाई, आपने बोला मैंने लगाया ना भाई।
1: अरे वो मैं भाई उसको दोस्त को बोला था भाई कॉल करने के लिए, मैं लगा तो दिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा कॉल लगाने के लिए, मैं बोलना चाहता हूँ भाई पब्लिक इतनी इफेंट क्यों रहती है भाई, ये पब्लिक कल्चर देख के इतना।
0: अरे भाई हो जाती है भाई, ठीक है।
1: नहीं भाई सोचो ना भाई, लोग के पास अल्लाह का दिया हुआ इतना सब कुछ है, लोग कुछ भी खरीद सकते हैं भाई, कुछ भी,
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
1: हम जैसे लोग को भाई पैसा देके बुला सकते हैं इधर।

0: तो इतना सोचने की बात क्या है भाई लोगों के ऊपर।
1: हालांकि
0: अभी देखो,
1: हाँ
0: अभी जैसे देखो भाई, यहाँ के जो लोग होते हैं, हाँ, 50-50, 40-40 हजार रुपया कतरी रियाल देकर एक किसी को उठा के अपने घर में लेके आते, काम करवाते, फिर महीना महीना उसको पैसा भी देते,
1: हाँ,
0: ले भाई तेरा सैलरी पकड़।
1: हाँ,
0: तो वो लोग के शौक तो भाई अलग लेवल के शौक है ना भाई, सोचो ना।
1: तो आपको
0: तो शौक दे,
1: इसका सेंस क्या, मतलब क्या अंत क्या है इस बात का, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
0: अंत ये है कि भाई मतलब ये लोग को, ये लोग का कल्चर देख के ना अपने को शौक होना ही नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अपने को ये चीज मालूम है कि इन लोग के पास सब कुछ है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं लोग भाई।
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, मान लिया। भाई कहाँ जा रहे हैं आज इतना गुस्से में, कहाँ जा रहे हैं आज
0: भाई? मैं कबीर पगलू मालूम नहीं भाई, कबीर पगलू बोलते क्या बोलते किसको भाई। मैं रूम पे बैठा हूँ 3 घंटे से, ये सोचा हूँ कब खत्म होएगा कबीर भाई का शो, यार कब जाऊंगा मैं कुछ काम करने के लिए।
1: नहीं भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए आज भाई, हमेशा की तरह।
0: झगड़ा हो गया भाई तुम्हारी चक्कर में, भाई झगड़ा हो गया तुम्हारी चक्कर में, सही बता रहा हूँ भाई।
1: अरे मैंने क्या किया भाई?
0: अरे भाई सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैं भाई लिसनर लोग को बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे से 3 बार झगड़ा कर चुकी है भाई। बोलती तुम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्यों? अरे मैं बोला किससे बात कर, बोल तुम किससे बात कर रहे? अरे मैं बोला भाई मैं कबीर भाई से बात कर रहा हूँ, सलाम दुआ कर रहा हूँ भाई। वो बोलते कौन है वो कबीर, रोज सुबह सुबह तुम उसके चक्कर में मेरे से बात नहीं करते। अरे मैं बोला भाई तू भी आ जा कतर में, तू भी उसकी पगलू बन जाएगी। वो खुद तो है डेंजर, दूसरों को भी डेंजर में लाके डाल देता है वो।
1: नहीं नहीं भाई, बच करो भाई, भाई ऐसा नहीं भाई, ये वाली लड़ाई मत करो। मैं मतलब परेशान किस बात से हूँ? जो माँ बाप हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो माँ बाप बन चुके हैं, वो अपने बच्चों को डराते हैं, अंकल अंकल कबीर अंकल आ जाएंगे। अरे कबीर अंकल क्या कर लेंगे भाई, और आप भी वही काम कर रहे हैं।
0: जोक जापार अलग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत से लोग हैं जो मतलब कभी भाई का शो सुनने के लिए ही FM ऑन करते होंगे, बाकी तो मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई अलग लेवल का बंदा है भाई।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत प्यार आसिफ भाई को, भाई आसिफ भाई मना लो भाई, और आपके लिए दुआ।
0: अरे भाई मतलब वैसा झगड़ा नहीं मिला भाई, मतलब वैसा झगड़ा
1: उस लेवल का नहीं है, फिर ठीक है।
0: उस लेवल का होएगा तो भाई मैं चले जाऊंगा टिकट कर कुरा के।
1: अच्छा अच्छा, वो फिर ठीक है, फिर ठीक है आसिफ भाई, ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज भाई, ख्याल रखिए।
0: अल्लाह
1: हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। और मैं उम्मीद करता हूँ आसिफ भाई मना ले। और मैसेज किया एक भाई ने, लिखते हैं वन ऑफ देम आई लिसन टू रेडियो ओनली फॉर मिस्टर के। अरे यार ये एक और नाम दे दिया उन्हें, बहुत सारे नाम हो चुके हैं अभी। मिस्टर के मुझे बहुत बुरे लगा, कोते ही फैंसी। मैं भाई इस पर टी शर्ट में छपा दूँ वैसे, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, 18,000 मुझे दे देते मैं पाकिस्तान जाकर शादी कर लेता। और एक मैसेज, अच्छा सीरीज़ क्या होती थी इसलिए मैंने पंचायत। तो भाई ऑब्वियसली बहुत आदिल भाई है, अलग लेवल की सीरीज है भाई। और कह रहे हैं आसिफ भाई से पूछो इस वक्त उनकी ग्रेविटी कहाँ गई। अरे जैस भाई आसिफ भाई अब गई ग्रेविटी है, निकल गई सारी ग्रेविटी, अब पता लग रहा होगा इन्हें आटे दाल का भाव भाई। ये मौका जब आता तो तभी पता लगता है। एनी वे 666-222-107 कहीं भी ट्रैफिक हो तो बताएगा। और इनफैक्ट वो जो ट्रैफिक अभी था शमाल रोड पे रयान अल रयान के एग्जिट के पास, वो अभी भी है कि नहीं डू लेट मी नो, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई दूसरी अपडेट आई नहीं है। सो वी वुड लव टू नो कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है। 666-222-107 और इस गाने के पार मुलाकात है। एक भाई ने बताया भाई 25 रियाल का खाना डिलीवर करने जा रहे हैं, 50 रियाल डिलीवरी चार्ज। अरे भाई

बाय द क्लॉक जी मैं हाजिर हो लिया और इसी के साथ मैंने वक्त भी देख लिया कि तो मैं एक मिनट थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ. सो आपसे ज़्यादा चाहूँगा, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आज वेंसडे हो चुका है. मेरे माइंड में ट्यूसडे चल रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ट्यूसडे के ही माइंड सेट से आया था. अब मैं ये समझा नहीं पाऊंगा कि डिफरेंस क्या है वेंसडे और ट्यूसडे के माइंड सेट में, मगर है बस है. एक मैसेज क्या है भाई, क्या गजब तबाही था आज का शो. थैंक यू सो मच फरहत भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. और एक भाई लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आसिफ भाई ने ठीक कहा, आपके शो के बाद मैं पूरा दिन एफएम ऑन रखता हूँ. KBR 500 MG, ये पता है कि गोली फेमस हो गई. भाई ने बोला KBR दवाई का नाम लगता है, KBR 500 MG सुबह सुबह लीजिए, पूरा दिन आपका एकदम रॉकेट की तरह जाएगा. और एक भाई डिलीवरी करने के लिए निकले, वो कह रहे हैं 25 रियाल का खाना मैं डिलीवर करने लिख रहा हूँ, 50 रियाल का डिलीवरी चार्ज है. क्या है 25 रियाल का है क्या ये, कितने किलोमीटर बता रहा है ये भाई साहब? 108 किलोमीटर ये भाई जो है डिलीवरी करने के लिए जा रही है 25 रियाल का सामान. और ये कहाँ, ये तो समुंदर में दिखा रहा है ये तो मैप, ये कमाल है. सलूट है भाई, मैं इस पर कुछ कह

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल्ली देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तरह अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। वज़ारते दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस।

0: बिजनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
1: सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती है। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: दोहा 2026 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो 1st से 14th नवंबर तक लुसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगी। मारूफ टेनिस खिलाड़ी और वुमेन्स वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका ने मंगल को विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा को 7-6, 3-6, 7-6 सेट से हराकर यूएस ओपन सेमीफाइनल्स में लगातार छठी बार जगह बना ली। क्यूएसएल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग के तीसरे राउंड में अलविदा ने आशामाल को 3-0 से शिकस्त दी। चाइनीज ताइपे श्रीलंका अजरबैजान और मोल्डोवा के वेटलिफ्टर्स ने दोहा में जारी 10th फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के इफ्तिताही दिन गोल्ड मेडल्स जीते। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और पेरिस सेंट जर्मन आज चैंपियंस लीग फुटबॉल के टाइटल का दिफा करेगा। दो बार के चैंपियन पीएसजी का सामना ओवन ब्रातिस्लावा से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: एफएम 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
2: साहब सुमो अमीर से दीवान अमीरी में गयाना के सदर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में साहब सुमो अमीर और सदर गयाना के दरमियान मुज़ाकरात की एक नशिस्त मुनाकिद की गई। इन मुज़ाकरात में कतर और गयाना के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और ख़ास तौर पर सरमायाकारी के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के वसाइल से मुतालिक गुफ्तगु की गई। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर से जर्मनी के वजीर दाखला ने बर्लिन में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने खित्ते के मुतअद्दद ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद अफाद में मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, आबनाए हुरमुज में आजादाना बहरी आमद और रफ्त यकीनी बनाने और सफारतकारी की तरफ वापस आने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रियासत कतर ने इसराइली मसनूआत पर बरतानिया की तजारती पाबंदी का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने इसे इसराइली आबादकारी की पॉलिसियों की रोकथाम की जानिब एक अहम इकदाम करार दिया है। गजा की वजारत सेहत ने बहाली सेहत के निज़ाम के तकरीबन मुकम्मल मुनहदिम होने की खबर दी है। इसराइली हमलों के नतीजे में तकरीबन 5,000 अफराद के आज़ा काटे गए जबकि 300 अफराद रीढ़ की हड्डी और आसाबी निज़ाम से मुतालिक जख्म का शिकार हो गए हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद को तवील मुद्दती तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद और 15 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सामाइन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 से आज का पहला नशरी अपने अख्तिताम को पहुँचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से यूसरा और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी ज़ाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें, आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज़ आपसे होता है।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, प्रोग्राम आज की दुआ में आपको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम रोजाना एक कुरानी या नबवी दुआ सीखते हैं। तो आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की, जब उनकी कौम ने मुसलसल इनकार और तकजीब की। ये दुआ मजलूम नबी की पुकार है जो रब्बुल आलमीन के हुजूर फैसला और नजात की दरख्वास्त है।

0: एम्बुलेंस फायर इंजन और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंट है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोब जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर वीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। ओलंपिक साइकिलिंग की तारीख में दोस्तों अगर सबसे कामयाब राइडर्स की बात की जाए तो सर क्रिस हॉय का नाम जरूर सामने आता है। ग्रेट ब्रिटेन के लेजेंडरी साइक्लिस्ट ने ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग में 6 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया। यहां दोस्तों क्रिस हॉय की ओलंपिक गोल्ड मेडल जर्नी सन 2000 से सन 2012 तक जारी रही। उन्होंने मुख्तलिफ ओलंपिक गेम्स में अपनी स्पीड, पावर और एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी का शानदार मुजाहरा किया। हॉय ने पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल सिडनी 2000 में जीती। इसके बाद उनकी कामयाबी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता था। बीजिंग 2008 में उन्होंने एक ही ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी डोमिनेंस साबित की। जबरदस्त परफॉर्मेंस। लंदन 2012 में अपने होम क्राउड के सामने एक और गोल्ड मेडल जीतकर क्रिस ने ओलंपिक साइकिलिंग में अपना टोटल 6 गोल्ड मेडल्स तक पहुंचा दिया। ये अचीवमेंट उन्हें ओलंपिक साइकिलिंग के सबसे कामयाब एथलीट्स में शामिल करती है। यह दोस्तों क्रिस हॉय की कामयाबी सिर्फ मेडल्स की तादाद नहीं बल्कि सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और मिनी कहानी है। अब थोड़ा उनके प्रोफाइल को जानते हैं। क्रिस हॉय स्कॉटलैंड के एडिनबरा में 23 मार्च 1976 को पैदा हुए। उनका साइकिलिंग करियर बीएमएक्स से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो ट्रैक साइकिलिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए। बीएमएक्स से ट्रैक साइकिलिंग तक का जो सफर था वो आसान नहीं था, लेकिन हॉय की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उनकी मेंटल प्रिपरेशन थी। ट्रैक पर वो सिर्फ तेज नहीं थे, वो इनक्रेडिबली पावरफुल थे। कभी कभी स्पीड जो है ना वो अपने दिमाग से भी आप चला सकते हैं, नज नॉट इलेक्ट्रिक। और जो मैकेनिकल स्पीड की बात है वो हमेशा आपको उस पोडियम फिनिश तक लेके नहीं जा सकता है। कभी कभार यू नीड टू हैव दैट तेज तरीन दिमाग, और वो क्रिस हॉय के पास था। उनकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी और टैक्टिकल इंटेलिजेंस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ट्रैक साइक्लिस्ट में शामिल कर दिया, और ये तो होना ही था। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता और ये उनकी ओलंपिक जर्नी का पहला बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन असल में क्रिस का गोल्डन एरा एथेंस 2004 से शुरू होता है। एथेंस

में उन्होंने 1 किलोग्राम की इवेंट में गोल्ड जीता और दुनिया को बता दिया कि ग्रेट ब्रिटेन के पास एक नया साइकिलिंग सुपरस्टार आ चुका है। खाता है बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स। यहां हॉय ने एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टीम स्प्रिंट, केरिन और स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीते। एक ही ओलंपिक्स में तीन गोल्ड मेडल्स और इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें बर्तानिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टार्स में शामिल कर दिया। लंदन 2012 में कहानी और भी इमोशनल हो गई। अपने घरेलू मैदान में हॉय ने केरिन में गोल्ड मेडल जीता। वेलोड्रोम में मौजूद फैंस के शोर के दरमियान उनकी ये जीत ने ब्रिटिश साइकिलिंग के गोल्ड रा को एक यादगार अंदाज में कंप्लीट किया। उनके करियर में सिर्फ ओलंपिक मेडल्स नहीं थे, मैं तो ओलंपिक्स की बात ही कर रहा हूं, इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी तो है ना। तो हॉय ने 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल्स और 34 वर्ल्ड कप टाइटल्स भी जीते। 34, जस्ट मार्क द नंबर 34। 2013 में प्रोफेशनल साइकिलिंग से रिटायरमेंट के बाद भी क्रिस हॉय का स्पोर्ट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो साइकिलिंग, फिटनेस और मोटर स्पोर्ट से जुड़े रहे और यंग एथलीट्स को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने लंदन 2012 के वेलोड्रोम के डिजाइन में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। वही वेन्यू जो बाद में उनके नाम पर सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम के तौर पर मशहूर हुआ। लेकिन दोस्तों, क्रिस हॉय की कहानी के सबसे अहम और इमोशनल चैप्टर उनके स्पोर्टिंग करियर के बाद शुरू हुआ। 2024 में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर है, जो बाद में बोन सगेनी हड्डी तक फैल चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 से 4 साल की प्रोग्नोसिस दी, लेकिन क्रिस ने इस मुश्किल वक्त को हार के तौर पर नहीं देखा। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी ट्रीटमेंट एक स्टेबिलिटी स्टेज में है और वो फिजिकली अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो साइकिलिंग और एक्सरसाइज जारी रखते रहे। सितंबर 2025 में उन्होंने टूर डी फोर नाम की चैरिटी साइकिलिंग इवेंट शुरू की, जिसका मकसद स्टेज 4 कैंसर के बारे में सोच बदलना और कैंसर चैरिटी के लिए फंड्स जमा करना था। इस इवेंट में 5,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और 2.1 बिलियन पाउंड से ज्यादा रेज हुआ। ये पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। 2025 के आखिर में हॉय ने यह भी कहा कि उनकी डायग्नोसिस ने उनका जो जिंदगी का आउटलुक है वो भी बदल दिया है। अब वो छोटी छोटी बातों की फिक्र कम करते हैं और हर दिन को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। दिसंबर 2025 में साइकिलिंग एक्स में उनकी टांग टूट गई, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा साइकिलिंग क्रैश करार दिया। इसके बावजूद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रहा और 2026 में भी, इस साल में भी क्रिस हॉय अपनी साइकिलिंग और पब्लिक एडवोकेसी को जारी रखे हुए हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने पोर्शे के साथ अपने मोटर स्पोर्ट्स पैशन और स्टेज 4 कैंसर के बावजूद प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में बात की। दोस्तों, क्रिस हॉय की कहानी हमें बताती है कि चैंपियन होना सिर्फ पोडियम पर खड़े होने का नाम नहीं, कभी कभी असल चैंपियनशिप जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में हिम्मत बनाए रखना होता है। क्रिस हॉय ने ट्रैक पर मेडल जीते, अब वो जिंदगी में होप, अवेयरनेस और करेज का एक खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर अंदीप अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: डेट क्या हाल है आपके? बढ़िया, आई होप यू गुड। मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ बहुत तगड़ी, क्योंकि इस बार लिस्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिखाएंगी भी, नॉट जस्ट यू नो किलिंग योर बोर्डम, तो आपके काम आएंगी। एंड साथ में खबर आई है, मार्केट में फैल रही है, इन तक को नहीं पता तो मैं अपडेट कर दूंगा। जिन्हें पता है, वेरी गुड, गुड जॉब डन, ये लीजिए ताली और ट्रॉफी में बनवा रहा हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। शुरू करें? ऑलराइट, तो ऑन द लिस्ट नंबर वन सबसे पहले बताना चाहूंगा एक वेबसाइट जिसका नाम है wornontv.net। लेट मी स्पेल इट आउट, worn यानी पहनने वाला, worn, worn फिर on, on फिर टीवी, wornontv.net। अब क्या होता है, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, और वो सीरीज देखते देखते आपको लगा यार ये कपड़े इसने बढ़िया पहने, यार ये कहाँ मिलेंगी, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसमें अगर वो शो आपको मिल जाए तो आप उस शो के एपिसोड नंबर को अगर डालेंगे तो ये दिखा देगा कि हाँ ये वाले कपड़े पसंद है, आप क्लिक करेंगे हाँ जी ये वाले पसंद है, फिर वो आपको बताएगा ये कपड़ा कहाँ मिल सकता है या ये सिमिलैरिटी ऐसे ऐसे कपड़े कहाँ से ले सकते हैं। एंड ये नहीं कहेगा आपसे कि ये लो जी 3,000 रियाल खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, आपको बजट फ्रेंडली भी आइडिया दे देगा कि भाई ये वाला पसंद आया ना ऐसा यहाँ मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप ट्राई करके देखिएगा, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये किसी ने सोचा होगा भाई उसको मेरा सलूट है। ठीक है, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का नाम है arcadespace.org, arcade arcade space space.org, arcadespace.org। अब आप बैठे हैं, मान लीजिए आपकी शिफ्ट पूरी हो गई, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, इमेजिन करने में जा रहा, आप बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने और आप बैठे हुए क्या करूं यार बहुत बुरा हूं मैं, तो आप arcadespace.org पे जाएंगे। उसमें आपको सारे कंसोल की जो गेम्स हैं, पुराने वाले रेट्रो गेम जिनको खेल के भाई कती मजा आ जाते थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्लेस्टेशन 1 के हों, चाहे वो निंटेंडो के हों, जितने भी रेट्रो गेम्स हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और ये आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हैं, कोई डाउनलोड साउनलोड की जरूरत ही नहीं भाई, सीधा सामने शुरू किया और खेलना शुरू। मुझे तो बहुत मजा आया, आप देख लो, आपको आई एम प्रीटी श्योर अच्छे लगेंगे, बिकॉज है तो यार ये भी काम की चीज, ऐसा नहीं कह सकते काम का नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक और वेबसाइट, चलो लगे हाथों बता देता हूँ जब आप आ ही गए हैं तो। अगली वेबसाइट का नाम है muted.io, muted.io। इस वेबसाइट पे जाके, पता नहीं इसका नाम म्यूटेड क्यों है, लेकिन आप पूरा का पूरा म्यूजिक सीख सकते हैं, नोट्स कैसे होते हैं पियानो पे, गिटार पे, वायलिन पे, सब कुछ आपको गहरी नॉलेज मिलेगी म्यूजिक की। नॉट जस्ट दैट, आप अपने लिए खुद बीट्स भी बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये इतना बढ़िया टूल है ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप यूज करेंगे आपको मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं मैं। अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज दिस वीक। गूगल पिक्सल की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सल की एक और खबर आई है जिसको सुनकर मैं ज्यादा शॉक नहीं हूं, वो है कि गूगल पिक्सल टैग बहुत जल्दी आ रहा था, आ चुका है भाई साहब, टैग आ चला है गूगल पिक्सल, अगर नहीं पता ये ब्लूटूथ चैनल को यूज करता है एंड ये गूगल के हब को यूज करता है, एक पूरा इकोसिस्टम है, ये चाबी वॉलेट लगेज हर जगह आप इसको इसके साथ काम कर सकते हैं। जब एप्पल ने टैग्स लॉन्च किए थे तब ये आइडिया बहुत ही अजीब लगा था लोगों को, इनिशियली लोगों ने कहा ये क्या है, इसका क्या काम है, बट देन वी अंडरस्टूड के नहीं भाई जरूरत है इस चीज की। प्राइसेस में वेरी, एक महंगा कोई सस्ता हो सकता है, बीच में बहुत सारी और भी कंपनीज ने ट्राई किए टैग्स बनाने के, बट गूगल भी इस मार्केट में उतरेगा ये मैंने थोड़ा सा भांप लिया था, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज फाइनली हियर। तो अगर आप एप्पल के टैग को यूज कर करके फैंसी दिख चुके हैं कि मेरा हो लिया भाई, तो आप गूगल पिक्सल का टैग ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। इसमें साउंड भी है, मतलब इसमें साउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चाबी वॉलेट और लगेज की सेफ्टी के लिए। ओके, ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अपडेट, मिलते हैं अगली बार दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से मैं बचाने के लिए हर रोज हाजिर होता हूं। और आज हम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटे और बड़े बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। ये है फेक इनवॉइस फ्रॉड। ये बहुत ही खतरनाक और असरदार तरीका बन चुका है आजकल स्कैमर्स के लिए। इस स्कैम में हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स बिना किसी डर के डायरेक्ट आपके फिनांस डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं और कई लोग बच जाते हैं जिनको इस तरह के फ्रॉड के बारे में पता हो। दोस्तों, फेक इनवॉइस फ्रॉड तब होता है जब स्कैमर्स आपकी कंपनी को उन प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स या सर्विसेज के बिल्स भेजते हैं जो आपके बिजनेस ने कभी ऑर्डर किए ही नहीं। फ्रॉड बिल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये देखने में 100% असली लगते हैं। स्कैमर्स उन्हीं वेंडर्स या सप्लायर्स के नाम का डुप्लीकेट बिल बनाते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि ऑफिस सप्लाई स्टोर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, यूटिलिटी कंपनीज या फिर आपके डोमेन रजिस्ट्रार्स और वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपकी कंपनी की वेबसाइट चलाती हैं। वहां पर भी स्कैमर्स अक्सर ईमेल्स में बहुत ही डरावनी और अर्जेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ईमेल में लिखा होगा अर्जेंट नोटिस, आपका वेब होस्टिंग डोमेन एक्सपायर हो चुका है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर ये दिए गए बैंक अकाउंट में फी पे नहीं किया तो आपकी कंपनी की वेबसाइट और कॉर्पोरेट ईमेल्स को हमेशा के लिए बंद यानी कि शट डाउन कर दिया जाएगा। इस अर्जेंट नोटिस पे आप कैसे बिहेव करेंगे? आपको लगेगा फी पेमेंट करना बहुत जरूरी है, फी देना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ आगे का एक्शन लेंगे, लेकिन तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। बड़े या बिजी बिजनेसेस में जहां अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स पर काफी वर्कलोड होता है, वहां एम्प्लॉइज हर छोटे बिल को गहराई से चेक नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अमाउंट छोटा है और अगर वेबसाइट बंद हो गई तो बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी जल्दबाजी और डर का फायदा उठाकर अकाउंट्स के लोग बिना इन्वेंटरी या मैनेज

0: इनवॉइस यानी कि बिल का पेमेंट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक परचेज ऑर्डर होना जरूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। गुड्स रिसीट नोट और मैनेजर का साइन ये साथ में मैच किया जाना ही चाहिए। अगर कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं मिलती तो उस बिल को तुरंत रिजेक्ट कर दे। उसके अलावा सेंडर का ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, जब भी कोई अर्जेंट बिल आए तो हमेशा सेंडर के ईमेल आईडी को गौर से चेक किया जाए। स्कैमर्स असली कंपनी जैसे दिखने वाले फेक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ईमेल एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती दिखे तो समझ लीजिए ये एक फ्रॉड है। उसके अलावा डायरेक्ट वेंडर कंफर्मेशन, अगर आपको किसी ट्रस्टेड सप्लायर के नाम पर कोई सस्पिशियस या बहुत अर्जेंट बिल मिलता है तो ईमेल पर रिप्लाई करने के बजाय उनके पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उनका रियल फोन नंबर निकालें। उन्हें डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कोई बिल भेजा है या नहीं। उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, कंपनी में हर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने या बैंक ट्रांसफर अप्रूव करने के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स्ड टीम या सीनियर अकाउंटेंट को ही इसका एक्सेस दीजिए ताकि हर ट्रांजैक्शन पर डबल चेक लग सके। उसके अलावा स्टाफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अपने अकाउंटिंग स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर साइबर फ्रॉड के बारे में ट्रेन करें। उन्हें समझाएं कि स्कैमर्स हमेशा अर्जेंसी और डर का यूज करते हैं, इसलिए किसी भी अर्जेंट ईमेल को देखकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा जब भी खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो जाता है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है ये कि आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप बैंक में इत्तला करेंगे, अपने बैंक को इत्तला करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करेंगे, उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे, तो आपका गया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। ये आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का, फ्रॉड से बचने का। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में, अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
2: चले तो कट ही जाएगा सफर,
1: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
5: स्मार्ट मनी।
6: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कि जेन जी जो है वो किस तरह से डिफरेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल, हर जनरेशन का पैसे को लेकर एक अलग परसेप्शन है, हर जनरेशन के पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका भी है। आज के दौर में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली दो जनरेशन, मिलेनियल एंड जेन जी। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो लगभग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, जबकि जेन जी वो जनरेशन है जो उनके बाद आई। देखिए, दोनों जनरेशन्स इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मिलेनियल्स में अपनी जवानी, उस दौर में गुजरे ट्रेडिशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड, ये सारी चीजें उन्हें डोमिनेट आज भी करती हैं, और इसीलिए उनसे बहुत से लोग जितने भी आपने देखोगे वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, फिक्स्ड सेविंग प्लान्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर फोकस करती है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जेन जी को, तो ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी जनरेशन है। उन्होंने स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बचपन से यूज किया है, और शायद इसी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी ज्यादा डिजिटल और फास्ट पेस्ड होता है। देखिए जेन

किसी के लिए स्मार्टफोन्स, एप्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ बड़ा नॉर्मल है। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं। जेन जी की सबसे खास पहचान ये है कि वो इन्वेस्टिंग को पहले की जनरेशन की तरह कॉम्पिटेंट नहीं समझते। आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस को इतना सिंपल बना चुकी हैं कि यंग इन्वेस्टर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की एक्सेसिबिलिटी ने जेन जी को फाइनेंशियल मार्केट के करीब ला दिया है। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस का। मिलेनियल्स अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बैंक या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पर ही डिपेंड करते हैं। वहीं जेन जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल नॉलेज इस तरह से हासिल करते हैं। देखिए, जेन जी इन्वेस्टर्स अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। वो सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल गोल्स के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। देखिए, इस जनरेशन के लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी का सोर्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरिया भी है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने की डिजायर कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेन जी और मिलेनियल्स दोनों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट है। मिलेनियल्स ट्रेडिशनल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड्स को प्रेफर करती है, जबकि जेन जी टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देती है। वेल, इसके बावजूद एक चीज जो दोनों जनरेशन में कॉमन है वो बताऊँ क्या है? वो है फाइनेंशियल सक्सेस का राज। और ये राज नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छुपा है। वेल, आज की जनरेशन का इन्फॉर्मेशन और टूल्स पहले से ज्यादा है। अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करें, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। आखिर में यही कहूंगी कि इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस और कॉन्स्टेंट हैबिट से जरूर बनती है। वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों भी इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 Time Check. Time Check.
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 10:02 हो रहे हैं और मेरी आवाज़ सुनकर आपको पता तो लग ही गया होगा। गोविंद यहाँ फुल्लो, आ जाओ जरा खुशबू लगा के, टाइम हो चला है यू मैटर का, माविश और सफा के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं भी यहाँ

0: मैं मौजूद हूं और जैसे कि सफा ने बताया कि भाई हमारा और आपका साथ 11 बजे तक रहने वाला है और यू मैटर में आज भी हम एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आप लोगों को सबको वैसे हैप्पी वेंसडे भी इस दफा अच्छा हुआ क्या है कि वो जो है ना सुहेल स्टार्ड नजर आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये
1: होता मुझे ऐसा लग रहा है वो छुपन छुपाई खेल गया है कोई
0: एग्जैक्टली
1: ये तो प्रैंक हो गया है
0: वो आया और फिर अभी मैं देख रही थी कि कतर के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है ना उसके ऊपर बकायदा नहीं वो जो क्रिस्टल से बन जाते हैं और जो स्नो और ये वो ना उस तरह की चीजें डल रही थी कि विंटर आने वाला है ये वो हम बड़े खुश हमने कहा ओहो चलो वेलकम करो विंटर को विंटर आने वाली है और एकदम से कल से ऐसा हुआ है कि गर्मी जो है वो जाते जाते उसने कहा मैं भाई ऐसे नहीं जाऊंगी तड़पा के जाऊंगी
1: अच्छा मजे की एक बात बताओ मजे की एक बात ये गर्मी और सर्दी कतर की दोनों की लाजवाब है वैसे अगर देखा जाए ना अल्लाह ताला की कुदरत है कि यहाँ पर सर्दियों का भी यही मामला होता है सर्दी में जाने लगती है ना तो हमें ऐसा लगता है सर्दी बिल्कुल चली गई फिर एकदम से कुछ दिन बाद ऐसी कोई तड़ाके की सर्दी आती है कि जो आपने अभी मस रखी होती है ना जैकेटें और कंबल वगैरह अटैची में बांध करके भाई इनको पीछे कर दो वो आपको फिर निकालने पड़ जाते हैं
0: हाँ लेकिन ये वो उसमें ये
1: गर्मी भी हरकत कर रही है
0: तो मजा
1: क्योंकि वो गर्मी
0: क्योंकि सर्दी होती है ना अब यहाँ मसला ये है कि हम बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करें कि मोहतरमा आप लौट जाएं लेकिन ये गर्मी साहब
1: मैं इस हफ्ते पूरा पूरा प्लान बना के बैठी थी मैंने कहा नहीं भाई देखो अच्छा मौसम हुआ इस हफ्ते जो ना लूसेल जाकर बैठूंगी वो लूसेल पार्क है ना वहाँ जाकर क्योंकि सर्दियों में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं फैमिली के साथ मजा आता है ना
0: मजा आता है
1: अच्छा लगता है पार्क शार्क जाओ तो आजकल तो मुझे वैसे नहीं लगती ऑब्वियसली अब इस मौसम में मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती लेकिन मेरे जो घर वाले ना वो पिघल रहे होते
0: मतलब ये क्या मतलब तुम्हें तुम जैकेट पहनती हो इसलिए कि थोड़ी जरा ज्यादा सर्दी किसी वक्त में इसी में लग रही होती है तुम्हें गर्मी ही नहीं लगती
1: मुझे गर्मी नहीं लगती मैं अभी घर भी जाऊंगी ना तो मैं गाड़ी का एसी शायद ना चलाऊंगी
0: वाओ यार
1: मैं अजीब हूँ
0: काश मैं ऐसी होती
1: मैं इंटरेस्टिंग हूँ मेरे पर साइंस की ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं
0: तजुर्बा हो सकते हैं वो देख सकते हैं कि भाई तुम्हारे अपने अंदर ऐसा कौन से एयर कूलर लगा हुआ है
1: मजे की बात ये अब अक्सर औकात लोग इसे नेगेटिव भी लेते हैं लोग कहते नहीं ये गलत बात है मुझे पसीना भी नहीं आता
0: वो तो खैर मुझे लगता है कि गर्मी नहीं रहते हुए ना वो पसीने वाली गर्मी नहीं होती है हमारी
1: नहीं भाई मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि लोग मेल्ट हो रहे होते हैं मेल्ट बिल्कुल ऐसे यूं कपड़े शर्टें भीग जाती हैं लोगों की
0: ऐसा वाला तो खैर पसीना मुझे भी कभी नहीं आया
1: लोगों को आता नहीं आता मुझे नहीं आता मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे ये चीज गर्मी नहीं लगती बस नहीं लगती
0: आई थिंक जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है उनको ज्यादा पसीना आता है ताकि वो कूल डाउन रह सके अब हम किन चीजों ये कोई टॉपिक है मतलब लोग सोच रहे हैं कितनी मतलब अजीब सी बातें हो रही है खैर जी अभी बात क्या हो रही है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग ये बड़ा मतलब एक आप चीज देखो ना
1: अच्छा मजे की बात ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं
0: बारीक सफर के
1: सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन असल में दोनों के बीच एक बहुत मैं कहूंगी अच्छा खासा फर्क है
0: हाँ
1: जो कि हम भूल जाते हैं देखना ये बात है कि हम लोग उसे नजरअंदाज करते हैं देखिए रिएक्टिंग का मतलब किसी सिचुएशन में फौरन जज्बात के जोर पर ना रिस्पॉन्स कर देना रिएक्ट किया ना किसी ने और वो भी बिना सोचे समझे कभी कभी ऐसा होता है हमारे एक्शंस जो है ना उनका असर होगा ये हो जाता है मामला मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे गुस्से में बात करे और आप भी फौरन गुस्से में उसे जवाब दें जैसे मैं अक्सर औकात कर देती हूँ लहजा आपका थोड़ा सा फिर जाता है तो ये क्या होता है ये रिएक्शन होता है इसमें अक्सर इमोशंस हमारी स्टीयरिंग संभाल लेते हैं और जबकि जो रिस्पॉन्डिंग होता है ना इसका मतलब बिल्कुल अलग
0: होता है
1: रिस्पॉन्स का मतलब होता है सोच समझ के भाई वो चोट मारना किसी को पहले सोचो समझो आप थोड़ा सा रुको अपने इमोशंस को कंट्रोल करो सोचो पहले प्लान करो कि इसको जवाब क्या देना वो जो हम कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना किसी को वो रिस्पॉन्डिंग होता है वो जो ऐसी छलांग मार देना ना कि मैं तो उसे खा जाऊंगा कच्चा और ये वो रिएक्शन होता है
0: मतलब आपने दोनों ही बड़ी खतरनाक सिचुएशंस बताई कोई एक भी ऐसी नहीं है जिसको लोग हल्का ले लें ये दोनों के दोनों मामले बहुत गंभीर हो गए
1: अच्छा एक के अंदर ये कि आपने इमोशंस को खुले बैल की तरह छोड़ दिया तो वो रिएक्शन बन जाता है एक को ये है जैसे हम लोग कहते हैं ना वो बैल के गले में आपने घंटा बांध दिया है वो आप अपने अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है ना किसी को तो आपको उस बैल को काबू करना पड़ेगा अपने इमोशंस वाले बैल को और फिर आपने सजा सुजू के गीले तौलियों में लपेट के मारना है
0: अपने वक्त पे अपने हिसाब से
1: शुरू तो किया खत्म मैं करूंगा ये वो वाली बात हो जाती है जब हम रिस्पॉन्डिंग करते हैं तो
0: रिस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली बिल्कुल जी बिल्कुल
1: आजकल मैं सीख रही हूँ
0: मैंने भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर काम किया है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर और काफी हद तक मैं कह सकती हूँ कि मैं कामयाब भी
1: अच्छा मजे की बात ये कि मैंने अपनी अम्मा से भी बहुत दफा बचपन में बहुत दफा सुना था क्योंकि ये नेचर होती है जज्बाती होती है तो एक उम्र भी ऐसी होती है. तो मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं बेटा रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट करना नहीं सीखो. देखो जब जब आप चीख चाख के बात करते हो ना, तो आपकी बात चाहे सही क्यों ना हो
0: गलत लगती है,
1: वजन खत्म हो जाता है बात का.
0: ऐसे ही.
1: लेकिन जो इंसान तहम्मुल से और सोच समझ के ठहर कर बात करता है ना,
0: पता है क्या, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि आप इस पे भड़केंगे, वो आपको भड़काते हैं.
1: हाँ.
0: और जहां आप भड़कना छोड़ देते हो ना, वहां पे वो बेचारे हवा हो जाते हैं, हवा एकदम से. मेरे साथ हो चुका है बहुत अरसे से, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रही हूँ.
1: पिछले दिनों मैंने आपको एक किस्सा बताया था ना अपना जो चल रहा है लाइफ में, उसके अंदर मैंने रिस्पॉन्डिंग की, मैंने वो नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया.
0: हम तो सामने वाली पार्टी पे
1: सामने वाली पार्टी ना हैरान परेशान, अरे भाई
0: तो क्या जाते हो, चले हम कॉल ले लेते हैं वरना उनके कहीं कबूतर मैना सब ना उड़ जाए. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. नहीं नहीं नहीं, हमारे कबूतर नहीं उड़ने वाले.
0: आपके कबूतर नहीं उड़ने वाले.
1: देखें ये इन्होंने खूब पाले में सही वाले
0: कबूतर बांस रहे हैं ये पूरे के पूरे.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बस मैं कोशिश करता हूँ कि शामिल हो जाऊँ. और
1: मैंने कहा ना आज भी इन्होंने हैट्रिक कर ली है.
2: हैट्रिक हो गई,
1: हैट्रिक हो गई आज भाई, हैट्रिक हो गई रईस भाई.
2: ये महवस का ये तारीफ है कि मतलब महवस
0: से हां हैट्रिक भाई
1: कर रहे तालियां.
0: अच्छा नहीं मेरा क्या है, मैं आपकी कॉल लगवा रही हूँ रोजाना, क्या कर रही हूँ.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, मतलब कॉल को अटेंड कर लिया जाता.
0: अच्छा,
2: है ये आप लोग कॉल को ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग उसको ये नहीं करते हैं, स्किप नहीं करते कि चलो हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे उसके बाद में कॉल को अटेंड करेंगे. ये खूबी है कि मतलब पहले कॉल अटेंड कर लिया जाता, अपनी बातों को भी रखा जाता है. ये अच्छा
0: लगता
1: है सुनकर. आपकी जो है ना वो ब्रांडिंग हो गई है.
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह
1: प्रमोशन हो गई है.
0: प्रमोशन हो गई,
1: ठीक है. चलें रईस भाई ये बताएं, रईस भाई ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में ज्यादा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को.
2: नहीं भाई, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं बंदे को. रिएक्ट करने से पहले भी सोच समझ के रिएक्ट करना, ये थोड़ा तहम्मुल मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा बेहतरी, क्योंकि मैं पहले बहुत जल्दी रिएक्ट किया करता था. बहुत जल्दी जज्बात में आ जाया करता था. फौरन अगर कोई गलत हो रहा है ना तो फौरन मेरा मतलब
1: बचाना है, इमरजेंसी मोड.
2: पारा चढ़ जाता था मेरा कि यार ये बंदा कैसे इसने मेरे साथ ऐसा किया या उसके साथ कैसे कर रहा. मैं बीच में भी जाके टांग लगा के दूसरे का झगड़ा भी
1: हाँ, दूसरे के झगड़े में भी टांग लड़ानी है और दूसरे के झगड़े में तो मैं लड़ानी है.
0: बिल्कुल
2: हाँ, ये चीजें मैं बहुत जल्दी मतलब दबंग गई थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बॉडी और हाइट में थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होने को जैसे डरता नहीं था कहीं भी टकरा जाने वाला. तो ये मेरे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बंदे, यहाँ तक आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैंने बाइक लिया फर्स्ट टाइम में तो इतनी रॉन्ग चलने में मैं चलती बाइक में लात से मार देता था, नीचे चले जाते थे वो रोड के नीचे चले जाते थे.
1: तो बाजीराव सिंघम चल रहे.
2: तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मेरे भाई कभी भी बड़े भाई साथ में होते थे, बोलते थे यार तुम ये क्या कर रहे हो, ये मतलब तुम सबको पूरी पब्लिक को तुम नहीं सुधार सकते ना, तुम किसके किसके साथ ऐसा करोगे. तो ये चीजें बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है भाई, थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा. सामने वाला अगर मतलब हमारे हिसाब से नहीं कर रहा है तो उसके साथ में उसी तरीके से हम भी उसी में से हो जाएगी, हो गए ना फिर.
1: सही सही सही एग्जैक्टली.
2: ये चीजें बहुत मैटर करती है, थोड़ा सा मतलब बंदे को सोच समझ के ये करना, और वो कामयाब भी है बंदा वो जो मतलब है.
1: अच्छा हाँ, ऐसे लोग ना जो रिस्पॉन्ड करते हैं ना, रिएक्ट नहीं करते, मैंने देखा है माविश वो बड़े खुशबाश रहते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं. पता नहीं क्या कनेक्शन है इसका कोई, आप मेंटली इतने सकून में रहते हो कि आपको जो ना गुस्सा कम मतलब आपको अपने गुस्से काबू करना आता है.
2: एक शख्स को चलती बाइक मेरी वाइफ ने थी और मैंने इसे चलती बाइक में वो क्या उसका गलत मत परेशान, मैंने हाथ ऐसा थोड़ा बढ़ाया पंजा, इतना जोर से उसके स्पीड में लगा, इतना जोर से तड़ाक. तो उसने कहा मेरी वाइफ ने कहा क्या भाई किस चीज का आवाज है, मैंने कहा उसको
0: पता ही नहीं चला बाइक चलाते हुए फटे हो रहे.
2: नाराज हो गई, बोली यार तुम्हारा ये क्या तरीका भाई, उसके पीठ में पूरा पंजा.
1: मेरे वाला हिसाब क्यों चल रहा है इनके साथ,
0: ये तो आप तो पढ़े मतलब रियल लाइफ अजय देवगन चल रहे हैं.
2: मतलब कुछ सालों पहले अभी मैं सुधर गया हूँ, अभी अभी वो वाला रवैया नहीं रह गया, अभी सुधर गया हूँ.
1: उम्र हो गई
2: है ज्यादा आ चुका है कि भाई वो बदमाशी हर जगह मतलब अच्छा नहीं है.
1: रईस भाई अच्छी बात है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरी वक्त नहीं सीखी, ये सीख जाना भी एक बहुत अल्लाह ताला करम है.
2: दीनी चीजें भी अपने अंदर ज्यादा

0: की है और ये मतलब और हमारे भाइयों से बात सुन के, ये खासकर कतर रेडियो से जुड़ा जब से हुआ ना, तो बहुत ज्यादा बात करने के थोड़ा सा अपने अंदर बहुत ज्यादा तहमुल मिजाजी आया, थोड़ा ये सुन के और अच्छा लगता है। मतलब ये होना भी चाहिए,
1: बिल्कुल सही है,
0: मेरे दीन का हिस्सा भी है, हमें
1: स्टडी करने लगते हो ना तो ये वाली चीज उसकी वजह से
2: ठहराव हो जाता है।
0: यहाँ तक कि लोगों ने मतलब ने इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, लेकिन मतलब किस तरीके से उन्होंने मतलब फिरते नबी पढ़ लो सहाबा, तो ये हमारे अंदर अगर हम बहुत बड़े दीनदार बने और हम अपने ऊपर अमली जामा ना पहनाए तो फिर हम कहाँ कहाँ कौन से मुसलमान कौन से अपने आप को, फिर हम वो तरीका हमारा अगर गलत ही रहे तो।
2: और ये बात तो हकीकत है कि ये चीजें हैं ही हमें याद दिलाने को, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात मालूम है कि इंसान भूल जाता है, इंसान जज्बाती भूल जाता है, तो अल्लाह ताला रिपीटेडली इन चीजों के पढ़ना अल्लाह ताला ने किया है।
0: जी बिल्कुल, अल्लाह ने हमारे लिए एक मतलब रास्ता दिखाने के लिए हमें बहुत सी चीजों को करवाया है उनसे, तो जो हम उसको देख के सबक सीखे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: मैटर करती है, बिल्कुल दुनिया की चीजें को फौरन हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ा तहम्मुल से ये करोगे तो ज्यादा शायद है कि जिसको हम फौरी तौर पर गलत समझते हैं कभी कभी वो सही भी होता है, सही होता है अक्सर, मतलब सही हो जाता है तो फिर हमें फिर शर्मिंदगी की, यार मैं अगर फौरन उस पे ये किया होता रिएक्ट किया होता तो शायद वहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाती।
2: हाँ, वो कहते ना सुनने की सुनो भी तहम्मुल से और फिर आप रिस्पॉन्ड भी उसी एहतियात से करो।
0: चीजों को आंखों देखी जो कि बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये बिल्कुल गलत हो रहा है, हाला वो चीजें मतलब अलग होती हैं, उसके अंदर की जो कहानी पे जाते हैं तो मैटर कुछ अलग होता है, फिर हमें अब तो पता कि नहीं नहीं नहीं ये चीजें ऐसे नहीं।
1: सही बात है, सही
0: काम लेना चाहिए, ये चीजें बहुत
1: मैटर
0: करती हैं हमारे लिए।
1: Exactly. सही बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी बात है।
0: तमाम भाइयों को हमारे जावेद साहब का इंतजार है, आ जाओ भाई और बाकी हमारे सलीम साहब और बाकी जितने हमारे भाई लोग हैं सुनने वाले, थोड़ा सा बिछड़ गए जो सुबह के टाइम होता था वो जलवा कुछ अलग था, लेकिन चलो इंशाल्लाह आएगा दिन, गुजरते जा रहा है
1: इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम रिज़ भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो भाई ये
2: तो हमने तो नंबर अभी बताया नहीं पहले आ गए तो भाई
1: तो नंबर बता देते हैं,
2: भाई नंबर बता देते हैं, मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो
1: कॉल करने के लिए 4434377 पे मैसेज कर सकते हैं। एक भाई ने मैसेज किया है हमें कोई 10:05 पे, तो इन्होंने कहा तो तुम मर गए हो, मुबारक शह, ये किस बात पे बोला है इन्होंने ये समझ भी नहीं आया, आप थोड़ी सी वजाहत कर दें इस जुमले की। खैर जी, इसके साथ ही हमारे साथ आ गए कॉलर। हेलो वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, मॉर्निंग
2: अज्जू भाई कैसे हैं?
3: वेरी गुड, हाउ आर यू?
2: ऑल गुड अज्जू भाई, वेटिंग फॉर योर कॉल अज्जू भाई, वेयर डिड यू गो अज्जू भाई? यू जस्ट केम फ्रॉम बैक फ्रॉम वेकेशन एंड ऑलरेडी यू आर ऑन अनदर वेकेशन।
1: हमारी बात हुई थी एक दफा।
3: हां, नो डेली वर्क थोड़ा ज्यादा है।
2: काम और बस काम।
3: थोड़ा बिजी है।
1: सही, तो चले ये बताएं अज्जू कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर आप रिएक्ट करते हैं?
2: अज्जू भाई की बातों का स्टाइल सुनकर ना ऐसा लगता है ये रिस्पॉन्ड करते होंगे, ये
1: सोच समझ कर
2: रिएक्ट नहीं करते होंगे चीजों को। इज इट?
3: नो, एक्चुअली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ।
2: सही,
3: एक्चुअली रिएक्टिंग इज ड्रिवन बाय आवर इमोशनल ब्रेन।
2: या
3: बट रिस्पॉन्डिंग इट टेक टाइम और इट इज एंगेज्ड in your brain.
2: Sahi.
3: But we can control the reaction, you know, some people can control the reaction but some people cannot control, they express immediately. I can control my reaction.
1: Good.
3: Because response let you own behavior and maintain the distance or what else? There is a barrier in between response.
2: Yeah, response actually is a kind of thing. मुझे ऐसा लगता है कि response जो है ना आपको वो time देता है situation को समझने का और अपना या argument या आप कह लें कि अपनी discussion को ज़्यादा strong बनाने का. It gives you time to think about things.
3: Yeah, of course. For example, express your feelings calmly and set the boundaries without attacking the person.
2: Yeah. अच्छा ये एक और जो मैंने बहुत अच्छी बात बोली विदाउट अटैकिंग द
1: एग्जैक्टली बड़ी
2: ये जब हम लोग रिएक्ट करते हैं ना व्हेनेवर वी रिएक्ट तो हमारे दिमाग में हमेशा सिर्फ ये होता है इवन इफ इट्स एट लेट्स से नॉट जस्ट होम ऑफिस में भी अगर हम रिएक्ट करते हैं ना तो वी टेक things personally hum dusron ko hurt karne ki koshish karte hain jaan poochiye when we know this thing is going to attack them personally
1: aisa hi
2: jab aapne respond karna hota hai na to you if it's let's say if it's a office kind of thing an argument तो उसके अंदर आप फिर वो बाउंड्रीज क्रिएट करके नॉट टू बी पर्सनल विद द पर्सन
1: आप प्रोफेशनली डील करते हो हां आप वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं रहते आप सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हो और सॉल्यूशन फिर नहीं होता पर्सनलाइज्ड
3: हमारा सेफ्टी एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक आई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा इमोशन एंड आपका रिस्पॉन्डिंग को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा क्लास था हमारो फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में ज्वाइन करने के टाइम ये सारा कोर्स अटेंड करता हूँ उसमें एक आई स्टेटमेंट करके एक कोर्स है मतलब विच मीन्स हाउ टू कंट्रोल यूर रेस्पॉन्स आपका from the opposite side many things can happen but you cannot control what going on and what is happening but you can control your response so koi galat cheez ja raha hai or something going wrong you don't want to react immediate but you can think and you can wait and you can react again so isko hum log bolte hai I statement bolte hai
1: acha
3: ये मतलब आई फील मैं भूल गया
2: ये खास तौर पे जो है ना ऑफिसेज में प्रोफेशनल लेवल पर ऐसे कोर्सेज लोगों को करवाने चाहिए आई थिंक सो क्योंकि ये आपकी सेल्फ स्टीम को भी सेट रखते हैं और कुछ लोगों के अंदर ना एंगर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है कुछ लोगों को आप घर में कैसा भी हो बट यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एट वर्क
3: या एग्जैक्टली बिकॉज़ यू डोंट वांट टू शाउट एंड यू डोंट वांट टू ब्लेम अदर्स
2: एग्रेसिवनेस योर एरोगेंस डज नॉट वर्क एट ऑफिस वर्क प्लेसेस
3: या एग्जैक्टली सो आपका घर में आपका कैरेक्टर कैसे है आप ज्यादा एंग्री आने वाले है और आप सॉफ्ट है इट डजंट मैटर इन
2: ऑफिस एट वर्क प्लेस यस
3: Not only in workplace, out of your house.
2: In the society, it doesn't matter.
1: Exactly. और बल्कि मैं तो कहती हूँ घर पे भी मतलब आप कहीं बाहर जो चीज़ सीखो तो घर पे भी अप्लाई कर लो जैसे मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि हमारी यूजुअली ना जो जैसे आप समझो कि शादी से पहले वो मैरिज काउंसलिंग का जो है ना तसव्वुर नहीं है और बहुत सारी जगहों पे देखो कि लोगों की जब शुरू शुरू में शादियाँ होती हैं तो तू मैं इसलिए हो रही होती है क्लैशेज ये लड़ना झगड़ना अक्सर शादियाँ तो शुरू में ख़त्म होने के करीब आ जाती हैं क्योंकि एक जो
2: रिएक्शन और रिस्पांस का फर्क नहीं पता होता
1: कि अपने आप को इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है वो नहीं होता और ये मैरिज काउंसलिंग जो है ना ये सिखाती है चीज बकायदा कि किस तरह अपने क्योंकि डिफरेंसेस है ना आपके आप दो अलग दुनियाओं से आए हुए लोग होते हैं उनके अलग घर के माहौल होते हैं सब कुछ होता है तो वो उनको डेफिनेटली मतलब ये चीज सिखानी चाहिए बकायदा तरबियत होनी चाहिए इस चीज
3: एक अच्छा कैरेक्टर है लेकिन ये सब आदमी के पास होना चाहिए It depends on the person. But you should control your reaction when it is want, when it is need.
2: Or we should have we should learn the text of converting our reaction to response.
3: I statement means I feel when, because, next time please.
2: मेरे ख्याल से वो जो आई स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं ना वो आई स्टेटमेंट एक चीज मैंने पढ़ी थी वो उसके अंदर भी आती है व्हेन यू वांट टू देयर आर ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन एंगर और इन एग्रेशन व्हाट हैपेंस वी कैन नॉट वी गेट स्टक और कंफ्यूज बिटवीन आवर इमोशंस तो वो जो आई स्टेटमेंट्स आती है ना वो ये होती है कि आप अपने आप को कहते हो कि अच्छा राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस आई एम फीलिंग angry I am feeling stressed तो मुझे लगता है आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट
1: कुछ मैंने देखा है कि बेसिकली ये जो ना इमोशंस, सिचुएशंस, इंपैक्ट, रिक्वेस्ट, ये इस तरह की जो चीज है ना,
2: या यू आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं, फर्क कर रहे होते हैं ना जब,
1: हाँ एग्जैक्टली,

0: वी आर ट्राइंग टू रिकग्नाइज व्हाट इमोशन आर वी फीलिंग राइट नाउ, तो उसके अंदर वो आई स्टेटमेंट लगती है कि वो यू टॉक टू योर सेल्फ दैट राइट नाउ व्हाट एम आई फीलिंग.
1: फॉर एग्जाम्पल ब्लेमिंग अदर्स, यू कैन ब्लेम योर सेल्फ.
0: अपनी गिरेवान में जाकर देखो पहले.
1: I feel hurt when it is going to happen. So which means the responding is going smooth only. So you did that and I feel hurt means it is the opposite side.
0: Okay.
1: So the, the responding is very important to manage both.
0: अज्जू भाई ये आई वाला जो है ना, आई वाला एक दफा आप चेक कीजिएगा, फिर हमें किसी दिन बताइएगा. इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग.
2: मजे का
1: नहीं, मैं आपको, मेरे को याद आया था रेस्पॉन्डिंग बोलेगा तो. मैं वो 7 years पहले मेरा फर्स्ट टाइम जॉब में मैं थोड़ा ये सीखा था, मेरे को थोड़ा याद आया मैंने वो बोला.
2: सही नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा. और हम लोग भी देखेंगे इस पे और बकायदा कोई टॉपिक भी हम रखेंगे भी. अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए. चले जी अज्जू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू जी,
1: थैंक यू,
2: बाय बाय. रही तो अज्जू ने हमें बताया आई स्टेटमेंट, और मैं सोच रही हूँ उसके बारे में पढ़ेंगे. मैं अभी थोड़ा बहुत जो देखा है वो अंदाज़ा हो रहा है कि इंटरेस्टिंग है और डेप्थ है इसमें काफ़ी, और आप करो तो वाकई आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर आएगा. जैसे ये कह रहे हैं ना कि वो मतलब होता बेसिकली ये है कि आप अपने इमोशंस को नाम देना.
0: इमोशंस
2: को नाम देना कि आप बेहतर. ये होता है
0: इसे ना कम्युनिकेशन टेक्निक भी कहा जाता है.
2: हाँ एग्जैक्टली. तो हमारे साथ कॉलर है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू.
0: जी कौन है हमारे साथ?
3: मैं मुबारक बात कर रहा हूँ.
0: जी मुबारक भाई, कैसे हैं आप?
3: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है इंशाल्लाह.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं. ये बताएं मुबारक भाई, गुस्सा करने के ऊपर बिलीव करते हैं, लोगों को फॉरन रिएक्शन देने पे बिलीव करते हैं, या आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई थोड़ा तहमुल मिजाजी से काम?
2: मेरा ख्याल है मुबारक भाई ना रिएक्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इन्हीं का मैसेज था अभी जो थोड़ी देर पहले आया था.
3: मैं एक बात बोल रहा हूँ.
2: हाँ बोलिए.
3: रिएक्ट मैं नहीं कर सकता.
2: अच्छा फिर क्या करते हैं?
3: बहुत मुश्किल से मैं रिएक्ट करता हूँ.
2: अच्छा फिर क्या करते हैं?
3: मैं बहुत सबर करता हूँ, सबर करके करके करके लास्ट में एक बम की तरह हवा जम जाती है. ये शायद कुछ मरीज, इसको कुछ मरज बोल सकता है या कुछ तकलीफ, ये मेरा कुछ तकलीफ है.
0: वो अपने आप को पहाड़ की चोटी तक लेकर जाते हैं और फिर वहाँ जब छलांग मारने का मौका आता है तो कहते हैं अब मैं छलांग ना मारूंगा. वहाँ फिर गुस्सा डबल ट्रिपल हो जाता है.
3: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मैं लड़ाई नहीं करता हूँ. पठान लोग एक बहुत मशहूर बात है, ऐसा सब पठान तो नहीं है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे है. लेकिन हम लोगों में एक बात है, जो ज्यादा बर्दाश्त करता है उसको हम बेगैरत बोलते हैं. मेरा दोस्त लोग, जब मैं वो दोस्तों के साथ रह रहा था, वो लोग फिर हम उस टाइम वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप रेक नहीं करते हैं. लेकिन जब उन लोगों ने मेरा रेक देखा,
0: अच्छा नहीं करते.
3: मेरे एक दोस्त थे, अभी भी मेरे को बोलते हैं कि मैं आपको हमेशा सलामी करता हूँ, बाकी बात नहीं करेगा.
0: अच्छी बात है.
2: उसके बाद से
0: उसकी बात बदल गई.
3: हाँ इसका इलाज ये हो सकता है कि इंसान को रेक नहीं करना चाहिए. देखो जब ये पहाड़ ज्यादा जम जाता है उस टाइम आपको क्या करने का है, मैंने तो उलमा से सुना है, वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि देखो जब भी आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, अगर आप खड़ा है तो बैठ जाओ. अगर आप बैठा है उस टाइम आपका प्रेशर हाई जाता है, मतलब रेक करने का टाइम आता है, तो उस टाइम आप आराम से सो सकता है, वो जगह को छोड़ सकता है. तब तक जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब रिस्पॉन्स तो नियामत है, जिसके साथ रिस्पॉन्स का टाइम है, जो आदमी रिस्पॉन्स दे सकता है वो नियामत है. और जब आदमी खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है मेरे जैसा, तो क्या करना चाहिए जब भी ऐसा
0: ऐसी कोई सिचुएशन हो,
3: सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस जगह से
2: जाओ,
3: थोड़ा दूर जाओ, क्योंकि बाद में बहुत पछताना पड़ता है.
0: हाँ बाद में अपनी कहीं भी बात याद आती है तो इंसान को खुद ये महसूस होता है कि भाई मैं तो ऐसा शख्स हूँ ही नहीं.
2: एग्जैक्ट.

0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चले जी, और उसी के साथ
1: एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात मुझे बतानी है। जो आई स्टेटमेंट अज्जू भाई कह रहे थे ना, उसको कहा जाता है कि आई स्टेटमेंट ना एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसमें हम दूसरे शख्स को ब्लेम करने की बजाय, एक्यूज करने की बजाय, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने नीड्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, उस तुम को छोड़कर आप कहते हो आई फील, या मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, या जब ये हुआ तो मेरे साथ ऐसी फीलिंग क्रिएट हुई, तो वो मैं करके जब आप बात करते हैं ना, तो आप अपने आप को मेन सेंटर में रखते हैं। स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए उस आई में कि जब मेरी बात बीच में रोक दी जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी बात को इम्पोर्टेंट नहीं दी जा रही, मैं चाहता हूं कि पहले मेरी बात सुनी जाए। तो आप किसी को फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर। अक्सर औकात होता है जो रिएक्शन वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं तुमने ऐसी बात बोली, तुमने ऐसा किया, तुमने ये कर दिया, माफी, तुमने ऐसे करी बात हो जाती है, तुम हमेशा लेट होती हो, तुम्हारी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुई है,
2: लोग समझेंगे तुम सही कह रही हो।
1: तो भाई जब ये तुम मैं में कन्वर्ट हो जाता ना, तो वो आई वाली स्टेटमेंट जाती है, exactly. वो आपको बेटर रिस्पांस देने में हेल्प करती है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले दी, गुड, जबरदस्त। इस पे हम रख सकते हैं, टॉपिक भी रख सकते हैं, आने वाले दिनों में समझ भी जाएंगे खुद भी, और ज्यादा लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अच्छी चीज है, अच्छी चीज को सीखना चाहिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

0: राइट, वेलकम बैक। हम आगे एक दफा फिर आप लोगों के साथ और बात हो रही है आज रिस्पॉन्डिंग और रिएक्शन के ऊपर, और हमारे काफी कॉलर्स आके बात करके गए हैं। हम मैसेजेस भी लेंगे, पहले कॉल ले लेते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, कोई है कि चले गए
0: हैं तो? ओ अच्छा अच्छा, मैंने ऊपर नहीं किया, सॉरी।
1: हेलो, जो मेरे साथ करती है
0: मैंने नहीं किया।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
2: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
1: जी मुदस्सिर भाई, आज मैंने एक गवाह बना लिया है, आज मैंने एक गवाह बना लिया है मुदस्सिर भाई। ये मेरे साथ भी करती है, मेरा फेडर ऑन करना भूल जाती है। आज आपका फेडर ऑन करना भूल गई है।
0: झूठ बोलने वालों का अलग से हिसाब होगा। मैंने कभी तुम्हारा
1: अलग जगह होगी।
0: नहीं भाई, मुदस्सिर भाई का हो गया था गलती से बंद, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं किया।
1: मुदस्सिर भाई देखें,
0: मुदस्सिर भाई आप तो, आपको तो पता है ना मैं मासूम हूँ।
1: कशकोल कहाँ है?
0: देख ली,
1: रुके। मुदस्सिर भाई, ये टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ है, इनसे कहती हूँ कि इसके अंदर जो है थोड़ी सी अपनी शराफत इसके अंदर डाल दें, मुझे दे दें, मुझे बहुत जरूरत है इसकी। दो औरतों के झगड़े में मैं क्यों आऊँ? अपना सर बचा के रखूँ, ये मेरा सर फोड़ेंगी एंड में।
2: सही बात है, मैं अपना सर बचाऊँ, ये सही है।
1: ये सही। हाँ मैं हाँ मिलाई हूँ। मुदस्सिर भाई कितनी औरतों के झगड़े में फंसे हैं वैसे कभी कभी, ये तो बताएं, कभी ऐसा हुआ है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं पता हूँ।
1: नहीं, इतना एक्सपीरियंस चल रहा है मुदस्सिर भाई का। मुदस्सिर भाई, हाँ हाँ, दो औरतों के बीच में नहीं आ चाहिए, फड्डे में नहीं आ चाहिए भाई। अच्छा मुदस्सिर भाई
2: अभी तक जी,
1: मैं कह रही थी कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा।
0: कहते कहते कुछ भूली है।
1: नहीं, मैंने कहा मुदस्सिर भाई बेचारे कुछ बोल रहे थे, बात कट गई उनकी।
0: अच्छा अच्छा, ये बताएं भाई कि आप क्या करते हैं? आप जवाब देते हैं सोच समझ के अगले बंदे को, या फिर कड़ा रहा ये लगा रहा वो वाला हिसाब किताब?
2: वो तो उसी मामले पे डिपेंड करता है ना।
0: अच्छा, दोनों चीजें हो सकती है, मतलब रिएक्शन भी रिस्पॉन्ड भी।

0: दोनों चीज रखता हूं मैं तो दोनों रखता हूं
1: अच्छा वाह एक के साथ एक फ्री
2: दोनों ऑप्शंस बरकरार रखे
0: मैं अभी ये एक घंटा पहले मैंने फट के जवाब दिया डायरेक्ट
3: अच्छा अरे भाई
1: ओ किसकी शामत आई थी
0: एक घंटा पहले झूठ नहीं बोलेगा झूठ का कोई फायदा नहीं है लेकिन उसने ऐसा बात किया ना उसका जवाब लाजमी था अगर मैं जवाब नहीं देता था उसके साथ भी करता था ऐसा
3: मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे होते
0: हैं कि बाद जगह पे ऐसे होते हैं कि उसको सोच समझ के बात करना या इग्नोर करना कोई मुश्किल नहीं है खाली वाली करो छोड़ो तो बाद जगह में ऐसे होते हैं उसको तुम जवाब देना लाजमी है
3: अगर नहीं दिया तो मतलब फिर आपने दूसरों को भी जो ना गर्क कर दिया साथ में वो दूसरों के साथ बेसी बात करेंगे
0: जवाब भी नहीं दिया और बाद जगह पैसा होते तुम जवाब नहीं देते हो फिर वो बोलता है कि ये कमजोर है कमजोर कोई भी नहीं है दुनिया में कोई भी नहीं है कोई आदमी इग्नोर करता है वो बोलता है छोड़ो खाली वाली करो
3: कुछ लोग ना
0: जो बोलते हैं कि छोड़ दो उसके ऊपर बार बार चढ़ाई आएगा
3: हाँ कुछ लोग ना आपको इज्जत दे रहे होते हैं ना कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ घर के बड़े होते हैं या कुछ होता है तो उनको ये बात भूल जाती है कि आपके सामने अगर कोई चुप है ना आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी इज्जत में नहीं दे रहा लेकिन वो अक्सर औकात उसे क्या समझते हैं कि ये डर रहा है हमसे तो डरता है
0: जी जी
3: तो ये
0: यही है और दूसरा बात यही है कि जो हमारा जो रईस भाई ने वो हैट्रिक किया है
3: हाँ जी रईस भाई
0: क्या नाम था रईस भाई
1: जी जी
0: रईस भाई से मैं गुजारिश करता हूँ जब आप फोन करते हो तो गाड़ी का शीशा बंद करो
3: अच्छा
0: हवा का इतना साउंड आता है कि हमारे कानों में दर्द हो जाए
1: वैसे ये बात तो आपने सही की है मतलब ये सही आपने नोट किया
3: रईस भाई जो ना वो जहाज चलाते हैं मगर बगैर खिड़कियां बंद किए
0: ये जब भी बात करता है ना इसका ये हवा का साउंड उसका आता है
1: तो मैं अच्छा ये मैं इस नतीजे तक पहुंची नहीं थी मुदस्सिर भाई पहुंच गए रईस भाई अगली दफा से शीशा बंद
0: रईस भाई हर वक्त फोन में पतंग की तरह हवा में उड़ रहा
3: हवा में उड़ता जाऊं
1: ये सही
3: पतंग उड़ाते हुए बात कर रहे होते हैं उन्हें पतंग पे सवार होके बात कर
0: रहे हैं भी आप लोगों को फोन कर रहे
1: हैं चलिए चलिए बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा दी जल्दी से ना मैसेज पढ़ दूं क्योंकि मोहम्मद यूसुफ भाई का जो मैसेज है वो कह रहे हैं कि कल मैसेज नहीं पड़ा था मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे सफा बोलने ही नहीं देती है मैं क्या करूं अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तौफीक अस्सलाम वालेकुम महावेश सफा
3: महावेश
1: जी
3: फायदा उठा रही है सीनियर होने का अच्छा
1: सीनियर सुई अटक गई अच्छा जी जी आगे आइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहम्मद यूसुफ जब भी मैं आपका मैसेज ना पढूं तो आप समझ जाइएगा कि ये सफा की वजह से हुआ है ठीक है
3: सबको
1: तो
3: पता है सब कुछ सबको
1: पता है इसीलिए तो यही तो वजह है देखो मैं जो हूं ना क्या कहना चाहिए उसको ऑफिशियल मासूम करार दे दी गई
3: ये कटोरा ये सामने बड़ा कटोरा नहीं डब्बा डब्बा ये टिश्यू का डब्बा इसके अंदर डालो
1: मैं ऑफिशियली मासूम करार दे जा चुकी हूँ मेरे नाम के साथ
3: भी हिचकिचा रही
1: हैं मासूम महावश लिखा जाए और पढ़ा जाए अब आप अपना सोचे आपका क्या होगा खैर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू यू मैटर में वेलकम किया हमें और आज गर्मी मुझे भी नहीं होती सफा जी की तरह आई हैव विटामिन डी एंड आयरन डिफिशियंसी अच्छा ये वाला सीन है
3: मैं भी वो बीमार झींगा हूँ मैं
1: तो विटामिन डी और आयरन की डिफिशियंसी हो तो आपको सर्दी गर्मी नहीं लगती
3: वो गर्मी नहीं क्योंकि आपके हाथ पांव हमेशा ठंडे रहेंगे आपको सर्दी लगती है उल्टा
1: अच्छा अच्छा और मैं ठंडी चीज़ें नहीं खा सकता
3: आयरन की वजह से होता है एनीमिया आयरन की वजह से होता है मैं भी ठंडी चीजें मुझे बहुत मसला होता है मुझे मैं अगर कोई कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगी ना तो मुझे फौरन छींकें शुरू हो जाएंगी यहाँ तक कि मैं रैपिड रूम टेम्परेचर चेंज होता है ना जैसे अगर आप मैं बाहर से आऊं और मैं जैसे गर्मी से मैं बिल्कुल सही हूँगी लेकिन जैसे ऑफिस के अंदर एंटर होंगी ना और एसी वाला एकदम से एक भपका लगेगा मुझे तो मुझे छींकें शुरू हो जाएंगी एलर्जी हो जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी मेरी वो सर्दी नहीं बर्दाश्त करती बॉडी एनीमिया की वजह से
1: सही सही अच्छा वैसे हेमोग्लोबिन जो है ना थोड़ा थोड़ा मेरा भी कम रहता है लेकिन मुझे तो गर्मी लगती है
3: मेरा अगर मैंने बता दिया ना ऑन एयर तो लोग परेशान हो जाएंगे
1: आके मतलब खून डोनेट करना
3: शुरू कर देंगे
1: सही सही
3: बोतलें चढ़ेंगी
1: बोतलें चढ़ेंगी तो मैं ठंडी चीजें नहीं खा सकता और हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है गलती होती है उसके बाद सीख मिलती है फिर दोबारा मिस्टेक होती है तो फिर अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है फिर वही गलती को आराम सुधार के आगे बढ़ जाता हूँ और इसके अलावा कहते हैं जी मुझे भी ये होता है कि किसी से बहस हो चुकी है पहले तो होती ही नहीं थी अगर हो गई तो फिर बाद में मुझे ये ख्याल आता रहता है बहुत सारी बातें याद आती हैं फिर मुझे ये कहना था मुझे वो कहना था ये जवाब देना था तो बाद में सोचने से क्या फ़ायदा तो जब वो बात बोलनी थी तभी बोलनी थी वक्त गुजर जाने के बाद फिर क्या फ़ायदा उस पर सोचना फजूल है लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है
3: फजूल नहीं हम बात को बबल गम की तरह खींचेंगे

0: हाँ अच्छा, ये इन्होंने कल जवाब दिया था तो इन्होंने दोबारा भेजा है। शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएम 107 और इसके साथ
1: मलाइजा होशियार।
0: और रियाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड वाला मॉर्निंग, और मैंने एक टाइम पर अपने गुस्से पर रिएक्ट करने से अपना सुकून दूसरों को हट किया, लेकिन जब मैं परदेश आया प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो तब मुझे एहसास हुआ कि इसमें खुद का सुकून बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं होता। तो मुझे अपने गुस्से की वजह से उस टाइम एक टाइम के बाद स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई। जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, आपका रेडियो स्टेशन सुनने लगा, महावश मैम का एक शो आता था वो सुनने लगा, कि जब धीरे धीरे मैं सेट हो गया तब सब्र करके अब सब कुछ इग्नोर करके और लिमिट लोगों से रख के मैं रिश्ते रखता
1: हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, महावश आपने कभी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस की है?
0: नहीं
1: मैंने की है, शायद तभी जो है ना वो चीज दिमाग के अंदर है कि भाई क्या हर चीज को दिल पे लेना, क्या हर चीज की एंजाइटी पालना। तो अगर आप हॉस्टल लाइफ, जैसे इन्होंने कहा ना परदेश आ गया, एक एज ऐसी होती है इसके अंदर आप अगर घर वालों से और ये आप थोड़ा सा गैप हो जाता है ना आपका, फिर जो दुनिया आपको सिखाती है ना वो अलग ही लेसन होते हैं भाई उसके अंदर। या तो फिर आप बहुत ज्यादा माचिस, बिल्कुल आप माचिस तीली की तरह होते हो, या तो फिर आप साइलेंट रहना सीख जाते हो, या तो फिर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस नेचर की तरफ खींचते हो। मैं इस नेचर की तरफ खींच गई कि मैंने कहा नहीं भाई किनारा कर लो, खली वली ये चीखते रहेंगे, इनको चीखते रहेंगे तो मेरा क्या जाता है, इनके दिमाग में जो है वो तो चलता रहेगा।
0: कॉम्प्रोमाइजेस की भी थोड़ी सी आदत हो जाती है इनके, हर तरह के लोगों के साथ रहना।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
0: सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, सफा मैम, क्या हाल चाल है, खुश रहो इंशाल्लाह, ठीक, इस तरह से कुछ है।
1: कौन है?
0: बोला इन्होंने, ये हसनैन है।
1: हसन,
0: मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरा बिल्कुल भी नाम नहीं लिखा, आपने सिर्फ सफा को पूछा। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, इनकी कदर करें आप।
1: मुबीन भाई आप तो बात ही ना करें, आपके डीकोड मैसेज यही कर सकती हैं
0: जी। मासूम महावश जी, और सलाम भी किया था, गुड मॉर्निंग भी बोला था, और अब मैं सारे मैसेजेस मुबीन बुखारी के ही पढ़ूंगी।
1: सोच लें माविश, सोच लें, क्योंकि इनके मैसेजेस डीकोड करना ना बहुत, मतलब आपको अलग से डिग्री दी जाएगी, पीएचडी।
0: और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सफा जी, माविश जी कैसे हो आप दोनों, उम्मीद है कि सफा जी वैसी की वैसी होंगी जैसे कल थी और माविश भी ठीक होंगी, मतलब खुशबू लगा के।
1: हाँ
0: मुझे पूरा कोई लिख के भेजा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, उसमें से ना पता नहीं क्या कुछ निकल जाता है।
1: मैं अगर बोलूँ ना तो मिस्टर बीन याद है आपको, मिस्टर बीन एक चलता था कॉमेडी, उसके कोट के अंदर से कहीं से मछली निकल रही होती थी, कहीं से मेरा कोट बिल्कुल वैसा ही है,
0: तो वैसे ही है, ये बात तो सही है। That's why only सफा को बोला, मैंने सिंधी में बोला है ना, तो that's why only सफा को बोला।
1: अच्छा,
0: okay, ये सिंधी में बोला है आपने, ठीक है जी।
1: भाई ये भी कराची वाली है, कराची सिंध में आता है, मुझे सिंधी नहीं आती, ये एक और ड्रॉबैक है।
0: पढ़ी है हमने तो नंजो नालो क्या है, छा है, और ये सब कुछ पढ़ा है हमने, लेकिन हम भूल गए। अच्छा जी, आप दोनों की जोड़ी नंबर वन है, मुबारक हो, ये तौफीक कह रहे हैं।
1: अभी इस स्टेटमेंट को, ये मैसेज जिनका आया ना, इसको मैं प्रिंट आउट करा के यहाँ पे
0: लगा दो,
1: स्टूडियो में लगाऊंगी मैं, और हमारे जो बड़ा वाला ऑफिस है ना उसके भी आगे।
0: और इसके अलावा जो है, कौन है, कौन है भाई, ये मैसेज है, उम्रो यार की जंबीर, उम्रो यार की जंबीर में से सब कुछ निकल आता था, तो सफा की जैकेट बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा जी, कॉल ले सकते हैं ना,
1: अभी तो
0: ले सकते हैं, एक कॉल ले सकते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
2: क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का।
2: मैडम जी, ये पूछना था कि वो जो इनाम हम लोग जीते हैं वो पैसा मिलेगा या उम्मीद उन्हें छोड़ दें हम लोग?
0: क्या नाम, क्या है भाई आपका
2: नाम? पड़ेगा मेरा मोहम्मद सरताज खान, और हमने रमजान में प्राइज जीता।
0: अच्छा देखिए, ये तो ना ये वाले जो मामला था ना, ये ऑफिस के मामला आते हैं, तो उधर कॉल करके आपको पूछना चाहिए। अभी हम लोगों को तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं होता, हमारा काम ये होता है जब चल रहा है उस वक्त हम नाम लिखते हैं, नाम लिख के उनके हवाले कर देते हैं, तो वो चीज आपको इंशाल्लाह ताला वहां से पता चलेगी, वहां पे पूछे, हमसे पूछेंगे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम वो लोग हैं, हमें पता ही नहीं है कुछ।
2: प्राइज तो मैम आप ही लोग जिताए हैं, तो हम लोग पूछे किससे?
0: हम नहीं, वो जो ऑफिस का नंबर एक कांटेक्ट करता है ना, उधर से आप कॉल करके पूछिए, तो वो आपको सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं पता होता, और इस हवाले से मतलब क्योंकि हमारा काम नहीं है ना, तो हम उनसे पूछ भी नहीं सकते।
2: अच्छा, तो वैसे तो हम उम्मीद छोड़ दी है कि वो मिलेगा नहीं।

जाएगा, उम्मीद उम्मीद रखें, उम्मीद तो रखनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये वाला सवाल ऑफिस कॉल करके कीजिए, क्योंकि हम लोग सीरियसली, मतलब हम अगर ज्यादा जाके पूछेंगे तो कहते हैं आपका ये काम नहीं है, आपका काम था

0: तो लाजमी होना चाहिए, तो आपको उसी नंबर पे फोन करके बताना चाहिए, या फिर आपको किसी का IBAN जो आप ही के नाम पे होगा डेफिनेटली वो आपको लाजमी देना है. उसके बाद यही मसला हुआ होगा आपका कि इस वजह से नहीं मिले होंगे. लेकिन ये इस तरह की मैं तमाम लोगों को कह रही हूँ, आपके इंक्लूड, कि जो भी ये वाले इस तरह का सवाल है ना, प्राइज मिलने वाला, उसके लिए जिस नंबर से कॉल आती है उसी पे कॉल बैक किया करें.
1: ठीक है,
0: चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, और ये एक और मैसेज ये भी पढ़ती हूँ मैं. रियाज कह रहे हैं महावर जी हमारी फेवरेट टीचर हैं.
2: अस्सलामुअलैकुम टीचर.
0: सुने सुने सफा, आपके लिए खास तौर पे मैं बता रही
2: हूँ. नहीं,
0: ये वाले सुने ना, ये वाली बात है, ये सुने, ये सुने.
2: आपकी शक्ल नहीं ना, उससे मुझे पता चल रहा है कुछ आ रहा है मेरे लिए, बहुत धमाकेदार.
0: नहीं, वो नहीं आया, मजाक करी. सलाम माई मैम एंड सफा मैम, वेरी नाइस योर शो. सुरजीत कह रहे हैं और उसके साथ ही उस्मान और सही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम, दोनों को अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: चले जी, तो इसी के साथ भाई हमारा जो है वो जाने का वक्त हो गया. मोहम्मद यूसुफ जो है कुछ टाइप करें और एनीमिया के बारे में कह रहे हैं. हाँ, बहुत सर्दी होती है जब कोई ठंडी जगह या लाइक फिश सेक्शन वगैरह मॉल में जाता हूँ ना, तो सांस रुक जाता है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, अस्थमा अटैक हो जाता है, तो ये सारी बेहद तकलीफ होती है. तो फिर सही सही सही चले.
2: देखो, मुझे मेरे जैसा कोई मिल गया जो जज्बात समझ सकता है मेरे. शुक्र है सरवर भाई जैसा कोई ना टकराया. सरवर भाई तो बिल्कुल भी ना सुनते भाई. सरवर भाई कहते हैं भाई आज कल ना, आज निकलो, लेकिन ऐसी बात नहीं करो.
0: अच्छा, अब दोनों पाकिस्तान से हैं क्या? बिल्कुल जी, हम दोनों पाकिस्तान से हैं, ये कोई पूछ रहा था. चले जी, इसी के साथ हमें लेना है आपसे इजाजत और कल हम आएंगे इंतहाई खुशी खुशी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला कल हम वीकेंड के साथ मौजूद होंगे यहाँ पे.
2: आखिर में आप लोगों से ये कहा जाएगा कि देखें, हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पांस जरूर कंट्रोल कर सकते हैं साथियों. देखो प्लीज, मेहरबानी करके, इसीलिए फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ नहीं होता, जरा सोचो और फिर रिस्पॉन्ड करो. यकीन जानो, रिस्पॉन्ड करने में जो मजा है ना, मैंने सीखा है, मुझे पता है. मैंने रिएक्ट भी करके देखा है, मैंने रिस्पॉन्ड करके भी देखा है. रिस्पॉन्ड करने में सामने वाले की और ज्यादा हटती है,
0: और ज्यादा हटती है,
2: और ज्यादा हटती है. तो वो रिएक्ट नहीं करो, क्योंकि अगर आपको सामने वाला आपको जिसे हम कहते हैं ना
0: उकसा रहा है,
2: तो वो हमेशा आपसे रिएक्शन चाहता है, ताकि वो चार लोगों के सामने आपको और ज्यादा नीचा दिखा सके. लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो वही चार लोग आगे बढ़े, कहते हैं भाई क्या बंदा, क्या सेट वाला जवाब दिया है. याद रखिए, आपकी स्ट्रेंथ इस बात में नहीं है कि आप क्या फील करते हैं और किस तरह से आपने एकदम से मुंह फट के बोल दिया, बल्कि इस बात में है कि आप उन फीलिंग्स के साथ करते क्या हो भाई, और फिर उनसे दूसरों को कैसे और जलाते.
0: मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, लग रहा है जैसे हम ना वो लड़ाई झगड़े फड्डों की ना टिप्स दे रहे हैं. ऐसे नहीं लड़ना है, ऐसे लड़ना है, लेकिन लड़ना है.
2: देखो, तरीके से लड़ना सिखा रहे हैं, तरीके से पकड़े भी नहीं जाओगे, वेपन भी नहीं मिलेगा किसी को.
0: बिल्कुल जी, चले जी, तो इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़.

0: privacy ka tahaffuz aitmad ko mazboot banata hai. National Cyber Security Agency awam se appeal karti hai ki apni zati malumat share karne se pehle privacy policy ko gaur se padhein taki aap jaan sakein ki aapki malumat kis tarah istemal ki jayengi. आप सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। इंसान को अपनी ख्वाहिशात का जायजा लेना चाहिए कि हमारे दिल के अंदर क्या कुछ बसा हुआ है। इसके अलावा मनफी रुझानात को देखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ऐसे जज्बात नहीं जिनसे मनफी रवैये जन्म लेते हैं। मसलन हसद, बुक्स, किब्र, नफरत, इन तमाम चीजों से दिल को साफ रखना चाहिए और दरगुजर से काम लेते हुए दूसरों को माफ कर देने की आदत डालनी चाहिए। याद रखिए कि माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में चलते हैं। अल्लाह ताला पर तवक्कुल, उसके फैसले पर राजी रहना, उसके अमर को तस्लीम करना और अपने मामलात उसके सुपुर्द करना ही ईमान की निशानी है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: FM 107।
5: दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, प्रोग्राम आज की दुआ में आपको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम रोजाना एक कुरानी या नबवी दुआ सीखते हैं। तो आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की, जब उनकी कौम ने मुसलसल इनकार और तकजीब की। ये दुआ मजलूम नबी की पुकार है जो रब्बुल आलमीन के हुजूर फैसला और नजात की दरख्वास्त है।

0: और मुझे और मेरे साथ ईमान लाने वालों को उनके जुल्म और अजाब से नजात दे। समीन ये दुआ मजलूम की फरियाद और ईमान वालों के लिए रब की पनाह का जामे नमूना है। इस दुआ से हमें कीमती सबक मिलते हैं, जिनमें सर फहरिस्त दावत के रास्ते में सब्र, फैसला अल्लाह के सुपुर्द करना, मजीद ईमान वालों की इज्तिमाई हिफाजत, यानी नूह अलैहि सलाम ने सिर्फ अपनी नजात नहीं मांगी बल्कि मोमिनीन की सलामती भी तलब की। इसी तरह बातिल के मुकाबले में दुआ सबसे कवी हथियार है, यानी जब वसाइल खत्म हो जाए तो बंदा दुआ से अल्लाह की मदद तलब करता है। खुलासा कलाम, आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि जब हालात मुश्किल हो जाएं और बातिल गालिब नजर आए तो मोमिन अल्लाह की अदालत और उसकी निजात की तरफ रुजू करे। आइए हम सब आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बि इन कौमी कज़बून फाफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा व नजिनी व मन मअ मिन अल मुमिनीन।
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, Only on FM 107, दिल से देसी।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
7: दिल से देसी।
0: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायात की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामिन किराम, आज की सुन्नत का ताल्लुक एक ऐसे दिन से है जो एक मुसलमान के हफ्ते का सबसे खास दिन है, और वो है जुमे का दिन। जुमा आता है तो एक मुसलमान के मामूल में एक खूबसूरत तब्दीली आनी चाहिए। ये दिन हमें गोया हफ्ते भर की मसरूफियात से निकाल कर याद दिलाता है कि आज अल्लाह के घर की तरफ जाना है, मुसलमानों के इस्तेमाल में शरीक होना है, खुतबा सुनना है, नमाज अदा करनी है और अपने रब के सामने हाजिर होना है। और जब हाजिरी इतनी अहम हो तो उसकी तैयारी भी अहम होगी, इसीलिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमे के लिए तहारत, सफाई और बिलखसूस गुस्ल की बड़ी तरगीब मिलती है। सामने किराम, इस्लाम ये तो बताता है कि नमाज आपने कैसे पढ़नी है, साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आप नमाज तक कैसे पहुँचें। आपका जिस्म पाक हो, लिबास मुनासिब हो, आप दूसरों के लिए बाएं से अजियत ना हो और आपका जहन भी उस इबादत के लिए तैयार हो। समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन वजू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और ये बहुत उमदा सुन्नत है, और जिसने गुस्ल किया तो ये अफजल है। इसे अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्न माजा, दारमी और अहमद ने रिवायत किया है। तो जुमा चूंकि इज्तिमा का दिन है, मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, सफ़े बनती हैं, लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, खुतबा सुनते हैं, एक इज्तिमाई इबादत का मंजर कायम होता है। तो ऐसी जगह इस्लाम सिर्फ आपकी ज़ाती सहूलत नहीं देखता बल्कि आपके साथ बैठे हुए शख्स का हक भी देखता है, यानी मुसलमान ऐसा हो कि उसकी मौजूदगी दूसरे के लिए खुशगवार हो, नागवारी का सबब न हो। यही वजह है कि तहारत

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. Smoking health ke liye khatarnak hai. Ye to kaha jata hai. मगर ये भी बहुत अहम है कि स्मोकिंग को कोट कैसे किया जाए, यानी स्मोकिंग छोड़ने के सेहत पर जो बहुत सारे मुस्बत असरात हैं, जिनमें से बहुत से असरात फौरन नजर आना शुरू हो जाते हैं, और वही हम उसका जायजा लेंगे कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि आपको इरादा करना बहुत जरूरी है, तो ये 20 मिनट से ही शुरू हो जाते हैं। जब 20 मिनट के बाद खून का दबाव और दिल की धड़कन मामूल की सतह पर आ जाती है, इसी तरह से 8 से 12 घंटे अगर हो जाते हैं तो हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की सतह कम हो जाती है और ऑक्सीजन की सतह मामूल पर आ जाती है। ये सिर्फ 8 से 12 घंटे के दौरान ये हो सकता है। 24 घंटे जब आपको हो जाते हैं कि आपने स्मोकिंग जो है वो क्विट कर दी है, तो फिर हार्ट अटैक जो खतरा है हार्ट अटैक होने का, वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह 48 आवर्स जब गुजर जाते हैं, 48 घंटे, तो हमारे जो नर्व्स हैं वो दोबारा से अपनी मजबूती की तरफ जाती हैं, जिससे जायका और खुशबू महसूस करने की जो हिस है, जो कि स्मोकिंग करने से बहुत कम हो जाती है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर निकोटीन हमारे जिस्म से निकल जाती है, और अगर 72 घंटे हो जाएं तो फिर ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वो नर्म हो जाती हैं, उससे सांस लेना आसान हो जाता है, और फेफड़ों की जो काम करने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर एक हफ्ता हो जाए तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश बेहतर होती है, और जिस्मानी सरगर्मी करना यानी एक्टिविटी करना आसान हो जाता है। इस तरह आपका चिड़चिड़ापन और बेचैनी वो भी कम होना शुरू हो जाती है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
3: आपने सुना हमें on air, now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar, Dil Se Desi.

0: आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: दोस्तों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है आपके? बढ़िया, आई होप यू गुड। मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ बहुत तगड़ी, क्योंकि इस बार लिस्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिखाएंगी भी, नॉट जस्ट यू नो किलिंग योर बोर्डम, तो आपके काम आएंगी। एंड साथ में खबर आई है मार्केट में फैल रही है, इनकेस आपको नहीं पता तो मैं अपडेट कर दूंगा, जिन्हें पता है वेरी गुड, गुड जॉब डन। ये लीजिए ताली और ट्रॉफी में बनवा रहा हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। शुरू करें। ऑलराइट, सो ऑन द लिस्ट नंबर वन, सबसे पहले बताना चाहूंगा एक वेबसाइट जिसका नाम है warnontv.net। लेट मी स्पेल इट आउट। वॉर्न यानी पहनने वाला, WORN वॉर्न, फिर ऑन ON, फिर टीवी warnontv.net। अब क्या होता है, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, और वो सीरीज देखते देखते आपको लगा यार ये कपड़े इसने बढ़िया पहने, यार ये कहाँ मिलेंगी, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसमें अगर वो शो आपको मिल जाता है तो आप उस शो के एपिसोड नंबर को अगर डालेंगे तो ये दिखा देगा कि हाँ ये वाले कपड़े पसंद है। आप क्लिक करेंगे, हाँ जी ये वाले पसंद है, फिर वो आपको बताएगा ये कपड़ा कहाँ मिल सकता है या ये सिमिलैरिटी, ऐसे ऐसे कपड़े आप कहाँ से ले सकते हैं। एंड ये नहीं कहेगा आपसे कि ये लो जी 3,000 रियाल खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, आपको बजट फ्रेंडली भी आइडिया दे देगा कि भाई ये वाला पसंद आया ना, ऐसा यहाँ मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप ट्राई करके देखिए। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, ये किसी ने सोचा होगा भाई, उसको मेरा सलूट है। ठीक है, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का नाम है arcadespace.org, arcade space space space.org, arcadespace.org। अब आप बैठे हैं, मान लीजिए आपकी शिफ्ट पूरी हो गई, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, आप बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने और आप बैठे हुए क्या करूं यार, बहुत बोर हो रहा हूं मैं, तो आप arcadespace.org पे जाएंगे। उसमें आपको सारे कंसोल के जो गेम्स हैं, पुराने वाले रेट्रो गेम जिनको खेल के भाई कती मजा आ जाते थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्लेस्टेशन 1 के हों, चाहे वो निंटेंडो के हों, जितने भी रेट्रो गेम्स हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और ये आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हैं, कोई डाउनलोड साउनलोड की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा सामने शुरू किया और खेलना शुरू। मुझे तो बहुत मजा आया, आप देख लो, आपको आई एम प्रीटी श्योर अच्छे लगेंगे, बिकॉज है तो यार ये भी काम की चीज, ऐसा नहीं कह सकते ये काम का नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक और वेबसाइट, चलो लगे हाथों बता देता हूँ जब आप आ ही गए तो। अगली वेबसाइट का नाम है muted.io, muted.io। इस वेबसाइट पे जाके, पता नहीं इसका नाम म्यूटेड क्यों है, लेकिन आप पूरा का पूरा म्यूजिक सीख सकते हैं, नोट्स कैसे होते हैं पियानो पे, गिटार पे, वायलिन पे, सब कुछ आपको गहरी नॉलेज मिलेगी म्यूजिक। नॉट जस्ट दैट, आप अपने लिए खुद बीट्स भी बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये इतना बढ़िया टूल है ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप यूज करेंगे आपको मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं मैं। अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज दिस वीक। गूगल पिक्सल की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सल की एक और खबर आई है जिसको सुनकर मैं ज्यादा शॉक नहीं हूं, वो है कि गूगल पिक्सल टैग बहुत जल्दी आ रहा था, आ चुका है भाई साहब, टैग आ चुका है गूगल पिक्सल का, जिन्हें नहीं पता, ये ब्लूटूथ चैनल को यूज करता है एंड ये गूगल के हब को यूज करता है, एक पूरा इकोसिस्टम है, ये चाबी, वॉलेट, लगेज, हर जगह आप इसको इसके साथ काम कर सकते हैं। जब एप्पल ने टैग्स लॉन्च किए थे तब ये आइडिया बहुत ही अजीब लगा था लोगों को, इनिशियली लोगों ने कहा ये क्या है, इसका क्या काम है, बट देन वी अंडरस्टूड के नहीं भाई जरूरत है इस चीज की। प्राइसेस में वेरी, एक महंगा कोई सस्ता हो सकता है, बीच में बहुत सारे और भी कंपनीज ने ट्राई किए टैग्स बनाने के, बट गूगल भी इस मार्केट में उतरेगा ये मैंने थोड़ा सा भांप लिया था, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज फाइनली हियर। तो अगर आप एप्पल के टैग को यूज कर करके फैंसी दिख चुके हैं कि मेरा हो गया भाई, तो आप गूगल पिक्सल का टैग ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। इसमें साउंड भी है, मतलब इसमें साउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चाबी, वॉलेट और लगेज की सेफ्टी के लिए। ओके, ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अपडेट, मिलते हैं अगली बार दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
2: नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी ज़ाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें, आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
3: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है।
1: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमृता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: FM 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: स्कैम अलर्ट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड और स्कैम से मैं बचाने के लिए हर रोज हाजिर होता हूं और आज हम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटे और बड़े बिजनेसेस को टारगेट करते हैं ये है फेक इनवॉइस फ्रॉड ये बहुत ही खतरनाक और असरदार तरीका बन चुका है आजकल स्कैमर्स के लिए इस स्कैम में हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स बिना किसी डर के डायरेक्ट आपके फिनांस डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं और कई लोग बच जाते हैं जिनको इस तरह के फ्रॉड के बारे में पता हो दोस्तों फेक इनवॉइस फ्रॉड तब होता है जब स्कैमर्स आपकी कंपनी को उन प्रोडक्ट्स मटेरियल्स या सर्विसेज के बिल्स भेजते हैं जो आपके बिजनेस ने कभी ऑर्डर किए ही नहीं इन फ्रॉड बिल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये देखने में 100% असली लगते हैं स्कैमर्स उन्हीं वेंडर्स या सप्लायर्स के नाम का डुप्लीकेट बिल बनाते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं जैसे कि ऑफिस सप्लाई स्टोर्स क्लीनिंग सर्विसेज यूटिलिटी कंपनीज या फिर आपके डोमेन रजिस्ट्रार्स और वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपकी कंपनी की वेबसाइट चलाती हैं वहां पर भी स्कैमर्स अक्सर ईमेल्स में बहुत ही डरावनी और अर्जेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं मिसाल के तौर पर ईमेल में लिखा होगा अर्जेंट नोटिस आपका वेब होस्टिंग डोमेन एक्सपायर हो चुका है अगर आपने 24 घंटे के अंदर नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में फी पे नहीं किया तो आपकी कंपनी की वेबसाइट और कॉर्पोरेट ईमेल्स को हमेशा के लिए बंद यानी कि शट डाउन कर दिया जाएगा इस अर्जेंट नोटिस पे आप कैसे बिहेव करेंगे आपको लगेगा फी पेमेंट करना बहुत जरूरी है फी देना बहुत जरूरी है आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आप कुछ आगे का एक्शन लेंगे लेकिन तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा बड़े या बिजी बिजनेसेस में जहां अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स पर काफी वर्कलोड होता है वहां एम्प्लॉइज हर छोटे बिल को गहराई से चेक नहीं करते उन्हें लगता है कि अमाउंट छोटा है और अगर वेबसाइट बंद हो गई तो बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा इसी जल्दबाजी और डर का फायदा उठाकर अकाउंट्स के लोग बिना इन्वेंटरी या मैनेजर से कंफर्म किए बिना बिल पे कर देते हैं और कंपनी का पैसा सीधे स्कैमर्स के अकाउंट में चला जाता है लेकिन इस तरह के स्कैम से बचा कैसे जाए ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों फेक इनवॉइस फ्रॉड से बचने के सॉलिड सॉल्यूशन बिल्कुल हाजिर है क्लियर इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम जैसे कि कुछ कल भी हमने बात करी थी पीओ सिस्टम के बारे में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाएं कभी भी इनवॉइस यानी कि बिल का पेमेंट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा यानी कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक परचेज ऑर्डर होना जरूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गुड्स रिसीट नोट और मैनेजर का साइन ये साथ में मैच किया जाना ही चाहिए अगर कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं मिलती तो उस बिल को तुरंत रिजेक्ट कर दें उसके अलावा सेंडर का ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन जब भी कोई अर्जेंट बिल आए तो हमेशा सेंडर के ईमेल आईडी को गौर से चेक किया जाए स्कैमर्स असली कंपनी जैसे दिखने वाले फेक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं अगर ईमेल एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती दिखे तो समझ लीजिए ये एक फ्रॉड है उसके अलावा डायरेक्ट वेंडर कंफर्मेशन अगर आपको किसी ट्रस्टेड सप्लायर के नाम पर कोई सस्पिशियस या बहुत अर्जेंट बिल मिलता है तो ईमेल पर रिप्लाई करने के बजाय उनके पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उनका रियल फोन नंबर निकालें उन्हें डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कोई बिल भेजा है या नहीं उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल अकाउंट्स कंपनी में हर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने या बैंक ट्रांसफर अप्रूव करने के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए एक फिक्स्ड टीम या सीनियर अकाउंटेंट को ही इसका एक्सेस दीजिए ताकि हर ट्रांजैक्शन पर डबल चेक लग सके उसके अलावा स्टाफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अपने अकाउंटिंग स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर साइबर फ्रॉड के बारे में ट्रेन करें उन्हें समझाएं कि स्कैमर्स हमेशा अर्जेंसी और डर का यूज करते हैं इसलिए किसी भी अर्जेंट ईमेल को देखकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें उसके अलावा जब भी खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो जाता है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है ये कि आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करें जितनी जल्दी आप बैंक में इत्तला करेंगे अपने बैंक को इत्तला करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करेंगे उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे तो आपका गया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है ये आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम

0: से बचने का, फ्रॉड से बचने का। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। ओलंपिक साइकिलिंग की तारीख में दोस्तों अगर सबसे कामयाब राइडर्स की बात की जाए तो सर क्रिस हॉय का नाम जरूर सामने आता है। ग्रेट ब्रिटेन के इस लेजेंडरी साइक्लिस्ट ने ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग में 6 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया। यहाँ दोस्तों क्रिस हॉय की ओलंपिक गोल्ड मेडल जर्नी सन 2000 से सन 2012 तक जारी रही। उन्होंने मुख्तलिफ ओलंपिक गेम्स में अपनी स्पीड, पावर और एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी का शानदार मुजाहरा किया। हॉय ने पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल सिडनी 2000 में जीती। इसके बाद उनकी कामयाबी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता था। बीजिंग 2008 में उन्होंने एक ही ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी डोमिनेंस साबित की। जबरदस्त परफॉर्मेंस। लंदन 2012 में अपने होम क्राउड के सामने एक और गोल्ड मेडल जीतकर क्रिस ने ओलंपिक साइकिलिंग में अपना टोटल 6 गोल्ड मेडल्स तक पहुंचा दिया। ये अचीवमेंट उन्हें ओलंपिक साइकिलिंग के सबसे कामयाब एथलीट्स में शामिल करती है। यहाँ दोस्तों क्रिस हॉय की कामयाबी सिर्फ मेडल्स की तादाद नहीं बल्कि सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की कहानी है। अब थोड़ा उनके प्रोफाइल को जानते हैं। क्रिस हॉय स्कॉटलैंड के एडिनबरा में 23 मार्च 1976 को पैदा हुए। उनका साइकिलिंग करियर BMX से शुरू हुआ और धीरे

धीरे वो ट्रैक साइकिलिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए। BMX से ट्रैक साइकिलिंग तक का जो सफर था वो आसान नहीं था, लेकिन हॉय की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उनकी मेंटल प्रिपरेशन थी। ट्रैक पर वो सिर्फ तेज नहीं थे, वो इनक्रेडिबली पावरफुल थे। ठीक है, कभी कभार स्पीड जो है ना वो अपने दिमाग से भी आप चला सकते हैं, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक। और जो मैकेनिकल स्पीड की बात है वो हमेशा आपको उस पोडियम फिनिश तक लेके नहीं जा सकता है। कभी कभार यू नीड टू हैव दैट तेज तरीन दिमाग, और वो क्रिस हॉय के पास था। उनकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी और टैक्टिकल इंटेलिजेंस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ट्रैक साइक्लिस्ट में शामिल कर दिया, और ये तो होना ही था। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता, और ये उनकी ओलंपिक जर्नी का पहला बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन असल में क्रिस का गोल्डन एरा एथेंस 2004 से शुरू होता है। एथेंस में उन्होंने किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और दुनिया को बता दिया कि ग्रेट ब्रिटेन के पास एक नया साइकिलिंग सुपरस्टार आ चुका है। खाता है बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स, यहाँ हॉय ने एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टीम स्प्रिंट, केरिन और स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीते। एक ही ओलंपिक्स में तीन गोल्ड मेडल्स, और इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें बर्तानिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टार्स में शामिल कर दिया। लंदन 2012 में कहानी और भी इमोशनल हो गई। अपने घरेलू मैदान में हॉय ने केरिन में गोल्ड मेडल जीता। वेलोड्रोम में मौजूद फैंस के शोर के दरमियान उनकी ये जीत ने ब्रिटिश साइकिलिंग के गोल्डन एरा को एक यादगार अंदाज में कंप्लीट किया। उनके करियर में सिर्फ ओलंपिक मेडल्स नहीं थे, मैं तो ओलंपिक्स की बात ही कर रहा हूं, इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी तो है ना। तो हॉय ने 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल्स और 34 वर्ल्ड कप टाइटल्स भी जीते। 34, जस्ट मार्क द नंबर 34। 2013 में प्रोफेशनल साइकिलिंग से रिटायरमेंट के बाद भी क्रिस हॉय का स्पोर्ट से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो साइकिलिंग, फिटनेस और मोटर स्पोर्ट से जुड़े रहे और यंग एथलीट्स को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने लंदन 2012 के वेलोड्रोम के डिजाइन में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। वही वेन्यू जो बाद में उनके नाम पर सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम के तौर पर मशहूर हुआ। लेकिन दोस्तों, क्रिस हॉय की कहानी के सबसे अहम और इमोशनल चैप्टर उनके स्पोर्टिंग करियर के बाद शुरू हुआ। 2024 में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर है, जो बाद में बोन सगेनी हड्डी तक फैल चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 से 4 साल की प्रोग्नोसिस दी, लेकिन क्रिस हॉय ने इस मुश्किल वक्त को हार के तौर पर नहीं देखा। 2025 में उन्होंने कहा कि उनकी ट्रीटमेंट एक स्टेबिलिटी स्टेज में है और वो फिजिकली अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो साइकिलिंग और एक्सरसाइज जारी रखते रहे। सितंबर 2025 में उन्होंने टूर डी फोर नाम की चैरिटी साइकिलिंग इवेंट शुरू की, जिसका मकसद स्टेज 4 कैंसर के बारे में सोच बदलना और कैंसर चैरिटीज के लिए फंड्स जमा करना था। इस इवेंट में 5,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और 2.1 बिलियन पाउंड से ज्यादा रेज हुआ। ये पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। 2025 के आखिर में हॉय ने ये भी कहा कि उनकी डायग्नोसिस ने उनका जो जिंदगी का आउटलुक है वो भी बदल दिया है। अब वो छोटी छोटी बातों की फिक्र कम करते हैं और हर दिन को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। दिसंबर 2025 में साइकिलिंग एक्सीडेंट में उनकी टांग टूट गई, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा साइकिलिंग क्रैश करार दिया। इसके बावजूद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रहा, और 2026 में भी, इस साल में भी क्रिस हॉय अपनी साइकिलिंग और पब्लिक एडवोकेसी को जारी रखे हुए हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने पोर्शे के साथ अपने मोटर स्पोर्ट्स पैशन और स्टेज 4 कैंसर के बावजूद प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में बात की। दोस्तों,
क्रिस हॉय की कहानी हमें बताती है कि चैंपियन होना सिर्फ पोडियम पर खड़े होने का नाम नहीं, कभी कभी असल चैंपियनशिप जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में हिम्मत बनाए रखना होता है। क्रिस हॉय ने ट्रैक पर मेडल जीते और अब वो जिंदगी में होप, अवेयरनेस और करेज का एक खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi. Dil Se Desi.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
4: Dil Se Desi.

कवर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत का गहरा रिश्ता समंदर से है। पुराने जमाने में कतर के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा समंदरी सफर, मछली पकड़ना और कश्तियों के जरिए रोजगार हासिल करना था। समंदर ने उन्हें मेहनत, सबर, हिम्मत और कुदरत का एहतराम सिखाया। कतर का बड़ा हिस्सा समंदर के करीब वाक़ है, इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत सी पुरानी बस्तियों में पानी और समंदरी वसाइल से करीबी ताल्लुक रखते थे। सुबह सवेरे कश्ती लेकर समंदरों की तरफ जाना और फिर मछली लेकर वापस आना एक आम मंजर होता था। मछली पकड़ना सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं था बल्कि एक हुनर भी था। इसके लिए मौसम, हवा, पानी की गहराई और समंदरी रास्तों का इल्म जरूरी होता था। ये तजुर्बे अक्सर बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को सिखाते थे। इस तरह ये हुनर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता रहा। पुरानी कश्तियों में ढाव का खास जिक्र मिलता है। ढाव लकड़ी की रिवायती कश्ती होती थी जो कि समंदरी सफर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसकी तैयारी और मुरम्मत के लिए हुनरमंद लोग जरूरी होते थे। कश्ती साजी भी कतर के बहरी वर्से का एक दिलचस्प हिस्सा रही है। समंदर का सफर हमेशा मेहनत और तवज्जो का मुतालबा करता था। कश्ती पर काम करने वाले अफराद मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। कोई कश्ती के इंतजाम पर तवज्जो देता, कोई जाल और सामान संभालता, जबकि कोई महफूज सफर के लिए आस पास के हालात का जायजा लेता। इस तरह टीम वर्क और एक दूसरे पर भरोसा बहुत अहम था। जाल तैयार करना भी एक हुनर था। मछेरे अपने सामान को एहतियात से संभालते थे और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। उनकी मेहनत हमें याद दिलाती है कि पुराने जमाने में रोजमर्रा की अशिया भी इल्म, तजुर्बे और सबर से तैयार की जाती। समुद्री जिंदगी ने खाने पीने की आदतों पर भी बहुत असर डाला। मछली और दूसरे समुद्री खाने कतरी दस्तरखान का हिस्सा होते थे। इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जा सकता था। घरों में खाना तैयार करने के अंदाज और मसाले मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन समंदर से रिश्ता कायम रहता है। बहरी वर्से का ताल्लुक सिर्फ काम से नहीं बल्कि यादों और रिश्तों से भी है। बुजुर्ग अपने बचपन के समंदरी तजुर्बे सुनाते हैं। वो कश्तियों, सफरों और समंदर से जुड़ी जिंदगी के बारे में बताते हैं। ऐसी कहानियां नई नस्ल को अपने वर्से की अहमियत समझने में मदद देती हैं। कतर की बहरी सकाफत में मोती हासिल करना भी खास मकाम रखता है। मोती की तलाश के लिए लोग समंदर में जाते, लंबे वक्त तक मेहनत करते और खुसूसी हुनर इस्तेमाल करते थे। ये काम हिम्मत, सबर और टीम की सूरत में काम करने का तकाजा करता था। मोती और मछली दोनों ने कतर की जिंदगी में अपना किरदार अदा किया। समंदर ने लोगों को ये सिखाया कि हर कामयाबी के लिए मेहनत और सबर जरूरी है। इसीलिए बहरी वर्सा आज भी इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज के कतर में समंदरी जिंदगी के अंदाज बदल चुके हैं, लेकिन इस वर्से को संभालने की कोशिश जारी है। सकाफती प्रोग्राम, म्यूजियम और समंदरी त्योहार लोगों को पुराने वक्त की कश्तियों, औजारों और रिवायती हुनर से मुतारिफ करवाते हैं। बच्चों और नौजवानों के लिए ये मौके बहुत मुफीद हैं। वो जान सकते हैं कि उनके बुजुर्ग किस तरह समंदर से वाबस्ता थे और किस तरह मेहनत के जरिए अपने घरों की जरूरियात पूरी करते थे। वर्से को समझना अपनी पहचान को बेहतर तौर पर समझने का एक तरीका है। समंदर सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि कतर की कहानी का एक अहम सफा है। इस मेहनत, उम्मीद, सफर और अपने प्यारों के लिए बेहतर जिंदगी की कोशिश शामिल है। मछली पकड़ने की रिवायत हमें कदर करना सिखाती है। कदर कुदरत की, कदर मेहनत की और कदर उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी इस हुनर से वाबस्ता रखी। आज भी समंदर के किनारे खड़े होकर जब कश्तियां, लहरें और पुरानी कहानियां याद आती हैं, तो महसूस होता है कि विरसा सिर्फ गुजरा

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है उनकी कुर्बानियां सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महविश खान और शो सुन रहे हैं आप स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स और इसकी एक और एपिसोड लेके मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं ये वो सिलसिला है जहां हम अल्लाह ताला के बरगजीदा अंबिया कराम अलैहि सलाम की जिंदगियों से जुड़े वाकयात और उनकी तालीमात को याद करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सदियों पहले दी जाने वाली ये हिदायत आज हमारी जिंदगियों में किस तरह रोशनी पैदा कर सकती हैं हमारी पिछली एपिसोड में हमने इंसानी तारीख का जो आगाज था वो देखा था हमने हजरत आदम अलैहि सलाम के बारे में बात की हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह इज्जत अता फरमाई उन्हें इल्म दिया फरिश्तों के सामने उनका मकाम जाहिर किया और फिर हमने ये भी सीखा कि तकब्बुर किस तरह से अल्लाह की नाफरमानी तक ले जा सकता है हमने शैतान के वसवसे के बारे में भी बात की और ये समझा कि इंसान से गलती हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता जब इंसान अपनी गलती को तस्लीम करता है अपने रब की तरफ वापस आता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से महरूम नहीं करता और आज हम उसी इंसानी तारीख के एक और अजीम नबी की तरफ बढ़ते हैं एक ऐसे नबी की तरफ जिनका जिक्र कुरान

0: प्राइवेसी का तहफ्फुज एतमाद को मजबूत बनाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात शेयर करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को गौर से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि आपकी मालूमात किस तरह इस्तेमाल की जाएंगी। आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सरवर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। आज भी बहुत सारी बातें लेकर आए हैं और एक घंटा होता है, हो जाता है काफ़ी कम हम दोनों के लिए और आपके लिए। लेकिन चलिए, जो भी है जैसा भी है उसमें बस शुक्र अदा करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर हाल में हर तरीके से खुश रहो भाई। तो बस इसी प्यारे से पॉजिटिव से नोट के साथ आज के इस दिन का आगाज़ करेंगे। उम्मीद करें आप का जो आधा दिन जो अब तक गुजर चुका है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद करते हैं जो दिन बचा है वो भी बेहतरीन गुजरेगा इंशाल्लाह। वेल, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स आप जरूर लिख लीजिए। नंबर्स हैं 666-22-107 या फिर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 443-443-77।
2: बिल्कुल 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं और जहाँ पर आप अपने दिल की बात भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और भाई, सुबह से जो जो चीजें आपके आसपास से गुजरी है, मेरा मतलब यह है कि ट्रैफिक का अगर हाल अहवाल बताना चाहते तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारी मोबाइल ऐप के बारे में आप लोगों को अगर नहीं पता अभी तक तो वो भी पता करिए। और वो ऐसे कि हम बता रहे हैं QMC नाउ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें तमाम इदारे जो हैं हमारे आपको दिखेंगे और उसके बाद उर्दू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं हमारा वेब एड्रेस है www.urduradio.qa। बहुत आसान है। और अगर ये भी दिक्कत हो रही है समझने में और ढूंढने में तो फिर आप ऑनलाइन जाकर लिख सकते हैं उर्दू रेडियो कतर, तो हम आपको मिल जाते हैं। और वहां जाने के बाद इस वेब एड्रेस पे हमारे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं पूरे तरीके से। वो ऐसे कि आप वहां लाइव सुन भी सकते हैं और आप तमाम स्टेशन के बारे में मालूमात जो है वो भी आपको हासिल हो जाती है। तो भाई, ये तो रही हज़्ब रिवायत शुरुआत। और अब क्या कहती है नादिया, कनेक्ट कर दिया जाए पहले कॉलर को।
4: यस, हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
5: मेरा नाम रियाज अहमद है।
2: रियाज भाई फ्रॉम सऊदी। अच्छा, नहीं,
5: दूसरा। नाउ फ्रॉम कतर।
4: हाँ, नाउ फ्रॉम कतर।
2: नहीं, वो नहीं, कल एक रियाज भाई से बात हुई।
5: वही वाला हूँ,
4: वही
5: वाला हूँ, सरवर भाई।
2: अच्छा,
5: कभी इधर कभी उधर कभी।
2: सही।
4: चलिए, लेकिन अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जगह आपके पैर काफी मजबूत हैं और मजबूती ये बनी रहे, ये हमारी दुआ है आपके साथ इंशाल्लाह।
2: जी, तो क्या कहते हैं रियाज भाई, कैसा गुजरा अभी तक का दिन और कहाँ हैं अभी?

0: अलहमदुल्ला 300 जा रहा है।
1: अच्छा
0: काम कर रहे हैं
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
0: की तरफ जा रहे हैं
1: माशाल्लाह। अच्छा काम में मशगूल हैं और सनैया की तरफ जा रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह के क्या हाल हैं?
0: बिल्कुल एकदम ट्रैफिक नहीं है, आराम आराम से जा रहे हैं।
1: हाँ ट्रैफिक में आज कुछ कमी है तो, जैसे कि मैंने भी देखा
0: आज कमी है
1: मेरे ख्याल में कोई।
2: आज आप बहुत देर से घर में हैं।
1: अच्छा घर में हैं?
2: मेरा मतलब थे
1: घर में थे।
2: हाँ फिर उसके बाद फिर आप ऑफिस आए, फिर बहुत देर से अंदर ही रहे ऑफिस में।
1: क्या बात है यार,
2: हल्का रहा आज।
1: अच्छा अच्छा मेरी वजह से हल्का रहा। बहुत देर में समझा मैंने, वेरी सॉरी।
0: अभी समझ गया,
1: अभी समझ गया। तो क्या कहते हैं रियाज भाई, आज का शोशा छोड़ दिया जाए? नाजिया क्या कहती हैं आप?
2: बिल्कुल आज का शोशा जो है सर्वर, बिल्कुल आप बताने वाले हैं आज।
1: क्या कहने भाई, तो आज ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपको सक्सेस और टैलेंट की अगर बात करी जाए तो कौन सी चीज ने आपको आगे बढ़ने में मदद करी है?
0: सर्वर भाई टैलेंट तो हमारा और आपका एक ही हाल है तो हम एक ही पेज पे हैं।
1: वाह।
0: और जो मतलब जब से प्रदेश में आए हैं ना तो बस उतना हो गया है कि मतलब जो घर में वही दो रियाल की इज्जत बनी बन गई है, पहले जीरो थी अभी प्लस में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से तो
2: ये था ही नहीं
1: मगर जो बोले अच्छा बोले,
2: लेकिन अच्छा आपने बोला और अच्छा इसलिए बोले, हार्ड वर्क पूछ लेते हैं
1: मुझसे रिलेट कर दिया इसलिए नादिया को बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा आप टैलेंट और
2: टैलेंट मतलब हुनर और मेहनत, हुनर या फिर मेहनत, कामयाबी के लिए आपके हिसाब से क्या जरूरी है? आपको क्या लगता है हुनर होना बहुत जरूरी है कि मेहनत?
0: हुनर हुनर
2: अच्छा होना
0: है। आज की दुनिया जो है वो स्किल
1: मुझे लगता है कि कल जैसे घुले मिले, क्योंकि कल हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना साथ में, तो मगर हुनर अलग है एक्सपीरियंस अलग है।
2: ये वाला टॉपिक हमने इस पे बात की भी है मॉर्निंग में,
1: और हुनर तो हमारे अंदर मतलब मेरे अंदर खास तौर पे
2: कमी है, लेकिन हार्ड वर्क से आप कवर कर ही ले रहे हैं
1: जी। रियाज क्या बात है यार, नादिया वाह क्या शेर सुनाया।
2: हार्ड वर्क एक मानते हैं, वर्क के पीछे हार्ड लगा देते, ये हार्ड लिख देते।
1: चलिए तो मेरी तारीफ हुई, अपनी तो बताइए।
0: नहीं मुझे लगता है वही है मतलब वही है, होना चाहिए।
1: मैं भी ये कह रहा था वही है
0: आदमी के पास,
1: ये सुने जबकि बात है कि वही है।
0: बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने।
1: वाह क्या बात है, चलिए साहब और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह कनेक्टेड रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: मेरी कल पहली कॉल लगी थी, अब लगती रहेगी।
1: जब तक आप मारते रहेंगे हमें लगती रहेगी, आप बेफिक्र रहिए,
2: बस जोर से लगनी चाहिए।
0: आपके लिए तो निशाना भी नहीं लगाना पड़ेगा सर्वर भाई।
1: वाह बस सीधे लाके टकरा दिए। चलिए रियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: नादिया दोनों लाइन बिजी हो जाती हैं, हमारे यहाँ दो लाइन जो है, मैं बता दूं कॉलर्स को कि दो लाइन होती हैं जिन पे आपकी कॉल आ रही होती है, हम एक ही को कनेक्ट दोनों को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों जब बिजी आती हैं तो फिर व्हाट्सएप पे भी कॉल आने लगती है जो इस वक्त हो रहा है। तो अब
2: हम आपसे यही कहेंगे कि व्हाट्सएप पे हम आपकी कॉल नहीं ले सकते, दैट यू नो, आपके सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ही ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमसे कॉल करें, बात करें, द नंबर इज 4434377। दुआओं के साथ कॉल लगाइए। एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो।
3: हाँ जी लगी जी कॉल,
1: लग गई भाई भाई, बहुत जोर से लगी है कॉल, लग गई आके, क्या कहने भाई, इतना जोर दिखाया
3: सर्वर भाई, आपकी लॉटरी नहीं लगी, नहीं
1: वो भी लगनी चाहिए यार, वही तो जरूरी है लाइफ के लिए, होगा कभी कुछ ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा छप्पड़ फाड़ के।
2: सर इसमें ना सर्वर भाई टैलेंट चाहिए,
1: वही बात हो रही है, ये तो समझाना है,
2: एक तरह का टैलेंट है, हार्ड वर्क से शायद काम ना चले लॉटरी के पीछे।
1: ये बात सारी चीजें आप मेरे मतलब की कह रही हैं, क्या बात है।
2: मैं हर रोज

0: बता रही हूँ,
1: चश्मा लगा,
0: आप चश्मा लगा के बैठे हैं तो फायदा हो रहा है
1: जी। गाओ भाई, क्या कहते हैं?
2: मैं सरवर भाई, यकीन मानिए, जिस दिन से नाजिया जी ने वो सुबह वाला शो छोड़ा है ना, यार सरवर भाई मेरे से आपके साथ सीरियस होके बात ही नहीं कर होती किसी भी टॉपिक पे।
1: हाँ यार,
2: तू भी वेरी ऑनेस्ट।
1: हाँ यही तो मसला है, मैं खुद नहीं कर पा रहा अपने ये साथ में हो तो आदमी कैसे मतलब सीरियस ही रहता है, दूसरी तरह कैसे सोच सकता है। कह तो आप सही रहे मुद्दे
2: नहीं, सरवर भाई यकीन मानिए नाजिया जी, वो फ्लो नहीं बनता जो सुबह बनता था ना आपके शो में।
0: मैं खुद
1: ये सुबह जाने वाली है, चलो जल्दी ये सबाह नूर करने वाली है बहुत जल्दी, और ऐसा नाजिया की शक्ल इस वक्त बिगड़ चुकी है। तो क्या कहते हैं गाबा भाई, मेहनत, जद्दोजहद, हार्ड वर्क या फिर टैलेंट?
0: आज आपका टेस्ट है, इस पर हम बात कर चुके हैं गाबा जी मॉर्निंग में, याद कीजिएगा।
2: मैडम नाजिया जी, मैं पता क्या है मेरा क्या? जो मोटिव होता है बस हल्की फुल्की बात करूं, सीरियस नहीं होता मैडम जी।
0: नहीं, हल्की फुल्की आपकी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल,
1: कोई बात नहीं, आज फुलके खा लेते हैं, नान की रोटी की जरूरत है क्या आज हल्के? अरे आज हल्के फुलके खा लेते हैं गावो भाई, जरूरी थोड़ी रोज तंदूरी हो, नान हो, रोगनी नान हो, आज फुलके चल जाएंगे।
0: नहीं आज शीरमाल
1: है, नहीं वो कह रहे ना फुलके जी गाओ।
2: नहीं सरवर भाई, आप पे नहीं ये सूट करते,
0: खुल के खुल के।
2: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
1: खुल के खुल के खुल के ये तो करती है। चलिए तो क्या कहते हैं, अच्छा चलिए जैसे भी सही, जो भी ध्यान में आ रहा है वो बताइए।
2: नहीं, मैं करूंगा बात करूंगा, टेंशन मतलब आपने बात की है टैलेंट और
0: हार्डवर्क,
2: किस हार्डवर्क
0: और टैलेंट जी।
2: देखिए नाजिया जी, सरवर भाई की हम लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी हैं कुकिंग के रिलेटेड, ठीक है, और इन्होंने वेल ड्रेस्ड होके सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी रील्स बनाई हैं, जो कि एफएम के पेज पे पड़ी हैं, ठीक है,
0: सही।
2: तो मेरी बस मैडम जी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, टैलेंट तो आप में है ही है।
1: मैडम जी में या मुझ में?
2: नाजिया जी,
0: मुझ में कह रहे हैं।
2: नाजिया जी की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
2: आप मैडम थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अगर पॉसिबल हो सके ना तो सरवर भाई की हिप हॉप सॉन्ग पे डांस करते हुए की वीडियो एक वायरल हो जाए। मैडम
1: आपने यार थोड़ा ब्रेक लगा दिया बीच में, मैं परेशान हो गया, हिप हॉप को जरा जल्दी कहना था, आपने टुकड़ों में कहा तो मैं जरा ज्यादा परेशान हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात हो रही है। बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया साहब, गाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: नाजिया जी मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ।
1: अच्छा और भी है,
2: अगर पॉसिबल हो, इन्होंने ना एक शादी अटेंड की थी चंडीगढ़ में, सरवर
0: भाई कब आपने अटेंड की?
1: अरे ऐसी चीज है, देखिए पता है दुनिया को, तो शादी से क्या करें आप, क्या याद
2: आप है? नाजिया जी आपका टैलेंट और आपकी मेहनत है, हमें बस सफलता चाहिए उस वीडियो को देखने में,
1: सफलता चाहिए उस वीडियो को
0: अच्छा,
1: देखने में।
0: तो शादी पता चली,
1: कितना घूम के आए आप यार, कितना घूम के आए भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: आपने कहा बाजी, जहाँ पर सरवर मिर्जा बैठे हो लोग जो है ना सीरियस टॉपिक में भी फन निकाल लेते
1: भाई, देखिए ये
0: हो ही नहीं पा रहा,
1: यही फन है, आपकी तरह फन थोड़ी है हमारे पास, हमारे पास फन है, ये फर्क है
0: सरवर से, फन नहीं फनी है आप।
1: कपिल शर्मा इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर आदमी है इंडिया का, पैसे बता नहीं रहा है कितने है, बता दूं आपको। चलिए यार गावा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और भी कॉल्स होती हैं और बात तो लंबी लंबी सभी से करना चाहते हैं बट मजबूरी है, वक्त कम होता है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: थैंक यू सो मच।
2: मेरे को इंतजार रहेगा नाजिया जी, जरूर अपना टैलेंट और हार्डवर्क यूज कीजिए आप,
1: और वो वीडियो निकलवाइए,
2: देखनी है वो सरवर भाई का डांस स्टेप करते,
1: मैं वैसे दिखा देता हूँ वीडियो की जरूरत क्या, इंशाल्लाह ताला देखिए आप
0: लाइव दिखाएंगे।
1: चलिए ठीक है गावा भाई, शुक्रन शुक्रन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि कॉल्स बराबर आ रही हैं, उसके बाद हमें गाना भी चलाना है, पहला गाना अभी तक नहीं चला पाया हूँ,
0: अभी नहीं चलाया,
1: कोशिश करते हैं, अभी ये वाली कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।
0: भाई मौजूद,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है, क्या बात जी।
3: एसी रूम से निकल के यकीन करें कि आप दोनों के शो के लिए मैं इधर ऐसे गर्मी में बैठा हूँ, पसीना पसीना
1: है मेरा भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे भाई,
0: भाई आप जाइए वापस से रूम में,
1: अल्लाह ताला आपको दोबारा से एसी दे, पंखा दे,
3: आपको थोड़ा सा है बहन, मैं अपने भाई सरवर भाई का थोड़ा क्लास ले लूं अभी।
1: अच्छा ओ ओ हो,
0: प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी,
1: ओके खादिम भाई, इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होती है और

0: होती है। बहुत बहुत शुक्रिया
1: नहीं आप ये बंद करोगे लेकिन अपना फोन कैसे बंद करोगे?
0: अरे नहीं
2: ये तो बंद कर लोगे,
1: ये तो बंद कर सकते हो लेकिन वो तो रात को मैं 12 बजे भी फिर आपको करूंगा, तंग करूंगा।
0: आपकी
2: ये मोहब्बत देखिए।
0: हाँ वाकई यार ये तो है खादिम भाई। तो क्या कहते हैं खादिम भाई मौजू के हवाले से?
1: मौजू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर अगर टैलेंट नहीं है ना तो मेहनत जो है वो बेकार रहती है।
0: अच्छा
1: अगर एक बंदे में कुछ टैलेंट नहीं है वो जितनी भी मेहनत करे वो मेरे ख्याल में बिल्कुल
0: सक्सेस। मैं आपको रोकूंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता बेकार रहती है। हाँ ये जरूर कहते हैं कि आउटपुट उतना नहीं रहता क्योंकि मतलब मेहनत बहुत लोग करते ही हैं, मगर हाँ कुछ मेहनत से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे और कुछ मेहनत से उतना आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है।
1: वो बात आपकी सही है लेकिन अगर एक बंदा वो उसमें एक टैलेंट है एक चीज सीखने का करने का तो वो मेहनत भी बहुत ज्यादा यानी ज्यादा करते हैं और हार्ड वर्क उनका बहुत ज्यादा रहता है तो उससे वो जो टैलेंट है वो भी हम लोगों को दिखाई देता है। या अगर एक बच्चा है फॉर एग्जांपल वो भी अच्छे मार्क्स आते हैं उनके सब। बहरहाल मैं कहता हूँ आसान अल्फाज में कि टैलेंट पहले है फिर उसके बाद मेहनत है और मेहनत इजी होता है फिर वो आसान रहता है।
2: तो मतलब आप ये कहते हैं कि टैलेंट कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहता हूँ
2: और मैं भी ये मानती हूँ कि टैलेंट जो है वो खुद से डेवलपमेंट नहीं होता, उसे ग्रो करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने मेहनत करनी पड़ती है।
1: वो मेहनत करनी पड़ती
0: है। यार मुझे मैं देखिए मैं रोकूंगा भाई यहाँ पे, मुझे बहुत तेज आ रहा है हार्डवर्क आ रहा बहुत तेज। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेहनत जो है जो हार्डवर्क है वो
2: नहीं मेहनत वाकई
0: वो आपके टैलेंट को भी तो कहीं ना कहीं निखार सकता है, खींच के ला सकता है। आप जब कोशिश करते हैं तो आप चांद तक पहुंचते हैं ना।
2: देखिए टैलेंट इनिशियली आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देगा, यही कह रहे भाई।
1: मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर बंदे में टैलेंट नहीं है वो जितनी भी मेहनत करे वो बेकार होता है। बेकार मतलब ये कि उतना रिजल्ट नहीं आता जितना एक बंदे में टैलेंट है तो वो जितनी भी मेहनत करते उनको एक वो होता है ना कि शौक भी ज्यादा रहते हैं हमेशा और वो टैलेंट वो इस्तेमाल होता है वो मेहनत में।
2: मतलब ये कहना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुझ में टैलेंट ही नहीं कुकिंग का तो मैं बहुत हार्ड वर्क भी करूंगी। तो मैं सुन लिया कि
0: अदरक लहसुन 2 चम्मच डाल लेती हूं बजाय 3।
2: एक्सीलेंस क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, वो एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मैं बीच में कहीं आ जाऊंगी।
0: भाई अपना अपना मशवरा है, अपनी अपनी राय है और
2: नहीं ये बात तो काफी वैलिड है भाई।
0: बिल्कुल नहीं वैलिड तो सारी बातें हैं।
2: नहीं ये बहुत है। अब आप सिंगर बन के दिखाइए या कोई कहे आपसे कि आप जो है वो एक साइक्लिस्ट बनिए, नहीं बन सकते क्योंकि वो वाला आपके अंदर टैलेंट नहीं। हो सकता है मेहनत करके आप कहीं ना कहीं बीच में आ जाए
1: ये सब कुछ समझ रहे लेकिन ये वो ऐसा है ना कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
2: अच्छा ये वो तो नहीं है सब कुछ समझ रहा हूँ वो बन के वो पेड़ा खाने वाला।
0: क्या बात है भाई क्या ये बात हुई है। देखिए पेड़ा आई गया कहीं ना कहीं बधाइयों वाले मजबूर होते हैं पेड़ों को लेके और कहीं ना कहीं देखिए नादिया पेड़ों को बीच में ले आई। देखो देखो दिखा रहे
2: हैं
0: मैं रुका रहा हूँ या चला जाऊँ जी खादिम भाई।
1: मैं ये कहता हूँ की जब सरवर भाई जो दूसरों की बातें जो समझ रहे हैं लेकिन जब शो खत्म हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि मैंने इसको भी बनाया उसको भी बनाया। ये ना मतलब ये कि वो कहते हैं कि सिर्फ देखो मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ लेकिन मैंने नहीं वो ये मतलब उनको ये नहीं शो किया कि मैं समझ रहा हूँ लेकिन अभी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ।
0: बिरयानी में बोटियां कम थी थोड़ा दर्दा ज्यादा था इस बात।
2: आपने खादिम भाई बिल्कुल सही पहचान सुनिए आपके लिए कह रहे हैं कि ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा ये वही है
0: बहुत अच्छे खादिम भाई। अभी भी गर्मी में खड़े हैं
1: की बात नहीं अभी मैं एसी रूम में आ गया।
0: अल्लाह तेरा शुक्र अब शायद समझ आनी शुरू हो जाए मेरे चलिए।
1: देखो आपसे बात करने के लिए भी टैलेंट चाहिए।
0: अरे मेरा भाई नहीं यार हम तो बड़े मैं तो बड़ा सादा सा शख्स हूँ व्यक्ति हूँ। मैडम से बात करने के लिए
2: एक चीज की जरूरत ही नहीं है वो है दिमाग वो साइड में रख के आइए फिर इनसे बात करें।
1: नहीं, नहीं।
2: फिर आराम से
0: कह रहे नहीं
1: सरवर भाई से
2: बात करनी
1: है टैलेंट हो हाँ

0: बिल्कुल, ये सरवर भाई तो किसी को बात करने नहीं देते, लेकिन ये तो मैं हूँ इनके सामने बिल्कुल ऐसे हूँ कि ढट के मुकाबला कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, फौलादी आदमी। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। दुआ में याद रहिए।
0: शुक्रिया,
1: 12 बजे की मैसेज करेंगे खादिम भाई। ओके, यहाँ ले लो कॉल, यार गाना चला, एक तो गाना ला दिया, प्लीज गाने को भी चलने दो, कब तक आपकी दुकान में लेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी लगती नहीं है, कभी इतना तेज लग जाती है कि मतलब एकदम बेल भी नहीं बजने देती,
1: नील डाल देती है, इतनी तेज लग जाती है।
3: सही कह रहे हैं, कभी बेल भी आप पूरी नहीं होने देते हैं।
1: कौन साहब है हमारे साथ?
2: मुदस्सिर रेहान।
1: मुदस्सिर रेहान, क्या बात है, रेहान भाई भी साथ में?
2: जी।
1: अच्छा अच्छा, दो लोग हैं एक साथ में।
2: दोनों मैं ही हूँ।
1: अच्छा, दोनों। ओ माय बैड यार, आई एम सॉरी मुदस्सिर भाई, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी।
3: आप भी तो सर और वर दोनों ही हैं।
1: हाँ नहीं बिल्कुल, मैं दर्द भी बहुत कर देता हूँ।
2: मैं एक चीज बताऊँ, मेरे मेरे अब्बा जो हैं उनका निकनेम सरवर है।
1: अरे खत्म हो गई मेरी सारी बातें, शटर डाउन करो।
2: तो एक स्टोरी है ये कि मैं छोटा सा था तो एक मेहमान आया हमारे घर में और अब्बा का नाम मुझे रेहान ही मालूम था, तो वो आके बोले सरवर घर में है तो हमने कहा कि सरवर का कोई घर नहीं है, ये दूसरा घर आ गया। तो कहने के अरे यही घर हमको मालूम है, जाओ बुला के लेके आओ, हमके सरवर यहाँ पे कोई नहीं रहता है, कहने जाओ बुला के लेके आओ तो बताए।
1: उसके बाद
2: मम्मी से पूछे अम्मी सरवर को हमें
1: नहीं, दूसरा सीन हम बताते हैं। अरे
3: बुला के लाओ, बुला के।
1: उसके बाद ये बाहर गए और इनको बुला के लाना पड़ा क्योंकि अब्बा से मुलाकात हो गई थी अच्छी खासी। तो उस दिन आपको पता चला कि अब्बा का नाम सरवर है एक्चुअली?
2: जी।
1: क्या बात है यार, क्या बात है। तो चलिए, तो अच्छी बात है, क्या कहते हैं, हार्डवर्क और टैलेंट के दरमियान आपका
3: तो
1: क्या
3: कुछ भी आप सुनेंगे तो,
2: जो आपने
1: सुनेंगे। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ।
2: लास्ट कॉल जिनसे भी आपने बात की, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने सबके वो है, सोचने के तरीके हैं, बट मेरा ये कहना है, मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके अंदर इनबिल्ट कोई सा भी, ऐसा नहीं कि इंसान पैदा हो रहा तो उसके अंदर अपने से टैलेंट आ जा रहा है, कुछ ना कुछ आप मेहनत करनी पड़ेगी तभी कोई चीज से टैलेंट आएगा आपके अंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: तो फिर जब आप मेहनत करेंगे तो फिर उसके अंदर टैलेंट, जब
3: आप भाई ये कहना चाहते हैं कि मेहनत करें अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कई बार हमें हमारा टैलेंट भी तो नहीं पता।
2: जब आपको मालूम चल जाए कि ये है मेरे अंदर टैलेंट, तो फिर और मेहनत कर और उसको खूबसूरती से निखारे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी बात आपकी और बड़े अच्छे और बड़े सीधे मालूम होते हैं आप मुदस्सिर भाई। कहाँ से ताल्लुक है आपका?
2: मेरा यूपी इंडिया।
1: लो भाई, कहाँ यूपी में?
2: यूपी में इलाहाबाद।
1: ले ओ भाई, इलाहाबाद में किधर?
2: इलाहाबाद में है, आप ही बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अरे बहुत ज्यादा ही, जी जी बहुत ज्यादा ही शरीफ जगह से आ गए।
1: अच्छा,
3: करेली,
1: तो
3: करेली वो
2: जी हाँ,
3: देखा,
1: अरे करेली से है?
2: जी हाँ।
1: अरे करेली में किधर?
3: बगल में,
2: करेली में 16 मार्केट साइड है।
1: अरे लो यार, हद हो गई है। तो उधर साइड में किधर? 16 मार्केट में
3: खाने की टेबल पर।
2: अब एग्जैक्ट आपको जगह कैसे मैं बताऊं?
3: मैं बताती हूँ, खाने की टेबल पर बिरयानी के सामने।
2: नहीं तो आप एक काम करें, आप एक काम करें, आपको तो मालूम होगा अटाला में है एक इलाहाबादी रेस्टोरेंट बहुत फेमस है।
1: अरे
2: तो वहाँ पे आप आए तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मुलाकात हो सकती है, बहुत अच्छा उनका फेमस है बीफ पाया और निहारी वगैरह।
1: क्या माइक बंद किया है मैंने, नादिया का मजा आ गया भाई।
3: अरे आपको पता नहीं वहीं पे तो इनको बैन किया गया है।
1: वहाँ जाके आप सुनिए, वहाँ जाके आप पूछिए भाई कि सर्वर किधर है, तो वो सीधा ले जाके आपको आपके घर छोड़ेगा। क्या बात कही है मैंने, देख रहे हैं?
2: क्या बात कर रहे हो?
1: क्या बात कर
2: रहे हो? क्या?
1: अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा,
3: वहाँ ये बर्तन धोते थे।
1: अरे नहीं भाई, क्यों इतनी बातें कर रहे हो? अभी तो बताया कि अब्बा का नाम सरवर है तो आप ही के घर तो ले जा रहा हूँ आपको मैं उस होटल से। यार बहुत ही सीधा है मेरा भाई यार। चलिए।

0: मतलब यार गाना भरा हुआ है नादिया जी की तारीफ से भाई।
1: ओ, दिल फर्जी फर्जी दिल फर्जी हाँ करता है खुद गर्जी।
0: यार वाकई यार ये आदमी ना सच्चे ने तो कमाल ही कर दिया यार, दिल जीत लिया।
2: वो आया था आपसे मिलके गया, उसने बाद ही गाना लिखा।
0: कहने भाई बड़ा ही खूबसूरत गाना एफएम 107 पे सुना आपने, एनर्जी आर सुन रहे हैं आप और सरवर और नाजिया आपके साथ, जहां पर बात हो रही है टैलेंट और हार्ड वर्क के हवाले से। और यहां पर बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई हैं, और आज शख्सियत एक बड़ी हमारे साथ खुद यूं जुड़ गई कि उन्होंने कोई शोशा नहीं छोड़ा था नाजिया। आर्ज कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं और आपको भी सलाम कह रहे हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: मेरे मुझे सलाम करना तो इनकी मजबूरी है। खैर
2: इनसे डेट तो पूछ लीजिए,
0: इनसे तारीख मैंने भिजवाई, ये मिल नहीं पा रहे ना मुझे, इसी मारे डरे डरे छुपे छुपे फिर रहे हैं के तारीख का मैंने जिक्र कैसे कर दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए आरजे कबीर साहब, और
2: बड़े
0: बड़े लोग भाई, बड़े बड़ी बातें क्या है। और
2: कबीर ये कह रहे वक्त निकाल के बस मिल लीजिए,
0: इतनी जवानी नहीं चलती है कि मैं इनकी तारीफ कर सकूं। तारीफ से भरा हुआ अपना आदमी गुब्बारा हो रहा है जैसे हवा भरी रहती है,
2: फूट ना जाए
0: बस वो मैं ही फोड़ूंगा, इसीलिए फोड़ूंगा मैं ही एक दिन। यहाँ पर एक और कॉलर वक्त बगैर जाया करे हुए, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: मैं सुफियान बोल रहा
0: हूँ। पहचान
2: पहचान कौन?
3: सुफियान।
0: अरे सुफियान, अच्छा सुफियान भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं सुफियान भाई?
3: बढ़िया एकदम, बिल्कुल आपका दुआ है भाई।
0: अरे मेरा भाई कहाँ है अभी?
3: अभी तो मैं कटक पुलिसमा में हूँ।
0: सिमाई
2: ये कह दीजिए भाई कि मैं लंच कर चुका हूँ, अब इरादा कुछ भी खाने का नहीं है, तो ये आगे बात बढ़ाएं।
0: नहीं नहीं मैं दरअसल ट्रैफिक के हवाले से बात करना चाह रहा था, तो सिमाई सिमा की तरफ तो वैसे भी ट्रैफिक कमी होता, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत जगह है हमारे कतर की दूसरी खूबसूरत और प्यारी जगहों से अगर देखा जाए।
2: पहले आपने खुद को मान लिया,
0: वहाँ बड़ी शूटिंग करी है हमने, मुझे याद आया, और सुहाना सफर की जो शूटिंग हुई है सिमाई सिमा पे बहुत ज्यादा हुई है। एनी हाउ तो सुफियान भाई क्या कहते हैं, हार्ड वर्क या टैलेंट?
2: क्या कहेंगे बताइए,
3: क्या कहेंगे तो बताइए, क्या कमेंट
0: चाहते, क्या हो
2: सुनना, क्या चाहते
0: है ना, क्या चाहते हो
2: बताइए, आप जो पूछ ही रहे हैं आप
0: जी क्या कहेंगे?
2: अरे सवाल तो बता दीजिए।
0: अच्छा मैंने बोला हार्ड वर्क या टैलेंट में आप क्या इसमें अंतर क्या मानते हैं, कौन सी चीज जरूरी कौन सी है, आपको आगे कौन सी चीज लेके जाती है, या आपको किसने मदद किया है दोनों चीजों में से?
4: देखिए हार्ड वर्क तो हमारा करना फर्ज है, टैलेंट हार्ड वर्क करने से ही आता है, अगर कुछ ना करे तो फिर हार्ड वर्क करना भी बेकार है और टैलेंट ना हो।
0: दे दो भाई इनको दो नंबर वाला कूपन दो।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया। कहने से मुझे याद आ गया ना वो एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, तो ये बात तो
0: उर्दू में समझाइएगा।

0: मतलब हार्ड वर्क से आप टैलेंट को हरा सकते हैं जब आप
1: हार्ड वर्क को भी उर्दू में कहना है आपको
0: मेहनत मशक्कत सर पर कुछ आप भी बोलेंगे सब कुछ बोलेंगे
1: ना ओके नहीं नहीं आपने बड़ी अच्छी बात कही ना दिया समझ में नहीं आई वो बात अलग है बट बात बड़ी
0: तो मैं कह रही हूँ लेकर आई है
1: तो
0: आपने क्यों रख रखी है कल अपनी फ्रीज करके
1: तो सुफियान भाई का कहना भी वही है जो मेरा कहना है एक्चुअली या हमारा कहना है
0: क्या आपका कहना था
1: परेशान हूँ
0: परेशान
1: नहीं हूँ बताइयों तो अपने आप में बहुत अच्छी जगह है पेड़ा बहुत अच्छा है बट
0: आप से परेशान
1: सिर्फ एक शख्स जो मेरे पास है एनी हाउ तो अभी गाड़ी में कोई और भी आवाज आ रही है पीछे से सुफियान भाई
2: नहीं अकेला बैठा हुआ गाड़ी में अभी
0: आपके कान बजते
2: हैं लगा कर रूम में जाने वाले थे तो आपका कॉल लग गया
1: अरे वाह आपने पार्किंग में गाड़ी लगा के कॉल करी ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा पैगाम सभी के लिए कौन सी जगह पे हैं इस वक्त आप
0: फिर बताएं वो पूरा कहाँ है सिमिस में बता बता
1: नहीं सिमिस साइमा अभी भी किधर
0: अरे भाई
1: बीच के पास क्या कर रहे हैं यार यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं
0: आपसे मतलब कुछ
1: खाने गई
0: मैंने पहले ही बताया खाना खा चुके अच्छा तो खाने के
1: दूसरी रकत के लिए आ गए बड़े हैं मैं समझ गया ठीक है बीच के करीब है सुफियान भाई चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एलन व सैलन
0: थैंक यू
1: अल्लाह
0: थैंक यू जी अल्लाह हाफिज
1: अल्लाह
0: खुद हैरान है कहाँ फंस गया मैं कॉल करके
1: अच्छा भाई
0: आपने जो मुसीबत
1: मैसेज ले लेते हैं मैसेज ले लेते हैं एक भी नहीं लिया अभी तक सलाम टू बोथ ऑफ यू
0: वालेकुम अस्सलाम
1: रहमतुल्लाह कौन है हमारे साथ मुदस्सिर बंगश यार कितने मुदस्सिर भाई हमारे साथ जुड़ गए भाई 1 2 3 पर्ची बांटनी पड़ेगी
0: भी बहुत सारे हमारे साथ
1: आसिफ वेलकम मूवी वाले भाई साहब एंड नाजिया जी सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम
1: वेलकम मूवी वाले भाई साहब
0: आप ही हैं वेलकम मूवी वाले अरे वही मजनू क्यों चाहते हैं आपकी तो अकल में इतने ज्यादा पत्थर
1: अस्तगफुरुल्लाह
0: मैं कह रही हूँ हार्ड वर्क से काम नहीं चाहिए पहले ऊपर सफाई
1: मजनू भाई और नाजिया जी को सलाम अरे वो मजनू भाई का जो घोड़ा बना हुआ था तस्वीर में वो भी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ा हुआ भाई वेलकम इन शो शक्ति वर्धक शो आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कतर
0: एनर्जी की है ये हिंदी
1: एमबीबी सर टी लेंट एंड हार्ड वर्क
0: टैलेंट
1: ऐसे लिखा हुआ एमबीबी ने बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ टी अलग है और अलग लिखा हुआ कहते हैं लाजिम सवा सवा
0: मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए
1: मैं यही जानना चाह रहा था कि आपका क्या रिएक्शन होता है ये देखिए छोटी आरजे गुड आफ्टरनून एफएम 107
0: वेरी गुड आफ्टरनून
1: मैम नाजिया अंकल सरवर नहीं अब मुझे अच्छी नहीं लग रही बात आयशा आयशा सरवर
0: हाउ स्वीट
1: ना भाई कहते हैं ना अंकल उनके सरवर
0: माशाल्लाह ओहो हां हां आयशा ये अभी 2 घंटे पहले ही तो जस्ट बॉर्न हुए हैं
1: या जैसे मेरे चाचा मुझे सरवू भी कहते हैं
0: नहीं तो आपको क्या माने 2 घंटा 2 मिनट 2 सेकंड
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गुड आफ्टरनून नादिया जी और सरवर भाई कैसे हैं आप दोनों होप वेल वेलकम टू एनर्जी आर दिल से देसी
0: दोस्तों
1: हैप्पी वीकेंड आफ्टरनून खूब सारी इमोजी दिल गुलदस्ते आप दोनों और आप दोनों की झोंक नोक ये कबीर भाई बोले थे सुबह के आपको ये पेंटिंग के बारे में बोलूं यूसुफ भाई आपके दिन आपकी जिंदगी में से संडे गायब हो गया ये तो परसों से चल रही है इनकी जिंदगी में से भी संडे गायब हो गया हमारी संडे गायब हो गया चलिए क्या कहती है नाजिया एक छोटा सा ब्रेक ले लें
0: आपको जरूरत है
1: आपको आपको आप मना भी नहीं कर सकते
0: नहीं मैं कह रही इस ब्रेक के तो आइए और लेकर आइए
1: छोटा सा बिल्कुल छोटा सा गाना भी नहीं चला रहे हैं
0: पूछिए तो क्या लेके आए
1: ये देखिए इनकी बातें तो आप लोग सुनिए मत मैं माइक पहले ही बंद कर देता हूँ

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलका चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक राइट दोस्तों वेलकम बैक आप सुन रहे हैं शो NRTR सर्वर नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 2:05
2: बिल्कुल सही 2:05:05:02 और हमारी
3: 3:05 आप हो जाते हैं
2: नहीं आप अच्छा गेम याद
3: दिलवा 9:11
2: आपने हमारा गेम याद दिलवा
3: 3:05 तो वो अलग ही था
2: भाई
3: 9:11
2: यहां पर एक छोटी सी अपडेट जो है आइए वो भी जान लेते हैं क्या है
1: कतर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट
2: जी साहब वजारत दाखला ने MOI ने मतलब लुसेल मरीना इंटरसेक्शन पर जो शुमाली सिंध से आने वाली ट्रैफिक के लिए यू टर्न को आरजी तौर पर बंद किया है मतलब ट्रैफिक क्लोजर है यहां पर और इसका ऐलान किया गया और ये जो क्लोजर है ये बुध यानी आज बुध है ना सही कह रहा हूँ नहीं मैंने कहा बुद्धू से पूछ लूं बता दिया जाएगा 9 सितंबर 2026 की शाम से नाफिज होगा मतलब आज से नाफिज अमल है आज से शुरू हो रहा है और जुमेरात 17 सितंबर 2026 तक जारी रहने वाला है MOI ने इस इलाके से गुजरने वाले तमाम ड्राइवर्स को हिदायत भी दी है उनको बताया भी है कि भाई इस क्लोजर के बारे में सबसे पहले तो आप जाने और जो भी कहना चाहिए रूट्स मुकर्रर करे गए हैं
3: अल्टरनेटिव
2: और उनके जो भी रोड साइंस वगैरह आपको वहां जाने के बाद दिखेंगे इनकी पाबंदी भी करें ताकि ट्रैफिक की रवानी और सड़क पर जितने भी लोग हैं उनके लिए आसानी रहे और एक और बात यहां पर हम ऐड करना चाहते हैं कि भाई जब भी कोई क्लोजर वगैरह होता है और आपको नहीं पता होता है कोशिश हमारी रहती है कि हम बता दें बट एनी हाउ तो जब भी आप वहां पहुंचते हैं वहां पर सारे साइनेजेस वगैरह लगे हुए होते हैं MOI की तरफ से मिनिस्ट्री की तरफ से और आपको बताया जाता है कि कहां से डाइवर्जन है किधर निकलना है कौन सी रोड लेनी है तो जरा स्पीड का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और हल्के करके गाड़ी वो समझ लिया करें
3: तो इंशाल्लाह आपको आपने ये कहा स्पीड कहा तो फिर मेरी जान में नहीं वरना मैंने कहा कि क्या मतलब आपने बताया क्या बात है
2: चलिए भाई एक और अपडेट इसी के साथ नाजिया बताएंगी
4: वेदर का हाल 107 दिनाल
2: हॉट कीस का पूरा इस्तेमाल करता हुआ सर्वर मिर्ज़ा अपनी रोटी हलाल करता हूँ
3: अच्छा जी चलिए मौसम की बात कर लेते हैं और आज मौसम कैसा रहेगा ऑफ कोर्स धूप गर्मी अच्छी खासी है और फिलहाल अगर फिलहाल का करंट टेंपरेचर देखा जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस है और ये 45 तक पहुंचेगा एंड रात में टेंपरेचर तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसीलिए आपको फील होगा 49 डिग्री सेल्सियस पूरे दिन ठीक ठाक तरीके से धूप रहेगी और अगर रात में बात करूं तो थोड़ी बहुत हवा जो चलेगी वो 12 से 22 किलोमीटर पर आवर ये क्या चल रहा है
2: भाई जो अच्छी बात
3: है यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो आज काफी हाई है सो इसलिए अगर आप पीक आवर्स में बाहर निकलते हैं देन यू नो कि आपको ख्याल रखना है डायरेक्ट एक्सपोजर से बचिए और अगर मैं बात करूं आज सनसेट की तो आज सनसेट होगा 5:45 PM पर सो ऑल टुगेदर आज का दिन जो है वो ठीक ठाक गर्म रहेगा 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा बट आपको 49 फील होगा आसमान साफ है धूप चमकदार है बारिश के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है अगर आपको बाहर निकलना है तो ज्यादा पानी पीजिए धूप से बचिए कैप लगाइए अम्ब्रेला का इस्तेमाल कीजिए एंड ऑफ कोर्स आउटडोर एक्टिविटीज जितनी भी हैं इन पीक आवर्स में उन्हें अवॉइड ही करें लेकिन हाँ रात के वक्त जो है वो थोड़ी सी गर्मी बेहतर हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होगा अप टू 33 डिग्री सेल्सियस
2: अल्लाह तेरा शुक्र है हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम
2: अस्सलाम जी कौन है
5: आसिफ अंसारी
2: साहब अभी जिक्र ही हो रहा था और आसिफ भाई हमारे साथ आई गए जो उनसे भी हो वो उनसे आ गए
3: ये तो मुंबई वाले हैं आसिफ जी मुंबई
5: खास करके यूपी में
2: कॉमन नाम है आसिफ यूपी में बहुत कहते हैं
3: मेरे अपने भाई का नाम भी आसिफ है
5: कॉमन नाम है ना यूपी के अंदर
3: अच्छा यूपी में ही बस कॉमन है
2: यूपी में सॉरी बहुत होती है ना ये सिर्फ आसिफ ये सिर्फ

0: आसिफ नाम वाले ही समझ पाएंगे, कोई करेक्ट कर नहीं पाएगा। ये आसिफ भाई नादिया को भी नहीं समझ आया।
1: नहीं मैं समझी, बाय मिस्टेकन होती।
0: नहीं नहीं ये बिल्कुल लोग नहीं बोला मैंने।
2: उर्दू में इसका मतलब कुछ और भी होता है शायद।
0: नहीं नहीं वो तो ठीक है, बट फिर भी हाउ मच ओकिंग आसिफ भाई,
1: इस तरह का टैलेंट आप में भर भर के है, ये टैलेंट आपका बहुत है।
0: ओह माय गॉड, तो आसिफ भाई कहाँ हैं अभी और कहाँ को जा रहे हैं?
2: बकरा में हूँ।
0: आहा, मतलब मेरा वो बकरा में कुछ लोग रहते हैं ना, तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ। तो माशाल्लाह
2: हैं, आप भी शायद वहीं रहते हो?
0: नहीं नहीं साहब, मैं कहाँ अमीर, मतलब बड़े लोग वाकरा में रहते हैं, आप मेरे साथ में मौजूद
1: हैं। चौड़े लोगों का रहना मुश्किल है।
0: तशरीफ फरमा है हर दिल अजीज।
1: चौड़े लोगों का रहना वहाँ पे बड़ा मुश्किल
0: है। तो अब आप समझ ही गए होंगे,
1: तंग गलियां।
2: समझ गया।
0: हाँ क्या समझे?
2: आपके
0: ओके तो वाकरा में क्या हाल है इस वक्त, ट्रैफिक का क्या हाल है आसिफ भाई? ऑल ओके?
1: आप ट्रैफिक पूछ रहे थे घर पहुंचेंगे।
0: ओके रिपोर्ट,
2: ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है
0: यार, क्या बात है आज। माशाल्लाह अल्लाह खैर करे और आसानी रहे सभी के लिए। मेरे ख्याल में अब टाइम भी ऐसा हो गया है कि फिर भी स्कूल स्कूल
1: से थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा होता है
0: स्कूल से लौटने वालों के लिए। तो क्या कहते हैं आसिफ भाई, हार्ड वर्क या टैलेंट में
1: कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी,
0: आपके लिए क्या चीज खास रही?
2: टैलेंट तो होना ही चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है, और हार्ड वर्किंग तो करनी ही करनी है। तो हमारी जो है जिस तरह से सारी चीजें हैं उस तरह से हमें हार्ड वर्किंग करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। टैलेंट तो चाहिए चाहिए, और बाकी जो कि हो गया कि सारा टैलेंट जो है शादी से पहले होता है, शादी के बाद तो जो है सिर्फ हार्ड वर्किंग ही होता है।
0: नादी वो वाला लाइए। अच्छा क्या बात है भाई, मेरे ख्याल में दोनों ही नहीं समझ पाए बात को ज्यादा। आसिफ भाई
2: टैलेंट होना जरूरी है।
0: हाँ ये अब हो गया। हाँ ओके,
2: को हासिल करने के लिए तो टैलेंट तो जरूरी है ही है,
0: वो भी हार्डवर्क से ही आएगा, वो खींच लाएगा हार्डवर्क उसको, है ना।
2: शुक्रिया। लेबर लोग भी करते हैं बेचारे सवेरे से शाम तक,
0: अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत करे और अल्लाह ताला सबको आगे बढ़ाए, सबके लिए खैर आफियत का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात और बात होती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच। तो ये था आसिफ भाई हमारे साथ, यहाँ पर कॉलर अभी ले रहा हूँ मैं, बस एक दो मैसेज क्योंकि वो मिस होते चले जाते हैं। मुमताज भाई हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई नादिया मैम, कैसे हैं आप दोनों? गुड आफ्टरनून सरोज भाई नादिया मैम, दोनों जान मिलकर लिसनर को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा दोनों जन, ओके माय बैड।
1: नो यू विल बी पनिश्ड दिस टाइम।
0: नहीं मैंने कहा कि ये कैसे दोनों जान, मतलब मैंने कहा दोनों ही जान है मुमताज भाई की शायद। तीन घंटे से सीधे एक घंटे पे आ गए हो, ऐसा लगता है यूं आए और यूं चले गए, ऐसा लगता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहकर चले गए। ऐसा मत करो ना, मतलब ये ऐसे कहना चाहते होंगे मुमताज भाई, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ खाली, कम से कम 3-4 घंटे का प्रोग्राम करो। मुमताज अहमद नादिया आपसे बात करना चाह रहे हैं, मुखातिब हैं आप, इंशाल्लाह ताला 4 घंटे का प्रोग्राम निकालिए किसी तरीके से, अल्लाह ताला खैर करे और आपको जल्द से जल्द ऐसा प्रोग्राम भी मिले। मैं तो भाई माशाल्लाह सीनियर ओके। तारिक जमील साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और कहते हैं कि नादिया अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: नादिया जी, सरोर भाई को तंग ना करें प्लीज, अगर
1: ये खुद छिड़े छड़ाए हैं,
0: अगर बहस में आकर वर्कआउट शुरू कर दिया एंड बिरयानी खाना बंद कर दिया तो क्या होगा यार?
1: ऐसा नहीं होगा
0: मेरा भाई यार, शेख इरफान अल कासमी साहब, आप तारिक जमील से मिलते ही नहीं, आप बातें भी बड़ी प्यारी करते हैं यार, बहुत सारा प्यार
1: और
0: लव यू है मेरी तरफ से।
1: तारिक जमील
0: मत बोलिए नादिया, छोड़ दिए,
1: बातों पे लोग अमल करते हैं, आप क्यों नहीं कर लेते?
0: आपका नाम क्या है? यार यार ये काश ये मेरे लिए सवाल हो, मेरे लिए ही होगा।
1: आपका नाम क्या?
0: मोहम्मद है ये, और इन्होंने उल्लू जो है वो लगाया हुआ है डीपी में, बड़ा ही प्यारा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये उल्लू है या क्यूटी है, कुछ तो है
1: जो आपको समझ में आ गया।

0: ओके आगे बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत गर्मी है सर आज। ओहो
1: गर्मी
0: बस सर
1: है।
0: मैं तो ये कहूंगा कि शादी मत किया करो, तो सब कुछ होगा, टैलेंट भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा मेरा भाई।
1: अरे ये कल वाले तो नहीं, अब्बास जी।
0: ये अरबाज आदमी का नाम है और ये हाँ। ऐसा पुरानी है।
1: अरे अरबाज जी क्या मसला, क्या है, क्या हुआ, क्या है?
0: हद है सरवर भाई कहते हैं।
1: भाई मुझे बताइए हुआ क्या है, क्यों शादी को लेकर इतना उखड़े हुए हैं?
0: जैस भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी।
1: सरवर जी उनको उनको मैसेज कीजिए, अरबाज जी को, उनसे हम जानना चाहते हैं। पिछले एक दो दिन से वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं शादी से, वो या तो कुछ परेशान है या तो कुछ बताना चाहते हैं, या तो कोई हल उनके लिए हम निकालें या कम से कम उनकी बात ही।
0: नाजिया माशाल्लाह ये साइड बिजनेस करती हैं, अगर आपको कोई कंसल्ट करना हो उस मामले में तो ये आपको अच्छा मशवरे दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी एंड सरवर भाई, प्लीज इंक्रीज योर टाइम, इट्स नॉट एनफ यार, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो यार, बाकी तो हो ना हो,
1: बाकी तो 5 मिनट में निकल
0: KM खान। ओके यहाँ पर दो दो कॉल, इन पिन सेफ्टी पिन ये वाला ले लेता हूँ,
1: टिपी टिपी टॉक
0: सेफ्टी सेफ्टी कहना था मुझे, 499 इनके नंबर में आखिर में। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम व
1: रहमतुल्लाहि। कहाँ थे आप इतने दिनों से?
2: हम मैं आपके साथ FM के साथ।
1: अरे क्या साथ है आपकी बात, वाह वाह वाह।
0: हम हैं आपके साथ।
1: कैसे कहाँ थे, कहाँ थे
0: शहजादा सलीम साहब?
2: बस यही रेडियो पे। और
1: अच्छा रेडियो पे?
0: नहीं यार आपको इतना अनारकली याद आती है, अनारकली डिस्को चली, वो गाना बड़ा अच्छा था, मलाइका थी उस गाने में, मुझे अच्छा गाना याद आया सलीम साहब की आमद से। तो कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में?
2: बहुत जबरदस्त बेहतरीन है वो। आप कबीर भाई सुबह मेरा वेलकम क्या करो ना, वो कबीर भाई करते हैं ना शेखू और पुर्तिवी के रास्ते,
0: तो हमेशा कहते आए आपको कबीर भाई भी अच्छी बात है, उसी हिसाब वो भी वहीं पहुंच जाते हैं मेरे ख्याल में, मुगले आजम में पहुंच जाते हैं।
2: हाँ डायरेक्ट मुगले आजम से रुखसत होती है।
0: अच्छा नहीं तो आप मुगले आजम अब खाली शेखू और मतलब सलीम की बात होगी तो अनारकली की कौन करेगा, मैंने करी देखी आज।
2: बाकी जो एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ना कबीर भाई, मजा आ जाता है।
0: वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं एक्चुअली, और एक दिन उनको प्लेन कर दिया जाएगा मोना डार्लिंग की तरह, प्लेन ये दब गए जमीन पे, चलते चलते गिर जाऊंगा किसी भी दिन, पता चला प्लेन हो गए कबीर भाई, दिख ही नहीं रहे। एनी हाउ शहजादा भाई एक्स अलग हो गया, प्लेन अलग हो गया। अच्छा वो कह रहे मेरी भी सुन लो। हाँ जी
2: सरवर भाई आप कोई एक डायलॉग तो बोलिए ना मुगले आजम का, प्लीज देखते हैं कैसे बोलते हैं। प्लीज एक कुछ बोलिए,
1: प्लीज बोल दीजिए, नहीं तो कुछ कुछ दिखा दीजिए।
0: नहीं मैं दिखवा, हाँ मैं एक
1: दिखा दीजिए कुछ कर,
0: हाँ आइटम सॉन्ग वगैरह कर सकता हूँ मैं तो इंशाल्लाह जब आप सामने होंगे तो इन्हीं लोगों ने, नहीं नहीं इन्हीं लोगों ने, वो तो अलग था, वो तो मुमताज ने
1: प्यार किया आपको।
0: ओ यार व्हाट अ सॉन्ग यार,
1: और शीशे में लगवा
0: होए होए, और वो चाहिए थोड़ा
1: घाघरा चाहिए, वो तो इंतजाम कर लेंगे, डोंट वरी वो तो कहीं से भी टेंट काट के
0: बड़ा खूबसूरत लगूंगा मैं चूड़ीदार पजामे में, मैं जो लगता हूँ ना। तो यार कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं हम लोग भी, तो क्या नाम बता रहे थे अपना,
1: शेखू
0: नहीं शहजादा सलीम। तो शहजादा भाई क्या कहते हैं, हार्डवर्क और टैलेंट के अंदर कैसे अंतर करते हैं आप, आपके लिए क्या जरूरी है, कहाँ तक उसने आपकी मदद करी है, उसने नाम भी नहीं बताया अपना मदद करने के बाद।
2: जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी मतलब मेरी अपनी सोच है, बाकी का नहीं पता।
0: नहीं नहीं आप ही की सोच हम सुनेंगे भी और मानेंगे भी, हम दूसरे की पूछे नहीं रहे आपसे।
2: जी कॉन्फिडेंस जो है ना कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत को क्रिएट करता है।
0: ये तो कॉन्फिडेंस कर रहा है, इसमें हार्डवर्क और टैलेंट क्या कर रहा है?
1: तो टैलेंट है कॉन्फिडेंट है,
0: ये तो कॉन्फिडेंस का गेम है।
1: अरे टैलेंट है कॉन्फिडेंट है,
2: टैलेंट होएगा तो कॉन्फिडेंस को क्रिएट करेगा ना, अगर कॉन्फिडेंस है तो आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी हिम्मत।
1: इन्होंने कहा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, एंड दैट्स ट्रू। फिर अपने में से उस कॉन्फिडेंस को और आप बिल्ड करेंगे आगे और डेवलप कर लेंगे, ये अच्छी बात कही आपने।
2: सर्वर भाई सब एक दूसरे से ही कनेक्ट है, तो वेरी अप्रिशिएट ये टॉपिक का। और जहाँ तक मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक मीटिंग में रहा तो आई थिंक इज वेल।
0: अरे क्या कह गए जल्दी,
1: आई थिंक इट्स वेल।

0: नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें, आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपनी जाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज़ आपसे होता है।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।
0: सामईन किराम, आज की सुन्नत का ताल्लुक एक ऐसे दिन से है जो एक मुसलमान के हफ्ते का सबसे खास दिन है और वो है जुमे का दिन। जुमा आता है तो एक मुसलमान के मामूल में एक खूबसूरत तब्दीली आनी चाहिए। ये दिन हमें गोया हफ्ते भर की मसरूफियात से निकाल कर याद दिलाता है कि आज अल्लाह के घर की तरफ जाना है, मुसलमानों के इज्तिमा में शरीक होना है, खुतबा सुनना है, नमाज अदा करनी है और अपने रब के सामने हाजिर होना है। और जब हाजिरी इतनी अहम हो तो उसकी तैयारी भी अहम होगी। इसीलिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमे के लिए तहारत, सफाई और बिलखुसूस गुस्ल की बड़ी तरगीब मिलती है। सामईन किराम, इस्लाम ये तो बताता है कि नमाज आपने कैसे पढ़नी है, साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आप नमाज तक कैसे पहुँचें। आपका जिस्म पाक हो, लिबास मुनासिब हो, आप दूसरों के लिए बायस अज़ियत ना हो और आपका जहन भी उस इबादत के लिए तैयार हो। समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन वजू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और यह बहुत उम्दा सुन्नत है, और जिसने गुसल किया तो यह अफजल है। इसे अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्न माजा, दारमी और अहमद ने रिवायत किया है। तो जुमा चूंकि इज्तिमा का दिन है, मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, सफ़े बनती हैं, लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, खुतबा सुनते हैं, एक इज्तिमाई इबादत का मंजर कायम होता है। तो ऐसी जगह इस्लाम सिर्फ आपकी ज़ाती सहूलत नहीं देखता बल्कि आपके साथ बैठे हुए शख्स का हक भी देखता है। यानी मुसलमान ऐसा हो कि उसकी मौजूदगी दूसरे के लिए खुशगवार हो, नागवारी का सबब ना हो। यही वजह है कि तहारत इस्लामी तहजीब का महज ज़ाहरी पहलू नहीं, ये दूसरों के एहतराम का भी हिस्सा है। जुमे का गुस्ल गोया हमें ये शऊर देता है कि मैं अपने रब के घर जा रहा हूँ, मैं इज्तिमा में शरीक होने जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे अपने जाहिर को भी उस हाजिरी के शाया निशान बनाना है। तो हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, वजू किया तो ये भी अच्छी बात है, फिर फरमाया और जो गुस्ल करे वो अफजल है। तो ये नबवी तालीम हमें दीन के एक खूबसूरत मिजाज से भी आशना करती है कि दीन इंसान को खैर के दर्जात सिखाता है। एक दर्जा यह है कि आदमी बुनियादी तकाजा पूरा करे और एक दर्जा यह है कि वह मोहब्बत और अहतमाम के साथ अफजल तरीका इख्तियार करे। अब एक बात तो यह है कि कम अज कम कितना करना ज़रूरी है, और एक बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा बताया है। अपने वक्त की मनसूबाबंदी करें ताकि आखिरी लम्हे की जल्द

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। ओलंपिक साइकिलिंग की तारीख में दोस्तों अगर सबसे कामयाब राइडर्स की बात की जाए तो सर क्रिस हॉय का नाम जरूर सामने आता है। ग्रेट ब्रिटेन के इस लेजेंडरी साइक्लिस्ट ने ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग में 6 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया। यहाँ दोस्तों क्रिस हॉय की ओलंपिक गोल्ड मेडल जर्नी सन 2000 से सन 2012 तक जारी रही। उन्होंने मुख्तलिफ ओलंपिक गेम्स में अपनी स्पीड, पावर और एक्सेप्शनल कंसिस्टेंसी का शानदार मुजाहरा किया। हॉय ने पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल सिडनी 2000 में जीती। इसके बाद की कामयाबी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता था। 2008 में उन्होंने एक ही ओलंपिक गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी डोमिनेंस साबित की। जबरदस्त परफॉर्मेंस। लंदन 2012 में अपने होम क्राउड के सामने एक और गोल्ड मेडल जीतकर क्रिस ने ओलंपिक साइकिलिंग में अपना टोटल 6 गोल्ड मेडल्स तक पहुंचा दिया। ये अचीवमेंट उन्हें ओलंपिक साइकिलिंग के सबसे कामयाब एथलीट में शामिल करती है। यहाँ दोस्तों क्रिस हॉय की कामयाबी सिर्फ मेडल्स की तादाद नहीं बल्कि सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की कहानी है। अब थोड़ा उनके प्रोफाइल को जानते हैं। क्रिस हॉय स्कॉटलैंड के एडिनबरा में 23 मार्च 1976 को पैदा हुए। उनका साइकिलिंग करियर बीएमएक्स से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो ट्रैक साइकिलिंग दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए। BMX से ट्रैक साइकिलिंग तक का जो सफर था वो आसान नहीं था, लेकिन हॉय की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उनकी मेंटल प्रिपरेशन थी। ट्रैक पर वो सिर्फ तेज नहीं थे, वो इनक्रेडिबली पावरफुल थे। ठीक है, कभी कभार स्पीड जो है ना वो अपने दिमाग से भी आप चला सकते हैं। इट्स नॉट इलेक्ट्रिक, और जो मैकेनिकल स्पीड की बात है वो हमेशा आपको उस पोडियम फिनिश तक लेके नहीं जा सकता है। कभी कभार यू नीड टू हैव दैट तेज तरीन दिमाग, और वो क्रिस हॉय के पास था। उनकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी और टैक्टिकल इंटेलिजेंस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ट्रैक साइक्लिस्ट में शामिल कर दिया, और तो होना ही था। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता और ये उनकी ओलंपिक जर्नी का पहला बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन असल में क्रिस का गोल्डन एरा एथेंस 2004 से शुरू होता है।

में उन्होंने किलोग्राम की इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और दुनिया को बता दिया कि ग्रेट ब्रिटेन के पास एक नया साइकिलिंग सुपरस्टार आ चुका है। खाता है बीजिंग 2008 ओलंपिक गेम्स। यहां हॉय ने एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी, उन्होंने टीम स्प्रिंट, हेरिन और स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीते। एक ही ओलंपिक्स में तीन गोल्ड मेडल्स और इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें बर्तानिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टार्स में शामिल कर दिया। लंदन 2012 में कहानी और भी इमोशनल हो गई। अपने घरेलू मैदान में हॉय ने केरिन में गोल्ड मेडल जीता। वेलोड्रोम में मौजूद फैंस के शोर के दरमियान उनकी ये जीत ने ब्रिटिश साइकिलिंग के गोल्डन एरा को एक यादगार अंदाज में कंप्लीट किया। उनके करियर में सिर्फ ओलंपिक मेडल्स नहीं थे, मैं तो ओलंपिक्स की बात ही कर रहा हूं, इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी तो है ना। तो हॉय ने 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल्स और 34 वर्ल्ड कप टाइटल्स भी जीते। 34, जस्ट मार्क द नंबर 34। 2013 में प्रोफेशनल साइकिलिंग से रिटायरमेंट के बाद भी क्रिस हॉय का स्पोर्ट्स से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो साइकिलिंग, फिटनेस और मोटर स्पोर्ट से जुड़े रहे और यंग एथलीट्स को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने लंदन 2012 के वेलोड्रोम के डिजाइन में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। वही वेन्यू जो बाद में उनके नाम पर सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम के तौर पर मशहूर हुआ। लेकिन दोस्तों, क्रिस हॉय की कहानी के सबसे अहम और इमोशनल चैप्टर उनके स्पोर्टिंग करियर के बाद शुरू हुआ। 2024 में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर है, जो बाद में बोन्स यानी हड्डी तक फैल चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 से 4 साल की प्रोग्नोसिस दी, लेकिन क्रिस हॉय ने इस मुश्किल वक्त को हार के तौर पर नहीं देखा। 2025 में उन्होंने कहा कि उनकी ट्रीटमेंट एक स्टेबिलिटी स्टेज में है और वो फिजिकली अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो साइकिलिंग और एक्सरसाइज जारी रखते रहे। सितंबर 2025 में उन्होंने टूर डी फोर नाम की चैरिटी साइकिलिंग इवेंट शुरू की, जिसका मकसद स्टेज 4 कैंसर के बारे में सोच बदलना और कैंसर चैरिटीज के लिए फंड्स जमा करना था। इस इवेंट में 5,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और 2.1 बिलियन पाउंड से ज्यादा रेज हुआ। ये पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। 2025 के आखिर में हॉय ने ये भी कहा कि उनकी डायग्नोसिस ने उनका जो जिंदगी का आउटलुक है वो भी बदल दिया है। अब वो छोटी छोटी बातों की फिक्र कम करते हैं और हर दिन को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। दिसंबर 2025 में साइकिलिंग एक्सीडेंट में उनकी टांग टूट गई, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा साइकिलिंग क्रैश करार दिया। इसके बावजूद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रहा और 2026 में भी, इस साल में भी क्रिस हॉय अपनी साइकिलिंग और पब्लिक एडवोकेसी को जारी रखे हुए हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने पोर्श के साथ अपने मोटर स्पोर्ट्स पैशन और स्टेज 4 कैंसर के बावजूद प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में बात की। दोस्तों, क्रिस हॉय की कहानी हमें बताती है कि चैंपियन होना सिर्फ पोडियम पर खड़े होने का नाम नहीं, कभी कभी असल चैंपियनशिप जिंदगी के सबसे मुश्किल में हिम्मत बनाए रखना होता है। क्रिस हॉय ने ट्रैक पर मेडल जीते और अब वो जिंदगी में होप, अवेयरनेस और करेज का एक खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है आपके? बढ़िया, आई होप यू गुड। मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ बहुत तगड़ी, क्योंकि इस बार लिस्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिखाएंगी भी, नॉट जस्ट यू नो किलिंग योर बोर्डम, तो आपके काम आएंगी। एंड साथ में खबर आई है, मार्केट में फैल रही है, इनकेस आपको नहीं पता तो मैं अपडेट कर दूंगा। जिन्हें पता है, वेरी गुड, गुड जॉब डन, ये लीजिए ताली और ट्रॉफी में बनवा रहा हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। शुरू करें। ऑलराइट, सो ऑन द लिस्ट नंबर वन, सबसे पहले बताना चाहूंगा एक वेबसाइट जिसका नाम है warnontv.net। लेट मी स्पेल इट आउट। वॉर्न यानी पहनने वाला, WORN, वॉर्न, फिर ऑन, ON, फिर टीवी, warnontv.net। अब क्या होता है, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, और वो सीरीज देखते देखते आपको लगा यार ये कपड़े इसने बढ़िया पहने, यार ये कहाँ मिलेंगी, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसमें अगर वो शो आपको मिल जाता है तो आप उस शो के एपिसोड नंबर को अगर डालेंगे तो ये दिखा देगा कि हाँ ये वाले कपड़े पसंद है। आप क्लिक करेंगे, हाँ जी ये वाले पसंद है, फिर वो आपको बताएगा ये कपड़ा कहाँ मिल सकता है या ये सिमिलैरिटी, ऐसे ऐसे कपड़े आप कहाँ से ले सकते हैं। एंड ये नहीं कहेगा आपसे कि ये लो जी 3,000 रियाल खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, आपको बजट फ्रेंडली भी आइडिया दे देगा कि भाई ये वाला पसंद आया ना, ऐसा यहाँ मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप ट्राई करके देखिए। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, ये किसी ने सोचा होगा भाई, उसको मेरा सलूट है। ठीक है, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का नाम है arcadespace.org, arcade space space space.org, arcadespace.org। अब आप बैठे हैं, मान लीजिए आपकी शिफ्ट पूरी हो गई, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, आप बैठे हुए हैं लैपटॉप आपके सामने और आप बैठे हुए, क्या करूं यार बहुत बोर हो रहा हूं मैं, तो आप arcadespace.org पे जाएंगे। उसमें आपको सारे कंसोल के जो गेम्स हैं, पुराने वाले रेट्रो गेम जिनको खेल के भाई कती मजा आ जाते थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्लेस्टेशन 1 के हों, चाहे वो निंटेंडो के हों, जितने भी रेट्रो गेम्स हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और ये आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हैं, कोई डाउनलोड साउनलोड की जरूरत ही नहीं भाई, सीधा सामने शुरू किया और खेलना शुरू। मुझे तो बहुत मजा आया, आप देख लो, आपको आई एम प्रीटी श्योर अच्छे लगेंगे, बिकॉज है तो यार ये भी काम की चीज, ऐसा नहीं कह सकते ये काम का नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक और वेबसाइट, चलो लगे हाथों बता देता हूँ जब आप आ ही गए हैं, तो अगली वेबसाइट का नाम है muted.io, muted.io। इस वेबसाइट पे जाके, पता नहीं इसका नाम म्यूटेड क्यों है, लेकिन आप पूरा का पूरा म्यूजिक सीख सकते हैं, नोट्स कैसे होते हैं पियानो पे, गिटार पे, वायलिन पे, सब कुछ आपको गहरी नॉलेज मिलेगी म्यूजिक की। नॉट जस्ट दैट, आप अपने लिए खुद बीट्स भी बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये इतना बढ़िया टूल है ना, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर आप यूज करेंगे आपको मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं मैं। अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज दिस वीक। गूगल पिक्सल की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सल की एक और खबर आई है जिसको सुनकर मैं ज्यादा शॉक नहीं हूं, वो है कि गूगल पिक्सल टैग बहुत जल्दी आ रहा था, आ चुका है भाई साहब, टैग आ चुका है गूगल पिक्सल का, जिन्हें नहीं पता, ये ब्लूटूथ चैनल को यूज करता है एंड ये गूगल के हब को यूज करता है, एक पूरा इकोसिस्टम है, ये चाबी, वॉलेट, लगेज, हर जगह आप इसको इसके साथ काम कर सकते हैं। जब एप्पल ने टैग्स लॉन्च किए थे तब ये आइडिया बहुत ही अजीब लगा था लोगों को, इनिशियली लोगों ने कहा ये क्या है, इसका क्या काम है, बट देन वी अंडरस्टूड के नहीं भाई जरूरत है इस चीज की। प्राइसेस में वेरी, एक महंगा कोई सस्ता हो सकता है, बीच में बहुत सारे और भी कंपनीज ने ट्राई किए टैग्स बनाने के, बट गूगल भी इस मार्केट में उतरेगा ये मैंने थोड़ा सा भांप लिया था, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज फाइनली हियर। तो अगर आप एप्पल के टैग को यूज कर करके फैंसी दिख चुके हैं कि मेरा हो गया भाई, तो आप गूगल पिक्सल का टैग ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। इसमें साउंड भी है, मतलब इसमें साउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चाबी, वॉलेट और लगेज की सेफ्टी के लिए। ओके, ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अपडेट, मिलते हैं अगली बार।

खतरनाक और असरदार तरीका बन चुका है आजकल स्कैमर्स के लिए। इस स्कैम में हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स बिना किसी डर के डायरेक्ट आपके फिनांस डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं और कई लोग बच जाते हैं जिनको इस तरह के फ्रॉड के बारे में पता हो। दोस्तों, फेक इनवॉइस फ्रॉड तब होता है जब स्कैमर्स आपकी कंपनी को उन प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स या सर्विसेज के बिल्स भेजते हैं जो आपके बिजनेस ने कभी ऑर्डर किए ही नहीं। इन फ्रॉड बिल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये देखने में 100% असली लगते हैं। स्कैमर्स उन्हीं वेंडर्स या सप्लायर्स के नाम का डुप्लीकेट बिल बनाते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि ऑफिस सप्लाई स्टोर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, यूटिलिटी कंपनीज या फिर आपके डोमेन रजिस्ट्रार्स और वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपकी कंपनी की वेबसाइट चलाती हैं, वहां पर भी। स्कैमर्स अक्सर ईमेल्स में बहुत ही डरावनी और अर्जेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ईमेल में लिखा होगा अर्जेंट नोटिस, आपका वेब होस्टिंग डोमेन एक्सपायर हो चुका है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में फी पे नहीं किया तो आपकी कंपनी की वेबसाइट और कॉर्पोरेट ईमेल्स को हमेशा के लिए बंद यानी कि शट डाउन कर दिया जाएगा। इस अर्जेंट नोटिस पे आप कैसे बिहेव करेंगे? आपको लगेगा फी पेमेंट करना बहुत जरूरी है, फी देना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ आगे का एक्शन लेंगे, लेकिन तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। बड़े या बिजी बिजनेसेस में जहां अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स पर काफी वर्कलोड होता है, वहां एम्प्लॉइज हर छोटे बिल को गहराई से चेक नहीं करते। उन्हें लगता है कि अमाउंट छोटा है और अगर वेबसाइट बंद हो गई तो बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी जल्दबाजी और डर का फायदा उठाकर अकाउंट्स के लोग बिना इन्वेंटरी या मैनेजर से कंफर्म किए बिना बिल पे कर देते हैं और कंपनी का पैसा सीधे स्कैमर्स के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचा कैसे जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, फेक इनवॉइस फ्रॉड से बचने के सॉलिड सॉल्यूशन बिल्कुल हाजिर है। क्लियर इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, जैसे कि कुछ कल भी हमने बात करी थी पीओ सिस्टम के बारे में, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाएं। कभी भी इनवॉइस यानी कि बिल का पेमेंट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक परचेज ऑर्डर होना जरूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। गुड्स रिसीट नोट और मैनेजर का साइन, ये साथ में मैच किया जाना ही चाहिए। अगर कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं मिलती तो उस बिल को तुरंत रिजेक्ट कर दें। उसके अलावा सेंडर का ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, जब भी कोई अर्जेंट बिल आए तो हमेशा सेंडर के ईमेल आईडी को गौर से चेक किया जाए। स्कैमर्स असली कंपनी जैसे दिखने वाले फेक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ईमेल एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती दिखे तो समझ लीजिए ये एक फ्रॉड है। उसके अलावा डायरेक्ट वेंडर कंफर्मेशन, अगर आपको किसी ट्रस्टेड सप्लायर के नाम पर कोई सस्पिशियस या बहुत अर्जेंट बिल मिलता है तो ईमेल पर रिप्लाई करने के बजाय उनके पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उनका रियल फोन नंबर निकालें। उन्हें डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कोई बिल भेजा है या नहीं। उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, कंपनी में हर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने या बैंक ट्रांसफर अप्रूव करने के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स्ड टीम या सीनियर अकाउंटेंट को ही इसका एक्सेस दीजिए ताकि हर ट्रांजैक्शन पर डबल चेक लग सके। उसके अलावा स्टाफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अपने अकाउंटिंग स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर साइबर फ्रॉड के बारे में ट्रेन करें। उन्हें समझाएं कि स्कैमर्स हमेशा अर्जेंसी और डर का यूज करते हैं, इसलिए किसी भी अर्जेंट ईमेल को देखकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा जब भी खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो जाता है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है ये कि आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप बैंक में इत्तला करेंगे, अपने बैंक को इत्तला करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करेंगे, उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे, तो आपका गया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। ये आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का, फ्रॉड से बचने का। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
0: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नया शो जिसका नाम है फ्यूचर करियर। ये एक ऐसा शो है जहां हम बात करेंगे आज की दुनिया में तेजी से बदलते हुए करियर्स, नई मुलाजमतों, नई महारतों और उन मौकों के बारे में जो आने वाले वक्त में नौजवानों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको इस प्रोग्राम में दिल से खुशामदीद कहती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो काम कुछ साल पहले एक खास तरीके से किए जाते थे, आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हो रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मुलाजमतें पैदा हो रही हैं और कुछ पुराने काम भी नए तरीकों में तब्दील हो रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो शायद आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, कौन सा शोबा मेरे लिए बेहतर होगा, आने वाले वक्त में किन जॉब्स की ज्यादा जरूरत होगी और मैं आज से अपने आप को मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार कर सकता हूँ। बस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने ये शो शुरू किया है। फ्यूचर करियर में हम हर एपिसोड में एक ऐसे करियर या फिर प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जो आने वाले वक्त में अहम हो सकता है। हम जानेंगे कि उस शोबे में क्या काम होता है, उसके लिए किस किस्म की तालीम और महारतों यानी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, यूनिवर्सिटी में कौन से मजामीन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और सबसे अहम बात, आप आज से इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। और एक और बात जो कि मैं कहना चाहूंगी कि मुस्तकबिल के करियर यानी फ्यूचर करियर का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना नहीं है। दुनिया बदल रही है, इसलिए करियर के रास्ते भी बदल रहे हैं। आज ऐसे ऐसे शोबे सामने आ रहे हैं जिनके बारे में शायद हमारे

आपको एक मजबूत फाउंडेशन दे सकती है। लेकिन आज के तेजी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर में एम्प्लॉयर्स ये भी देखते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। मसलन अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना काफ़ी नहीं, कोशिश करें कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, प्रोग्रामिंग सीखें, पाइथन जैसी जबान से शुरुआत की जा सकती है, डेटा के साथ काम करना सीखें, मशीन लर्निंग की बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए और आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानें। लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही अहम नहीं है, यहाँ एक दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे AI ताकतवर हो रही है वैसे वैसे ह्यूमन स्किल्स भी ज़्यादा अहम होती जा रही है। मसलन कम्युनिकेशन, आपको अपने आइडियाज दूसरों तक वाज़ेह अंदाज में पहुँचाना आना चाहिए। टीम वर्क, क्योंकि मुस्तकबिल के ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों की टीमें मिलकर करेंगे। फिर आ जाती है क्रिएटिविटी, ये बहुत से काम कर सकती है लेकिन नए सोचने और मुख्तलिफ तरीके से मसाइल को देखने की सलाहियत हमेशा अहम रहेगी। लीडरशिप, अगर आप मुस्तकबिल में किसी प्रोजेक्ट या टीम को लीड करना चाहते हैं तो लोगों के साथ काम करने और फैसला करने की सलाहियत ज़रूरी होती है। और एक और अहम स्किल है एडेप्टबिलिटी, यानी हालात बदले तो आप भी सीखने और ख़ुद को बदलने के लिए तैयार हों, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी नई है मुमकिन है कि 5 साल के बाद वो आम हो जाए। इसलिए हमें एक ही स्किल पर हमेशा के लिए डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो कोशिश करें कि आपको इंटर्नशिप का मौका मिले। टेक्नोलॉजी कंपनीज, रिसर्च सेंटर्स, इनोवेशन हब्स या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, आपको ये समझने में इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मदद देती है कि वर्क प्लेस पे असल में काम होता कैसे। कभी कभी चंद हफ्तों या चंद महीनों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको ऐसी चीज़ें सिखा देता है जो सिर्फ किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। इसके अलावा आज स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के बहुत से रास्ते मौजूद हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, कोडिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा ले सकते हैं, AI कॉम्पिटिशन्स में आप शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ शोबों में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में AI टेक्नोलॉजी, डेटा और डिजिटल सर्विसेज जैसे से जुड़ी हुई जो स्किल्स हैं उनकी अहमियत और बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी इदारों में डिजिटल सर्विसेज को बेहतर बनाने, डेटा को समझने और स्मार्ट सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह हेल्थ केयर भी एक अहम शोबा है। हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर में AI एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पेशेंट की जो मैनेजमेंट है, मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक प्रोसेस और में मुख्तलिफ तरह से मदद दे सकता है। इसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंस में भी डिजिटल सर्विसेज, फ्रॉड डिटेक्शन, AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके लिए दोनों को समझने वाले फाइनेंस और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च और एजुकेशन भी अहम है। कतर में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे शोबों पे काम कर रहे हैं। अगर आप कतर में रहते हैं और अभी स्टूडेंट हैं तो आज से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। डिजिटल स्किल्स सीखिए, कोडिंग की तालीम हासिल करें, अपनी बेसिक नॉलेज इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर करें, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस और वर्कशॉप्स में हिस्सा लें जहाँ पे आपको इंटर्नशिप या रिसर्च के बेहतर मौके मिल सकते हैं। याद रखिए कि करियर एक दिन में नहीं बनता। आज आप जो छोटी स्किल सीखेंगे वो कल आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। हमने जाना कि AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक ऐसा शोबा है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करने के तरीके को बदल रहा है। हमने मशीन AI इंजीनियर, AI एथिक्स, लर्निंग इंजीनियर, AI प्रोडक्ट मैनेजर स्पेशलिस्ट और AI ट्रेनर जैसे करियर्स के बारे में बात की। हमने ये भी देखा कि AI में कंप्यूटर साइंस के अलावा करियर बनाने के लिए डिजिटल साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे भी रास्ते मौजूद हैं। सबसे अहम बात हमने ये समझा कि मुस्तकबिल में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी नहीं होंगे, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी जैसे ह्यूमन स्किल्स भी बहुत अहम रहेंगे। अब वापस आते हैं अपने सवाल की जाने, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में जॉब्स खत्म करने के बजाय नई मुलाजमतें ज्यादा पैदा करेगी? शायद

0: सवाल का एक ही जवाब देना आसान नहीं है। कुछ काम जरूर बदलेंगे, कुछ काम टेक्नोलॉजी खुद करेगी, लेकिन साथ ही नए करियर्स और नए मौके भी पैदा होंगे। असल बात यह है कि हम तब्दीली के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप आज के तालिब इल्म हैं तो मुस्तकबिल से घबराने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें, सीखते रहें, अपनी स्किल्स बेहतर करें और नई टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक मौका समझें। आप सुन रहे थे फ्यूचर करियर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश। अगले शो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक बहुत ही अहम मौजू। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी करियर्स के बारे में और वो लोग जो हमारी डिजिटल दुनिया को महफूज रखने के लिए काम करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मुस्तकबिल की तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। मैं हूँ मावश, ये था फ्यूचर करियर। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज द रिक्वेस्ट शो पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का हैप्पी वाला बर्थडे। वैसे उनका रियल नाम किसी को याद है कि नहीं? नहीं है तो चलो बताते हैं, उनका नाम है राजीव हरिओम भाटिया। यस, और स्क्रीन नेम उनका अक्षय कुमार है, जो कि काफ़ी उनके लिए लकी साबित हुआ। वैसे आप में से बहुत सारे लोग जो अक्षय के फैंस हैं वो जानते होंगे कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने बैंकॉक में काम किया एज अ शेफ। हाँ, और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल गया है कि नहीं। वैसे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट नॉन स्टॉप एक्चुअली अक्षय कुमार की आना शुरू हो चुकी हैं, उनके फेवरेट गाने लोग सुनना चाहते हैं। आई कैन सी कि खिलाड़ी कुमार को कितना प्यार हमारे लिसनर्स करते हैं। वेल, अभी हमें मोहम्मद फैजान की रिक्वेस्ट आई है एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग। I Sing Is King का टाइटल ट्रैक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। सो यस, ये गाना आप सुनेंगे ही सुनेंगे और उसके बाद 90s के एरा में जाएंगे। तो आसिफ की रिक्वेस्ट है ये गाना, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। उफ, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस सॉन्ग। कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। सो डेफिनेटली ये गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और उसके बाद सिंग इज किंग हम प्ले करेंगे। लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में कौन सा वो गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, डू शेयर विद अस। 666-22-107 पर आपकी ए फॉर अमिता यहाँ हाजिर है द रिक्वेस्ट शो पर। अक्षय कुमार के गाने आज हम प्ले कर रहे हैं बिकॉज इट्स हिज बर्थडे। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.

0: रूम करे शेकअप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर, आपकी फॉर अमिता हाजिर है। वेल आज की शाम हमारे अक्की के नाम यानी कि द खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के नाम, जो कि आज 59 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी अपने करियर में 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, क्या बात है जनाब। वेल आज जो हम गाने डेडिकेट कर रहे हैं डेफिनेटली उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि गाना आपको क्यों पसंद है और किसी खास को डेडिकेट करना है तो क्यों करना चाहते हैं, कुछ तो बताओ है कि नहीं। वेल अभी हमें रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद यूसुफ खान की, यहाँ पर अशोक है, उसके बाद रमेश शर्मा है एंड आकाश है और वो सुनना चाहते हैं खिलाड़ी कुमार की सबसे पहली हिट खिलाड़ी फिल्म का ये गाना एंड द सॉन्ग इज वादा रहा सनम। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक की आवाज़ का ग्रेट कॉम्बिनेशन है एंड लिटरली इस गाने के न जाने कितने सारे रिमिक्सेस बने, बट दिस OG is really awesome। तो हम आपको ये गाना सुनाएंगे और उसके बाद उफ ये गाना तो मतलब इसकी धुन से ही पहचाना जाता है, क्या बात है। मोहरा फिल्म का गाना, उफ बारिश में ये गाना ना बजे तो ऐसा लगता है कि बारिश मुकम्मल नहीं हुई है कि नहीं। वेल अक्षय कुमार की खास बात, इस फिल्म के लिए उन्होंने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म किए थे, यहाँ तक कि अगर आपने मोहरा फिल्म देखी है तो उसका जो क्लाइमेक्स वाला सीन है वो 100 फीट के टार से एकदम कूदते हैं, that he did by himself without body double। तो हाँ जनाब, ऐसे हमारे अक्षय कुमार, तो उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए ये दोनों ही गाने हमारे डेडिकेशंस पर द रिक्वेस्ट शो पर हम प्ले करने वाले हैं। सो वी स्टार्ट विद वादा रहा सनम, उसके बाद टिप टिप बरसा पानी इंजॉय करेंगे और आप भी अपनी प्लेलिस्ट भाई सोचिए कि अक्षय कुमार का कौन सा गाना यू रियली लव इट एंड व्हाई, शेयर करें 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और सच में द रिक्वेस्ट शो में ऐसे लग रहा है कि ना बिल्कुल फायर लग रही है, सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है और ऐसे गाने कि इन गानों को आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्या बात है। एंड रियली ब्यूटीफुल चॉइसेस हमारे सारे लिसनर्स की, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और अभी भाई देखो, आज हमारी थीम जो है ना, कुछ हमारे लिसनर्स अभी अभी हमें सुनना शुरू करें और कह रहे हैं कि अभी आज की थीम क्या है, तो आज की थीम है कि आज हमारे फेमस फिल्मी दुनिया के सबसे एनर्जेटिक एक्टर अक्षय कुमार का हैप्पी वाला बर्थडे, आज वो 59 ईयर्स के हो चुके हैं। सो डेफिनेटली हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूरा घंटा उन्हीं के गानों से। सो कौन सा वो अक्षय कुमार का गाना है दैट रियली यू लव और आप किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं और यहाँ प्ले करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिख कर भेजे 666-22-107 पर। और अभी हमें रिक्वेस्ट आई है वारिस मोहम्मद साहब की, और वो अक्षय कुमार की फिल्म दोस्ती, ओके 2005 में फिल्म आई थी, उसका गाना सुनना चाहते हैं। एंड थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रेट्रो फील वाला सॉन्ग है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, मतलब है तो 2000s का, बट या द फील इज काइंड ऑफ रेट्रो। सो ये दोस्ती इज द सॉन्ग, उदित नारायण एंड सोनू निगम की आवाज़ में है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड दोस्ती फिल्म में ना पहले ये जो हमारे बॉबी देओल और अक्षय कुमार हैं, इन दोनों की पेयरिंग से पहले अजय देवगन को लिया जाने वाला था, अजय देवगन विद बॉबी देओल, लेकिन उसके बाद चेंज हुए तो अक्षय की एंट्री हुई। एंड देन द सेकेंड सॉन्ग, ओ हो हो, ये तो मतलब ऐसा गाना चुना है सैयद अथर साहब ने कि ये गाना जब रिलीज हुआ था तो हमारे मुल्कों में हर शादी में फॉर श्योर ये गाना बजेगा। आई हाय, व्हाट अ शहनाई। और गाना है दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, आय हाय हाय, धड़कन फिल्म का ये गाना है। एंड आई एम श्योर कि बिल्कुल माहौल बन जाएगा जब ये गाना हम रेडियो पे प्ले करेंगे। तो डेफिनेटली ये दोनों ही रिक्वेस्ट आपकी राहों में आ रही है। और जनाब, आप कौन सा अक्षय कुमार का गाना सुनना चाहते हैं या किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं और क्यों, आप शेयर कर सकते हैं हमसे 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, द रिक्वेस्ट शो पर हम आपकी फरमाइशें डेफिनेटली प्ले करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।

0: नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात की अहमियत को समझें और उन्हें शेयर करते वक्त एहतियात से काम लें। याद रखें, आपकी मालूमात कीमती हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपनी जाती मालूमात किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये मालूमात किसको दे रहे हैं और उसे इनकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत के मुताबिक मालूमात शेयर करें और अपनी जाती मालूमात की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका पसंद

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: Yes, and now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. क्या बात है जनाब, क्या बात है. अक्षय कुमार के जो हिटेड गानों की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, मतलब दिल मेरा एकदम बाग बाग होते जा रहा है. ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट सीरियसली. वेल, अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रिक्वेस्ट है सैयद हुसैन साहब की और अपने फ्रेंड साकिब को ये डेडिकेट करना चाहते हैं. एंड आई गेस दिस इज द सॉन्ग कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, आरजू फिल्म का वन ऑफ द हिट सॉन्ग.
3: दिल में हम आ गए.
2: डेफिनेटली ये गाना हम पूरा पूरा प्ले करेंगे और उसके बाद कमरान साहब जिस गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो गाना हम रेडियो पे नहीं प्ले कर सकते. बट कमरान साहब आपका दिल छोटा ना करें क्योंकि हम आपके लिए प्ले करेंगे सोनू निगम एंड शिल्पा राव की आवाज में अल्लाह माफ करे. क्या बात है, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कुछ ही देर में आपकी राहों में आएगा. और आज क्या हो रहा है हमारे शो पर, द रिक्वेस्ट शो पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार के हिटेड गाने क्योंकि आज उनका 59th बर्थडे है. सो एंटायर आर हमने उन्हीं के गाने इंजॉय किए हैं और आगे कुछ मिनटों में भी हम उन्हीं के गाने इंजॉय करेंगे. तो अगर आपकी प्लेलिस्ट का कोई ऐसा गाना है जो अक्षय कुमार का फेवरेट है आपका, सो डेफिनेटली यू कैन रिक्वेस्ट हियर 666-2107 पर अपने फील के साथ अपने डेडिकेशंस हम तक पहुंचाएं और अपने हिट गाने यहां एंजॉय करें. और कहीं ना जाए, बने रहे स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और कमाल कमाल की रिक्वेस्ट हमारे लिसनर्स की, आज अक्षय कुमार का हैप्पी वाला बर्थडे है और उन्हीं की फिल्मों के गाने हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, लेकिन पसंद आपकी है कि नहीं। वेल, अगला जो गाना हम प्ले करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत गाना है, उसकी डेडिकेशन

0: थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अभी ये वक्त है आपके फिल्मी नॉलेज को टेस्ट करने का।
1: क्विज टाइम।
0: हाँ, तो क्विज टाइम पर अभी मैं एक गाने की शुरुआत की धुन आपको सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना ये गाना कौन सा है। सोचिए सोचिए कौन सा गाना है हमारे खिलाड़ी कुमार का और उनके साथ कौन है। थिंक अबाउट इट। यस, हाँ, तो आपको गेस करना है कि ये गाना कौन सा है। 666-22-107, 666-22-107 पर हमें सही जवाब भेजिए अपने नाम के साथ, तो फिर ये गाना मैं आपके नाम कर दूंगी। और अभी जो अगली डेडिकेशन हम प्ले करने वाले हैं, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तेरे संग यारा आतिफ असलम की आवाज़ में है और अख्तर ने, दिलबर ने ये गाने को रिक्वेस्ट किया है और वाहिद अहमद की बेटर हाफ के लिए हम ये गाना प्ले करने वाले हैं। I'm sure you're gonna love it. So, zarur enjoy kare. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से
1: वेलकम वेलकम वेलकम द रिक्वेस्ट शो पर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और जनाब अभी ब्रेक पे जाने से पहले क्विज टाइम में मैंने आपको एक गाने की ना धुन सुनाई थी और कहा था गाना पहचान लो, अगर गाना पहचान लेते हो तो ये पूरा पूरा गाना आपके नाम हो जाएगा। एंड ये धुन थी बताए कौन सा गाना है। तो 666-22-107 पर आपको हमसे शेयर करना था एंड लेट मी सी कि हमारे कितने लिसनर्स हैं जो सही जवाब दे पा रहे हैं। मिस्टर खान ने सही जवाब हमें दिया है, इमरान ने हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है।

है उनके फ्रेंड सभी का बर्थडे है. सो फैजल जी की तरफ से सभी आपको हैप्पी वाला बर्थडे, हमारी एफएम 107 की एंटायर टीम की तरफ से भी आपको बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद. यस जनाब. वैसे देखिए वक्त एकदम भागे जा रहा है, तो मेरा वक्त भी हो चुका है एक्चुअली जाने का. देखो अब जाते जाते मैं थोड़ा फिसल भी रही हूँ. वेल, आप एफएम 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपने आरजे मीता को भी वहीं ढूंढ लीजिएगा. और फिलहाल के लिए दो अगर दोस्त हैं और तगड़े दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बिल्कुल हमारे खिलाड़ी कुमार की तरह है, तो फिर इसी तरह के गाने का माहौल आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ज़रूर बनते रहा होगा, है कि नहीं? सो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का. बने रही है एफएम 107 पर दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: हर घर की अपनी कहानी होती है. कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश. तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं. एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता. सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107. फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स.
4: सलाम आदाब, मैं हूँ नासिया FM 107 से एंड वेलकम टू दिस शो कॉल्ड फैमिली मैटर्स. आप सुन रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं फैमिली की, पेरेंटिंग की और बच्चों की अच्छी तरबियत की. और आज के इस एपिसोड में हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग, यानी ऐसी पेरेंटिंग जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाती बल्कि उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी को भी मजबूत बनाती है. हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं. हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, अच्छे वैल्यू सीखे, इज्जत करे, जिम्मेदार बने और जिंदगी में कामयाब हो. लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डांटना, पनिश करना, रूल्स बनाना काफी है, या फिर पेरेंटिंग का कोई और बेहतर तरीका भी है. आज हम जानेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग है क्या, ये क्यों आज के इस डिजिटल एरा में जरूरी है, इसके लिए कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं एज अ पेरेंट. कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी और हाँ, आखिर में हम और आप एक्सप्लोर करेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है. देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पेरेंट्स बच्चों को प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस के साथ उनकी तरबियत करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हर चीज की इजाजत दी जाती है और ना ये है इसका मतलब कि डिसिप्लिन खत्म कर दिया जाता है, बल्कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है डिसिप्लिन विदाउट फियर, गाइडेंस विदाउट ह्यूमिलेशन, करेक्शन बट विद लव. जी, पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि मुझे समझा जाता है, मुझे सुना जाता है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं गलती करके सीख रहा हूँ और इसी वजह से बच्चे इमोशनली तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं. आज का जमाना बहुत डिफरेंट है. बच्चों के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन है. ऐसे में सिर्फ अकेडमिक सक्सेस काफी नहीं है, बच्चों को इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है और पॉजिटिव पेरेंटिंग उन्हें यही स्ट्रेंथ देती है. अब बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को क्या देती है. पॉजिटिव पेरेंटिंग का असर ये होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जब पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे अपनी एबिलिटीज पर यकीन करना सीखते हैं. वो सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत या सही, लेकिन सीखने की राह पर हूँ. और ये कॉन्फिडेंस पूरी जिंदगी उनकी बदल देता है. ऐसा बच्चा जो घर में सिक्योर महसूस करता है, वो बाहर के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है. उसे पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं. वहीं पर बात आती है बेटर कम्युनिकेशन की. जी हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है. बच्चे अपने फियर्स भी शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स भी और अपनी

मिस्टेक्स भी। ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चों का और पेरेंट्स का रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। चाइल्डहुड में जो रिश्ता पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बनता है वो जिंदगी भर साथ रहता है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों की एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करते हैं। जब बच्चे अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड किए जाएं तो उनकी इमोशनल वेलबींग बेहतर हो जाती है। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ उसूल भी हैं। देखिए पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे की जाए, उसका सबसे पहला रूल है पहले सुने फिर बोले। अक्सर पेरेंट्स फौरन लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग का पहला रूल है लिसन फर्स्ट। जब बच्चा बात करे तो पूरी तवज्जो से सुने, आंखों में आंखें डालकर, फोन साइड में रखकर, बिना किसी इंटरप्शन के। कई दफा बच्चों को सलूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ उन्हें आपका सपोर्ट और साथ चाहिए होता है। वहीं दूसरा रूल जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है रिस्पेक्ट दीजिए। जिस तरह हम रिस्पेक्ट लेना पसंद करते हैं वैसे ही बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हम उनकी बेइज्जती करेंगे तो वो डर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट की जाए तो वो बिना डर और खौफ के बात साफ कहते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। ये सेंटेंस बच्चे के दिल में जगह बना देते हैं। वहीं तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है एफर्ट्स की तारीफ करना। अक्सर हम सब का फोकस रिजल्ट्स पे होता है, जबकि जरूरत है कि हम और आप मिलके एफर्ट्स की भी तो तारीफ करें। बच्चे ने मेहनत की, शायद उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मेहनत की, इस मेहनत को सेलिब्रेट कीजिए। ये कहना कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए ये गलत है, तुमने बहुत मेहनत की, तुम थर्ड आए, फर्स्ट आ सकते हो। ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग। इससे बच्चा लर्निंग पर फोकस करता है, मार्क्स पर नहीं। और एक और चौथा रूल, क्लियर बाउंड्रीज रखना। जी हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं। रूल्स जरूर होने चाहिए, लेकिन रूल्स रिस्पेक्ट के साथ। जैसे स्क्रीन टाइम सिर्फ एक घंटा होगा, होमवर्क के बाद गेम्स, रूल्स एकदम क्लियर हों और पेरेंट्स खुद भी उन्हें फॉलो करें। पांचवा रूल है गलती को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना। गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करना एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसे बाय द टाइम आप जो है वो स्टार्ट करें, इनिशिएट करें और धीरे धीरे बच्चा उसे फॉलो करता है। देखिए गलती तो हर एक से होती है। अगर ग्लास टूट जाए, होमवर्क भूल गया, झूठ बोल दिया, तो फौरन चीखने चिल्लाने की बजाय पूछें, तुमने इसे क्या सीखा। ये सवाल कैरेक्टर बिल्ड करता है। कहने को तो इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये बच्चे की शख्सियत बनाता है। छठा इम्पोर्टेंट रूल है कि टाइम, और वो भी बच्चे के साथ स्पेंड करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम है, लेकिन फिर जब एक आदत बन जाती है पेरेंट्स से दूर रहने की, तो शायद पेरेंट्स की जो प्रेजेंस है वो खलने लगती है। कोशिश करें कि रोज़ 10-15 मिनट निकालें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, जहाँ ना मोबाइल हो ना डिस्ट्रैक्शन हो, सिर्फ एक कनेक्शन हो। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर का ट्रस्ट बनती है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम और आप बेसाख्ते ही बोल जाते हैं। जैसे अगर बच्चे ने रूम मिस कर दिया तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल रिएक्शन है, तुम बहुत केयरलेस हो। वही हमारा पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, तुम जैसे भी हो, आज तुमने रूम अनटाइडी रखा, चलो मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। रिजल्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी और चाइल्ड इंसल्टेड फील नहीं करेगा।

वो शर्मिंदा कर दिया, जबकि पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं किस सब्जेक्ट में तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत है और इसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चा मोटिवेट रहता है। वहीं पर किसी बच्चे ने सच बोल दिया कि उससे ये फ्लावर पॉट टूट गया। पॉजिटिव पेरेंटिंग कहती है कि बेटे को शुक्रिया कह के गले लगाओ। पनिशमेंट से उसकी ऑनेस्टी या ऑनेस्ट होने वाली जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे में कभी भी पनिश ना करें, इस सच बोलने की आदत को जितना हो सके इनकरेज करें। देखिए, वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग हमेशा हर सिचुएशन हर सिनेरियो में पॉसिबल है, इसके अपने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और पॉजिटिव पेरेंटिंग की सबसे मुश्किल हिस्सा है एक्चुअल में बच्चे खुद। जी हाँ, कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं, कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है आपकी डांट भी चाहते हैं, कई बार कुछ बच्चे इस तरह के एडमेंट हो जाते हैं कि जहाँ आपको थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो समझदार हैं, अपने आप को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो, जब आप सबसे ज्यादा थके हो, जब सबसे ज्यादा प्रेशर में हो, उस वक्त कोशिश करें कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। याद रखिए, बच्चे हमारी बात कम और हमारा रवैया ज्यादा देखते हैं और वहां से ज्यादा सीखते हैं। आजकल बहुत कॉमन सी बात है कि हम चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे बच्चा क्या सीखेगा। चलिए एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये स्टोरी है आयशा और उसकी अम्मी की। बच्चों, अगर आप भी हमें सुन रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। आयशा, जो आप ही की तरह 11 साल की बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरपोक थी। स्कूल में भी कम बोलती, घर में भी कम बोलती। उसकी अम्मी अक्सर कहती थी, तुम इतनी क्वाइट क्यों रहती हो? लेकिन आयशा जवाब नहीं देती थी। एक दिन स्कूल से फोन आया, टीचर ने बताया कि आयशा क्लास प्रेजेंटेशन के वक्त रो पड़ी। अम्मी उसकी काफी परेशान हो गई। रात को उन्होंने आयशा को पास बैठाया, डांटने की बजाय प्यार से कहा, बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। पहले 10 मिनट तक आयशा खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू। उसने रोते हुए भरे हुए गले से कहा, अम्मी मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे बार बार गलती हो जाती है, सब मुझे जज करते हैं। अम्मी शॉक में रह गई, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी प्रेशर में है। उस दिन के बाद उन्होंने एक नया सफर शुरू किया, रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आयशा से बात करना, रोज एक पॉजिटिव बात शेयर करना, हर रोज उसे हग करना, हर रोज उसकी छोटी सी चीज की बड़ी तारीफ करना। और अगर आयशा गलती करती तो अम्मी पूछती, तुमने आज इस गलती से क्या सीखा? अगर मार्क्स कम आते तो कहती, तुम्हारी वैल्यू कहीं ज्यादा है मार्क्स से। धीरे धीरे आयशा बदलने लगी, उसे स्कूल में जवाब देना शुरू कर दिया, फिर प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटिशंस, और एक साल बाद स्कूल असेंबली हुई। आयशा स्टेज पर खड़ी थी, कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दे रही थी, ऑडियंस क्लैप कर रही थी, और आज आयशा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अम्मी की आंखों में आंसू थे। स्पीच के बाद आयशा ने स्टेज से नीचे उतर कर कहा, अम्मी अगर आप उस दिन मुझ पर यकीन करके मुझसे बात ना करती तो शायद मैं यहाँ इस स्टेज तक कभी ना पहुंच पाती। उस दिन अम्मी को और वहां बैठी जितनी मदर्स थीं, उन्हें समझ में आया कि बच्चे को बदलने के लिए डांट नहीं, कनेक्शन चाहिए। करेक्शन चाहिए लेकिन कनेक्शन के साथ, लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, और पॉजिटिव पेरेंटिंग की ये सारी चीजें असली रूह है। देखिए, जो याद रखने वाली बात है वो ये कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है प्यार के साथ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट के साथ गाइडेंस, लिसनिंग विदाउट एनी जजमेंट, करेक्शन विदाउट ह्यूमिलेशन, एंड सपोर्ट विदाउट कंडीशंस। दोस्तों, हम माने या ना माने, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन गेम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ एडल्ट ही नहीं बच्चों की भी जिंदगी को पूरी तरह से

तब्दील कर दिया है। आज का बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुआ है, उसके लिए इंटरनेट और गैजेट्स उतने ही नॉर्मल हैं जितने हमारे लिए हमारे बचपन में आउटडोर गेम्स हुआ करते थे। लेकिन इस डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ कई चैलेंजेस सामने आए हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी के फायदे हासिल करते हुए बच्चों को उसके नुकसानात से कैसे बचाया जाए। इसीलिए पॉजिटिव चेंज लाना पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग पर हमने बात की, ऐसी पेरेंटिंग जहाँ प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ये सारी चीजें हमने बात की। इसका मतलब हमने ये भी कहा कि बच्चे को पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है, एक कंट्रोल हो लेकिन एक गाइडेंस और डायरेक्शन के साथ। पॉजिटिव पेरेंटिंग में आप बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है और आपका और उसका एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। देखिए, डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझने की बजाय उसे समझना और वाइजली यूज करना और करवाना। अब आज के बच्चे पहले के बच्चों से काफी डिफरेंट हैं। उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऑनलाइन गेम्स हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, हर वक्त ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी। पेरेंट्स के लिए मुश्किल ये है कि बच्चे ऑनलाइन दुनिया में क्या देख रहे हैं, किस बात से क्या सीख रहे हैं और किस चीज से उनका छोटा सा जहन मुतासिर हो रहा है। कई दफा बच्चे फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, कई बार क्यों ज्यादातर ऐसा है, और शायद इसी वजह से पॉजिटिव पेरेंटिंग आज एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको शायद जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में बकायदा काउंसलिंग की जाती है पेरेंट्स की, घंटों घंटों बैठाया जाता है और बात की जाती है, समझाया जाता है कि आज के टाइम में किस तरह से पेरेंटिंग की जाए। आजकल के तो पेरेंट्स जो हैं वो बकायदा क्लासेस ले रहे होते हैं। देखिए, डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि आज का दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है और शायद इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आज का बच्चा हर रोज हजारों मैसेजेस और वीडियोस देखता है, हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, उन्हें बताएं कि हर चीज जो इंटरनेट पर नजर आए वो सच नहीं होती। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन के कल्चर को भी क्रिएट किया है। बच्चे दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि दूसरे बच्चे पास तो सब कुछ है और मैं डिप्राइव्ड हूँ। पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को ये समझाती है कि हर इंसान की अपनी अलग जर्नी है। रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिये, ऑनलाइन वर्ल्ड में सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेंट ही नहीं होता, साइबर बुलिंग है, स्कैम्स है, इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट मौजूद है। ऐसे में सिर्फ अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो शायद काफी नहीं होगा, यहाँ अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि घर में बैठे लोग अपने फोन्स में बिजी होते हैं, पेरेंट्स ऑफिस ईमेल्स देख रहे होते हैं, बच्चे वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन दिलों का कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। पॉजिटिव पेरेंटिंग इस गैप को कम करती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना भी जरूरी है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो, हम भड़क ना जाएं। सबसे पहले पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी समझनी होगी। अगर बच्चा इंस्टा यूज करता है तो पेरेंट्स को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बच्चा गेमिंग करता है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो गेम क्या है। अगर बच्चा AI टूल यूज करता है तो उनका पर्पस क्या है। नॉलेज के बगैर गाइडेंस मुश्किल हो सकती है। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज जरूर सेट कीजिए। डिनर टाइम पे नो फोन्स, सोने से पहले नो स्क्रीन्स, होमवर्क के बाद एंटरटेनमेंट, फैमिली टाइम में गैजेट साइट्स पर। रूल अप्लाई होने चाहिए और ये पेरेंट्स पर भी अप्लाई होते हैं। बच्चे सुनते कम हैं और देखकर ज्यादा सीखते हैं, इस पर तो हमने बात की। जब पेरेंट्स ही फुल टाइम फोन में लगे रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपन कम्युनिकेशन। बहुत से घरों में बच्चे जो है वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, यानी अपने फादर से इतना डरते हैं, हत्ता कि वो अपनी बड़ी बहन को या बड़े भाई को भेजते हैं या अपनी मम्मी के थ्रू बात कहलवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का एक कॉन्फिडेंस हो अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच करने का, और जब ये कॉन्फिडेंस होता है तब आप बच्चे से उससे ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज उसने क्या इंटरेस्टिंग देखा पूछ सकते हैं, तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, लाओ मुझे बताओ, कौन सी वेबसाइट

साइड से तुम पढ़ रहे हो ना, मुझे सिखाओ। जजमेंट के बगैर बात करने से बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है और एक ट्रस्ट जो है वो बहुत लास्टिंग होता है। देखिए, डिजिटल लिटरेसी सिखाना जरूरी है। फेक न्यूज क्या है ये बताएं, फ्रॉड क्या है ये सिखाएं, प्राइवेसी सेटिंग क्या होती है ये समझाएं, पासवर्ड सिक्योर कैसे किया जाता है ये बताइए, अननोन लिंक्स पर क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए ये समझाइए। ये स्किल्स फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बैलेंस हो, बच्चों को इनकरेज करें। आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, रीडिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, फैमिली एक्टिविटीज और क्रिएटिव हॉबीज के लिए। देखिए, बच्चा पूरा दिन अगर गेम खेल रहा है और आपका रिस्पॉन्स है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या कर रहे हो, ये अप्रोच पॉजिटिव नहीं है। बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे पता है कि तुम गेम एंजॉय करते हो, चलो इसका टाइम स्केड्यूल बना लेते हैं। हो सकता है बच्चा कहे नहीं, मैं तो रोज खेलूंगा, मैं तो हर टाइम खेलूंगा। फिर आप कहें कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हो सकता है कि बच्चा आपको ना खिलाए, लेकिन आपका उसके बगल में बैठ जाना ही काफी है। 5 दिन ये करके देखिए, छठे दिन बच्चा फोन साइड में रखेगा और आपसे बात करेगा। शुरुआत शायद वो नेगेटिव अंदाज में करे, लेकिन उसका एंड पॉजिटिव अंदाज में होगा, इतना मुझे हर पेरेंट पे यकीन है। देखिए, सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हम भी कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए बच्चों के हाथ में फोन थमा देते हैं और उसके बाद बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं हमें भी पता नहीं चलता। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत ज्यादा, लेकिन सिखाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हमें खुद बड़े पेशेंस के साथ, बड़े तहमुल के साथ वक्त देना पड़ता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। डिजिटल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। बच्चे को सिखाएं अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उससे को कंट्रोल करना, एम्पैथी डेवलप करना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना। ये स्किल्स एआई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। चलिए आज मैं एक बात करती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, हमजा की। हमजा 13 साल का बच्चा था। उसे ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक था। स्कूल से आते ही गेम खेलना और सिर्फ खेलना, वीकेंड पर भी गेम। पेरेंट्स कहें या अम्मी कहें, बड़ी परेशान रहती थी, रोज उसे डांटती, फोन छीनती, छुपाती, आर्ग्यूमेंट्स होते, लेकिन बात कुछ भी तरह से नहीं बन रही थी। एक दिन टीचर ने कहा कि लड़का यानी हमजा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका फोकस पढ़ाई पर कम है। अम्मी घर आई और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी अप्रोच बदलेंगी। उस रात उन्होंने हमजा को प्यार से अपने पास बुलाया, उसे कहा, बेटा मुझे बताओ, गेम ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आता है और ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आता। हमजा ने झट से फोन निकाला, वो गेम निकाला और अपनी अम्मी को समझाने लगा। उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल का था। अम्मी ने बातों बातों में एक चीज सीखी कि उसे गेम इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि यहाँ उसे टीम मिलती है और शायद उसे टीम बिल्डिंग पसंद है, उसे कॉम्पिटिशन भी पसंद है। अम्मी ने सब सुना, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई डांट नहीं लगाई। फिर उन्होंने कहा, गेम ठीक है मगर बैलेंस भी तो जरूरी है। इस लाइन को सुनकर हमजा ने बात आई गई की। एक दिन ये बात हुई, दूसरे दिन भी मम्मी ने बातों बातों में फिर बैलेंस की बात निकाली, तीसरे दिन और चौथे दिन आते आते अम्मी कहती है, उससे पहले हमजा खुद बोल पड़ा, होमवर्क करूंगा उसके बाद फिर मैं गेम खेलूंगा। यहाँ से होमवर्क के बाद गेम खेलने का एक स्केड्यूल सेट हुआ। फिर बात आई आउटडोर एक्टिविटीज की। यहाँ भी हमजा रिलक्टेंट था, लेकिन इस तरह की मेहनत करते करते उसने कहा, होमवर्क करूंगा, गेम खेलूंगा, फिर कुछ देर बाहर भी खेलने जाऊंगा। इस तरह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ गई और सबसे अहम बात यह थी कि उसका और उसकी अम्मी का रिश्ता इस तरह से मजबूत होता जा रहा था। एक दिन हमजा ने खुद कहा, अम्मी आपने मुझे गेम से दूर किया है, लेकिन अब मैं जो बाहर गेम खेलने जाता हूँ उसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और ये है असल पॉजिटिव पेरेंटिंग का मकसद, कंट्रोल नहीं करना, करेक्ट करना कनेक्शन के साथ।
देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक क्विक रिमाइंडर फिर से मैं आपको देना चाहूंगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के गोल्डन रूल्स आप याद रखिए। सुनिए ज्यादा, जज कम कीजिए, गाइड ज्यादा कीजिए, कंट्रोल कम कीजिए, ट्रस्ट ज्यादा हो, डर कम हो, सिखाइए ज्यादा, पनिशमेंट कम हो, कनेक्शन ज्यादा हो, करेक्शन

रिएक्शन जो है थोड़ा सा कम हो सकता है. अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट, ये बहुत जरूरी है. और हाँ, बी प्रेजेंट नॉट जस्ट अवेलेबल, ये चीज गांठ बांधी है. अब जाते जाते मैं सभी पेरेंट्स से कहना यही चाहूंगी कि आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के लिए जो सोचेंगे वो सबसे बेस्ट है. हम में से कोई आपसे अच्छा नहीं सोच सकता. लेकिन आजकल अलग ही दौर है, अलग ही चैलेंजेस है. डिजिटल एरा को हम रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टूल्स और ज्यादा आगे पावरफुल होंगे, बच्चों की दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी. लेकिन एक चीज जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती और वो है पेरेंट्स की मोहब्बत, डायरेक्शन और इमोशनल कनेक्शन. टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दे सकती है लेकिन वैल्यूज नहीं. इंटरनेट नॉलेज दे सकता है, कैरेक्टर नहीं. सोशल मीडिया फॉलोअर्स दे सकते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं. पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब टेक्नोलॉजी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड, हेल्दी और सक्सेसफुल इंसान बनाना है. याद रखिए, आज आपका बच्चा फोन की स्क्रीन को देख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो आपका रवैया देख रहा है. आज आप उसे ऑनलाइन सेफ्टी सिखा रहे हैं, कल वो जिंदगी के फैसले इसी बुनियाद पर करेगा. आज आप उसे ट्रस्ट दे रहे हैं, कल वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का मुकाबला करेगा. पॉजिटिव पेरेंटिंग डिजिटल एरा की सबसे बड़ी सुपर पावर है. जो पेरेंट्स इस सुपर पावर को समझ लेते हैं, वो सिर्फ सक्सेसफुल बच्चे नहीं बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट इंसान तैयार करते हैं. जी हाँ, डिजिटल दुनिया बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाती है, लेकिन जिंदगी जीना सिर्फ पॉजिटिव पेरेंटिंग से ही आता है. जब पेरेंट्स कनेक्शन को स्क्रीन पर तरजीह देते हैं तो बच्चे सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि वाइज भी बनते हैं. जब भी पेरेंटिंग के बारे में बात हो तो आपकी तवज्जो ग्रेड्स पर नहीं होनी चाहिए, अचीवमेंट्स पर होनी चाहिए. आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा. हम सोचते हैं कि अच्छी स्कूल, एजुकेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान बना देती है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों की जिंदगी के सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट ना गैजेट है, ना ऐप है, ना कोई एक्सपेंसिव स्कूल. सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स की प्रेजेंस, मोहब्बत और पॉजिटिव गाइडेंस. आज हमने डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात की. हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं. आज का बच्चा टेक्नोलॉजी के दरमियान ग्रो कर रहा है. उसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसके सामने सोशल मीडिया है, उसके पास इंफॉर्मेशन का समंदर है. लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम में बड़ा फर्क होता है. इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल सकती है, नॉलेज स्कूल से दी जा सकती है, लेकिन विजडम, वैल्यूज और कैरेक्टर सिर्फ घर से मिलता है. और इसीलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है. आज के बच्चों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उनके पास लेटेस्ट टैबलेट हो, उसे ये भी चाहिए कि कोई उसे बात करे, उसकी फीलिंग्स को समझे, उसकी कामयाबी पर उसे अप्रिशिएट करे और उसकी फेलियर्स पर भी उसका हाथ थामे. कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को हर चीज प्रोवाइड कर देना ही असली पेरेंटिंग है, लेकिन बच्चे अक्सर टॉयज भूल जाएंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भूल जाएंगे, लेकिन वो ये याद रखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें किस तरह से महसूस करवाया. उन्हें याद रहता है कि वो जब उदास थे तो कोई था उनका हाथ थामने के लिए, जब वो गलत थे तो किसी ने प्यार से उन्हें समझाया, जब दुनिया ने मना किया तो उन्होंने उन पर यकीन किया. पॉजिटिव पेरेंटिंग इसी यकीन का नाम है. ये पेरेंटिंग हमें सिखाती है कि बच्चों को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें समझना है. सिर्फ रूल्स नहीं, वैल्यूज सिखानी है. सिर्फ पनिशमेंट्स नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी है. आज के इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी है, उसे ही सबसे बड़ा हथियार बनाएं. पॉजिटिव पेरेंटिंग हमें याद दिलाती है कि फैमिली के दरमियान रिश्ते वाईफाई से नहीं, ट्रस्ट से जुड़ते हैं. बच्चे को हर रोज 10 से 15 मिनट का आपका प्यार भरा साथ चाहिए. उसे आपकी जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत होगी. बस अब तो मैं यही कहूंगी कि बच्चे अपनी गलतियों से सीखे ना सीखे, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं. तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को कैसा बनाना है. आज का बच्चा कल की सोसाइटी का हिस्सा है. आपका हर लफ्ज बच्चे के दिल में एक निशान छोड़ देता है. आपका हर एनकरेजमेंट उसकी हिम्मत बन जाता है. आपकी हर तारीफ उसका कॉन्फिडेंस बनती है. आपकी हर मोहब्बत से कही हुई बात उसकी जिंदगी को बदल देती है. कभी कभी हम समझते हैं कि पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिखाने का ही नाम है, जबकि पेरेंट

0: पेरेंटिंग खुद भी सीखने का नाम है और हमें क्या सीखना है, एज अ पेरेंट सब्र करना, पेशेंटली सुनना, सीखना एम्पैथी सीखना और प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस करना। जब पेरेंट्स पॉजिटिव खुद बन जाते हैं तो घर का माहौल यकीन मानिए पॉजिटिव हो जाता है और इस पॉजिटिव माहौल में पर्सनालिटीज खिल जाती हैं और जब बच्चों की पर्सनालिटी खिल उठती है तो दुनिया में भी रोशनी फैलाते हैं। आज से हम ये वादा करेंगे खुद से कि हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कामयाब नहीं, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उन्हें एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएंगे, एक ऐसा इंसान जो कंपैशनेट हो, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है और सबसे बढ़कर कि हम उन्हें ये एहसास दिलाएं कि घर उनके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह है। क्योंकि जब बच्चा ये महसूस करता है तो वो एक अलग तरह की हिम्मत और हौसला रखता है। आखिर में बस यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी बच्चों के साथ है और रहेगी और तेजी से बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग उनकी हमेशा रहनुमाई करेगी। डिजिटल दुनिया उन्हें स्मार्ट बनाएगी, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग उन्हें वाइज बनाएगी। और जब स्मार्टनेस और विस्डम दोनों साथ आ जाएं, तब एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाता है। बच्चों को दुनिया की हर फैसिलिटी दें या ना दें, उन्हें सबसे पहले अपना वक्त दें, भरोसा और तवज्जो, क्योंकि यादगार बचपन गैजेट से नहीं मोहब्बत से बनता है और मजबूत मुस्तकबिल ग्रेड से नहीं पॉजिटिव पेरेंटिंग से तैयार होता है। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: प्राइवेसी का तहफ्फुज एतमाद को मजबूत बनाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात शेयर करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को गौर से पढ़ें, ताकि आप जान सकें कि आपकी मालूमात किस तरह इस्तेमाल की जाएंगी। आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
5: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
6: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
7: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। घर का फर्नीचर और जिस्म पर उसके जो मुस्बत और जो मनफी असरात हैं वो हम देखेंगे, जो कि हम बहुत कम सोचते हैं। घरों में सोफ़ा बहुत नरम होता है, तो जैसे हम बैठते हैं तो हमारी जो बैक बोन है उस पर असरअंदाज हो सकता है। अगर इसी तरह जो चेयर्स हैं घर में रखी, अगर बहुत ऊंची हो तो फिर हमारे पांव कुछ लटक जाते हैं। मैट्रेस बहुत ज़्यादा सख्त हो या बहुत ज़्यादा नरम हो तो वो भी हमारी कमर के लिए जो उसका कर्व है बेहतर नहीं होता, और इसी तरह से हमारी जो पोस्चर है वो भी ख़राब हो जाती है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं तो उसे गर्दन में दर्द हो सकता है, कमर दर्द का मसला हो सकता है, घुटनों का दर्द, और फिर ये कि हम सुस्ती भी हमें हो सकती है और फटीक हो जाती है। इसी तरह जो टांगों में हैवीनेस है और बैठकर खड़े होने में मुश्किल हो जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती, अगर हमारा जो सोफ़ा है या बैठने की जो जगह है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह जो घरों में जो डाइनिंग चेयर्स होती हैं बहुत ज्यादा पतली और सख्त होती हैं उनका असर भी हमारी बैकबोन पर

0: और अगर सही तरह से जो चेयर है वो ऐसी होनी चाहिए कि पांव फर्श को छू लें और इसी तरह से जो मेज के बराबर जो एल्बोज हैं वो हों और उसका जो कुशन है वो भी सॉफ्ट हो। एक तरफ झुककर बैठना और ये है कि जो सोफे के ऊपर टांगे रखकर बैठना, बिस्तर से लिपटकर मोबाइल देखना, ये तमाम ऐसी हमारी आदत हैं जो हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं। फर्नीचर को कंफर्ट नहीं बल्कि हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आप समझिए। सही इंतखाब कीजिए और सही जिस्म जो है वो ही हमारी सेहतमंद जिंदगी का राज है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

0: इसी दौरान में वहां पर मौजूद एक दानिश शख्स ने बादशाह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको चुप करवा दूं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर दानिश शख्स ने दो नौजवानों से कहा कि इस शख्स को बाजुओं से पकड़कर दरिया में गोते लगवाओ। चुनाचे उसे दो तीन बार पानी में फेंका गया, उसे गोते लगे और फिर उसे बाहर निकालकर दोबारा कश्ती में बिठा दिया गया। इसके बाद वह शख्स खामोश होकर बैठ गया। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, मुझे समझ नहीं आई कि तुमने इसे कैसे खामोश कर दिया। तो वो दानिश शख्स बोला, बादशाह सलामत, इसे दरिया में डूब जाने की तकलीफ का अंदाजा नहीं था, इसलिए इसे कश्ती की सलामती की कदर नहीं थी। इसे डूबने की तकलीफ का एहसास हो गया है और अब इसे कश्ती की सलामती की कदर हो गई है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सामने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्ही छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, आज हम एक ऐसी सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई मरतबा हम इस अमल को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर यही मामूली सा अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए तो वो इबादत बन जाता है और उसमें बरकत पैदा हो जाती है। आज का मौजू है खाने के मसनून आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं, खाना सिर्फ जिस्म की ज़रूरत पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि ये खाना अल्लाह की नेमत भी है और नेमत का अदब भी होना चाहिए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आगाज से लेकर इख्तिताम तक ऐसे आदाब सिखाए हैं जो जिस्मानी सेहत, रूहानी तरबियत और माशरती मोहब्बत तीनों का जरिया बनते हैं। पहली सुन्नत है मिलकर खाना खाना। इस सुन्नत को आज हमने हमारी समाजी जिंदगी में नज़रअंदाज करके रखा है। आज की मसरूफ जिंदगी में एक मसला ये भी पैदा हो गया है कि घर के अफराद एक ही घर में रहते हैं लेकिन अक्सर अलग अलग खाना खाते हैं। कोई मोबाइल के साथ खा रहा है, कोई टीवी के सामने, कोई अपने कमरे में और कोई दफ्तर में। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्तिमाईयत और मोहब्बत सिखाई है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिलकर खाना खाओ और अलग अलग न खाओ, क्योंकि बरकत इज्तिमा में है। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। ये हदीस हमें बताती है कि बरकत सिर्फ खाने की मकदार में नहीं होती बल्कि उस मोहब्बत और इज्तिमाईयत में भी होती है जो एक दस्तरखान पर बैठने से पैदा होती है। घर के अफराद जब इकट्ठे खाते हैं तो दिल करीब हो जाते हैं, गुफ्तगू होती है, मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं, जबकि ये अपनी औलाद की तरबियत का एक बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। खाने की सबसे अहम सुन्नतों में से एक है बिस्मिल्लाह कहना। खाना शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना दरअसल उस नेमत के असल मालिक को याद करना है। ये एक मुख्तसर सा जुमला है लेकिन उसके ज़रिए शैतान खाने में शरीक नहीं हो सकता और खाने में बरकत पैदा होती है। इसीलिए

0: बाकी क्या हाल चाल है भाई, अनप्लग्ड इवनिंग ये शो और अभी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और एक से बढ़कर एक गाने होंगे। वैसे गाने इसमें अनप्लग्ड वाले होते हैं जो थोड़े हल्के हल्के होते हैं, खूबसूरत से होते हैं, स्लो वाली लाइफ होती है। मतलब अगर आप 120 बीच चल रहे हो आप ऑटोमेटिक कब 80 पे आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता, ये वो वाले गाने हैं, है ना, अनप्लग्ड इवनिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम ये रिमिक्स चला दे कि 80 से 120 कब हो गया पता नहीं चला, लेकिन ये शो जब शुरू होता है तो एक सवाल होता है और उस सवाल के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस सवाल का जवाब आप हमें 666-22-107 पर दे रहे होते हैं। और जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो साथ ही साथ आपको खत के बारे में भी सोचना होता है क्योंकि शो के आखिर में हम आपसे खत लिखवाते हैं। लेकिन आज का सवाल जो है वो सवाल वायरल होने पर है। मतलब एक ऐसा मीम चल रहा है, या मीम कह लें या ये कह लें ट्रेंड चल रहा है जो हर कोई शख्स फॉलो कर रहा है भाई। ये वो वायरस है जो 90-95% लोगों को लग चुका है, 90-95% लोगों को ये वायरस लग चुका है। अब वो इस वायरस से दूर नहीं हो पा रहे हैं और इनको जो 5% लोग बचे हैं ये बस वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कम है या फिर ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस वजह से बचे हुए हैं। और थोड़े बहुत अगर और बचे हुए हैं तो उसका रीज़न ये है कि ये जो वायरल वायरस चल रहा है इस वायरस में वो इसलिए नहीं फंस पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं करना कैसे है। ये वायरस है अपनी फोटो को 80 में तब्दील करने का, 80s में पहुंचने का, जो शौक लोगों को सवार है ये वो वायरस है। आपने अपना अब तक तो देख लिया होगा सोशल मीडिया पर, आपके अपने पेजेस पर देख लिया होगा, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो अपनी स्टोरी पर, अपनी पोस्ट पर, अपनी रील पर सिर्फ यही लगा रहे हैं कि 80 के दशक में वो कैसे लगते। तो मैंने सोचा कि आज का सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता किया जाए ताकि लोग थोड़ा सा ना यू नो कनेक्ट कर पाएं कि हाँ यार ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो सवाल पर बढ़ते हैं हल्के हाथ से, आज का सवाल क्या है?
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: दोस्तों आज का सवाल ये है कि आप इसी एरा में रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, या फिर आप 80s के दशक में वापस लौटना चाहते हैं? आपको कौन सा एरा सबसे बेहतरीन लगता है? क्या आपको इस डिजिटल कहते हैं ना डिजिटल एरा है, ये डिजिटल एरा है तो इस डिजिटल एरा में रहना है, इस दुनिया में रहना है जहां पर मोबाइल है, कनेक्टिविटी अच्छी है, रोडें अच्छी हैं, है ना, मेट्रो है, बसेस हैं, कार है, साइकिल का तो नामो निशान ही नहीं है, है ना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन शहर में लोग दूर दूर बसे भी हुए हैं, है ना, कोई वकरा बसा हुआ है, कोई अलखोर में है, कोई आपका दोस्त दोहा के मुशायरे में है, आप जो है लुसैल की तरफ पड़े हैं, इतनी दूरी है कि आप एक बार सोचते हैं, या फिर 80s का वो दौर चाहिए जब सब कुछ आसपास था, है ना, जैसे दोहा शहर में आप थोड़ी दूर जाते थे आपको सुख वाकिफ मिल जाता था, थोड़ी दूर जाते थे सुख वाकिफ के करीब एक और मार्केट थी, आप वहां पर पहुंच जाया करते थे, है ना, मुशायरी में काफी लोग उस जमाने में रहा करते थे, लेकिन इतने लोग नहीं बट कम, बट मोस्टली जो जनता थी वो सुख वाकिफ पहुंचा करती थी, वहां से सामान लिया करती थी, मॉल इस कदर नहीं थे जिस कदर आज है। तो इवन हम आपके अगर मुल्क के बारे में बात करें तो जैसे आमतौर पर उस वक्त जो ज़्यादा जनता हुआ करती थी वो गांव की थी बजाय शहर के, तो अब शहर आबाद होने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था जब गांव आबाद हुआ करते थे। तो अगर आप शहर के हैं तो शहर के मामले में भी आप सोच लें 80s या 90s का जो वक्त था, या फिर आप सोच लें इवन 2000 में भी इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं मोबाइल वगैरह आया हो तो लोग मोबाइल में लग गए हों, और इवन मोबाइल आया भी था तब तो बटन वाले आए थे, तो अब कौन सा कौन सोशल मीडिया या फेसबुक और ऐसी चीज़ें चलती थी सोशल मीडिया जैसी। लेकिन क्या आप 80s 90s या 2000 के दौर में वापस लौटना चाहेंगे? आपका क्या दिल है ये आप आज आप बताइए 666-22-107 पे, और वजह के साथ, रीज़न के साथ, आपका क्या रीज़न है कि आपको नहीं 2026 में जीना है जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है, मोबाइल अच्छा है, सब कुछ है, या वो गांव का या शहर का वक्त जहां पर एक आम के या बरगद के पेड़ के नीचे आप बैठते थे, चार दोस्त रहते थे, हालांकि वो आम जब आप खाते थे तो मक्खियाँ भी भिनभिनाती थी लेकिन साथ ही साथ दोस्तों का मज़ा भी था, खेल भी थे, बकरे आके बगल में परेशान करके चले जाते थे, या फिर यू नो अगर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनके बच्चे भी खेल रहे हैं, एक जो है अब्बा उठा, उसने अपने ही बच्चों को दो चार लप्पड़ जो है वो सामने से दे दिया। तो खैर ये तो सबने देखा ही होगा। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कब देखा, ये सब तो याद नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ ज़रूर है। मेरे दोस्त यार बैठे हुए हैं बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे मजे कर रहे हैं, अब्बा है पीछे से कनपटी भी सटाक से लगा रहे। दिन भर आवारा गर्दी करता रहता, कभी कोई काम की चीजें नहीं करता है, पढ़ाई कर चल। और जब ये डांट खाने के बाद अब्बा वापस से बाहर जाते थे, फिर अपन ले निकल जाते थे खेलने के लिए। मोबाइल नहीं था यार, क्या करें, तो मजबूरी भी है ना ये तो। बाकी आप बताएं आपका क्या मानना है, व्हाट्सअप 666-22-107 यहां पर आप जवाब दे सकते हैं कि आप क्या 80s के दौर में वापस जाना चाहेंगे या इसी दौर में रुकेंगे जब सब कुछ खूबसूरत चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो खैर अपनी अपनी पसंद भी है। मुझे लगता है कई ऐसे लोग हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, जो वापस से मेरा भी अपना ये मानना है कि यार वापस जाऊं, लेकिन फिर मैं देखता हूं यार कोई काम ही नहीं रहेगा। अपन तो अब इस हालात में बस चुके हैं, है ना। अब सोचो आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास काम करने को नहीं है, आपके पास इतना सब कुछ नहीं है, तो आपका दिल नहीं लगेगा। शहर में बैठते गुल्ली डंडा कब तक खेलता रहेगा आदमी। अरे मान लिया कि एक पूरा डब्बा हमने गोली खेल खेल के जमा कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, रात में क्या 8 बजे सो जाऊं। अरे हटिए जनाब, क्या बात कर रहे हैं, रात को 8 बजे 9 बजे सो जाऊं, स्क्रॉल कौन करेगा। गोलियां तो मैंने दिन में स्क्रॉल कर ली है खेल खेल के, लट्टू तो नचा लिया, रात में कौन सा खेल। और गांव में तो इतना अंधेरा है कि छुपन छुपाई भी नहीं खेल सकते भाई साहब। तो मुझे इस नए एरा में जीना है जो 2026 का दौर चल रहा है, लेकिन आप अपना बताएं। नंबर है 666-22-107 और बाकी लोगों के मैसेज जो है वो हम बाकी क्या मतलब शुरुआत कर ही देते हैं। मैसेज है किस भाई का, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, लेकिन ये थोड़ा देर में मैसेज आया है, मलक इमदाद फ्रॉम पाकिस्तान। भाई मलक साहब 4 से 5 आप गाने सुन सकते हैं, अभी आपने कहा गाना प्ले करने को, तो अच्छा वो गाना भी कौन सा कह रहे हैं, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, वो तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप अपने किसी जानने वाले के लिए ये गाना लगवाना चाह रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी और आई एम सैड एज वेल फॉर यू बट इट्स ओके। सलाम लिखा है यूसुफ भाई ने, वालेकुम अस्सलाम। फिर यह है हैप्पी वेंसडे इवनिंग, पर बहुत लंबा मैसेज लिख दिया है यूसुफ भाई ने कि ये क्या पागलपन है फजील। पहले तो मैं ही पहले लाइन में डर गया कि अरे ये क्या है, सभी जगह हर प्लेटफॉर्म पे यही 80s लुक लगा रखे हैं लोगों ने, एक भेड़िया चाल है ये, भेड़ चाल है ये जिसमें सब चल रहा है, एक होड़ सी लगी है। ओके अजीब लोग हैं। हाँ यार, मतलब मेरा ये कि आप देखो, एक तो ये 80s वाला कर क्या रहा है ना, आपको दुबला बनाकर पेश कर रहा है, पेट सपाट है, आपने शर्ट इन कर रही है। देखो यार, कोई भी दौर रहे, आज का दौर रहे, कल का दौर रहे, 80s में चले जाओ, 90s में आ जाओ, लेकिन अगर आप दुबले हैं, शर्ट आपने टक इन की है, आस्तीने फोल्ड की हैं और एक घड़ी लगाई है, भाई आप लाजवाब लगी रहे हो मेरा भाई, मर्द तो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो ये 80s वाला भी यही कर रहा है ना। मैं नाम नहीं ले सकता उस AI का, बट फिर भी। बाकी यूसुफ भाई ने लिखा, आई डोंट लाइक इट, मी टू भाई, हम जहाँ हैं जिस सेरा में हैं बस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पास में जाके क्या करना है, जो गुजर गया वो गुजर गया, बेशक वो एरा बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अभी गुजर चालू है, अभी गुजर चालू है, प्रेजेंट में रहना सीखें। कई लोगों का ये है कि भाई नहीं, नए ज़माने में रहना, बट 80s का भी माहौल जिन्होंने, या 90s का या 2000 का जिन्होंने माहौल जिया है, मैं सरवाइव कर लूँगा 2000 का माहौल, जहाँ पर ना मोबाइल था, ना ही ना कोई एप्लीकेशन वगैरह था, लेकिन खेल इतने थे, दोस्त इतने थे कि काम चल जाया करता था। बट 2000 में अगर मैं 25 साल का होता तो थोड़ी गोली और लट्टू नचा रहा होता तब मैं क्या करता भाई, तब मेरे पास सही में सवाल नहीं है, इसका जवाब भी नहीं है मेरे पास। तो फिर कि सही में अगर आप 23 साल के हैं या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं 2003-04-02 में, तो असल में क्या काम करते थे वो लोग, मतलब नौकरी तुरंत ऐसी थोड़ी होती थी कि मिल जाया करती थी। फिलहाल बाकी मैसेज पे आते हैं। वहीद साहब क्या करें, मूवी का सॉन्ग पाकिस्तान से भाई, 4 से 5 अगेन आपको बताएंगे। और बाकी कहते हैं 80s का टाइम

पर टाइम इज स्लो बट 2000 टाइम इज टू फास्ट. हाँ मतलब ये तो आपने रीजन बताया, मैं रीजन थोड़ी पूछ रहा हूं. मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कौन से दौर को पसंद करते हैं? क्या आप 80s और 90s के दौर को पसंद करते हैं? और अगर आप वापस जाना चाहेंगे तो क्यों जाना चाहेंगे? या अगर 2026 में रहना चाहते हैं तो क्यों रहना चाहते हैं? ये आपको बताना है. नंबर है 6662107. एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम वजीर भाई. वालेकुम अस्सलाम. ऑप्शन होता जाने जाके वापस आ जाने का तो सुकून लेके आ जाते थे. अरे ये कौन सी बात है, ये बात तो सही है. खैर ऑप्शन तो नहीं है लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन है भी, पता है. ये काफ़ी लोग अब मालूम है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ये कर भी रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, एक फार्म हाउस वगैरह खरीदते हैं बहुत दूर सुदूर इलाके में. आप मुंबई के लोनावला वगैरह में देख लो, बहुत बड़े बड़े ज़मीन उन लोगों ने खरीद रखे हैं. और वो अपने फैमिली के साथ, और फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि 4-6 लोग हैं फैमिली उनके साथ गए और बड़ा बड़ा ऐसा ग्राउंड खरीद लिया है, जगह खरीद ली है, वहाँ घर बना लिए और रह रहे हैं. नहीं, ना वहाँ पर वाईफाई है, ना वहाँ पर कोई मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता है, नेटवर्क भी बहुत कोई स्ट्रांग नहीं होता है. होता है काम भर का, मतलब कोई 5G और वैसा वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं, जानबूझ के वो नहीं करते हैं. मैं YouTube पे यही सब देख रहा हूँ भाई आजकल. उसके अलावा उनके पास कार तो होती ऑब्वियसली, अमीर लोग हैं क्योंकि. लेकिन वहाँ जाने के बाद ना उनके पास जानवर हैं, जानवर के साथ फिर वो अपना घर भी जब जाते हैं अपने लोगों के साथ जाते, तो 4-6 लोग नहीं होते भाई, 60-70 लोग जाते हैं एक साथ. और फिर वहाँ बारबेक्यू चल रहा है और रात रात में कोई गेम हो रहा है, मज़े कर रहे हैं. अब क्योंकि अमीर है तो लाइटें वाइटें सब हैं, बट वो जो शहर की लाइफ है ना उससे डिस्कनेक्टेड है पूरी तरह से, और वो रॉ तरीके से रह रहे हैं. तो आपके पास ऑप्शन है एक्चुअली में, आप अपने गांव जा सकते हैं, अब ये सब छोड़ के अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं. बस मामला ये है कि अमीरों के पास 60-70 लोग हैं और खिलाने के लिए पैसे हैं. अपने वाले में क्या है कि सिर्फ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गांव जाके ये मजे कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास बाकी लोग नहीं है. आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उस वो 4-6 ही लोग हैं. और फिर भाई इतने दिन कहाँ रह के आप वहाँ पर खाओगे पियोगे? पैसे कमाने भी तो हैं कि घर में एसी लगाने अम्मी ने कहा है. कि भाई इतने अमीर नहीं है कि, जगह तो बहुत है लेकिन इतने अमीर नहीं है कि क्या कहते हैं जानवरों को रख ले. और भाई उनका जानवर वो ऐसे वाले जानवर भी नहीं रखते, वो लकड़ बग्घा और क्या कहते हैं वो रख रहे हैं भाई, शेर चीता और अलग अलग जानवर रख रहे हैं. वो ऑस्ट्रिच रखे डाल ले यार, वो मुर्गियां तो रख भी नहीं रहे, हमारे जैसे बकरे नहीं टहलाते हैं वो. वो अलग लेवल पे है, अमीर ही है भैया अपनी अपनी. हम तो अमीर है भी नहीं, हम तो वहां तक सोच भी ना सकते हैं. खैर लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है जाने का. मोहम्मद बशारत साहब क्या कहते हैं, भाई अगर आप 2000 में 25 साल के होते तो आज किसी कॉलेज के प्रोफेसर होते, चाहे आप मैट्रिक पढ़े होते, और गवर्नमेंट की जॉब अलग से भाई. हाँ ये होता था, मतलब उस वक्त के अगर आपने कर लिया है तो आपको ऐसा उठा उठा के ले. मेरे अब्बा तो बताते थे कि 90s के दौर में ना लोग चलती राह में पूछ लेते थे, अरे भैया गवर्नमेंट जॉब करोगे? उस वक्त मिलता ही कम पैसा था तो लोग मना कर देते थे कि रहन दो भाई, इससे आधा अच्छा तो हम मजदूरी करके कमा लेंगे. लेकिन 2000 में मैं 25 का नहीं था बाय द वे बशारत साहब. फिर एक भाई हैं, इनका नाम यहाँ पर लिखा तो नहीं है, तारिक नवाज़ है, कहते हैं 1994 टू

लेकिन 2000 से 2007 तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे सेंस जो है वो डेवलप हो चुके थे तब तक। तो 1994 से लेकर 2007 ये एक गोल्डन एरा था मुझे लगता है। उसके बाद ही तो सोशल मीडिया धीरे धीरे यू नो जवानी चढ़ने लगी। तब तो यहाँ पर टच स्क्रीन धीरे धीरे शुरू हुआ था और उसकी वजह ये थी कि चाइनीज फ़ोन आ गए थे, वहाँ से हल्लू हल्लू शुरू हुआ था। लेकिन यार गोल्डन एरा था यार ये 1994 से 2007। खूबसूरत क्या क्या कुछ हुआ करता था, कुछ अगर यादें हैं। लेकिन आप साथ में तनवीर साहब ये भी बताएं कि क्यों आप क्यों इस एरा में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी बताइएगा। कोई वजह होगी, कोई खास यादें होंगी। फिर जैनब नूर का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, लिखा तो नहीं है लेकिन प्रोफाइल में ये लिखा है ईमेल के साथ। मुबीन साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम फजील को और तमाम लिसनर को, गुड इवनिंग कतर। अच्छा, बहुत ही उम्दा। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम और मुझे मौका मिले मैं टीज में जाऊँगा लेकिन मोबाइल लेके मोबाइल लेके चले भी जाओगे तो क्या फ़ायदा भाई, तुम्हें 2G भी नहीं मिलेगा वहां पे तुम्हारा प्ले स्टोर काम करेगा नहीं, सारे मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल ही खराब है भाई। वो एक ऐसा है डब्बा जो चमकता है रात में, रोशनी करता है, बस इतना ही काम है फिर उस मोबाइल का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तब आपके और भी मैसेज लेंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या आप 80s और 90s के दौर में एक बार फिर से वापस जाना चाहेंगे, या अगर आपका प्लान है कि यार वापस अपने शहर जाएंगे, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा फार्म खरीदेंगे जो 1 किलोमीटर की दूरी और लंबाई में होगा लंबाई चौड़ाई में होगा, और वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को लेकर जाऊँगा, मुझे फिर से वो 80s का दौर याद करना, वो ग्रीनरी जहाँ पर धूल भी हो, मिट्टी भी हो, जानवर भी हो, अपने लोग भी हो, फैमिली भी हो, खाना भी हो, खेल भी हो, क्या बात है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो बताइए क्यों आप सोचते हैं, आपका रीज़न क्या है, ये तो मैंने अपना रीज़न बता दिया। नंबर है 6662107। क्या आप 80s के दौर में लौटना चाहते हैं या फिर आप इसी दौर में जीना चाहते हैं, कोई वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो भी साथ में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आकृति का कड़की आवाज में दो खूबसूरत से गाने एंजॉय करें FM 107 दिल से देसी।

0: इसीलिए अपनी ذاتی معلومات किसी के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि आप ये معلومات किसको दे रहे हैं और उसे इनकी जरूरत क्यों है। जरूरत के मुताबिक معلومات शेयर करें और अपनी ذاتی معلومات की हिफाजत का हमेशा ख्याल रखें। और हमेशा याद रखें कि डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
4: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हाँ जी, FM 107, दिल से देसी। 6:33 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और कुछ ही वक्त बाकी है, बाकी के मैसेज की तरफ आते हैं। और जो नए लोग हैं उनको बता दें कि आज का सवाल ये था कि आप टीज के एरा में वापस जाना चाहेंगे या फिर 2026 जैसे डिजिटल एरा में जीना चाहेंगे, जहां पर टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आपका काम आसान है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच बहुत से मसले भी हैं। लेकिन 80s का दौर, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी, आप पहले से तैयारी करते थे, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिर आपको बस, ट्रेन, फिर उसके बाद फलाना राइड, मेट्रो तो हुआ ही नहीं करती थी, याद नहीं आ रहा मुझे उसको क्या कहते थे, हमारे अपने जगह पे तो अलग कहते थे, लेकिन टेम्पो हुआ करती थी, एक और उसका नाम था कि फलाना टेम्पो उसका नाम था, तो वो टेम्पो चला करती थी, है ना, जिसमें आगे इंजन हुआ करता था और पीछे लोग बैठा करते थे, कभी कभार वो ऊपर खड़ी हो जाती थी भाई तीन पहिए की होती थी वो। सो वो सारी चीज़ें थी, आप फिर अपना जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से किया करते थे अपनी। लेकिन आप असल में किस दौर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर आपको जाने का मौका मिले तो किस दौर में जाएंगे आप, ये आप बताएं। कई लोग ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं, वजह कम लिखी है, बस जाना चाहते हैं उनका ये कि बस भेज दो मेरे को, ये कोई तो बात नहीं हुई। लेकिन हामिद भाई हैं, इनका सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, और कहते हैं कि 90s 80s का एरा बहुत बढ़िया था, कुछ चीज़ों के मामले में मुसीबत, अगर वहाँ चले जाएँ तो कुछ चीज़ों के मामले में मुसीबत है, जैसे कि फूड डिलीवरी या फिर घर में आपको डायरेक्ट डिलीवरी मिल जाती है आजकल के दौर में। उसके अलावा आप आपके घरों में बहुत बवाला नहीं हुआ करता था, क्योंकि वाइफ को पता था, इन्हें बाकायदा ये वाइफ को पता था कि घर में ही खाना बनना है। लेकिन आज का दौर अलग है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप कार उठाइए और जाइए, खाना खा के चले आइए। इतनी लंबी लिख दी इनने, मैं छोटा करके मैंने बताया। खैर, फिर एक और ये मैसेज है, इनका नाम है, नाम क्या भाई आपका, नवीन भाई घर में सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं बस मुझे 80s एरा में जाना है, जहां पर दोस्त हों, यार हों, ज्यादा शोर शराबा ना हो, बस शोर शराबा ना हो, क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर में शोर शराबा नहीं था, अगर आपको याद हो तो उस दौर में असली शोर शराबा था नेबर्स का आपको याद हो इंच इंच की जगह के लिए लोग और नेबर्स लड़ जाया करते थे भाई अमां मार पिटाई हो जाया करती थी, लेकिन उन्हीं नेबर्स के जो दो छोटे बच्चे हुआ करते थे।

तो उनकी सबसे बेहतरीन यारी हुआ करती थी। वो नहीं लड़े, पता चला अम्मा अब्बा लड़के एकदम एक दूसरे का खून चूसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मूड खराब है, है ना, लेकिन जो बच्चे हैं वो साथ में खेल रहे हैं कहीं पर क्रिकेट। फिर उसको बाद में बताया, अरे वो सुना ऐसा है कि वो बिलाल के, है ना, लड़के के साथ मत रहा करो, उनके अब्बा बहुत ख़राब है, नहीं उनके साथ घूमना टहलना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें कूट दूंगा। मेरे अब्बा के लफ्ज़ हुआ करते, कूट दूंगा तुम्हें। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। एक और ये मैसेज है, किस भाई का है, सुहेल साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ज़माना सबसे बढ़िया है। क्यों है बढ़िया आपने ये बताया नहीं, रीज़न मैंने मांगा था। मैं मानता हूँ ये इस ज़माने का कोई तोड़ नहीं, और मुझे लगता है कि हम पीक पर पहुँच चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर देखें कि भाई मोबाइल आ गया है, मोबाइल से सारा काम हल हो जा रहा है, आपके पास अगर पैसा है तो सारी परेशानी आपकी दूर हो चुकी है, है ना, किसी तरह की परेशानी है फिर तो नहीं है। फिर एक और मैसेज है, और अजीज़ साहब का मैसेज है, लिखा है कि 90s एरा इज़ द बेस्ट, लेकिन रीज़न बड़ा अटपटा लगा इनका, मतलब इनका कहना है कि 90s में जो है झगड़े नहीं हुआ करते थे। ये कैसे मान सकते, मैं तो कह रहा हूँ भाई 90s में बहुत झगड़े हुआ करते थे, बस ये है कि मेल डोमिनेट करते थे। आज का एरा अलग है, आज मेल नहीं डोमिनेट कर पा रहे हैं बेचारे। खैर इनने कुछ और तरह से बात लिखी है, मैं उस तरफ जा नहीं सकता हूँ, तो बस मैंने इतनी ही बातों में अपनी बात मुकम्मल कर दी है। फिर एक और मैसेज है अरबाज़ खान का, और अरबाज़ भाई देखो बड़ी अजीब आपने कवर फोटो लगाई है, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, बट ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे वो सहाबा के दौर में जाना है, वहाँ पर जो भेड़ बकरी लोग पालते हैं और वहीं बनना है। भाई इतना ज़्यादा तंग आ गए अपने बॉस से, अपने काम से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, कि भेड़ बकरी पालना। अरे यार, मतलब आप ये भी कह सकते थे कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन उस ज़माने की, उस वक्त भेड़ बकरी पाला हो सकता है लग्जरी हो भाई के लिए, हो जाए ये भी एक, मैं एक मिनट मैं अपने आप को करेक्ट कर दूँ यहाँ पर। अरबाज़ भाई का कहना है कि भेड़ बकरी को पालना टहलाना ठीक है, लेकिन हो सकता है ये उनके हिसाब से उनके दिमाग में ये लग्जरी हो, यू नेवर नो, मतलब कोई चीज़ किसी के दिमाग में क्या लग्जरी है आपको नहीं पता। ये तो लग्जरी हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दिया, अपने हिसाब से बता दिया कि हाँ यार वो घर में एसी में बैठना लग्जरी है, अगले आदमी के लिए नहीं है, किसी को एसी पसंद नहीं है। राजस्थान में ऐसे कई घर हैं जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं भाई, मतलब राजस्थान में मैं गया हूँ और बाकायदा मैंने देखा और पूछा है कि यार आप लोग तो अच्छे खासे पैसे वाले लग रहे हैं, एसी क्यों नहीं, क्या भाई साहब मनना पसंद आवे। तो है कुछ लोग ऐसे हैं। पिक्चर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बॉडी की पिक्चर है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ यार, आपने वो जो फोटो लगाई है वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं तो भैंसा आदमी हूँ ना, अब भैंसे के सामने कोई अपने सिक्स पैक्स दिखाए तो जलन तो होगी। ऐसे कैसे। बाकी यूसुफ भाई का कहना है, फजील थोड़े अरसे पहले और एक ट्रेंड आया था हर तरफ गिबली या जिबली करके, अच्छा हाँ उसमें भी सब पागल हो गए थे। ठीक है यार, लोगों को यही लग्जरी लग रही है ना, अब इतना ज़्यादा फ्री टाइम हो गया है ना, लोगों के घर में खाना आ जा रहा है, पहले क्या खाना बनाना था, उस खाना बनाने में उनकी चय रहती थी, खाना बनाने के पहले उसमें क्या होता था कि चूल्हे में लकड़ी डालना, लकड़ी को जलाना, बड़ा झंझट होता था भाई, एक रात पहले कोयला बचा के लोग रखते थे। मेरी फुप्पी करती थी, मुझे याद है। ये मत सोचना कि फजील आपकी उम्र मुझे लग रहा 70 है, नहीं मेरी उम्र 70 नहीं, मेरी फुप्पी ने ये किया तो मेरे को पता है। तो वो दौर ना इतना ज़्यादा बिजी होता था कि इतना फ्री टाइम नहीं होता था। ये जिबली पिबली गिबली ये आया ही अभी है क्योंकि फ्री टाइम बहुत है। बाकी लिखा है, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं एआई आपकी प्राइवेसी में आ रहा है, आपके सारे इंफॉर्मेशन ये सभी ऐप्स जाने अनजाने में ले रहे हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ भाई ये तो है, मैं तो कहता हूँ जितना हो सके उतना दूर रहो। फिर कहते हैं ये कवर फोटो है जब मैं जवान था आज से 2 साल पहले, हैं 2 साल में कौन सा बुढ़ापा आया जा रहा है यार, ये सब मत कहो, मेरे ऐसा दिल धक धक होने लगता कि मेरे को क्या 32 तक मैं बूढ़ा हो जाऊँ। कि एक दिन उठे अरे बाल सफ़ेद, फिर मेरा बच्चा भी कह रहा है अरे दादा अरे बेटा बाप हूँ तुम्हारा।
एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे खत लिखवा लेता हूं और आज का खत आपको अपने एरा के बारे में लिखना है, जो एरा आपको पसंद है उस एरा के बारे में लिखो, डियर 90s या डियर 2026, 25, 2020, जो भी आपको लिखना हो, या आप तो लिख सकते हैं डियर कतर 2022, ये भी तो बड़ा खूबसूरत था। तो डियर व्हाटएवर, जो भी ईयर आपको लिखना है वो लिखें और फिर अपना खत उस ईयर के नाम, जो आपका बेस्ट साल था और क्यों था, क्यों लिखना चाहेंगे, अगर 80s को आप एक खत लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, और अगर आप 2026 को एक खत लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, आपका क्या रीजन है, क्या वजह है, ये जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे। एक छोटा सा खत FM 107 पे फजील के साथ हैं आप दिल से।

0: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइकिलिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइकिलिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल, 6:51 हमारे

स्टूडियो की घड़ी में आज का सवाल कि 90s 80s का एरा खूबसूरत आप उस एरा में लौटना चाहते हैं या फिर 2026 में भी जीना चाहते हैं जहां पर सारी सहूलियत है, चाहे वो डिलीवरी को लेकर हो, खाने की डिलीवरी को लेकर हो, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने को लेकर हो, या फिर कनेक्टिविटी को लेकर भी हो। इवन अगर आप घर पे अपने मुल्क में बात करना चाहते हैं तो 80s 90s में आपको ख़त भेजना पड़ता था, लेकिन आज आप वीडियो कॉल लगाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको मौका लगे तो आप किस एरा में रहना चाहेंगे, 2026 में या फिर 80s 90s के एरा में आप रहना चाहेंगे? वेल, एक भाई ने कहा था, बशारत उनका नाम, तक यार आप तो लौट नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लौट तो सकते ही हैं, बस उसके लिए क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो बहुत अमीर हो अगला आदमी, जैसे वो मुंबई वाले अमीर लोग कर रहे हैं, जो असल में दिल्ली वाले अमीर हैं वो कर रहे हैं, बेंगलोर वाले भी कर रहे हैं, जो एक किसी सुदूर दूर से इलाके में ग्रीनरी में एक बड़ा सा प्लॉट ख़रीद लेते हैं और फिर वो वहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं, 10 20 25 50 लोग होते हैं, मैं तो यही सब देख रहा हूँ भाई, जहाँ पर वो बारबेक्यू से लेकर सब कुछ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मज़े भी करते हैं। लेकिन आपको एक ख़त भी लिखना था, क्योंकि ये टीज़ के बारे में बात हो रही तो ख़त का दौर तो होना ही चाहिए। और अगर आप एक ख़त लिखें, चाहे वो 80s को या 2026 को, तो आप उस ख़त में क्या लिखेंगे, मैंने ये आपसे पूछा था। लेकिन आज कुछ जज्बात तो आए हैं, और इतने दिनों में पहली बार हुआ है लोगों ने जज्बात में इधर उधर की बात नहीं करी, हरकतें नहीं करी। अगर हम देखें तो वाजिद भाई ने सलाम किया और लिखा है, वाजिद भाई ने ख़त में, क्योंकि ख़त लिखना था 80s पर या 2026, आपको क्या पसंद है। वाजिद लिखते हैं, मैं 2026 में 80 का रिया चाहता हूँ, 80 का रहना चाहता हूँ मे बी, जहाँ सब साथ हों, दोस्त रिश्तेदार, मस्ती, काम और आज की सहूलियत भी। वाजिद भाई की अलग ही शौक है, अलग ही डिमांड है कि 2026 में रहना भी है लेकिन 80 वाला दौर जीना है। अरे चाहते क्या हो। खैर, आगे आबिद भाई ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, और लिखा है, डियर इटीज एरा, डियर इटीज एरा, यू दोज वर द डेज, अच्छा दोज वर द डेज, यू जबरदस्ती लग गया होगा, दोज वर द डेज व्हेन लाइफ फील्स लेस हेक्टिक बट मीनिंगफुल, करेक्ट, पीपल वर क्लोजर एंड टुक केयर ऑफ ईच अदर। बात तो है यार, मतलब देखें कि वो दौर जो है ना, वो स्लो शुरू हुआ करता था, और 6-7 बजे आप उठ जाया करते थे, आपका दिन बड़ा स्लो चलता था, फिर आप 2 बजे 2:30 बजे सो भी जाया करते थे। कई मैंने देखा बूढ़े आदमियों को वो छतरी वाला डंडा पकड़ के, लाठी जो है वो लगाया हुआ है, अपने खेत में खटिया में लेटे हुए हैं, और उसके बाद वो खेत की देखभाल भी कर रहे हैं, कोई आया तो डंडा, भाई उन बूढ़ों का डंडा देखा है आप खेत में कभी आम चोरी करने गए? उन बूढ़ों का डंडा देखो यार, कितनी दूर फेंकते हैं यार वो। मतलब चाचा की दो ही चीज बहुत दूर जाती थी, एक तो पान की पीक और लाठी। चाचा जेवलिन थ्रो में अच्छा कर सकते थे, लेकिन चाचा वॉज नॉट इंटरेस्टेड, चाचा जो है वो आम की बगिया बचाने में लगे थे। चाचा पता नहीं क्यों। खैर, लेकिन बहुत सही बात लिखी है आबिद भाई ने कि यार वो जो वक्त है ना, बड़ा हेक्टिक जो है नहीं हुआ करता था, आज का थोड़ा सा आप इतने ज़्यादा पैसों में, काम में, अपने बॉस में, अपने लोगों के सामने थोड़ा झुकने लग गए, थोड़ा वो भौकाल नहीं रहा है। आपने वो गांव के भौकाल देखे जहाँ मतलब ठाकुर साहब अपने ठाकुर ही से रहते थे, है ना, साहब रह रहे हैं और फिर वो उनकी बुलेट भी चल रही है तो 4 लोग 6 लोग देख रहे हैं, एक ही कार होती थी पूरे गांव में, एक या दो, अलग लेवल होता था भाई उनका। बाकी एहसान साहब ने लिखा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, मैं कज़िन के साथ नदी में नहाना, वापस लौट के अम्मी से डांट खाना और गुलेल से बर्ड्स शिकार करना। अच्छा, और गांव की लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते थे, लेकिन अब ये सब एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ भाई, वो 90 भाई, एहसान भाई को तो बहुत ही याद आ गया यार, सब कुछ एकदम ही दिल का करीब रह गया। और ये सब जो आपने बताया है, इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने भी 80s में तो नहीं है, पैदा ही नहीं हुए थे भाई। मेरे बारे में तो सोचा भी नहीं गया था, मैं पैदा तो छोड़ो। हमारे अम्मा अब्बा की शादी भी नहीं हुई थी। खैर, 6:55 हमारे स्टूडियो की घड़ी में आसिफ का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजिल भाई को, मेरा वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, उम्मीद है सब बढ़िया भले चंगे होंगे। यार देखो, अब इसी के साथ, अब इस खत के साथ आज का पूरा दिन मुझे गुजारना है, क्या कुछ याद

आ गया कितनी चीजें याद आ गई। वो नदी की भाई बात ने, वो एहसान भाई ने बात कर दी ना नदी की, तो वो तो ऐसा छू के निकली है करेजे को, आय हाय। लेकिन अब इसके साथ तो आज पूरा दिन तो रह ही लूंगा, बाकी का जो 5-7 घंटा है मैं पूरा रह ही लूंगा इंशाल्लाह। अब यहां से अपने निकलने का वक्त आ गया, कोड़ा वाला कोड़ा दिखा रहा भाई। ठीक है मैं बस आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। अमित गुप्ता और प्रताप की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, अभी आपके लिए न्यूज बुलेटिन पेश की जाएगी शाम को 7 बजे से, और कतर की तमाम न्यूज आपके लिए। सुनते रहें FM 107 और अपना ख्याल रखें, दिल से देसी।

0: कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: प्राइवेसी का तहफ्फुज एतमाद को मजबूत बनाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आवाम से अपील करती है कि अपनी जाती मालूमात शेयर करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को गौर से पढ़ें, ताकि आप जान सकें कि आपकी मालूमात किस तरह इस्तेमाल की जाएंगी। आपका सोचा समझा फैसला आपकी मालूमात को महफूज रखने के साथ साथ एतमाद को भी मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, डेटा प्राइवेसी का आगाज आपसे होता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، I hate this person. یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I don't like this person. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107
3: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ.
5: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور.
4: دوہا میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل سیکیورٹی نے سیکیورٹی رسک مینجمنٹ کورس کا اختتام کر دیا ہے، جس میں وزارت داخلہ کے کئی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ برادر ملک سیریا کی وزارت داخلہ کے افسران نے بھی شرکت کی. کورس میں سیکیورٹی رسک مینجمنٹ کے تصور اور سیکیورٹی خطروں کی پہچان، جانچ اور تجزیے کرنے کے طریقوں پر تفصیلی ٹریننگ دی گئی. اس کا مقصد شرکت کرنے والوں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا، ان کی تیاری کو مضبوط کرنا اور سیکیورٹی پرفارمنس کی کارکردگی میں اضافہ کرنا تھا. کورس کے اختتام پر بریگیڈیئر راشد محمد الحاجری، ڈائریکٹر جنرل آف انڈسٹریل سیکیورٹی نے شرکت کرنے والوں کو سندیں پیش کی اور ان کی کوششوں کو سراہا. سامعین، میتراج ایپ کے ذریعے امپلائر پرسنل اسپانسرشپ تبدیل کرنے کی درخواست آسان اور سہولت بھرے طریقے سے جمع کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ پرسنل امپلائمنٹ کے لیے امپلائر تبدیل کرنے کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو پہلے پچھلے اسپانسر کی منظوری حاصل کریں. اس کے بعد میتراج ایپ کے ذریعے آسانی سے پروسیس مکمل کیا جا سکتا ہے. ہوم پیج سے ریسیڈنسی کو سلیکٹ کریں، پھر چینج امپلائر پر کلک کریں. اس کے بعد چینج امپلائر سروس کو سلیکٹ کر کے اپلائی پر ٹیپ کریں. ایکسپیٹریٹ کے کیو آئی ڈی نمبر درج کریں، رشتے کی نوعیت یا ریلیشن شپ ٹائپ منتخب کریں، درکار دستاویز اپلوڈ کریں اور تمام معلومات کی درستی کی تصدیق کر لیں. وزارت داخلہ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول آنے اور واپس گھر جانے کے دوران حفاظتی ہدایات کی پابندی کی اہمیت سمجھائیں. طلبہ کی سلامتی والدین، اسکول اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. بچوں کو ہدایت دیں کہ اسکول بس میں اپنی مقرر سیٹ پر بیٹھیں. یقینی بنائیں کہ وہ سفر کے دوران سیٹ بیلٹ باندھا کریں. بچوں کو سمجھائیں کہ بس کے مکمل طور پر رکنے سے پہلے نہ سوار ہوں اور نہ ہی اس سے اتریں. سڑک پار کرتے وقت گاڑیوں پر پوری توجہ دینے کی تعلیم دیں. بس کا انتظار کرتے وقت سڑک کے کنارے سے محفوظ فاصلے پر کھڑے رہنے کی بھی ترغیب دینی چاہیے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کا تعاون ہمارے بچوں کے لیے محفوظ اور پر امن سفر کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک نے اسکولوں کے گرد اپنی فیلڈ کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ طلبہ کی سلامتی اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے. نئے اکیڈمک ایئر کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت اور ٹریفک کی بہتر روانی کو یقینی بنائیں. रोड सेफ्टी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी है। इसलिए स्कूल की वापसी के मौके पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया है ताकि तैयारी और रेडीनेस के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस प्लान के तहत अहम सड़कों और स्कूलों के करीब ट्रैफिक की मौजूदगी को मजबूत बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, रश कम होगा और तलबा महफूज तरीके से स्कूल पहुंचकर घर वापस लौट सकेंगे। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने वालदेन और तमाम ड्राइवर से भी तआवुन की दरखास्त की है और कहा है कि बराहे करम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, स्कूलों के करीब रफ्तार कम रखें, तलबा और पैदल चलने वालों पर खास तवज्जो दें और गैर कानूनी पार्किंग या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए स्कूलों की वापसी को एक महफूज और कामयाब तालीमी साल का आगाज बनाएं। हमारे बच्चों की सलामती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने वजारत सेहत आम्मा के मुतालिका इदारों के तआवुन से एक यूरोपियन कौमियत से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुल्क की मुतालिका अथॉरिटीज से दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर मेडिकल और कॉस्मेटिक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये गिरफ्तारी उन इत्तलात की बुनियाद पर अमल में आई जिनमें बताया गया था कि एक गैर लाइसेंस्ड मरकज में मेडिकल और कॉस्मेटिक खिदमात फराहम की जा रही हैं। तहकीकात और मालूमात की तस्दीक और पब्लिक प्रोसिक्यूशन से दरकार इजाजत हासिल करने के बाद मुलजमीन को इन सरगर्मियों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का एतराफ भी कर लिया है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई डिवाइसेस, औजार और मेडिकल सप्लाईज भी बरामद की गई जो इन सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी। अब मुलजमीन और जब्त शुदा अशिया को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतालिका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वजारत दाखिला और वजारत सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मेडिकल या कॉस्मेटिक सर्विस से फायदा उठाते वक्त पहले प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज और क्लिनिक्स के लाइसेंस की तस्दीक कर लें और यकीन कर लें कि वहां काम करने वाले हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास मुतालिका अथॉरिटीज से जारी शुदा लाइसेंस मौजूद हैं या नहीं, ताकि अवामी सलामती को बरकरार रखा जा सके और ऐसे अफराद या इदारों के मामलात से बचा जा सके। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के वजीर अदल गिराल्ड डर्मेनिन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया और दोनों ही जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपनी बैक टू स्कूल अवेयरनेस कैंपेन के तहत अल अंदलुस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में वाकई अल अंदलुस प्रिपेरेटरी स्कूल फॉर बॉयज का फील्ड दौरा मुनज्जम किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान स्कूल का फील्ड टूर कराया गया और असातज़ा, इंतजामी अमले और तलबा से मुलाकात की गई। इसके साथ एक इंटरेक्टिव अवेयरनेस लेक्चर भी पेश किया गया जिसमें ट्रैफिक सेफ्टी के कवायद, स्कूल बस के इस्तेमाल के उसूल, साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए हिफाजती हिदायत, फुटपाथ पर चलने और महफूज तौर पर सड़क पार करने के तरीकों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद तलबा में ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर बढ़ाना और महफूज रवैयों को फरोग देना है। उन्होंने तलबा को स्कूल के अंदर और बाहर हिफाजती कवायद की पाबंदी की तरगीब दी ताकि एक महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सिविल डिफेंस के मैदान में मुश्तरका तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के सिलसिले में रियासत कतर और ब्रदर मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया की हुकूमतों के दरमियान सिविल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फ़ाल बनाने के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास रियाद में मुनक़द हुआ। कतरी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल हमद उस्मान अल दुहेमी ने की, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल डॉक्टर हमूद बिन सुलेमान अल फरज ने की। इजलास में एजेंडे में शामिल मौजूदात पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इन सिफारिशात का मकसद तैयारी और रेडीनेस की सतह को बुलंद करना, फील्ड ऑपरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तजुर्बात के तबादले को फरोग देना और हंगामी सूरत हाल से निमटने के मैकेनिज्म को मजीद तरक्की देना था। पुलिस एकेडमी के जेर इंतजाम रासल अफान कॉलेज फॉर इमरजेंसी एंड सेफ्टी ने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स क्लब में कॉलेज के एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से एक तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया। नशिस्त में प्रेसिडेंट पुलिस एकेडमी मेजर जनरल अब्दुलरहमान माजिद अल सुलैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस कर्नल मोहम्मद अहमद अल मारिफी और मुतालिका इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस नशिस्त का मकसद कॉलेज की जानिब से यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकशायर के तावन से पेश किए जाने वाले एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का तारुफ करवाना और इमरजेंसीज, क्राइसिस और फायर सेफ्टी के शोबों में महारत याफ्ता कौमी अफराद की तैयारी और तरबियत में कॉलेज के किरदार को उजागर करना था। ये प्रोग्राम जदीद तरीन बैनुल अक्वामी मेयारों और बेहतरीन अमल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये प्रोग्राम्स तलबा की एकेडमिक और पेशावराना सलाहियतों को फरोग देने, रिस्क मैनेजमेंट और वाकयात और हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और सेफ्टी की सतह को बुलंद करने में मदद देते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद मुतालिका इदारों की मैदानी जरूरियात को पूरा करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम की हिमायत करना और मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सलाहियतों को मजबूत बनाना है। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक्किद गल्फ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग 2026-2030 के नाफिज की पैरवी करने वाली कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्त की क्यादत स्टाफ कर्नल मोहम्मद बिन मुबारक अल्फानी, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने की। इजलास में स्ट्रेटजी के अहदाफ पर अमल दरामद के प्लान का जायजा लिया गया, खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी पॉलिसीज, मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तआवुन और हम आहंगी और ट्रेनिंग और सलाहियतों को बढ़ाने के शोबों पर बहस की गई। इजलास का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी तआवुन को फरोग देना था। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के ताबुन के शोबों और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से कई उमूर पर भी बातचीत की गई। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक्किद कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ द GCC स्टेट्स के 35वें इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्त की क्यादत मेजर जनरल हमद उस्मान अल दुहैमी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ने की। इजलास में एजेंडा में शामिल कई अहम मौजूद पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गई। ये सिफारिशात GCC ममालिक के दरमियान सिविल डिफेंस के शोबे में तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने जमहूरिया सूडान के वजीर दाखला लेफ्टिनेंट जनरल बेबिकर सामरा मुस्तफा अली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

0: अलावा अपनी जो डाइट है उसे आप बैलेंस रखिए, और उसमें यह कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। चलिए सब मुख्तलिफ मौजूदात अपनाते हैं, और आज भी एक थोड़ा कुछ मुख्तलिफ मौजू अपनाने जा रहे हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ इज़ चीपर एंड हेल्थ इज़ एक्सपेंसिव, अब ये क्या है कि बीमारियां जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं, और जो अब सेहत है, सेहत को बरकरार रखना और सेहतमंद रहना जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस आज का ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड है, और आप के जो सवालात हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम जो ऐसे सवालात डॉक्टर से करूं इस हवाले से कि जो आपके जहनों में आ सकते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़खर शाहिद, जो कि बेरियाट्रिक सर्जन हैं बेरियाट्रिक नेशनल सेंटर HMC में। वेलकम करूंगी अपने तमाम लिसनर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: जी वेलकम सलाम, बहुत शुक्रिया
0: जी डॉक्टर साहब। कुछ मुख्तलिफ सा टॉपिक है, सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे साथ हैं, और हमेशा की तरह बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि आप हमें कुछ नई चीज़ बताएंगे कोई वेट लॉस के बारे में, क्योंकि ग्लोबल एक इशू है। मगर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, और आप हमें बताएंगे कि ये है क्या।
1: जी तो देखें, आपको पता है मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, जिसे कहते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें सारी बीमारियों की एक किस्म की झलक देनी पड़ती है
0: जी।
1: क्योंकि एक ओबेसिटी या मोटापा सेंटर में है और सारी बीमारियां इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जब भी आप इसको, आपको एक बीमारी को ख़त्म करना है तो आप सारी बीमारियों को आस्ता आस्ता ख़त्म कर सकते हैं
0: जी।
1: और इन सब के बीच में क्योंकि मोटापा है तो हम इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो बाकी चीज़ें खुद बहुत कवर हो जाएंगी
0: जी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब थोड़ी शुरू में थोड़ी हम एग्जाम्पल देते चलें कि क्यों ऐसा है। जैसे हमने कहा आपने ये टॉपिक जो है बहुत यूनिक सा है
1: जी,
0: तो इस पर जो बात करनी है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी ये है क्या
1: जी। इसका मैं इस तरह बताता हूँ आपको कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ये टीवी स्क्रीन्स नहीं थी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो होता ये था कि लोग घर में खाना बनाते थे, पैदल चल के मस्जिद जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, और उसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, शाम को गैदरिंग्स होती थी। तो ये उनकी पूरी रूटीन में क्या क्या कवर हो गया, एक तो ये कि खाना हेल्दी हो गया क्योंकि घर पर बनाए, दूसरा ये कि वो चल के जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, और तीसरा ये कि जब वो अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है और उनको लगता है बेहतर फीलिंग होती है। और इसमें क्या कितना खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उस ज़माने में अगर आपको कोई भी बीमारी लगनी है तो इसका मतलब ये कि बहुत महंगी जाके कोई गज़ा कोई ले रहा है जो कि अच्छी नहीं है, या कोई बहुत महंगी गाड़ी ले ली और उसके ऊपर चल के उस पर बैठ के जाता है और वो ज़्यादा चलता नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे ये था कि सेहत सस्ती थी और बीमारी महंगी थी। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि जो जितना भी फास्ट फूड हमें अभी अवेलेबल हो गया है, जितनी शुगरी ड्रिंक्स हमें अवेलेबल हो गई हैं, टीवी एक ऐसी स्क्रीन जिसके आगे 8-8 घंटे लोग बैठे रहते हैं
0: जी, बिल्कुल, और अट्रैक्शन बहुत है,
1: अट्रैक्शन बहुत है इन चीज़ों की,
0: बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सबको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये टीनेजर से ही शुरू हो रहा है काम, तो आप देखेंगे इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं और आपकी एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन बीमारी आपके पास आई जा रही है जो है, और लेकिन अब इसको अगर आपको आ जाती है बीमारी और अब आपने उसको ट्रीट करना है तो आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, आप उसके हैवी बिल्स देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके अलावा जब डॉक्टर आपको कहते हैं आप जिम ज्वाइन करें उसकी उसके लहदा पैसे आप देते हैं, उसके बाद वो आपको कहता है कि आप ये फलानी जो है आप रिजीम फॉलो करें 3 महीने 6 महीने उसके लहदा आप पैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जबकि आप ये सब प्रिवेंट कर सकते थे। आप चाहते तो आप को ये सारा जो खर्चा है ये भी बच जाता, आपकी बीमारियाँ भी बच जाती अगर आप बेसिक्स पे रहते जैसे पहले ज़माने में होता था। तो ये दौर ऐसा आ गया है कि बीमारी आना बहुत सस्ता हो गया है और अपने आप को सहमन सेहतमंद रखना बहुत महंगा हो गया है।
0: जी ठीक। और ये छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, तो इससे जैसे जो बीमारी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है।
1: जी
0: ठीक। और बिल्कुल सबसे जो पहली बात आपने ये कि फास्ट फूड या आजकल जो होम डिलीवरीज का चक्कर है,
1: मैं
0: वो टाइमिंग्स का।
1: जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ आजकल की क्या रूटीन आती है। तो सुबह उठ के जो सबसे पहले तो ये कि जो लोग सुबह उठते हैं इनकी रात की नींद ही नहीं पूरी हुई होती, क्योंकि वो लेट नाइट सोए होते हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके सोए होते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। उठते साथ वो कॉफ़ी पहले स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शुगर वाली कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक हाई कैलरी ड्रिंक हो जाती है। उसके बाद जब वो काम से वापस आते हैं तो सबसे पहले टीवी लगाते हैं और बैठ जाते हैं, और शाम तक वो जो है ना टीवी और ये चल रहा होता है और उसमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होती। उसके बीच में वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, वो उसी बेड के ऊपर जहाँ टीवी देख रहे हैं वहीं बैठ के खाते हैं, और रात को फिर उसी बेड पे दोबारा ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, उसमें उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद जब रात को सोने का टाइम आता है तो वो फिर रात भर जागते हैं, उस टाइम वो कहीं कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको होता है कि सुबह काम पर भी जाना है। अब सोने के लिए वो नींद की मेडिसिन लेते हैं, तो इससे आपको आपकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आती हैं, आपका सोने का रिदम भी ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी में अनहेल्दी जो है वो फूड जा रहा होता है, आपकी जो डाइट है वो तो ऑलरेडी ख़राब हो गई, नींद भी ख़राब हो गई, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती है, और स्लोली स्लोली उसको जो पता चलता है कि वो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला होता जाता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्यों हम कहते हैं डिजीज़ जो है बहुत चीपर है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने बता दी, मगर ये कि जो बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हमारे अंदर आ रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं?
1: जी तो सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसे हम नॉर्मली हर रोज़ डिस्कस करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है कि बैठे रहना, हरकत ज़्यादा ना करना, जंक फूड खाना, और उसके इससे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है जो शुगर की जो है ना प्रोसेसिंग वो वीक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे सबसे पहले आपको डायबिटीज़ होने का चांस होता है, और आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, तो ब्लड प्रेशर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को होती है। उसके बाद क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, और स्क्रीन टाइम के साथ रिसर्च अब बता रही है कि जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है उतना स्ट्रेस और एंगजाइटी के में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तीन चार बीमारियां तो आपको उस इकट्ठी आने का चांस होता है।
0: और बिल्कुल सबसे पहले ये कि अब इसके जो मदर ऑफ डिजीज हैं वो तो ओबेसिटी है
1: जी,
0: और उस पर हम जरूर बात करेंगे, और स्पेशली जैसे कि आपके जो प्रोग्राम है, हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत कहते हैं कि हमें उसी पर बात करनी है, क्योंकि जो मोटापा है या ओबेसिटी है उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसे एनजाइटी की आपने बात की
1: जी,
0: और जॉइंट्स की
1: जॉइंट की
0: प्रॉब्लम्स वो सारी की सारी इसमें होती हैं। तो इसकी क्या मतलब, इसमें हम थोड़ा ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो डिजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता।
1: जी तो सबसे पहले तो ये कि यूजली जो लोग इस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं उनको तब तक अवेयरनेस नहीं आती जब तक कि उनको पहला अटैक नहीं आता। ठीक है।
0: अच्छा।
1: अटैक क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, कल एक दोस्त से मिला तो उसको जो फर्स्ट अटैक होता है वो एक आता है एंग्जाइटी का अटैक। एंग्जाइटी अटैक ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, सर में एक्सट्रीम दर्द हो जाना, और उसके अलावा एक फीलिंग आती है कि आप समझते हो कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। ये क्या हुआ, बैठे बैठे जी टीवी देख रहे थे तो हमें ये क्यों हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सारे ब्लड टेस्ट करते हैं जी, सारे ब्लड टेस्ट किए, आपने देखा शुगर बहुत हाई है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आया है, और हार्ट की जो एंजाइम्स हैं जिससे हार्ट अटैक होने का चांस वो भी हाई है। अब वो कहते हैं ये कैसे हो गया भाई, एकदम से मुझे ये सब कैसे हो गया, तो ये प्रोसेस तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था ना, तो आपने नहीं नोट किया, आपको तो अब वो अब उसका होता है कि अब मैं इसकी सारी ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो अब वो जो है ना एक महंगे ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे जाना शुरू हो जाएगा।
0: जी ठीक
1: ठीक है जी,
0: ठीक है। जैसे डायबिटीज जो है वो आपने कहा कि उसमें ज़्यादा शुगर एकदम से ज़्यादा आई है, या बाकी जो टेस्ट हैं वो भी, इसमें एज का बात हम करेंगे कि जो किस एज में क्या हो सकता है
1: जी।
0: या
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज है ना, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जो 60% जो ओबेसिटी या मोटापा है ना, वो जेनेटिक रीजन उसकी कही जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स में को मोटापा है तो वो आपको आएगा ही आएगा। और डायबिटीज के बारे में भी यही रिसर्च कहती है। ठीक है, तो जिनके अभी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, जो बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को इंसुलिन लेते हुए या मेडिसिन लेते हुए, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनमें चांस है आने का। और ऐसा होता है कि आजकल हम उनको

0: 15-16 साल की उम्र में ही डायबिटिक देख रहे हैं, उनकी शुगर बहुत हाई है और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि ये क्या हो गया एकदम से।
1: और इसमें टाइप 2 जो है इतने बहुत छोटी यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटिक,
0: ये टाइप 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ जी, कि टाइप 2 उनको होती है उनके लाइफस्टाइल की वजह से।
1: यही बिल्कुल यही स्टडीज थी और वैसे भी कि जो यंग हैं यंग जनरेशन उसमें टाइप 2 होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही,
1: और अब मेरा ख्याल है ज्यादा तो टाइप 2 है क्योंकि एनवायरमेंटल है।
0: देखिए टाइप 2 जब कोई भी हमारे पास बच्चा आ जाता है 15-16-17 साल का जो है, तो सबसे पहले उसका मैं क्या देखता हूँ, मैं उसका वेट देखता हूँ, तो वेट ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा होता है। और अभी मैं आपको बताऊँ आप यकीन नहीं करेंगी, ज्यादातर बच्चे जो है वो 100 kg प्लस है, ठीक है, 100 kg प्लस हैं लड़के लड़कियां, इधर कतर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अब आपने अब उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है
1: जी,
0: क्विक फिक्स के हमें जल्दी से पतला कर दें, जल्दी से हमें कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन दें, कोई ऐसी टैबलेट दें, हमें कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें, हमारी कोई ऐसी सर्जरी कर दें कि हम एक महीने में 50 kg कम कर दें, तो बहुत मुश्किल है
1: जी,
0: ठीक है ये सब करना। लेकिन इनको हम यही बताते हैं कि देखो वजन आने में कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, 5 साल लगे ना, तब एक महीने में चला नहीं जाएगा, फिर भी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं
1: जी।
0: बट मैं समझता हूँ कि डायबिटीज
1: इतनी यंग एज में, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अगर आप उन्हें बताते हैं कि अच्छा ये है, तो वो कहीं और जाके ट्रीटमेंट जो है वो भी शुरू कर देते हैं। इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, मगर जी जो बेसिक इशू है उसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है
0: जी। अब ये है कि देखें हम इन बच्चों को ट्रीटमेंट दे देते हैं, विद इन 6 months उनका सारा वेट हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं।
1: अच्छा।
0: वो बिल्कुल बिल्कुल विद इन 5 to 6 months उनका सारा वेट रिड्यूस हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट्स के साथ, उनकी सारी डायबिटीज़ या जो भी इशूज़ है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर सब खत्म, वो कोई टैबलेट नहीं लेते। लेकिन 2 साल बाद वो हमारे पास वापस आ जाते हैं वेट वही वेट लेके वापस, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो पहले था।
1: अच्छा,
0: तो इसका मतलब कि जो वजह हम जो उसकी वजह थी मोटापे की वो हमने नहीं ट्रीट की, हमने तो उसको पेशेंट को ट्रीट किया, और वजह क्या थी उसका लाइफस्टाइल
1: जी।
0: अगर वो वापस अब उसी लाइफस्टाइल में जा रहा है जहां वो घर पे बैठा है, बाहर से खा रहा है, ठीक है, तो उसका सारा वजन वापस आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एजुकेशन भी दी जाए कि आप जब वजन कम कर लेंगे तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपको थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना है, तभी ये मेंटेन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैजिक पिल नहीं है
1: जी, मेहनत तो करनी है
0: जी, मेहनत आपको करनी है। हम आपकी सिर्फ इतना हेल्प कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस करवा देंगे ताकि आप इतने हो जाएं कि आप एक्टिविटी कर सकें, मेहनत कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें डाइट के बारे में। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज होता है ना, मुश्किल होता है उसके लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉइंट पेन्स होती हैं और सांस जल्दी फूल जाती है। तो वजन कम करवा दिया, अब अपनी लाइफ को खुद ही सेट करना है। लेकिन वो वापस उसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं हमारे पास।
1: ठीक, इसमें लोग सब जैसे ओबेसिटी की बात करें, बाकी जो डिजीज़ हैं वो तो बिल्कुल उसे ही उसकी वजह से ही होती हैं, मगर जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की तो आप किस तरह से, जैसे आपने कहा 6 months में कम कर देते हैं, उसमें सर्जरी है, टैबलेट्स हैं, या किस तरह से, और एज वाइज भी ज़रूर बताइएगा कि एज पर भी ये ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, देखें 14 साल से प्लस जितने भी बच्चे हैं हम उनको ट्रीट करते हैं
1: जी,
0: ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड 11 साल प्लस पे वो लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स।
1: अच्छा।
0: ठीक है, 11 से 12 साल का बच्चा या बच्ची है तो वो वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होता है यूरोप अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे कतर में हम लोग 14 प्लस पे स्टार्ट करते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ऐसा है कि हर प्रॉब्लम की एक रूट कॉज होती है, जैसे जेनेटिक कॉज है ना, अब एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक बच्चा है वो खाता है, उसका पेट फुल नहीं होता, वो खा ही जाता है वो 200 किलो 250 किलो तक हो जाता है 16-17 साल की उम्र में।
1: अच्छा।
0: तो हम उन्हें फिर जो है जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बट ये रेयर केस है। ज़्यादातर जो है वो लाइफस्टाइल का ही इशू है। हम उन्हें सबसे पहले ऑफर करते हैं मेडिकेशंस, ठीक है, और उसके बाद मेडिसिंस में आपको पता है वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल बहुत मशहूर हैं, सेलिब्रिटीज़ ले रही हैं, और ज़ेम्पिक हो गई, मंजारो हो गई, उससे उनका काफ़ी हद तक वज़न कम हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ उसको मेंटेन करते हैं
1: जी।
0: और जब ये फेल हो जाए तो फिर हम उन्हें, हमारे पास बैलून है, एक बैलून ऐसी चीज़ है जो आप कैप्सूल लेते हैं, आप स्टमक में चला जाता है, उससे आप फुल की फीलिंग रहती है आपको, हर वक्त आपको लगता है कि आपने हर वक्त खाना खाया हुआ है। 4 से 5 महीने वो बैलून आपके अंदर रहता है और आपका काफी 25 से 30 किलो वजन कम हो जाता है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम रखते हैं वो सर्जरी है. सर्जरी कभी भी हम पहला ऑप्शन नहीं देते, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सर्जरी ही है आज तक.
1: अच्छा जी, तो इसमें भी एज पर डिपेंड करता है कि नहीं? जैसे आपने कहा 14 प्लस को भी सर्जरी
0: जी,
1: अगर जरूरत पड़े तो कर
0: देते हैं. बिल्कुल, 14 की हमने की है, 14 15 की हम कर रहे हैं रेगुलरली. देखें, अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना, तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, ठीक है, उसके हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, उसकी बोन्स अफेक्ट होंगी, तो हम उसका वेट लॉस जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो. वो 20-25 साल की उम्र में पहुंचे तो उसकी कोई, उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसको कोई बीमारी ना रहे. अब हम उसको इग्नोर करेंगे या हम उसको कहेंगे 18 साल की उम्र में आना हमारे पास, तो 4-5 साल में तो उसका और बेड़ा गर्क हो जाएगा.
1: ठीक ठीक, कई वजह से ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है. डॉक्टर साहब, इसमें आपने इंजेक्शंस की बात की, उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स की बहुत बात की जाती है बार बार, जैसे कि आपने नाम लिया ओज़ेम्पिक है, मंजारो, तो इसमें क्या ऐसा है आपके पास जो पेशेंट्स हैं या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखें हर चीज़ का साइड इफेक्ट, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है. कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है. इवन के पेनाडोल भी जो आप सर दर्द के लिए ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा ले लें. तो ये इंजेक्शंस बेसिकली, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. आपकी बॉडी में GLP रिसेप्टर्स होते हैं, GLP पेप्टाइड्स होती हैं, जो ये मेडिसिन उनको इन्हेंस कर देती हैं. और इन्हेंस करने से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, और दूसरा ये कि आपका जो दिमाग में एपेटाइट सेंटर है जो आपको बताता है कि आपने खाना खा लिया, अब आप फुल हो गए, अब आप छोड़ दें, ये उसको एक्टिवेट कर देता है. ठीक है जी. अच्छा. तो इससे क्या होता है कि हर वक्त आपने हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन स्किन के नीचे ले लिया, तो आपको ना भूख नहीं लगेगी, आप कुछ थोड़ा सा खाएंगे आप फुल हो जाएंगे, तो आप जो है ना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप हमेशा फुल हैं, आपको भूख नहीं लगेगी. तो इससे जो है इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, और इसके साथ आपको अच्छी डाइट, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ी सी वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, तो आपका वज़न कम हो जाता है. साइड इफेक्ट्स वहाँ आते हैं जहाँ लोग डॉक्टर्स एडवाइस नहीं फॉलो करते, खुद ही से बाहर से इंजेक्शंस ले लेते हैं, कभी किसी से कहीं से, खुद ही से डोज बढ़ा लेते हैं. अब ये जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर इंडिकेशन है, या जो कहेंगे कि जिस सूरत में ये इंजेक्शन हम नहीं देते, जिनमें थायराइड कैंसर का या फैमिली हिस्ट्री हो, या थायराइड का प्रॉब्लम हो, थायराइड के नोड्यूल्स हों. अच्छा. तो क्योंकि ये एक जो है इसकी थायराइड की ना कैंसर करने में इसका कोई थोड़ा डाटा आया था अमेरिका में, ये इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बाकी सब ले सकते हैं. नोजिया, वॉमिटिंग, ये छोटे डेली बेसिस पे थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, पहले 2-3 दिन फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं. और पेनक्रियाटाइटिस एक ऐसी इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए तो आपको ये मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ती है, और उसके बाद वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं.
1: ठीक,
0: तो ये इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं.
1: तो इसमें डॉक्टर साहब, जैसे कि बाकी भी जो कंप्लेंट करते हैं कि उनके जो थिनिंग ऑफ हेयर हो गई है, या जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्हें चक्कर आते हैं, मतलब इस तरह से भी, तो वो क्यों, जैसे आपने कहा कि पानी ज़्यादा पिए या कुछ, तो उसकी भी कोई खास वजह है?
0: देखें, आप किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करेंगे ना, वो डाइट हो गई, वो एक्सरसाइज हो गई, या आपने खाना छोड़ दिया, और या आपने सर्जरी करा लिया, आपने इंजेक्शन ले लिए, तो ये बालों पर इफेक्ट आता है. ठीक है, इसमें ये इंजेक्शन की वजह से नहीं है, ये सर्जरी की वजह से नहीं है. अच्छा. ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है. बॉडी जब वेट लूज करती है तो वो बालों की ग्रोथ को रोक देती है और बाकी बॉडी की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है. अच्छा. जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल है. जैसे ही आपका वजन रुक जाएगा, आप वापस खाना खाना शुरू हो जाएंगे, तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं. ये टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें किसी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है. ये आपका वेट लॉस का प्रोसेस है जिसकी वजह से होता है. और दूसरी जो आप बता रही थी, चक्कर आते हैं, इसकी वजह है सिर्फ डिहाइड्रेशन.
1: अच्छा, डिहाइड्रेशन.
0: डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगती ना, आप पानी भी नहीं पीते. आपका ध्यान ही नहीं जाता कि पानी भी चाहिए, मुझे प्यास नहीं लग रही. तो इसलिए लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एक पानी की बोतल 1 या 1.5 लीटर की अपने पास रखें, उसका सिप लेते रहें पूरा दिन, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के, तो वो अपना अपनी नमकियात पूरी रखें.
1: ठीक है डॉक्टर, इसमें जब डोज होती है, जैसे जैसे वेट जो है वो एडजस्ट करते हैं?
0: जी वो इंजेक्शंस की एक सबसे पहले जो डोज होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो होती है सेंसिटाइज करने के लिए आपको, मतलब आपकी बॉडी को उसकी आदत लगाने के लिए. तो हम जो फर्स्ट डोज 1 महीने की देते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो पहले से ही पता चल जाए, और उससे भी लोगों का वेट लॉस हो जाता है. हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उससे ज़्यादा वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसी बेसिक छोटी सी डोज के ऊपर ही 3-4 महीने रहते हैं और उसी से ही उनका वेट लॉस हो जाता है. तो हम हर जो है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ना डोज जब देखते हैं ہیں کہ وہ اس کا ویٹ رک گیا ہے اور اس کو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے, اس کا مطلب وہ ڈوز جو ہے وہ یوز ٹو ہو گیا اس ڈوز کے, تو ہم اس کی ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں. مطلب اگر 2.5 تھی تو 5 ہو جائے گی, اسی طرح 0.5 تھی تو 1 mg ہو جائے گی, تو ہم نا اس کی ڈوز اکارڈنگ ٹو گائیڈ لائنز ہم بڑھا دیتے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر جو ڈائبٹیز کے لیے بھی یہ جو انجیکشنز ہیں وہ دیے جاتے ہیں
0: جی,
1: تو اس میں کیا اس کی ریجیم ہوتی ہے, کس طرح سے آپ
0: ڈائبٹیز کے لیے جو ہم یہ جی دیتے ہیں ویٹ لاس انجیکشنز جو دے رہے ہیں؟
1: جی جی.
0: اچھا, یہ بڑا نا ٹرکی کوسچن ہے کیونکہ اس میں ہر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ سن کے اس کو کوئی ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹک بندے کی,
1: یہ تو ہے کہ اگر کنسلٹ کوئی آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں تو تبھی.
0: جی بالکل. نہیں, آپ کو ڈاکٹر کو اپنی شوگر کا ٹرینڈ بتانا ہے, آپ کا 3 مہینے کے شوگر کا ٹیسٹ کا دکھانا ہے, آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ انسولین کی کتنے یونٹس لے رہے ہیں, اس کے ساتھ ٹیبلٹس کتنی لے رہے ہیں, کیونکہ جو ویٹ لاس انجیکشنز ہیں نا یہ شوگر کو انسولین سے بھی زیادہ جلدی کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹس کو پہلے ہم یہ ویٹ لاس انجیکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کی شوگر کی جو انسولین ہے وہ سیم رکھتے ہیں لیکن ٹیبلٹس چھڑوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ہم ان کی ایسی ڈوزنگ کرتے ہیں, ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انسولین اور ڈائبٹیز کی میڈیسنز ختم ہو جاتی ہیں, صرف ویٹ لاس انجیکشن رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس کا جو ایچ بی اے ون سی یا شوگر نارمل ہو جاتی ہے, تو ہم سلولی اس ویٹ لاس انجیکشن کو بھی لوور ڈوز پہ لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسولین تو آپ کو روز رات کو لگانی ہے, لیکن ڈائبٹیز کا جو ویٹ لاس کا انجیکشن ہے وہ ہفتے میں ایک بار لگانا ہے. تو اس طرح جو ہے نا مینج کرتے ہیں. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے لیکن صرف ایک اسپیشلسٹ اور اکارڈنگ ٹو جو پیشنٹ ہی یہ کرتے ہیں ہم لوگ.
1: ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کس حد تک یہ جو انجیکشنز وغیرہ ہیں وہ سکسیسفل ہیں, جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ہم آگے بیلونگ پر بھی چلیں گے کہ وہ کیا ہے, مگر اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں اور یہاں پر تو خاص طور پر اوبیسٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, پوری دنیا میں ہی ہے, مگر یہ کہ یہاں پر بھی جیسے فاسٹ فوڈ اور ہمارا جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے وہ اس پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جی
0: دیکھیں, ان انجیکشنز کا جو ابھی ٹائم شروع ہوا ہے نا یہ بہت ارلی ہے, ابھی ان کے بینیفٹس تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. صرف وزن نہیں, ایون کینسر کے اندر اور اس کے علاوہ پولی سسٹک جو عورتوں میں بیچاریوں میں پرابلمز ہوتی ہیں, ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے فائدے نظر آنا شروع ہو گئے ان انجیکشنز کے, کیونکہ آپ کی باڈی کی کیمسٹری کو یہ بیک ٹو نارمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے ابھی ہم بہت ارلی فیز میں, ابھی تو ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں نا, ابھی جو نیکسٹ آپشن آ رہی ہے نا وہ جب لانچ ہوگی تو وہ ایسے ہی ہے کہ سمجھیں آپ نے ویٹ لاس سرجری کرا لی, وہ انجیکشن اس ویٹ لاس سرجری کے برابر کی ویٹ لاس دے گا آپ کو. تو ایونچولی کیا ہوگا, اب بہت سارے لوگ ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جم جاتے ہیں, ڈائٹ کرتے ہیں, لیکن مہینے 2 مہینے بعد کہتے ہیں یار کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو اس انجیکشن کے تھرو ہم ان کو ویٹ لاس انیشیٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے لائف سٹائل کے ساتھ وہ بیلنس کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس رش لگا ہوا ہے جو ہے نا پیشنٹس کا, جتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کو
1: جی
0: بہت زیادہ پیشنٹس ہیں.
1: تو اس میں جو ہے یہاں پر جو اس میں اور بھی مختلف ڈیزیزز کے ساتھ آتے ہیں یا صرف موٹاپے کی وجہ سے ہی آپ کے پاس آتے ہیں؟
0: ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ڈائبیٹکس ہیں
1: جی,
0: ٹھیک ہے, اور ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کے شکار ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف موٹاپے کی وجہ سے, کیونکہ جب آپ ینگ جنریشن کی بات کریں گی نا تو بہت سارے لوگ ان میں اتنی بیماری نہیں ہے, صرف وہ موٹاپا ہے. تو اب جو ہے نا ویٹ لاس انجیکشن کیوں جو ہے ایک فیشن بن گیا
1: جی,
0: مجھے چاہیے, مجھے 1 مہینے میں 20 کلو کم کرنا, جی مجھے چاہیے. پھر ان کا سوال ہوتا ہے جی میرا کتنا وزن کم ہوگا اس مہینے, تو میں نے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا, جو آئیڈیلی 5-10-15 کلو کہا گیا ہے, ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ انجیکشن چاہیے اور اس میں میرا کہ 1 مہینے میں کتنا وزن کم ہو جائے گا, یا میں چاہیے سرجری کر دیں میرا 1 مہینے میں کتنا وزن کم ہو جائے گا. تو ہر طرح کا پیشنٹ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کی شادی آ رہی ہے 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, جی جی ان کو چاہیے کہ 3 مہینے میں ہمارا ویٹ لاس ہو جائے بس. ہیں ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں اور یہ سب پاسیبل ہے. تو لیکن آئی تھنک کہ ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے, جب لوگوں کو اس کی زیادہ اویئرنیس آئے گی, ان کو پتہ چلے گا, آئی تھنک بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں گے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ پھر اسے لگاتے رہنا ہے یا کب جی ختم بھی کر سکتے ہیں؟
0: جی آپ کو منیمم 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے تک تو آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو ٹیپر کرنا ہوتا ہے. ٹیپر یہ ہے کہ آپ 10 دن میں ایک لو डोज लगा ली महीने में तीन बार उसके बाद महीने में दो बार करते करते आप एक साल जब हो जाएगा ना फिर आप उसको स्टॉप कर देंगे ठीक है लेकिन तब जब आपका गोल वेट अचीव हो गया अब ये नहीं कि भाई मैं तीन महीने के लिए लूंगा उसके बाद मैं खुद ही कर लूंगा क्योंकि तीन महीने में तो मेडिसिन का जो है ना इफेक्ट टेम्परेरी होता है उसके बाद वेट का वापस आने का हाई चांस होता है
1: अच्छा ठीक ठीक
0: लोगों ने अपने पेरेंट्स को देनी शुरू कर दी है जिनकी ये मदर्स जो हैं वो डायबिटिक हैं इंसुलिन सुबह शाम लगा रही हैं अब उन्होंने वो 60 प्लस हैं 65 प्लस हैं 70 प्लस हैं वो वेट लॉस इंजेक्शंस यूज कर रही हैं और उनकी इंसुलिन छूट चुकी है अब और उनका वजन भी कम हो गया वो और हेल्दी हो गई
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी

0: इसमें डॉक्टर साहब यही जब बिल्कुल एक टारगेट होता है कि अच्छा इतने टाइम में हमने काम करना है तो उसकी वजह से कुछ और साइड इफेक्ट होते हैं बाकी पूरी बॉडी के जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पर
1: जी.
0: क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से वजन कम करना तो वैसे तो अनहेल्दी होता है तो आप क्या कहते हैं
1: इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बहुत तेजी से वजन कम करने के सबसे पहले तो ये कि विटामिन डेफिशिएंसीज क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन भी लें और हम खाएं भी ना ठीक है ताकि हमारा एक हफ्ते में अगर 2 किलो कम होना है तो हमारा 5 किलो एक हफ्ते में हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना विटामिंस की आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा आयरन जो जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है और उसकी वजह से भी डिजीनेस होती है क्योंकि ब्लड कम होना शुरू हो जाता है उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट विटामिंस है विटामिन डी मैग्नीशियम कैल्शियम B12 ये सारे विटामिंस हमारी बॉडी में ना एक खास रोल प्ले करते हैं कोई हमारी इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है कोई हमारी बॉडी की हेल्थ या एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है तो ये ना लेजी हो जाते हैं फिर वो ऐसे एक सीट पर बैठते हैं और वैसे थके हारे कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे आप ना विटामिन की दूसरा जो प्रॉब्लम आता है जितना फास्ट आप वेट लॉस करेंगे ना आपके पित्ते में पथरी बनने का चांस होता है ठीक है जिसके लिए बाद में आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे ना तो पित्ता जो है वो काम नहीं कर रहा होता तो उसमें जितना भी बाइल पड़ा होता है वो आस्ता आस्ता पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं तो ये और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूँगा कि विटामिन्स की कमी लोगों को व्हील चेयर तक ले गई है
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब जी ये है कि वो अनहेल्दी हम वेट जो है ना वो अपना कम कर रहे होते हैं और जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है और जो है ये जो काम हम कर रहे होते हैं इसमें बिल्कुल जब हिस्ट्री भी लेते हैं तो उसमें ये भी है कि जो गॉल स्टोन्स हैं वो किस तरह से बनते हैं तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी ये वेट लॉस की हिस्ट्री होती है
1: बिल्कुल ऐसे
0: और डाइटिंग कर रहे हैं अन मतलब कुछ कवर नहीं है
1: जी बिल्कुल
0: कंसल्टेशन नहीं है
1: तो बगैर नॉलेज के जब कोई भी आप काम करेंगे ना तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे और बाद में डॉक्टर बताएगा आपको कि इस वजह से हो गया तो हमेशा ये मोटापा भी ना इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कर लूंगा अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को एक दफा दिखा लेंगे ना तो काफी नॉलेज मिल जाएगा आपको और आप अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं
0: ठीक है तो उसमें आपने देखा जैसे हम यंग एज की बात करें टीनेजर्स हैं क्योंकि उन्हें तो ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है तो क्या वो आप जैसे बताते हैं आप के पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं
1: सच्ची बात बताऊं तो नहीं करते
0: अच्छा फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना
1: जी तो इसलिए जो है ना अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि आखिरी हल हम सर्जरी होता है फिर ज्यादातर हम सर्जरी ही करते हैं ठीक है अब सर्जरी में ना हम लोग जबरदस्ती वेट लॉस करवा देते हैं क्योंकि हम लोग आपके सिस्टम ही ऐसा बना देते हैं कि खाना खा ही नहीं सकते आप ठीक है वो आपका स्टमक छोटा कर देते हैं तो आप बर्गर मंगाएं कोई चिप्स मंगवाएं थोड़ा सा खाएं पेट फुल हो जाएगा और बाईपास में क्या होता है कि आप थोड़ा सा खा भी लें वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक है तो हमें और लेकिन ये हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जिनके मोटापे की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं
0: ठीक इसमें डॉक्टर साहब ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि क्यों आप जो वेट लॉस है दूसरे तरीकों से भी जैसे कि कर सकते हैं कोई एक्सरसाइज की और जो डाइट की या कुछ मगर ये फौरन इस तरह के जो मेजर्स हैं क्यों किए जाते हैं
1: जी.
0: जैसे आपने बात की जो यंग जनरेशन है उसमें जो ग्रोथ है कम हो जाती है ये ज़रा मैं पूछना चाहूँगी पेरेंट्स सुन रहे हैं या टीनेजर्स ये सब तो क्यों ऐसा आप करते हैं
1: जी हम क्यों इनको ऑफर करते हैं
0: जी ऑफर करते हैं
1: क्योंकि एक तो ये कि मैं
0: वैसे भी हो जाता है या हो सकता है हो जाता है तो नहीं हो सकता है कि हम डाइट करें हम एक्सरसाइज करें हम ये करें मगर ये जो शॉर्ट अपनाए जाते हैं वेस्ट तो वो क्यों
1: जी जब बेरियाट्रिक सर्जरी आई थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हमें क्वेश्चन करते थे और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे कहते थे क्यों आप लोग जब डाइट और एक्सरसाइज से हो रहा है काम तो मैंने कहा अगर डाइट और एक्सरसाइज से काम हो रहा था तो ओबेसिटी 70% पे क्यों चली गई तो हर 2 में से 1 बच्चा मोटा क्यों है ठीक है
0: हर साल बल्कि 10 years पे भी जो हो रहे हैं न्यू डेवलपमेंट्स ट्रीटमेंट के अलावा जो सारी चीजें हैं उसमें ये देखा जाता है कि फिर भी ओबेसिटी जो ज्यादा होती चली
1: नहीं आप ओबेसिटी मोटापा ना एक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी ना ये ईमान की तरह आपको ना पकड़ के रखना पड़ता है यानी आप थोड़े पतले हुए ना फिर आप मोटे हो जाएंगे फिर आप थोड़े पतले होंगे फिर आप मोटे अब मुझे जो 40 से 50 की उम्र में लोग मेरे पास आते हैं ना वो ये सब कर चुके हुए हैं उन्होंने अपना वजन कम किया वो बहुत पतले हो गए वापस मोटे हो गए, फिर कहते मैंने दोबारा भी किया, मैं फिर वापस आ गया। ये ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करना है, मैं इसलिए आपको कह रहा था। तो हम उसे, हम अब ये फील्ड बनी इसलिए कि हम उन लोगों को हेल्प कर सकें जो इसकी बीमारी के अंदर जो है ना वो बहुत गहरे फंस चुके हैं, क्योंकि जितनी देर मोटापा रहेगा ना, हार्ट अटैक का चांस रहेगा, किडनी का चांस डैमेज होने का चांस रहेगा, आपकी जो है लीवर, फैटी लीवर जो बहुत बड़ा मसला है जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करता है, वो उसका चांस रहेगा। तो ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए बहुत बेहतर है कि एक छोटी सी सर्जरी करा लो जाके और खत्म कर दो ये सब कुछ।
0: ठीक है, मगर डॉक्टर साहब खत्म तो नहीं हो जाता ना, उसमें भी तो आपको केयर करनी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि कुछ सालों के बाद वापस आते हैं और ये कि ओबेसिटी के साथ ही बार दफा उससे भी ज्यादा
1: 90% हम लोग एक पेशेंट को हेल्प कर देते हैं, लेकिन नथिंग इज 100%। जैसे मैंने कहा कोई मैजिक पिल नहीं है, हर चीज में 10-15% का एक मार्जिन रह जाता है। तो जब हम कोई भी वेट लॉस सर्जरी करते हैं, अब मैं आपको तो एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरी बहनें जो है ना सुन रही होंगी, तो स्पेनिश लाटे दिन की 3-3, 4-4 पीती हैं सर्जरी के बाद, ठीक है, अच्छा भला वेट लॉस हो रहा है, 10 किलो गिर गया एक महीने में, 20 किलो टोटल हो गया, अब जी फोन आता है कि वो भी मेरा वजन रुक गया, मैं डाइट पूछता हूँ तो मैं तो कुछ खाती नहीं, ठीक है, आप नहीं कुछ खाती, कुछ पीती होंगी, वो स्पेनिश लाटे पीती हैं जी, कितनी दिन की 3 पीती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाया जाता, तो वो स्पेनिश लाटे जो है ना उसमें 1000 कैलोरी है, ठीक है, और अब आपने 2-3 पी ली तो आपने तो समझे कि आपने दिन में 6 रोटियां खा ली, एक अच्छे भले आदमी का खाना खा लिया ना आपने, तो कहाँ से वजन कम होगा, क्योंकि सर्जरी में खाया नहीं जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिया जाता है।
0: अच्छा,
1: आप पी सकते हैं,
0: ठीक है,
1: और वो स्लोली स्लोली सिप करते करते, इवन एक भी आपने स्पेनिश लाटे पी ना, आपका वजन अफेक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर फैट होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना उसकी।
0: ठीक ठीक,
1: तो मेरे पास बहुत मिसाल है ऐसे दूसरी नेशनलिटीज की भी,
0: वो सिर्फ कैपुचिनो ले ली कुछ इस तरह से और कुछ खाया नहीं
1: जी, वो उसमें सिरप्स होते हैं, कैरेमल सिरप्स होते हैं, ये सारे सिरप्स हाई फ्रुक्टोज हाई कैलोरी होते हैं, वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन असल में कैलोरीज तो ले ली ना आपने, एनर्जी ले ली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 90% उनकी हेल्प कर देते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अपने आइडियल वेट पे चले जाते हैं, विद इन 3-4 months 60-65 किलो पे चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर वो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आदत होती है ना पहले इतना खाने की, इतने अपनी क्रेविंग्स होती हैं, आपके टेस्ट बड्स वेट कर रहे होते हैं, मैंने ये नहीं खाया बड़े अरसे से, तो इवेंचुअली आपकी आदतें वापस आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी शुगर के लोग इंजेक्शन छोड़ देते हैं, इंसुलिन छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट जाती हैं, आपकी जो है बहुत सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा लोगों की सर्जरी तो सिर्फ हम लोग बैक पेन और जॉइंट्स की वजह से करते हैं, क्योंकि आप 1 किलो वजन कम करें ना तो आपके जॉइंट से 4 किलो वजन का स्ट्रेस कम होता
0: है।
1: इसका मतलब आपने 4 किलो अपने का प्रेशर हटा दिया अपने जॉइंट्स के ऊपर से।
0: ठीक,
1: तो इस तरह जब वजन कम होता है ना तो वो चलना फिरना वॉक करनी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आप डाइट की बात करते हैं, अभी आप यहाँ के सिर्फ पी सकते हैं खा नहीं सकते, तो उसमें आप जो स्केड्यूल बताते हैं पेशेंट्स को, वो क्या किस तरह से आप करते हैं कि वो क्या लें, किस डाइट कौन सी डाइट पर जाएं, और इसके अलावा फॉलो अप कितना जरूरी है
1: जी? तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग जब भी एक पेशेंट को अपने सेटअप में पहली बार देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा डाइटिशियन उनके साथ जो है ना जुड़ जाता है, इवन वो इंजेक्शन के लिए हो या सर्जरी के लिए हो या बैलून हो, कोई भी चीज़ है, क्योंकि डाइटिशियन बहुत ज़रूरी है, उसको डाइट इज ऑलवेज 90%। अगर आपने डाइट को नहीं रोका और आप हर तरीके को अपना लेंगे ना, फिर आप रुक जाएंगे। तो हम लोगों के जो सर्जरी और बैलून या फिर इंजेक्शन का प्रोटोकॉल ये है कि हम फर्स्ट 2 वीक्स या 2-3 वीक्स में उनको लिक्विड डाइट पर रखते हैं। लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप योगर्ट है, सूप्स हैं, जूसेस हैं, तो जितनी जो आपकी आती है ना ड्रिंकेबल चीज़ें हैं, लबन है, तो जेली बना के खा सकते हैं आप, तो ना उसका हमारा प्रोटोकॉल है, बुक्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद जब 2 वीक्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो हम उनको मैश डाइट एडवाइस करते हैं, जैसे कि आप जो भी खाएंगे ना आप मैश खाएंगे, जैसे या कीमे की फॉर्म में खाएंगे, मैश पोटैटो हो गए, चिकन खाया तो उसको मैश कर दो, उसको बॉयल करके मैश कर दो, पका के मैश कर दो, फिश को मैश कर दो, क्योंकि वो स्वेलोइंग में आसानी होती है। उसके साथ आप सूप्स पी सकते हैं और फिर जब 1 से 1.5 महीना या 6 वीक्स गुजर जाते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि आप अब नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट रखनी है आपने, और उसके लिए भी हमारी जो है डाइट प्लान्स बने हुए हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, वो जो डाइट प्लान है थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स के लिए, अपने लिए भी क्या है, जैसे हाई प्रोटीन है तो जैसे अपनी डाइट, जैसे एशियन हमारा जो वे ऑफ ये खाने का जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है।
1: जी जी बिल्कुल, देखिए हमारा ना सबसे, मुझे तो अपना जो वे ऑफ ईटिंग है ना उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये लगता है कि हम लोग ज्यादातर ना रोटी खाने वाले लोग हैं
0: जी,
1: ठीक है, और हमारे रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं और जो भी सालन जो तेल में बनते हैं वो भी हाई कैलोरी है, यानी एक टाइम पे रोटी सालन खा लिया ना तो पूरे दिन का एक किस्म का आपने ना ऑलरेडी एक टाइम पे खा लिया। तो इसलिए जब भी डाइटिंग करते हैं ना, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, क्योंकि बेसिकली रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, डिपेंड करता है, इंडियंस की रोटी थोड़ी छोटी होती है, हमारी जरा बड़ी होती है ना। तो डाइटिंग में या प्लान्स में यही होता है कि हम सब कुछ रखते हैं उसके अंदर लेकिन हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या फिर वो ऐसी चीज़ को मिस करके बाद में उसकी तरफ दोबारा जाएं
0: जी।
1: तो अगर हम उनको रोटी अलाउ भी करते हैं ना तो हम कहते हैं छोटी एक ही रोटी खाएं, ठीक है, और राइस जो है वो उसके ग्राम्स बताते हैं 100-150 इतने का आप ले लें, और जो कुकिंग स्टाइल है वो हम वेरी लो ऑयल होना चाहिए और उसमें वर्जिन ऑयल
0: जी जी जी जी जी भून के,
1: आप सब खाएं, आप चिकन खाएं, मटन खाएं, आप फिश खाएं, लेकिन सिर्फ आपने ये चीजें कम करनी है कि उसके साथ आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने उसकी ऑयल कम रखनी है, उसके अंदर जो है चपाती अगर आप ले रहे हैं तो वो एक लें, छोटी लें, और पानी ज्यादा पिएं। तो इस तरह की चीजें ना हमारी हर बंदे के स्टाइल के लिहाज से हम लोग टेलर करते हैं उसको,
0: ठीक है।
1: फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें, सैलड्स खाने से पहले सैलड, अरबी रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा आप जाके ऑर्डर करते हैं ना तो पहले सैलड आ जाता है, वो सैलड खाते हैं उसके बाद भूख ही नहीं होती आगे कुछ खाने की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये
0: मेन डिश है,
1: तो मेन डिश है अभी भाई, तो घर में भी ना मैंने यही किया हुआ है, मैं पहले सैलड का बोल रखता हूँ, सैलड खाता हूँ, उसके बाद जो भी खाना है वो थोड़ा सा खा के मैं उठ जाता हूँ।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से ही होना चाहिए, मगर ये है कि फिर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कि क्या
1: है ना, मेहनत का काम है थोड़ा सा
0: जी। ठीक, ये डॉक्टर साहब इसमें बैलूनिंग की हम बात करेंगे कि क्या उसमें क्या करते हैं
1: जी।
0: जी
1: गैस्ट्रिक बलून जो है ना,
0: क्योंकि ज्यादातर जो है इंजेक्शन पे बहुत ही ज्यादा जोर है, क्योंकि हर एक रीचेबल है ना, तो को पहुंच सकते हैं वहां तक,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए। मगर ये कि बलूनिंग, अब जैसे स्पेशलाइज आपकी फील्ड आ गई कि सर्जन जो हैं उनका काम है, एक तो ये आपने कहा, लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं कि इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि जितना वजन हम एक साल में या सिक्स मंथ्स में हम कम करते हैं या कर सकते हैं, मगर इस तरह के जो तरीके हैं, सर्जरी है या इंजेक्शन हैं उसमें कम, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ जो इश्यूज हैं, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसमें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम हो जाती हैं उसमें जी। डॉक्टर साहब बैलूनिंग का हमें बताइए कि वो क्या करते हैं।
1: डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक बैलून्स होते हैं और इनको गैस्ट्रिक बैलून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टमक में छोड़ दिए जाते हैं, दो तीन तरीके होते हैं, या तो एंडोस्कोपी करके छोड़ दिया जाता है स्टमक में
0: जी।
1: या और उसके में जो है एक एनेस्थीजिया देना पड़ता है, और आजकल नए बैलून्स आए हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है और वो कैप्सूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो कैप्सूल आप स्वेलो करते हैं ऑफिस में डॉक्टर के

0: की वायर होती है या रस्सी होती है, हम उसको खींचते हैं तो वो कैप्सूल खुल जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर कोई 500 से 600 ml जो है ना पानी या कोई लिक्विड होता है हमारे पास, हर कंपनी हमें एक सेपरेट लिक्विड देती है।
1: अच्छा।
0: वो उसके अंदर फिल करते हैं, वो बैलून भर जाता है। अब ये बैलून हम आपके अंदर छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। अब क्योंकि आपके आधे स्टमक में ये बैलून पड़ा हुआ है तो उसका मतलब आपके बाकी स्टमक जो है वो आधा रह गया। मतलब पहले आप अगर एक पूरी प्लेट खाते थे तो अब आप आधी खाएंगे, ठीक है, पानी भी पियेंगे ना तो वो फुल ही आपको फुल की फीलिंग आएगी। और इसका ये बेनिफिट है कि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना, कोई नोजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, मसल लॉस नहीं हो रहा, आप अपने काम पे रोज जा सकते हैं, आपको कोई फटीग नहीं हो रही, डिजीनेस नहीं हो रही, क्योंकि आप खाएंगे सब कुछ बस थोड़ा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन वेट लॉस की जहां बात है ना, उसमें इसका वेट लॉस इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंजेक्शंस, क्योंकि इसमें जो है बैलून में फिर भी लोग कुछ ना कुछ स्क्वीज कर ही लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत वेट लॉस हुआ है और हर स्टोरी डिफरेंट है।
1: तो इसमें जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी है तो वो हमारे स्टमक में है तो पेशेंट को फीलिंग नहीं आती या कुछ, क्या मतलब?
0: पहले जब ये बैलून स्टार्ट हुए थे ना तो उसमें आते थे बैलून थोड़े हैवी होते थे, वो उन पेशेंट्स को फीलिंग आती थी कि कुछ पड़ा हुआ स्टमक में। लेकिन अब चेंज हो गया, अब नए जेल फॉर्म के बैलून आ गए हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, बल्कि लोग भूल जाते हैं कि बैलून डाला हुआ, जब तक उनको खाना खा के फुल की फीलिंग नहीं आती। और इसी तरह ना 4 to 5 months में ये जेल डिसॉल्व हो जाती है, वो पानी अंदर ही स्टमक के अंदर खुल जाता है और वो जो है ना जिस्म से निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें इवेंचुअली जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हमने आज तक देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई थी भी तो बहुत बहुत रेयर, कोई माइनर होगी। और दूसरा ये कि पहले जो है वो एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता था, अब हम उसे वो खुद ही निकल जाता है।
1: अच्छा जी, वो कैसे?
0: वो डिसॉल्व हो जाता है ना,
1: डिसॉल्व
0: हो जाता है और स्टूल के जरिए निकल जाता है।
1: कि कितने टाइम में? कितना?
0: 4 to 5 months में।
1: 4 to 5 months
0: और इतनी देर में लोगों का 30-35 kg कम हो जाता है।
1: तो आप किन लोगों को ये रिकमेंड करते हैं?
0: हम लोग देखें, ओबेसिटी में आपको पता है कि क्लास ऑफ ओबेसिटी होती है, ओवरवेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बीएमआई के मुताबिक। ठीक है जी, 29 प्लस हैं तो आपकी क्लास 1 ओबीज हो गए, बीएमआई 29 प्लस हैं तो इसमें हम लोग इन्हीं लोगों को ऑफर करते हैं जो थोड़े लो बीएमआई है लेकिन ओबीज हैं। ठीक है, मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी वो है जिसमें आप बहुत ज्यादा यानी बीएमआई 35-36 प्लस है, यानी आपका वेट 140-150 है, तो उसमें ना हमें पता है वेट लॉस तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसको कम से कम 60-70 किलो कम करना है ना, तो उसके लिए हम बैलून नहीं डालते। जिसने 10-20-25 किलो कम करना है हम उसको बैलून डाल देते हैं। दूसरा ये जो लोग कहते हैं कि उनको थायराइड का इशू है, एक तो वो इंजेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, और वो कहते हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, हमें डर लगता है, या हमें नहीं चाहिए हमें सर्जरी नहीं करानी, हमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन चाहिए, तो उन लोगों के लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन आ जाती है।
1: ठीक ठीक। और वैसे तो सुनने में जैसे आप बता भी रहे हैं तो लग भी ऐसे रहा है कि शायद कुछ कम कॉम्प्लिकेशंस हैं।
0: जी जी,
1: सर्जरी की बात करें हम तो सर्जरी तो एक खुद जो है वो कट होगा, ये होगा, इस तरह से है।
0: सच्ची बात बताऊं तो सर्जरी में भी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है वैसे, जो है हम लोग एक महीने में कम से कम 80-90 सर्जरीज करते हैं। ठीक है, 80-90 सर्जरीज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं हमारे पास एक या दो पेशेंट ही वापस आता होगा पर मंथ, उसके अलावा हम अब इसका मतलब यह है कि 1% 200 में से एक आदमी को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी।
1: ठीक ठीक, इस तरह से। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं?
0: देखें, कॉम्प्लिकेशन जो में आती है माइनर और मेजर। माइनर यही है कि वो नौजिया वोमिटिंग थोड़ी ज्यादा देर चल जाती है उनको, तो वो वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम उनको जो है वाइटामिंस एडमिट करके देते हैं। कभी कभी उसमें चांस होता है कि आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि वो स्टमक टाइट हो जाता है, ब्लॉकेज हो सकती है, वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें हम फिर उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं। रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कुछ लोगों का एसिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद, क्योंकि स्टमक छोटा हो गया लेकिन एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था उनके अंदर, तो उसकी भी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है। और क्यों बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन जब उनको होती है तो वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है उसमें ना, उसमें डीवीटीज और वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है, तो वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज्यादा पिए। इस तरह की माइनर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन एक ही है, वो है लीक, और वो होता है फर्स्ट 1 month ऑफ सर्जरी में, और वो भी लेस देन 1% लोगों में होता है, इसका जो स्टैटिस्टिक्स है।
1: ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: ये लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जो किस तरह से जो ओबेसिटी है उसके साथ साथ जो हम ज़्यादातर जो डिजीज़ की बात कर रहे हैं या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें कौन सी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये तमाम मुश्किलात अपने आसपास जो हैं वो ले आते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने सर्जरी की बात की तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कितनी टाइप्स की होती हैं सर्जरी। बाज़ूकार आम लेमैन की ज़ुबान में कहते हैं, अच्छा ये जो स्टमक है उसे छोटा कर दिया, उसे टाई कर दिया है या उसे कट कर दिया है, या कुछ आम पब्लिक को ये पता है, तो आप हमें बताइए कि कितनी टाइप्स की होती है, क्या क्या आप सर्जरी में करते हैं और सबसे बेहतर कौन सी हो सकती है?
1: जी देखें, सबसे बेहतर सर्जरी वही है जिसके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है जी, और वेट लॉस सबसे ज़्यादा
0: जी, ठीक है।
1: तो सर्जरी में ना हमारे पास स्टार्ट यहाँ से होता है कि आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी हो रही हैं। एंडोस्कोपिक क्या होता है कि वो आपके मुंह से कैमरा डालते हैं, ठीक है, और अंदर जाके ना स्टमक को स्टिच करना शुरू कर देते हैं। वो अंदर से जब स्टिचिंग शुरू करते हैं तो स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, यानी एक एंडोस्कोपी के जरिए। आप कोई पेट में सर्जरी नहीं की, कोई कट नहीं लगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ये ना अपना स्टमक छोटा करवाया हुआ है, सिर्फ आपको पता होगा या आपके डॉक्टर को पता होगा,
0: ठीक है।
1: तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपने स्टमक को छोटा कर दिया सर्जरी के जरिए, लेकिन इसमें ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती, लेकिन इनिशियली आपका पहले एक साल डेढ़ साल में आपका वजन सारा कम हो जाता है और इसको आराम से आप ये स्टिचिंग निकाल सकते हैं एंडोस्कोपी करके, वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी है, लेकिन इसका थोड़ा सा फेलियर रेट है क्योंकि कभी कभी स्टिचेस लूज हो जाते हैं तो स्टमक वापस खुल जाएगा, तो वो वापस बंदा खाना शुरू हो जाता है, तो वो कोई पता नहीं एक महीने बाद हो जाए या वो साल बाद हो। तो ये थोड़ा सा इस पर ना अभी काम हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में ये कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,
1: बाकी आ जाती हैं सर्जिकल चीज़ें, तो सर्जिकल में हमारे पास स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या अरबी में यहाँ पे तकमीम गस्मेदा के नाम से जानी जाती है, और उर्दू में हम स्लीव ही कहते हैं, गैस्ट्रिक स्लीव ही कहते हैं इसको। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीजिया दे के सुला देते हैं
0: जी।
1: पहले हमने उसकी सारी प्रिपरेशन की होती है, यानी उसकी चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये सब हमें पता होता है। तो एंडोस्को तो हम उसके अंदर ना स्टमक में एक ट्यूब डालते हैं और वो ट्यूब के अंदर एक बैलून होता है, ठीक है, वो 50 ml to 100 ml उसकी कैपेसिटी होती है। उस ट्यूब के साथ साथ जो है ना हम जो स्टमक का बड़ा सारा पेट वाला पार्ट है ना, जो ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं इसको, वो हम निकाल देते हैं। वो रफली 75 to 80% होता है स्टमक का, ठीक है, ये वो पार्ट होता है जहाँ से हंगर हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमें भूख लगाते हैं गैस्ट्रिन के नाम से, और इसमें ये वो भी पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर खाना जाके पड़ा होता है। तो जब ये पार्ट निकाल देते हैं सर्जरी 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, ठीक है,
0: है।
1: उसके बाद पेशेंट जो है वो ज्यादा खा नहीं सकता, ठीक है, स्टमक का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी उसने एक नवाला लिया, दो नवाले लिए तो बस इतना ही है, उसको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, जब ये नीचे जाएगा फिर वो अगला खाना खाएगा। तो एक तो ये होगी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, इसका वेट लॉस सबसे ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है, और ये मोस्ट कॉमनली पूरी दुनिया में किया गया प्रोसीजर है। हमारे अपने अगर 100 केस करते हैं तो उसमें से 60-70 स्लीव्स ही होती हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: बाद में आते हैं हमारे पास बाईपासेस। बाईपासेस डिफरेंट टाइप के हैं, हमारे पास मिनी बाईपास है, रूएनवाई बाईपास है, सबके लिए डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। और एक नया बाईपास है जो सैडी कहते हैं इसको, जो कि थोड़ा सा नीचे के साइड हम छोटी आंत को थोड़ा सा एंड में कनेक्ट कर देते हैं। मिनी बाईपास ये होता है कि आप 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर की आंत को बाईपास करके स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब आप खाना खाएंगे ना तो खाना वो पहले 1.5 से 2 मीटर में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट 3 मीटर में जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ कम होती है एब्जॉर्प्शन। तो जो फर्स्ट 2 मीटर में एब्जॉर्प्शन होती है ना वो स्किप हो जाती है। तो उस पर ये बेनिफिट होता है लोगों को कि ये लॉन्ग टर्म चलता है, सारी जिंदगी के लिए चलता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है।
0: ठीक है।
1: और शुगर के लिए ये बेस्ट है, डायबिटीज के लिए नंबर 1 प्रोसीजर है।
0: जी, इसमें डॉक्टर साहब जैसे एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिंस मिनरल्स वो भी तो इफेक्ट होते होंगे ना
1: जी,
0: कि एब्जॉर्प्शन जो है वहां पर होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विटामिंस हैं जो स्टमक में से ही एब्जॉर्प्शन उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो हम उनको लोगों को जो डेफिशिएंसी आती है ना वो विटामिन B12 और आयरन की है, क्योंकि ये जो है स्टमक से इनके हार्मोन्स बनते हैं जो इनको अब्सॉर्ब करते हैं। तो हम लोग हर 3 से 6 महीने बाद इनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अगर लो है तो हम उनको सप्लीमेंट कर देते हैं IV, लेकिन वैसे इनको सारी जिंदगी से ओरल सप्लीमेंट लेना पड़ता है। ओरल सप्लीमेंट एक टैबलेट जिसमें आयरन भी हो, उसमें मैग्नीशियम, ये सारे कैल्शियम वगैरह सब वो उनको सारी जिंदगी लेने पड़ेंगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है।
0: ठीक है,
1: तो बेशक नॉर्मल है विटामिंस, नहीं नॉर्मल, बॉडी अडॉप्ट कर जाती है।
0: डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि है कि खाना नहीं खा सकते तो क्या कोई एतराज होता है उन्हें पेशेंट्स को या कुछ, कि क्यों हमारी लाइफस्टाइल या लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है?
1: कुछ पेशेंट्स होते हैं वो रिग्रेट करते हैं
0: जी,
1: वो कहते हैं कि खाया नहीं जा रहा, दिल करता है ये फलानी चीज खाने का, नहीं खा सकते, तो रिग्रेट करते हैं, लेकिन ये रिग्रेट 1 महीना चलता है।
0: अच्छा।
1: जब आप 25 किलो वजन कम हो जाता है ना जब, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मुझे आके कहा हो कि 3-4 महीने बाद कि ये मैंने गलत करवा लिया, मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि उनका कम अज कम इतना वेट कम हो जाता है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो बहुत खुश होते हैं अपनी अपने आप से और उनकी फैमिली। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम इफेक्ट हो रहा होता है जॉइंट पेन्स की वजह से, उनका काम बेहतर हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं वो हर तरह के फ़ायदे से जो है ना वो नहीं कहते कि हमारी, हाँ वो नहीं खा सकते लेकिन टेस्ट कर सकते।
0: अच्छा,
1: हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी स्लीव की थी आज से 5 साल पहले, आज तक वो कहते हैं कि मैं पूरा बर्गर नहीं खा सकता, मैं 2-3 बाइट्स लेता हूँ या हाफ तक मैं पहुंच गया हूँ, मैं पूरा नहीं खा सकता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि, अब वो इतना स्लिम है, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने क्यों करा ली, क्योंकि जरूरी नहीं है आप इतना ज्यादा खाएं, आप टेस्ट करें।
0: और बिल्कुल बात है कि आप आईज आंखों से तो देख के शायद आपको लगे कि, मगर ये कि जैसे प्रैक्टिकली खाते हैं तो खा नहीं सकते ना
1: जी, बिल्कुल,
0: तो ये कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं उतने खाने पर ही,
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: और यही जो ट्रीटमेंट है उसका जो बिल्कुल अहम पॉइंट है वो यही है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हमने बात की कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, अब हमें समझ आई
1: कि ये है क्या,
0: जैसे कि आपने हमें बताया कि बिल्कुल ये जो इतनी सारी चीज़ें डिजीजेस हैं हम बनाते अपने अंदर डालते चले जाते हैं, मगर जब हेल्थ की तरफ आते हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को हेल्दी रखा जा सके।
1: जी डेफिनेटली, क्योंकि ये सर्जरीज, बैलून्स, इंजेक्शंस, ये सब भी एक कॉस्ट पे आ रही है ना
0: जी,
1: तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, इनकी काफी प्राइस देनी पड़ जाती है इनको, इनका जो बेनिफिट लेने के लिए।
0: ठीक। और लिसनर्स, आपने भी सुना कि मैं भी जब प्रोग्राम शुरू कर रही थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी बात के कैसे कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि बीमारियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा भी होगा, ये भी होगा, मगर ये कि अब पूरा सिनेरियो जो है अब समझ में आया जी। डॉक्टर, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: जी, मेरा यही मैसेज है कि जब भी आपको कोई जहन में शक आए या कोई आपको लगे कि आपको कोई फलाना मसला शुरू हो रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से रजू करें, उसके ऊपर बैठे नहीं, उसको इंतज़ार मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है कि वो सालों साल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं जब तक कि वो लेट हो जाता है। आप के आप अपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करें और डॉक्टर्स को दिखाएं, सप्लीमेंट्स लें, मेडिसिंस लें, और जितना जल्दी डॉक्टर से आप रजू करेंगे उतना कम आपको जो है उसके ऊपर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी।
0: ठीक। और जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रखें ये भी आप बताएं।
1: लाइफस्टाइल सब समझदार हैं माशाल्लाह से, सबको पता है कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम क्यों इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हैं। मैं यही एडवाइस करूंगा कि 10,000 स्टेप्स का गोल रखें, आप बैठे टीवी देख रहे हैं, आप उठें, आप हरकत करें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 10,000 स्टेप्स आपने किए हों। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसमें एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी, इसमें आप किसी से मिलेंगे, आपकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, आप बाहर निकलेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें
0: इंशाल्लाह। और सामिल मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर फखर शाहिद जो कि बेरेटिक सर्जन है और फौजिया शफी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये कि किस तरह से हमने एक्टिव रहना है। अल्लाह हाफिज़।

0: to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कि जेन जी जो हैं वो किस तरह से डिफरेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं. वेल, हर जनरेशन क्या पैसे को लेकर एक अलग परसेप्शन है. हर जनरेशन के पैसे को देखने का अपना एक अलग तरीका भी है. आज के दौर में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली दो जनरेशंस, मिलेनियल एंड जेन जी. मिलेनियल्स वो लोग हैं जो लगभग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, जबकि जेन जी वो जनरेशन है जो उनके बाद आई. देखिए, दोनों जनरेशंस इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग. मिलेनियल्स में अपनी जवानी, उस दौर में गुजरे ट्रेडिशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, ये सारी चीज़ें उन्हें डोमिनेट आज भी करती हैं. और इसीलिए उनसे बहुत से लोग जितने भी आपने देखोगे वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, फिक्स सेविंग प्लान्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं. उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर फोकस करती है. वहीं देखा जाए दूसरी तरफ जेन जी को, तो ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी जनरेशन है. उन्होंने स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बचपन से यूज़ किया है, और शायद इसी वजह से उनका इन्वेस्टिंग का स्टाइल भी ज़्यादा डिजिटल और फास्ट पेस्ड होता है. देखिए, जेन जी के लिए स्मार्टफोन्स, ऐप्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ बड़ा नॉर्मल है. वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं. जेन जी की सबसे खास पहचान ये है कि वो इन्वेस्टिंग को पहले की जनरेशन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते. आजकल कई इन्वेस्टमेंट ऐप्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस को इतना सिंपल बना चुकी हैं कि यंग इन्वेस्टर्स कुछ ही मिनटों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. इस तरह की एक्सेसिबिलिटी ने जेन जी को फाइनेंशियल मार्केट के करीब ला दिया है. एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस का. मिलेनियल्स अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बैंक या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस पर ही डिपेंड करते हैं. वहीं जेन जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल नॉलेज इस तरह से हासिल करते हैं. देखिए, जेन जी इन्वेस्टर्स अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं. वो सिर्फ रिटायरमेंट की नहीं बल्कि फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल गोल्स के लिए भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं. देखिए, इस जनरेशन के लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी का सोर्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जरिया भी है. लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने की डिजायर कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है. तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जेन जी और मिलेनियल्स दोनों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट है. मिलेनियल्स ट्रेडिशनल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मेथड्स को प्रेफर करती हैं, जबकि जेन जी टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देती हैं. वेल, इसके बावजूद एक चीज जो दोनों जनरेशंस में कॉमन है वो बताऊं क्या है? वो है फाइनेंशियल सक्सेस का राज. और ये राज नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छुपा है. वेल, आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन और टूल्स पहले से ज्यादा हैं. अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करें, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखें, तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं. आखिर में यही कहूंगी कि इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस और कॉन्स्टेंट हैबिट से जरूर बनती है. वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है आपके? बढ़िया, आई होप यू आर गुड। मैं आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ बहुत तगड़ी, क्योंकि इस बार लिस्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिखाएंगी भी, नॉट जस्ट यू नो किलिंग योर बोर्डम, तो आपके काम आएंगी। एंड साथ में खबर आई है मार्केट में फैल रही है, इनकेस आपको नहीं पता तो मैं अपडेट कर दूंगा। जिन्हें पता है, वेरी गुड, गुड जॉब डन, ये लीजिए ताली और ट्रॉफी मैं बनवा रहा हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। शुरू करें। ऑलराइट, सो ऑन द लिस्ट नंबर वन, सबसे पहले बताना चाहूंगा एक वेबसाइट जिसका नाम है warnontv.net। लेट मी स्पेल इट आउट। वॉर्न यानी पहनने वाला, WORN, वॉर्न, फिर ऑन, ON, फिर टीवी, warnontv.net। अब क्या होता है, आप कोई सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, और वो सीरीज देखते देखते आपको लगा यार ये कपड़े इसने बढ़िया पहने, यार ये कहाँ मिलेंगी, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसमें अगर वो शो आपको मिल जाता है तो आप उस शो के एपिसोड नंबर को अगर डालेंगे तो ये दिखा देगा कि हाँ ये वाले कपड़े पसंद है। आप क्लिक करेंगे, हाँ जी ये वाले पसंद है, फिर वो आपको बताएगा ये कपड़ा कहाँ मिल सकता है या ये सिमिलैरिटी, ऐसे ऐसे कपड़े आप कहाँ से ले सकते हैं। एंड ये नहीं कहेगा आपसे कि ये लो जी 3000 रियाल खर्च करने पड़ेंगे, नहीं, आपको बजट फ्रेंडली भी आइडिया दे देगा कि भाई ये वाला पसंद आया ना, ऐसा यहाँ मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप ट्राई करके देखिए। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये किसी ने सोचा होगा भाई, उसको मेरा सलूट है। ठीक है, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अगली वेबसाइट का नाम है arcadespace.org, arcade, arcade.org, arcadespace.org। अब आप बैठे हैं, मान लीजिए आपकी शिफ्ट पूरी हो गई, इमेजिन करने में क्या जा रहा, आप बैठे हुए हैं लैपटॉप आपके सामने और आप बैठे हुए क्या करूं यार, बहुत बोर हो रहा हूं मैं, तो आप arcadespace.org पे जाएंगे। उसमें आपको सारे कंसोल के जो गेम्स हैं, पुराने वाले रेट्रो गेम जिनको खेल के भाई कती मजा आ जाते थे, वो सारे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्लेस्टेशन 1 के हों, चाहे वो निंटेंडो के हों, जितने भी रेट्रो गेम्स हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे। एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और ये आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हैं, कोई डाउनलोड साउनलोड की जरूरत ही नहीं भाई, सीधा सामने शुरू किया और खेलना शुरू। मुझे तो बहुत मजा आया, आप देख लो, आपको आई एम प्रीटी श्योर अच्छे लगेंगे, बिकॉज है तो यार ये भी काम की चीज, ऐसा नहीं कह सकते ये काम का नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक और वेबसाइट, चलो लगे हाथों बता देता हूँ जब आप आ ही गए हैं। तो अगली वेबसाइट का नाम है muted.io, muted.io। इस वेबसाइट पे जाके, पता नहीं इसका नाम म्यूटेड क्यों है, लेकिन आप पूरा का पूरा म्यूजिक सीख सकते हैं, नोट्स कैसे होते हैं पियानो पे, गिटार पे, वायलिन पे, सब कुछ आपको गहरी नॉलेज मिलेगी म्यूजिक की। नॉट जस्ट दैट, आप अपने लिए खुद बीट्स भी बना सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये इतना बढ़िया टूल है ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप यूज करेंगे आपको मजा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं मैं। अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज दिस वीक। गूगल पिक्सल की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन गूगल पिक्सल की एक और खबर आई है जिसको सुनकर मैं ज्यादा शॉक नहीं हूं, वो है कि गूगल पिक्सल टैग बहुत जल्दी आ रहा था। आ चुका है भाई साहब, टैग आ चुका है गूगल पिक्सल का, जिन्हें नहीं पता, ये ब्लूटूथ चैनल को यूज करता है एंड ये गूगल के हब को यूज करता है, एक पूरा इकोसिस्टम है, ये चाबी, वॉलेट, लगेज, हर जगह आप इसको इसके साथ काम कर सकते हैं। जब एप्पल ने टैग्स लॉन्च किए थे तब ये आइडिया बहुत ही अजीब लगा था लोगों को, इनिशियली लोगों ने कहा ये क्या है, इसका क्या काम है, बट देन वी अंडरस्टूड के नहीं भाई जरूरत है इस चीज की। प्राइसेस में वेरी, एक महंगा कोई सस्ता हो सकता है, बीच में बहुत सारे और भी कंपनीज ने ट्राई किए टैग्स बनाने के, बट गूगल भी इस मार्केट में उतरेगा ये मैंने थोड़ा सा भांप लिया था, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट इट, बट इट इज फाइनली हियर। तो अगर आप एप्पल के टैग को यूज कर करके फैंसी दिख चुके हैं कि मेरा हो गया भाई, तो आप गूगल पिक्सल का टैग ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। इसमें साउंड भी है, मतलब इसमें साउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चाबी, वॉलेट और लगेज की सेफ्टी के लिए। ओके, ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अपडेट, मिलते हैं अगली बार दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
3: गेम चेंजर सीजन 2. कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: Ishq wo bala hai.

0: ये बहुत ही खतरनाक और असरदार तरीका बन चुका है आजकल स्कैमर्स के लिए। इस स्कैम में हैकर्स और फ्रॉडस्टर्स बिना किसी डर के डायरेक्ट आपके फिनांस डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं और कई लोग बच जाते हैं जिनको इस तरह के फ्रॉड के बारे में पता हो। दोस्तों, फेक इनवॉइस फ्रॉड तब होता है जब स्कैमर्स आपकी कंपनी को उन प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स या सर्विसेज के बिल्स भेजते हैं जो आपके बिजनेस ने कभी ऑर्डर किए ही नहीं। इन फ्रॉड बिल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये देखने में 100% असली लगते हैं। स्कैमर्स उन्हीं वेंडर्स या सप्लायर्स के नाम का डुप्लीकेट बिल बनाते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि ऑफिस सप्लाई स्टोर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, यूटिलिटी कंपनीज या फिर आपके डोमेन रजिस्ट्रार्स और वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपकी कंपनी की वेबसाइट चलाती हैं, वहां पर भी। स्कैमर्स अक्सर ईमेल्स में बहुत ही डरावनी और अर्जेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ईमेल में लिखा होगा अर्जेंट नोटिस, आपका वेब होस्टिंग डोमेन एक्सपायर हो चुका है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में फी पे नहीं किया तो आपकी कंपनी की वेबसाइट और कॉर्पोरेट ईमेल्स को हमेशा के लिए बंद यानी कि शट डाउन कर दिया जाएगा। इस अर्जेंट नोटिस पे आप कैसे बिहेव करेंगे? आपको लगेगा फी पेमेंट करना बहुत जरूरी है, फी देना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ आगे का एक्शन लेंगे, लेकिन तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। बड़े या बिजी बिजनेसेस में जहां अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स पर काफी वर्कलोड होता है, वहां एम्प्लॉइज हर छोटे बिल को गहराई से चेक नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अमाउंट छोटा है और अगर वेबसाइट बंद हो गई तो बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी जल्दबाजी और डर का फायदा उठाकर अकाउंट्स के लोग बिना इन्वेंटरी या मैनेजर से कंफर्म किए बिना बिल पे कर देते हैं और कंपनी का पैसा सीधे स्कैमर्स के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचा कैसे जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, फेक इनवॉइस फ्रॉड से बचने के सॉलिड सॉल्यूशन बिल्कुल हाजिर है। क्लियर इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, जैसे कि कुछ कल भी हमने बात करी थी पीओ सिस्टम के बारे में, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए। कभी भी इनवॉइस यानी कि बिल का पेमेंट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक परचेज ऑर्डर होना जरूरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। गुड्स रिसीट नोट और मैनेजर का साइन, ये साथ में मैच किया जाना ही चाहिए। अगर कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं मिलती तो उस बिल को तुरंत रिजेक्ट कर दे। उसके अलावा सेंडर का ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, जब भी कोई अर्जेंट बिल आए तो हमेशा सेंडर के ईमेल आईडी को गौर से चेक किया जाए। स्कैमर्स असली कंपनी जैसे दिखने वाले फेक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ईमेल एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती दिखे तो समझ लीजिए ये एक फ्रॉड है। उसके अलावा डायरेक्ट वेंडर कंफर्मेशन, अगर आपको किसी ट्रस्टेड सप्लायर के नाम पर कोई सस्पिशियस या बहुत अर्जेंट बिल मिलता है तो ईमेल पर रिप्लाई करने के बजाय उनके पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उनका रियल फोन नंबर निकालें। उन्हें डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कोई बिल भेजा है या नहीं। उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, कंपनी में हर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने या बैंक ट्रांसफर अप्रूव करने के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स्ड टीम या सीनियर अकाउंटेंट को ही इसका एक्सेस दीजिए ताकि हर ट्रांजैक्शन पर डबल चेक लग सके। उसके अलावा स्टाफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अपने अकाउंटिंग स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पर साइबर फ्रॉड के बारे में ट्रेन करें। उन्हें समझाएं कि स्कैमर्स हमेशा अर्जेंसी और डर का यूज करते हैं, इसलिए किसी भी अर्जेंट ईमेल को देखकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा जब भी खुदा ना खास्ता आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो जाता है तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है ये कि आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप बैंक में इत्तला करेंगे, अपने बैंक को इत्तला करेंगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर आप साइबर क्राइम सेल पर रिपोर्ट करेंगे, उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे, तो आपका गया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। ये आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का, फ्रॉड से बचने का। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम उस दुश्मन के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे हम भूल जाते हैं। कुरान मजीद जब इंसान के दुश्मनों का जिक्र करता है तो सिर्फ उन दुश्मनों की बात नहीं करता जो हमें दिखाई देते हैं, बल्कि उस दुश्मन की तरफ भी मुतवज्जह करता है जो नजर तो नहीं आता लेकिन हमारी जिंदगी के हर गोशे में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। आज की नशिस्त में हम अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर करेंगे, इन शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। सामने किराम, इंसान फितरी तौर पर अपने दुश्मन को पहचानता है। अगर कोई कौम, कोई ग्रोह या कोई शख्स बार बार हमें नुकसान पहुंचाए, तो हम उसके बारे में मुहतात हो जाते हैं। हम उसकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते, उसकी चालों से बचने की कोशिश करते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जब दुनिया का हर इंसान अपने जाहिरी दुश्मन से खबरदार रहता है, तो फिर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी शैतान के बारे में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं? कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि शैतान दुश्मन है, बल्कि हुक्म देता है कि दुश्मन को दुश्मन ही समझो, दुश्मन को दोस्त मत समझना। यानी सिर्फ मालूमात की सतह पर ही नहीं बल्कि अमली रवैया भी जरूरी है। जिस फौज को मालूम हो कि दुश्मन सरहद पर खड़ा है लेकिन वो बेफिक्री से सो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? बिल्कुल यही मामला हमारी जिंदगी का भी है। शैतान कोई आम दुश्मन नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंसान का दुश्मन रहा है। उसने अल्लाह ताला के सामने ये कहा था, मैं ज़रूर तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करूँगा,

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। आज इस सिलसिले की दूसरी एपिसोड है और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ शो में, ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे वर्क लाइफ वर्शिप बैलेंस के ऊपर। आज के दौर में हम सब एक अजीब दौर में शामिल हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, ईमेल्स देखते हैं, मीटिंग्स का शेड्यूल बनता है, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों का स्कूल, खाना पकाना और ऊपर से दिल में खामोश देवास जो बार बार ये भी पूछ रही होती है, नमाज पढ़ी, कुरान की तलावत की, अल्लाह को याद किया। ये स्ट्रगल सिर्फ हमारी नहीं, हर उस शख्स की है जो दुनिया भी संभालना चाहता है और आखिरत भी बचाना चाहता है। हम काम पर जाते हैं तो दिल कहता है घर वालों के लिए वक्त निकालो, घर आते हैं तो ख्याल आता है कि करियर में पीछे रह जाओगे, और जब इबादत की बारी आती है तो थकावट या वक्त की कमी का बहाना बन जाता है। हम सोचते हैं कि कामयाब जिंदगी का मतलब है सब कुछ एक साथ करना, मल्टीटास्किंग, अच्छा करियर, खुशगवार फैमिली, मजबूत ईमान, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से अक्सर इस तीन तरफा रस्सा कशी में हम फंस के रह जाते हैं। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर है, डेडलाइंस, बॉस की तवक्कात, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश, शादीशुदा जिंदगी के तकाजे, और तीसरे किनारे पे हमारा रब जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं मगर जिसे सबसे आखिर में वक्त देते हैं। ये जो एहसास है, एहसास कसूर, बहुत भारी होता है। आप इसको एहसास नदामत भी कह सकते हैं। काम ज़्यादा करते हैं तो लगता है इबादत में कमी रह गई, इबादत ज़्यादा करते हैं तो लगता है कि दुनियावी जिम्मेदारियाँ अधूरी रह गई, घर को ज़्यादा वक्त देते हैं तो करियर पीछे रह जाता है, और हम खुद को कोसने लगते हैं कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं, अच्छा वालिद या वालदा नहीं, अच्छा मुलाजिम, बिजनेसमैन नहीं। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई अल्लाह ने हमसे तवक्को रखी है कि हम हर चीज़ में नंबर वन हों? क्या इस्लाम हमें थका देने वाली दौड़ लगाने का कहता है, इसका हिस्सा बनने को कहता है, इस रेस में हिस्सा लेने को कहता है, या फिर अल्लाह ने कोई एतदाल का रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हम दुनिया भी जीत सकते हैं और आखिरत भी? आज के एपिसोड में हम बिल्कुल यही बात करेंगे। हम देखेंगे कि आज का माशरा हमें कैसे हसल कल्चर में धकेल रहा है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, और सबसे अहम

अल्लाह ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं घर के ही काम करूं, मेरे अल्लाह ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि जब मैं कमाऊं तो रिज़्क़े हलाल कमाऊं, मेरे अल्लाह ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं ईमानदारी के साथ अपना जो रोज़ी है उसको हासिल करूं, मेरे अल्लाह ने मुझे घर की जिम्मेदारी दी और औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि अपने शोहरों की फरमाबरदार रहें, अपने शोहरों की जो अमानतें हैं उनमें ख़यानत ना करें। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद हमें इबादत, जो हमारे जो एक अल्लाह का तकाजा है हमसे इबादत का, वो पूरा करवा रही होती हैं और हम पूरे दिन एक इबादत की कैफियत में होते हैं। आप हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखा करें और गिल्ट का एहसास जो है उसको यकीनन कम करने में बहुत आपको इस चीज़ से मदद मिलेगी जब आप सोचेंगे कि ये जो सारे फ़राइज़ हैं ये भी अल्लाह ताला उनको इबादतों में शुमार करता है। क्योंकि डेफिनेटली हम दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में रह के जो दुनिया की जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला ने हमसे ये एक्सपेक्ट किया होता कि हम दिन रात सजदे करते रहें तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा करने में कोई अल्लाह को दिक्कत नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अल्लाह ये बहुत ईजीली हमारे लिए कर सकता था कि हम 24 घंटे इबादतें करते, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, दुनिया के मामलात पैदा किए, रिश्ते बनाए, उनकी कुछ तकाज़े रखे, हुकूक व फ़राइज़ का मामला रखा। तो यकीनन अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है और अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस आपसे इन तमाम मामलात में अल्लाह ताला को प्रायोरिटी बनाने की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से जो तरजीहात हैं वो हमें सेट करनी चाहिए। होता यह है कि बहुत सारे काम हम कर तो वैसे ही रहे होते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन उनको करते हुए बाज़ औक़ात हमारे जहन में अगर ये नहीं है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, तो इस्लाम हमें बताता है कि हमारे जो अमाल हैं उनका दारोमदार हमारी नियतों पर है। आजकल दुनिया जहाँ बहुत तेज़ी से बदल रही है, वहाँ पे लोगों के नए नए कॉन्सेप्ट पैदा होते जा रहे हैं, बहुत सारे आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि एक जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन रिलीजन को उससे साइड पे कर देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा काम करो, ज़रूरी नहीं है कि वो किस रिलीजन के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे ये बात एक मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो फेथ है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हम ख़ास तौर पे चूंकि इस्लाम के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपकी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उससे पहले आपकी नीयत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि हमें आप देखें इस्लाम में हर काम को शुरू करने की, हमें सुन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा में हमें दुआएं मिलती हैं हर काम को। कोई भी चीज़ है, मामूली से मामूली, आप खाना खाने बैठे हैं, अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से अपने खाने की शुरुआत करते हैं तो बरकत होती है। साथ ही साथ एक नियत भी हो जाती है कि आप अपना जो खाना है वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए आप खाना खा रहे हैं। आप कोई भी काम है, आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, आप कहीं बैठते हैं, आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, उसकी दुआ है, सफ़र की दुआ है, खाने पीने की दुआ है, इसके साथ ही नया लिबास पहनने की दुआ है, रिज़्क़ हलाल की दुआ है। हम ये सारी दुआएं बेसिकली सिखाई ही इसलिए गई हैं कि ये जब हम पढ़ेंगे तो हमारे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से होगी और जो चीज़ भी अल्लाह के नाम से शुरू हो जाए वो उसकी नियत होती है। और फिर उसके बाद जो भी अमल आप अब 10 घंटे भी कोई काम करते हैं ना, तो शुरुआत आपने अल्लाह के नाम से कर ली और अब आपके जो तमाम जो काम है वो इबादत में इंक्लूड होगा। तो इसलिए ये एक आदत अपनी बना लीजिए कि कोई भी काम शुरू करते हुए किसी भी तरह का अगर आपको ज़्यादा दुआएं नहीं भी याद हैं तो कोई बात नहीं, आप कम से कम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो पढ़ सकते हैं। हर चीज़ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को अपनी आदत बनाएं। आप यकीन माने आपका वही काम जो शायद आपके लिए कभी आप अच्छा होता हो कभी ना होता हो, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से उस काम में अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही बरकत डाल देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी तरजीह सेट हो जाएगी, आप हमेशा शुरुआत अल्लाह के नाम से करना शुरू कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में हर काम में, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप खाना पका रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस का

0: आपकी जो प्रायोरिटी है, आपने पहला नाम अल्लाह का लिया है, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी और ये चीज़ आपको उस गिल्ट से बहुत हद तक बचाएगी जहाँ पे आपको ये लग रहा होता है कि मैं शायद उस तरह से वक्त नहीं दे पा रहा, मेरे पास उस तरह से वक्त नहीं है इबादतें करने के लिए। तो ये छोटा सा अमल है लेकिन इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, तो ये ज़रूर करना शुरू करें। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी एक नफ्सियाती सेहत के हवाले से बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करना शुरू करेंगे। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 तुलसी देसी।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है ज़हनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: Listeners, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, अमली इकदामात की। तवाज़ुन कोई ख्वाब नहीं है, ये रोज़मर्रा के फैसलों का नतीजा है। सबसे पहले तो हफ्तावार रूटीन बनाएं, एक शेड्यूल सेट करें, एक कोई कागज़ कोई डायरी है आपके पास तो हर दिन कौन से काम लाजमी है ये लिखिए। मिसाल के तौर पे फजर के बाद कुरान की तलावत 15-20 मिनट, 5 मिनट, अगर इससे भी कम टाइम है 2 मिनट, लेकिन कीजिए ज़रूर। फिर इसके साथ ही सुबह 9 से 5 ऑफिस का टाइम है, शाम 6:30 से 8:30 बजे तक फैमिली टाइम, बच्चों के साथ खेलना, खाना खाना, उसमें टीवी भी हो सकता है, मगरिब से इशा तक आराम, इबादत, रात 10 बजे सोना। इस कैजुअल में लचक रखें मगर बुनियादी जो ढांचा है वो इसका इसी तरह का हो। हर जुमे को अगले हफ्ते का प्लान आप रिव्यू करें। दूसरा पॉइंट ये है कि काम के औकात में इबादत को जम करें, ये सबसे अहम और मुश्किल हिस्सा है मगर मुमकिन है। जोहर और असर की नमाज ऑफिस में पढ़ें, अगर मस्जिद करीब ना हो तो मीटिंग रूम या खाली जगह पर आप पढ़ सकते हैं। जुमे की नमाज का बतौर ख़ास एहतमाम करें, इसको लाजमी बनाएं, बाजमात अदा करना, और इसके लिए जिस तरह से भी हो सकता है अपना शेड्यूल एडजस्ट करें। काम के दौरान हर घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें और जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। और आजकल जैसे हमारी एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है मल्टीटास्किंग, वो हमें वैसे ही आती है, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये अज़कार इतने हल्के होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप चाहें तो काम करते करते भी आप साथ में इसका विर्द कर सकते हैं। डेस्क पे एक छोटा कुरान रखें, और आजकल जैसे बहुत सारी कुरानिक ऐप्स भी मौजूद हैं, आप उसको देख लीजिए कि ऑथेंटिक हो, उसमें कोई मसला ना हो। आप ऐसी कोई ऐप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल, जैसे ही आपको मौका मिले, कोई ब्रेक आता है तो एक सफ़ा चंद लाइंस पढ़ लिया करें विद ट्रांसलेशन। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि नमाज का वक्त मुश्किल हो तो डेफिनेटली आपके लिए नमाज प्रायोरिटी है, तो उस पर गौर करें कि किस तरह से शेड्यूल बन सकता है, क्योंकि ईमान से बढ़कर कोई जॉब नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है बाउंड्रीज कायम करें। ऑफिस के बाद फ़ोन साइलेंट कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूट करें, बॉस को वाजे करें कि फ़लाँ वक्त के बाद एमरजेंसी ना हो तो आपको मैसेज ना किया जाए। घर में नो वर्क जोन बनाएं, जैसे डिनर टेबल पे फ़ोन ना हो। खुद से भी बाउंड्री रखें, हदूद बनाएं, लिमिट्स कायम रखें, सोशल मीडिया का वक्त महदूद करें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ के ख़ुद को माफ़ करना सीखें, और ये इसलिए क्योंकि हम गिल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं काफ़ी। अगर कोई एक दिन आपके प्लान के मुताबिक आप ना चल सकें तो ख़ुद को कोसे नहीं, गिल्ट का शिकार ना हो। अगला दिन है, अगला दिन नई शुरुआत करें, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इसके साथ ही अपने टारगेट्स को हमेशा छोटा रखें, एकदम से सब कुछ तब्दील करने की कोशिश ना करें। पहले सिर्फ फजर की नमाज जमात से पढ़ने का अज़्म करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएं। याद रखें कि अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद है जो कि थोड़ी हो, बेशक कम हो, लेकिन मुसलसल हो। आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो लिसनर्स, ये आज का हमारा शो जिसमें हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की कि किस तरह से हम अपनी फैमिली लाइफ को, अपने काम को और साथ अपनी इबादतों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस यकीनन कोई फार्मूला नहीं है कि जिसको आप

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
0: गानों की पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका पसंद।

0: जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में, और कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीक से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Late Night Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

Late Night Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर. दिल से देसी. इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो. यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें. हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है। तेरी बिरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संगसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया। जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का आजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्म बरा हूं। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और उसके साथी मोमिनों को बचा लिया और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां रहे बसे ही न थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे और मूसा को हमने अपनी निशानियों और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन

उनका हुक्म रास्ते पर न था। कयामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है ये जिस पर कोई पहुंचे, और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और कयामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुज़श्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बास अब भी खड़ी है और बास की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ फायदा न दिया।

उधर एक काफला आया और उसने अपने सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। सक्के ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको माले तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा उससे बाखबर था। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के एवज उसे बेच डाला और वो उसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा के उम्मीदवार न थे। मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको अच्छी तरह रखना, बाइद नहीं कि यह हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं।